شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: किसी ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आकिलुहा व अतवक्कल और उतलकुहा अतवक्कल, यानी मैं अपने ऊंट को बांध कर खुदा पर भरोसा करूं या उसे खुला छोड़कर ही खुदा पर एतमाद और भरोसा करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकिलुहा व अतवक्कल, यानी पहले अपने ऊंट को बांधो फिर खुदा पर भरोसा करो। इसी से ये कहावत मशहूर है, आकिल व तकिल, आकिल व तवक्कल, दो तरह कह सकते हैं। इंसान के लिए तवक्कुल और भरोसा करते वक्त मंजिल इम्तिहान यही है कि वो खुदा के फराहम करदा मादे ज़राए और असबाब को इस्तेमाल करे, काम करे, मगर इन असबाब पर एतमाद न करते हुए खुदा पर भरोसा करें और उससे लो लगाएं। आकिल व तकिल, काम करने के साथ साथ खुदा पर भरोसा और तवक्कुल इंसान को सही नतीजा देता है, और वो भी उस वक्त कि जब वो अपने काम, अपने कारोबार, अपने मुलाजमत या अपने मादी वसाइल पर तकिया नहीं करता, बल्कि उनको इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने पालने वाले पर भरोसा करे।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं, और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों

0: का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, कुछ सेहतमंद गजाएं ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल में एहतियात हमें जरूर करनी है। सेहतमंद गजा का तसव्वुर यह है कि उसका ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारी सेहत के जो फवायद हासिल किए जा सकते हैं वो तो हैं ही, क्योंकि उनमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और प्रोटीन से भरपूर होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सेहत बख्श गजाएं हैं जिनके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए, जैसे कि हम बात करेंगे प्रॉन्स की, यानी झींगे। बज़ाहिर ये चिकनाई के तनासुब में कम होते हैं। 3 ounce पके हुए जो बड़े प्रॉन्स हैं उनमें 179 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इनमें प्रोटीन और जो नेचुरल फाइबर है वो भी मौजूद है, जो दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, मगर रोज़ाना प्रॉन्स या झींगों का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं। चाय, जो आपको, हमें सभी को बहुत पसंद है, मगर एक हालिया तहकीक हुई उसके मुताबिक चाय पीने से जहनी और जिस्मानी दबाव में आराम के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में कमी वाकई होती है, मगर जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है। दिन में चाय के 2 कप पिए जा सकते हैं और ये कि आप दोपहर के बाद चाय का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। दालें, जो कि प्रोटीन से भरपूर होती हैं और रेड मीट के मुकाबले में प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया भी हैं, लेकिन ज्यादा मकदार में इनके इस्तेमाल से गैस बनने, सीने में जलन की शिकायत लाहक हो जाती हैं। और जूसेस, जो कि सबको बहुत पसंद होते हैं, खासतौर पर गर्मी के मौसम में तो जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है और हमें लगता भी ऐसे ही है कि ये तवानाई का खजाना है और बाजार में भी दस्तयाब है, और इस यानी कार्बोहाइड्रेट्स की पूरी जो लॉट है वो हमें मिल जाती है। अगर ये जूसेस जिस्म की जो अफजाइश है उसमें काम ना आ सके तो ये फिर जिस्म में एब्जॉर्ब होकर उसे मोटापे की तरफ माइल कर देते हैं। तो फिर ऐसा कीजिए कि रोज़ाना 2 कप से ज़्यादा जूस आप ना इस्तेमाल करें। नट्स

0: क्योंकि बहुत अहम है और मुख्तलिफ जो नट्स हैं गुज़ाइयों से भरपूर एक कुदरती गिज़ा भी हैं। इनमें ओमेगा 3 पाया जाता है जो कि बहुत ही हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन इन नट्स की जो इजाफी मकदार है यानी ज़्यादा मकदार अगर हम लेंगे तो उससे हमारे वज़न में इजाफा हो जाएगा और इस तरह से मोटापे की तरफ हम चले जाएंगे। और इसी तरह से लेनी कितनी है, बिल्कुल एक हैंडफुल या गोल्फ बॉल जितनी जो सर्विंग है वो आप रोज़ाना लीजिए, वरना फिर जिम जाने के लिए तैयार हो जाइए। खुश रहिए, एहतियात से खाइए। हेल्थ फॉर ऑल
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियां नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उनके पास जो कुछ भी था वो एक बत्तख की वजह से था। वो एक खास किस्म की बत्तख थी। ये बत्तख हर दिन एक सुनहरी अंडा देती थी। किसान और उसकी बीवी बहुत खुश थे, क्योंकि ये अंडे बेचकर उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी। वो अपने नए नए कपड़े खरीदते, अच्छे खाने खाते और बहुत ही अच्छी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। किसान और उसकी बीवी अपने दिन गुजारने के लिए इस बत्तख के अंडों पर इन्हिसार करते थे। वो ये बात जानते थे कि हर दिन सुबह उठते ही उनके पास एक सुनहरी अंडा होगा, जिसे वो बाजार में बेच कर पैसे कमा सकेंगे। उनकी जिंदगी आरामदेह और खुशहाल थी। और फिर क्या, वो हर दिन शुक्रगुजारी से रहते थे। लेकिन दोस्तों, जूं जूं वक्त गुजरता गया, किसान के दिल में लालच आ गया। वो सोचने लगा, अगर ये बत्तख हर दिन सुनहरी अंडा देती है तो क्यों ना मैं इससे ज्यादा अंडे हासिल करूं। इस तरह तो हम और भी ज्यादा पैसे कमा सकेंगे और हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। किसान ने अपनी बीवी से इस ख्याल का इजहार किया। उसकी बीवी ने कहा, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, अगर हम इससे ज्यादा अंडे हासिल कर सकें तो हम तो बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। हमें ना इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। ज्यादा सुनहरी अंडे हासिल करने का ये ख्याल किसान के जहन में बैठ गया साथियों। और फिर क्या होना था, अगले ही दिन उसने ये फैसला किया कि वो बत्तख को मारकर उसके पेट में छुपे हुए सुनहरी अंडों को निकाल लेगा। किसान का ख्याल था कि बत्तख के पेट में बहुत से सुनहरी अंडे होंगे और वो अंडे निकाल कर बेशुमार पैसे कमा लेगा। दूसरे दिन जब बत्तख ने अपना रोजाना का सुनहरी अंडा दिया, किसान ने फौरन अपनी बीवी से कहा, भाई आज तो हम इस बत्तख को मार देंगे और इसके पेट में छुपे सारे अंडे निकाल लेंगे। किसान की बीवी ने भी ना सोचा ना समझा और फौरन उसकी बात को तस्लीम कर लिया और दोनों ने मिलकर उस बत्तख को मार डाला। किसान ने बत्तख का पेट खोला और अंदर झांका, लेकिन ये क्या, किसान तो जो भी तवक्को कर रहा था वैसा तो कुछ भी नहीं मिला। उसके पेट में ना कोई सुनहरी अंडे थे और ना ही कुछ कीमती चीजें। ये देखकर किसान का दिल गमजदा हो गया। किसान और उसकी बीवी दोनों मायूस हो गए। किसान ने कहा, हाय, ये मैंने क्या किया, मेरे ख्याल में बत्तख के पेट में बहुत सारे अंडे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने जो कदम उठाया था वो बिल्कुल गलत था। अब हमें ना कोई अंडा मिलेगा और ना ही हम कुछ कमा पाएंगे। उस वक्त किसान को अपनी इस बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी लालच में आकर बत्तख को मार डाला था और अब उसके पास कोई सुनहरी अंडे नहीं थे। उसका रोजगार खत्म हो चुका था और उसके पास पैसा कमाने का कोई और जरिया भी नहीं रहा था। किसान और उसकी बीवी गमगीन हो गए। वो ये बात समझ गए कि उनकी खुशहाल जिंदगी सिर्फ उस बत्तख के एक अंडे पर मुनहसर थी। अब वो इससे महरूम हो चुके थे। वो अब एक दूसरे की तरफ देखकर अफसोस ही कर सकते थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। किसान ने अपनी बीवी से कहा, हमने जो किया वो बहुत बड़ा जुल्म था भाई। हमें बत्तख के उस एक एक सुनहरे अंडे की कदर करनी चाहिए थी और अपनी लालच को काबू में रखना चाहिए था। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बीवी ने भी कहा, हाँ ना, हमने अपनी बेवकूफी की वजह से सब कुछ खो दिया। अब हमें दोबारा मेहनत करनी होगी और खुदा से दुआ करनी होगी कि वो हमें नई राह दिखाए।
किसान और उसकी बीवी ने अपनी जिंदगी के सबक को सीखा और अहद किया कि आइंदा वो किसी चीज की लालच में आकर बेवकूफी नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा सादा और मेहनती तरीके से गुजारने का फैसला किया। दोस्तों, वो ये बात जानते थे कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ मेहनत से आती है और किसी भी चीज की कदर करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमेशा ये याद रखें कि हमें कभी भी किसी चीज की लालच में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज की हकीकत ना समझ लें, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। हमें हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और अपने फैसलों के नतीजे पर भरपूर गौर करना चाहिए।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है?

0: और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है, किस तरह इकॉनमी, बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इकोनॉमी कॉन्सेप्ट के इस स्पेशल सेगमेंट में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। तलहा अशरफुज़्ज़मान की तरफ से कबूल कीजिए सलाम तहियात। सामीन, दुनिया भर में महंगाई वक्त रवां के अहम तरीन सियासी और माशी मसाइल में से एक है, लेकिन सवाल यह है कि महंगाई या इन्फ्लेशन इफरात ज़र की पैमाइश कैसे की जाती है। दरअसल किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसे इफरात ज़र या महंगाई कहते हैं, लेकिन जिस इफरात ज़र की बात हो रही है वो किसी एक, दो या दर्जनों अशिया की बात नहीं। सादा जबान में कहा जाए तो किसी मईशत में मजमूई तौर पर जितनी अशिया खरीदी जाती हैं उसकी औसतन कीमत अगर बढ़ती है तो हम उसे इफरात ज़र या इन्फ्लेशन कहते हैं। अब सवाल यह है कि इफरात ज़र में इजाफा कैसे होता है। अशिया की कीमत बढ़ने की दो वजूहात होती हैं, एक ये कि अशिया की तैयारी की लागत बढ़ जाती है, मतलब खाम माल की कीमत ज़्यादा हुई या फिर उजरत ज़्यादा लगी, इस पर जो खर्चा ज़्यादा हुआ तो कीमत भी बढ़ जाएगी, इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी वजह महदूदियत है, यानी मार्केट में माल कम है लेकिन ख़रीदार ज़्यादा हैं, कुछ ग्राहक ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार होते हैं, इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे तेल की कीमत, अगर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि उसे ईंधन की मदद से चलने वाला ट्रक मंडियों तक पहुँचाता है। यूँ तेल की कीमत में इजाफे का असर उन तमाम चीज़ों की कीमत पर पड़ेगा और वो बढ़ जाएगी। और एक वजह नोट छापना भी है, अगर हुकूमत ज़्यादा पैसे छापती है तो फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, मंडी में चीज़ें महदूद होती हैं और लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो इससे भी चीज़ महंगी होती है, इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दो टोक अल्फाज में हम इफरात ज़र की तारीफ इस तरह कर सकते हैं, टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स। बलफ़ दीगर, इफरात ज़र की बुनियादी वजह रसद और तलब में अदम तवाज़ुन होती है। और इसी के साथ आज के इस सेगमेंट से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आइंदे सेगमेंट में। मअस्सलामा।
0: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्लाह।
2: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी

0: एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। डोंट मिस इट।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

सबसे बड़ा कारनामा है। ताहम अगर T20 क्रिकेट की बात हो तो 100 स्कोर करना और भी ज्यादा मुतासिर कुन होता है, क्योंकि ओवर्स ही कम होते हैं। यूरोप के मुल्क एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज के दौरान सिर्फ 27 गेंदों पर 100 रन बनाने के बाद T20 क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक ही दिन में 2 मैचों के स्केड्यूल के साथ साहिल पहले मुकाबले में बिना कोई रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे मैच में वो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। साइप्रस के 7 विकेट्स पर 191 के स्कोर के मुकाबले में चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रन नॉट आउट बनाए और अपनी टीम को 13वीं ओवर में जीत दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। ये T20 क्रिकेट की तारीख में तेज तरीन सेंचुरी है। चौहान ने अपनी इनिंग्स के दौरान 18 सिक्सेस भी मारे और इसी तरह T20 इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड बराबर किया। इनफैक्ट उन्होंने द फास्टेस्ट सेंचुरी करके गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा। वे टू गो साहिल चौहान।

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: हेलो,
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। Assalamualaikum, FM 107 सुन रहे हैं आप, वो स्टेशन जो कि आपके दिन को और भी ज्यादा ब्राइटर बनाता है और लाइफ को इजियर बनाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, और जो कि वापस आ चुकी है कुछ अमेजिंग लाइफ हैक्स लेके। तो अभी जो लाइफ हैक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो चांदी की चीजों को यानी कि सिल्वर पॉलिशिंग में बहुत काम आएगा। तो घर पे अक्सर हमारे पुराने चांदी की चीजें होती हैं, चाहे थाली हो, कटोरी हो, या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम हो, या कोई जेवरात हो, पर विद द टाइम ऐसा होता है कि वो काली पड़ने लगती है या यूं कहें टार्निश होने लगती है। तो क्या करें? बहुत सिंपल सा उपाय है, आप एक आलू का छोटा सा टुकड़ा काटें और चांदी की जिस भी चीज को आप चमकाना चाहते हैं उसके ऊपर थोड़ा रगड़ें, और जब आप रगड़ेंगे थोड़ी देर रगड़ने के बाद आप उसे एक साफ कपड़े में पोंछ लें। जब आप ये करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो चांदी की चीज है, चाहे कोई बर्तन हो, चाहे कोई डेकोरेटिव आइटम हो या फिर ज्वेलरी हो, बिल्कुल ऐसे चमकेगी जैसे कि नई हो। फिर आप सोचेंगे कि अरे आलू सच में ऐसा कुछ कर सकता है क्या? एग्जैक्टली, मैंने भी यूज करने से पहले यही सोचा था, बट देन ये आलू जो होता है ना, ये इतना काम का हो सकता है जिसके बारे में हर कोई नहीं सोचता। बट ये सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है, एकदम सरप्राइजिंग पर सुपर इफेक्टिव तरीका, आप भी ट्राई करें। फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum, listeners. Aap sun rahe hain Green Path, ek aisi journey jahan hum baat karte hain environment ki behtri, sustainable lifestyle aur Qatar ke vision 2030 ke goals ki roshni mein. हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे-छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम 3 आर्ट्स, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के बारे में बात करेंगे। ये तीन प्रिंसिपल्स आपको हर दिन अपने लाइफ में अप्लाई करने चाहिए ताकि अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर सकें। रिड्यूस, अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस करें। ज्यादा प्लास्टिक और पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट से बच के छोटे और रीयूजेबल आइटम्स का इस्तेमाल करें। जो चीजें आपके पास हैं, उन्हें दोबारा यूज करने की कोशिश करें, जैसे ग्लास जार्स को स्टोर के लिए इस्तेमाल करें। रीसाइक्लेबल आइटम्स को अपने लोकल रीसाइक्लिंग सेंटर में डालें। ये प्लास्टिक, पेपर और मेटल्स जैसे मटेरियल्स को दोबारा यूज करने में मदद करता है। रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल के सिंपल स्टेप से हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिकराम, प्रोग्राम तफहीम कुरान के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज की इस नई नशिस्त में हम कुरान मजीद की एक नहायत बुनियादी, गहरी और ज़िंदगी बदल देने वाली हकीकत पर गुफ्तगू करेंगे बेइज़्निल्लाह तआला। हकीकत यह है कि इंसान की असल खुशी, असल सुकून, असल कामयाबी और असल नजात सिर्फ अल्लाह ताला की हिदायत पर चलने में है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमन इत्तबअ हुदाया फला यضل वला यशका, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा न वो गुमराह होगा और न बदबख्ती में मुब्तला होगा। एक दूसरी जगह फरमाया, फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा न उन पर खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। सामिन किराम, इन दो आयात में इंसानी सआदत का मुकम्मल नक्शा मौजूद है। अल्लाह के हिदायत पर चलने वाला इंसान अकल की गुमराही से बचता है, दिल की बदबख्ती से महफूज रहता है, माजी के गम में नहीं टूटता और मुस्तकबिल के खौफ में नहीं बिखरता, और यही मुकम्मल सुकून है। इंसान के दुख का एक बड़ा सबब यह है कि उसका जहन भटक जाता है, उसका दिल बेचैन हो जाता है, वो गुजरे हुए वक्त पर अफसोस करता है और आने वाले कल से खौफ ज़दा रहता है। लेकिन कुरान कहता है कि जो अल्लाह की हिदायत को अपना रास्ता बना ले वो इन चारों बीमारियों से महफूज हो जाता है, ना अक्ल गुमराह, न दिल बदहाल, न माजी का पछतावा, न मुस्तकबिल का खौफ, और यही हकीकी खुशी है। सामिन इकराम, आज दुनिया में इंसानों की तादाद अरबों में है, मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ रंग, नस्ल, इलाक़े, तहजीबें और नज़रियात हैं। दुनिया ने इंसानों को बेशुमार खानों में तकसीम कर रखा है, कोई शुमाल का है, कोई जुनूब का, कोई तरक्की याफ्ता कहलाता है, कोई पसमानदा, कोई ताकतवर कौम है, कोई कमज़ोर, कोई सरमायादार है, कोई गरीब। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक असल तकसीम कुछ और है। कुरान इंसानों को ज़मीन के बनाए हुए खानों से नहीं, बल्कि उनके अमल, ईमान और रास्ते के एतबार से देखता है। सूरतुल लैल में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लैल इज़ा यग़्शा वन्नहार इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़िक्र वल्अन्था इन सअयकुम लशत्ता, कसम है रात की जब वो छा जाए और दिन की जब वो रोशन हो, और उस ज़ात की जिसने मर्द और औरत को पैदा किया, बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। फिर अल्लाह ताला दो रास्ते बयान फरमाता है, एक रास्ता है फ़अम्मा मन अता वत्तका वसद्दका बिलहुस्ना, जिसने अतिया दिया, तकवा इख्तियार किया और आखिरत की भलाई को सच माना, और दूसरा रास्ता है وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, जिसने बखल किया, खुद को बेनियाज समझा और आखिरत की भलाई को जुटलाया। सामने किराम, एक नहायत ही अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि आखिरत को जुटलाना सिर्फ जबान से इनकार करने का नाम नहीं। हम में से बास तो ये समझते हैं कि बस हम तो जबान से नहीं जुटलाते, मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता।

0: Assalamualaikum and good morning. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान और इस वक्त हो रहे हैं 6:02. उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे. आज की सुबह का अच्छा सा आपका आगाज हो गया होगा. दो दिन की छुट्टी आपकी काफी अच्छी गुजरी होगी, अगर तो छुट्टी थी. अगर छुट्टी नहीं थी तो कम अज कम ये दो दिन आपके बहुत अच्छे गुजरे होंगे. सब कुछ अच्छा भला महसूस हो रहा होगा. और आज 21 जून है और आज जो है वो साल का सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है. मतलब यहाँ तक हम आ गए हैं पीक पे, मतलब सबसे बड़ा दिन होगा. उसके बाद फिर हल्के हल्के हल्के हल्के दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे और फिर मतलब मौसम भी इसी तरीके से बेहतर होना शुरू हो जाता है. अभी जाएगी वैसे, मतलब अभी मैंने देखा था आपको लास्ट टाइम बता के गई थी कि थोड़ा सा टेम्परेचर मुनासिब रहना है, लेकिन कल अच्छी खासी गर्मी थी, ठीक ठाक गर्मी थी. और इस हफ्ते में भी गर्मी का और ज़्यादा जो है वो बढ़ना मुतवक्को है. तो थोड़ा सा उसके हिसाब से तैयार हम लोगों ने रहना है मेंटली कि गर्मी और ज़्यादा हो सकती है. तो ख्याल रखिए अपने आप, ज़रा थोड़ा सा मतलब शेड्स वगैरह में रहें, ये हमेशा हम कहते रहते हैं. गैर ज़रूरी तौर पे आपने निकलना नहीं है घर से कहीं बाहर, और जब बहुत ही ज़रूरत है तो उसी सूरत में जाएं, लेकिन सारी की सारी जो प्रिकॉशंस हैं उनके साथ, ताकि आप बिल्कुल सेहतमंद रहें, कोई इस किस्म का मसला ना हो. क्योंकि आपको पता ही होगा कि जैसे ये मौसम चेंज होते हैं ना, तो हर दफ़ा ही लोगों को मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होते हैं. और चाहे वो सर्दी शुरू हो, चाहे गर्मी हो रही हो, और फिर जब हीट वेव्स की वजह से आपको अक्सर ये होता है, देखने में आता है कि लोगों की तबीयत ख़राब हो गई, बेहोश हो गए, और भी बहुत सारे मसले होते हैं. तो उसमें यही होता है कि इंसान बिला वजह मतलब ना टार्जन बनने की कोशिश ना करे, थोड़ा सा मतलब मुनासिब तरीके से अपनी प्रिकॉशंस के साथ चीज़ें करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें. जी वीकेंड कैसा गुजरा, क्या किया आप लोगों ने, ये भी हमसे शेयर कीजिएगा. 6622107 पे आप हमें कर सकते हैं कॉल, और इसके साथ ही 6622107 पे मैसेज कर सकते हैं आप हमें, ठीक है. और 4434377 पे आप हमें कॉल कर सकेंगे थोड़ी देर के बाद और शामिल हो जाएंगे शो में. अच्छा, आज का टॉपिक क्या है ये मैं आपको बताती हूँ. अभी भी मुझे ख्याल आया है कि मुझे पहले ये देख लेना चाहिए कि आज का टॉपिक है क्या. तो मैं बिल्कुल आपको थोड़ी देर के बाद देख के बताऊँगी कि आज हम किस हवाले से बात करने वाले हैं, कौन सा सवाल करूँगी मैं आपसे, और फिर डेफिनेटली आप उसका आके हमें जवाब देंगे. और नंबर्स मैं बता चुकी हूँ, तो नंबर्स आपके पास हैं. अच्छा जी, अब थोड़ी देर में हमने चलाने हैं असकार, और उससे पहले जैसे हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लेकर आऊँ जिससे आपकी और मेरी दोनों की नॉलेज में इजाफा हो. तो कल ही मैंने एक देखी तहरीर जो थी, मैंने सोचा कि चलो कल हम यही शेयर कर लेते हैं. तो बेसिकली हम लोगों ने सब ने ही सूरह अल-इंशरा पढ़ी है, और उसमें जो एक जुमला है ना, वो बहुत एक आयत उसका तर्जुमा बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है. जब भी कोई तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, तो उस पर हम कहते हैं कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है. और अल्लाह ताला ने इस बात को इस एक आयत में दो दफ़ा दोहराया है, ये हम सब लोगों को अंदाज़ा है. और इसके हवाले से मुख्तलिफ आपने तफासीर भी सुन रखी हैं, मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं उनसे इसके बारे में जान भी अब चुके हैं. तो एक तहरीर जो है ना जो मैंने पढ़ी, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कल ही. इसमें जैसे सूरह अल-इंशरा में अल्लाह ताला दो दफ़ा ये फरमाते हैं कि बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है. यहाँ अल्लाह ताला ने एक ही बात को दो बार दोहराया है, और हम भी हमेशा दो बार पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अल्लाह ताला ने बिला वजह एक ही बात को दो बार जिक्र फरमाया हो. नहीं, बल्कि यहाँ एक अजीब दिलकश बात छुपी हुई है जिसकी तरफ शायद हम में से कभी किसी ने तवज्जो ना दी हो. तो चले आज समझते हैं. अरबी में कलमात दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं मारफा और दूसरे को कहते हैं नखरा. मारफा वो होता है जिसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ हो, तो उनमें से कोई ख़ास चीज़ मुराद होती है. जैसे अगर अल कलम कहा जाए तो उसके शुरू में अलिफ लाम लगा है, तो उसमें कोई ख़ास मतलब किस्म का एक कलम मुराद होगी. दूसरे होते हैं नखरा, जिनके शुरू में अलिफ लाम नहीं लगा होता, तो उनसे कोई ख़ास चीज़ नहीं मुराद होती, कोई ख़ास एक चीज़ मुराद नहीं होती, ठीक है. जैसे अगर बग़ैर अलिफ लाम के सिर्फ कलम कहा जाए तो उसे कोई एक ख़ास कलम मुराद नहीं होगा, बल्कि कोई भी कलम हो सकता है. ये समझ में आ गया ना, तो ठीक है. इसके बाद क्या है कि अरबी का एक असूल है जिसे आप जब कोई कलमा पहली बार नकरा यानी गैर मुतइन सूरत में आए, यानी किसी ख़ास चीज़ को तय ना किया गया हो, और फिर भी दोबारा वही कलमा नकरा की सूरत में आया, तो दूसरी बार वो पहले वाली चीज़ मुराद नहीं होती, बल्कि इससे जो है वो एक और अलग चीज़ मुराद होती है. लेकिन जब इसमें मौरफा की सूरत में आए, यानी इस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम मीम हो और उसको दो बार दोहराया जाए, तो दोनों सूरतों में मुराद एक ही होती है. यानी जो चीज़ पहले लफ्ज़ से मुराद थी वही चीज़ दूसरे लफ्ज़ से भी मुराद होगी। तो थोड़ी सी शायद हो सकता है ये बात मुश्किल लग रही हो, तो इसमें इन्होंने इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि ऊपर वाली आयत में अल उसरे का जो लफ्ज़ है वो दो बार आया है, जिसका मतलब है मुश्किल, तंगी, परेशानी, और ये दोनों बार मारफा की सूरत में है, यानी इसके शुरू में अलिफ लाम है। और अभी जैसे आपको बताया कि जो कलमा मारफा और दो बार आए तो इससे एक ही चीज़ मुराद होती है, तो अब मतलब ये बनेगा कि यहाँ एक ही तंगी मुराद है, कोई एक ही परेशानी, कोई एक ही मुश्किल है, चाहे वो बीमारी की परेशानी है, जॉब की तंगी है, पैसों की मुश्किल है या कुछ भी, लेकिन एक ही तंगी और एक ही परेशानी है। और इसी आयत में फिर दोबारा जो लफ्ज़ आया है जिसका मतलब है आसानी, और ये दोनों बार नखरा की सूरत में आए, यानी इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं है। और अभी जैसे आपको बताया था कि जो कलमा जो है नखरा होता है और दो बार आता है, तो इन दोनों कलमों से अलग अलग चीज़ें मुराद होती हैं, तो अब इसका मतलब ये बनेगा कि यहाँ अलग अलग आसानी है, अलग अलग इलाज है और हल है। पूरी आयत का मतलब ये बनेगा कि एक मुश्किल के साथ दो दो आसानियाँ हैं, मुश्किल एक है मगर आसानियाँ आसानियाँ अलग अलग हैं, एक मुश्किल के मुकाबले में दो दो आसानियाँ आपके सामने खड़ी हैं। और अक्सर इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अक्सर मैं एक हदीस पढ़ा करता था कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने असहाब को इस आयत से खुशखबरी दिया करते थे और फरमाते थे कि एक ही मुश्किल दो आसानियों पे गालिब नहीं आ सकती। और ये हदीस जो है उसका मतलब क्या है वो इससे समझ में आता है। बेसिकली अल्लाह ताला का वादा है कि आप अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो अल्लाह ताला सिर्फ आपकी मुश्किल को दूर नहीं करेगा बल्कि इनके साथ दो आसानियाँ अदा करेगा। और यहाँ दो का अदद हमें समझाने के लिए है, वरना डेफिनेटली इससे मुराद ये है कि कई आसानियाँ अल्लाह ताला नवाजेंगे। इसीलिए जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो सबसे पहले अपने दिल को ये वाली आयत याद दिला दिया करें कि जो भी परेशानी है आपके सामने खड़ी है, लेकिन ये तो एक ही है, उसके बदले में अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में आसानियों को एक से ज़्यादा रखा हुआ है। मसला एक है लेकिन अल्लाह के दरवाज़े बहुत से हैं, एक रास्ता बंद नज़र आता है लेकिन अल्लाह ताला कई रास्ते आपके लिए खोल देंगे। आपकी मुश्किल अल्लाह ताला के लिए बड़ी नहीं है, आपका कर्ज़, आपकी बीमारी, आपके टूटे हुए ताल्लुकात, आपकी बेरोज़गारी, आपकी तन्हाई, आपके आंसू, ये सब उस रब के सामने बहुत छोटे हैं। लिहाजा हिम्मत कभी ना हारिए, अपने रब से बदगुमान मत होइए। और अगर आज आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट फील कर रहे हैं या कुछ भी, तो सजदे में चले जाएं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो दुआ के लिए हाथ उठा लें, दुनिया के सारे सहारे छूट गए हैं तो उस साथ को पकड़ लीजिए जो कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तो डेफिनेटली मतलब अगर हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ज़रा जायज़ा लेना बैठ कर, कोई भी जो मुश्किल परेशानी जिस किस्म के भी हालात आए, तो हमें ख़ुद भी अंदाज़ा होता है कि मुश्किल तो वाकई एक ही होती है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बहुत सारी होती हैं, दो नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, बेशुमार होती हैं, बस उनको किस तरह से आपने ग्रैब करना है, कितनी उसके लिए स्ट्रगल करनी है, अल्लाह ताला के ऊपर कितना भरोसा रखना है, ये हर इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए जी, ये थी आज की हमारी एक तहरीर जो कि मैंने आपसे शेयर की, और इसी के साथ चलते हैं असकार की जानिब।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
2: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

रेडी राइट वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महावश खान और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आपके साथ रहना है मैंने 9 बजे तक. अच्छा आज क्या सिलसिला है? आज पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा ना कुछ दिमाग जो है ना गैर हाजिर सा चल रहा है आज. इवन मतलब मैं भी आखिर में मतलब समझे आखिर का कोई 5 मिनट का रास्ता है जो मैं जब ऑफिस पहुँच गई तो फिर मैं सोचने लगी कि ये मैं ऑफिस पहुँच ही गई हूँ तो मुझे बीच वाला जो है ना निकल गया, दिमाग से निकल गया बिल्कुल. और फिर बंदे को जो परेशानी हो रही थी ना भाई, सिग्नल्स तो खुले हुए थे, सब कुछ ठीक तो था, तो ये वाली जो है ना मेरी कंडीशन हो रही थी. पता नहीं मतलब मैं किस एकदम से कुछ खो सी गई थी. कभी कभी होता है ना, मतलब हम टाइम ट्रैवलिंग तो नहीं करते लेकिन हमारे साथ होता है ये कि बीच के कुछ मोमेंट्स जो है ना, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स कभी कभी बिल्कुल ऐसे गायब से हो जाते हैं. आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया. अक्सर ऐसा होता है कि आप गाड़ी चलाते खासतौर पर, क्योंकि आप एक आदत बनी हुई होती है ना, आप रोबोट की तरह मतलब कुछ चीज़ों पर जो आप रोज़ करते हो तो वहाँ पर एक रोबोट ही बन जाते हो आप. आपको पता होता है यहाँ से यहाँ मुड़ना है, वहाँ से वहाँ मुड़ना है और ये करना है. तो बीच में कहीं कहीं ऐसा होता है कि एकदम से ना मतलब आपको होश आता है, आप देखते हैं कि और फिर समझने की कोशिश करते हैं अभी मैं हूँ कहाँ, वैसे आप चले चले जाते हैं. तो ये वाला सीन होता है कि आप एकदम से परेशान हो जाते हो कि भाई मतलब कहाँ आ गया मैं, ये क्या हो गया, बीच का वक्त कहाँ चला गया.

राइट, बल्कि ये सवाल ही रखेंगे किसी दिन। अभी खैर आ जाते हैं हम कहाँ, अभी हम आ जाते हैं वेदर अपडेट की तरफ। और आपको बताती हूँ मैं कि इस वक्त दोहा का जो टेम्परेचर के हाल चाल हैं वो क्या हैं। तो इस वक्त है जी, इस वक्त मौसम अगर देखा जाए तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फील्स लाइक 36, और ज़्यादा से ज़्यादा आज 43 तक जाएगा, लेकिन ये जो 43 है वो फील्स लाइक 47 तक आज होने वाला है, क्योंकि आज है गर्मी, मतलब गर्मी होगी और कल भी अच्छी खासी गर्मी थी। तो आज ये सिलसिला है कि आज आपको मतलब थोड़ा सा जरा

ज़्यादा एहतियात करनी है, ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हर दफ़ा बताने का मकसद यही होता है कि ज़रा ज़्यादा गर्मी होगी तो आपने काफ़ी ख्याल रखना है अपना। सुबह से ही काफ़ी हीट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो पानी साथ रखें, डायरेक्ट धूप से बचें, कुछ ना कुछ अपने आप को कवर करने के लिए कीजिए, कैप पहन लीजिए या फिर और कुछ मतलब जो ना जो आप कर सकते हैं जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, आप अपने आप को ज़रा थोड़ा सा बचा के रखें धूप से, डायरेक्ट एक्सपोजर से, और सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये भी मुझे बताएं, ये मतलब मैं रोज़ाना बोलती हूँ लेकिन ये मुझे बताएं, मुझे कन्फर्म नहीं, मुझे आइडिया है इस बात का कि ज़्यादातर जो हमारे भाई हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, वो सनस्क्रीन वगैरह के ऊपर इतना बिलीव नहीं करते, तो कितने लोग हैं जो वाकई पे मतलब सनस्क्रीन सन क्रीम लगाते हैं, कौन से लोग हैं वो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा 666-22107 पे कि हाँ आप लगाते हैं। वैसे यूजुअली आदमियों को ये ख्याल होता है कि क्रीमें श्रीमें जो है ना ये ख़वातीन का काम है, हमारा इससे क्या लेना देना, तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं या फिर आप लगाते हैं, ठीक है बताइएगा। चलिए जी, इसके साथ ही ट्रैफिक अपडेट को देख लिया जाए तो आज ट्रैफिक भी मुझे लग रहा है कि ज़रा ज़्यादा है और कुछ मॉडरेट से हैवी आप कह सकते हैं, और कुछ जगहों पर आपको टेम्प्रेरी क्लोजर्स भी मिलेंगे, डाइवर्जन्स भी नोट किए गए हैं, जैसे वेस्ट सिमा स्ट्रीट जो है वहाँ पर टेम्प्रेरी क्लोजर है और ये 5 बजे वैसे खुल जाना था तो खुल गया होगा डेफिनेटली। और इसके साथ ही बनी हाजर इंटरचेंज पर खलीफा बॉलीवुड से अल शाहमा स्ट्रीट की तरफ जो है टनल रूट वो क्लोजर टाइम शेयर किया गया था और उस जगह पे उस साइट पर आपको डाइवर्जन जो है वो मिल सकता है। इसके साथ ही साथ मॉर्निंग और इवनिंग टाइम जो है वो रश आवर्स रहेंगे और आप अगर अपने घर से निकल रहे हैं तो वही हमेशा की तरह यही एडवाइस है कि थोड़ा 5-10 मिनट का मार्जिन रख के निकलें ताकि आपको मुश्किल ना हो, आप आराम से पहुँच जाएँ अपनी डेस्टिनेशन पर।

राइट। और 21 जून तो 21 जून को क्या क्या होता है दुनिया भर में ये भी आपको बताती चलूं। आज 21 जून का मतलब ये खास बहुत ही खास दिन है इंटरनेशनल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे मिली हैं जो मैं आपसे शेयर भी करूंगी। तो सबसे पहले तो एक है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को रिकॉग्नाइज किया है दुनिया भर में कि योगा के जो फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल फ़ायदे हैं उनको हाईलाइट किया जाए और उनके बारे में बताया जाए। तो 21 जून को इंडिया समेत दुनिया के कई मुल्कों में ये होता है। अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी होती हैं, वर्कशॉप्स की जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं पार्क, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह में इसके हवाले से और सेहतमंद ज़िंदगी के हवाले से ख़ास तौर पर अवेयरनेस दी जाती है। तो ये दिन होता है। इसके साथ ही जो दूसरा दिन है 21 जून को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है वर्ल्ड म्यूज़िक डे। तो आज के दिन वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया जाता है और फ्रांस में बेसिकली ये जो है मनाया जाता है और उसके साथ ही पूरी दुनिया में उसके बाद फिर शुरू किया गया। तो फ्रेंच में से फिटी डे ला म्यूज़िक कहा जाता है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, फिटी डे ला म्यूज़िक और कहा जाता है। और ये दिन म्यूज़िक के लिए ख़ास तौर पे डेडिकेट होता है और इसका मकसद ये है कि म्यूज़िक को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। वैसे सबके लिए ऑलरेडी है और कितना ज़्यादा बनाया जाएगा ये शायद उस वक्त में हुआ होगा जब नया नया ये दिन मनाया गया होगा ना, शुरू किया गया होगा सेलिब्रेट करना, तो उस ज़माने में होगा म्यूज़िक को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। अब तो इतना फैल चुका है कि हर जगह पर आपको सिर्फ म्यूज़िक ही म्यूज़िक सुनने को मिलता है और कुछ और मिलता नहीं है। खैर जी, इस दिन सिंगर्स, म्यूजिशियंस और ब्रांड्स परफॉर्मेंस देते हैं, पब्लिक परफॉर्मेंस देते हैं, कॉन्सर्ट्स, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस और कल्चरल इवेंट्स अरेंज किए जाते हैं और म्यूज़िक लवर्स मुख्तलिफ जॉनरा का मज़ा लेते हैं। और वर्ल्ड म्यूज़िक डे का जो असल मैसेज है वो ये होता है कि म्यूज़िक ज़बान, मुल्क और कल्चर की बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। म्यूज़िक लोगों को जोड़ता है और लोगों के जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करता है और सोसाइटी में खुशी और पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो ये है इस दिन का मैसेज। इसके साथ ही जी 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। और ये दिन शायद आम लोगों में ज़्यादा मशहूर नहीं है लेकिन समुद्री सेफ्टी, नेविगेशन और ओशन मैपिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोग्राफी असल में वो साइंस है जो समंदर, दरिया और पानी के नीचे के एरियाज का स्टडी करती है और वाटर डेप्थ, सी फ्लोर, अंडर वाटर फीचर्स को मैप करती है और शिप्स और मरीन ट्रांसपोर्ट के लिए सेफ नेविगेशन में हेल्प करती है। तो इस दिन का मकसद ये हाईलाइट करना होता है कि शिपिंग, ट्रेड, पोर्ट्स, मैरीटाइम सेफ्टी और इन्वायरमेंटल

0: प्रोटेक्शन में हाइड्रोग्राफी का बहुत एक बड़ा रोल है और आज की ग्लोबल इकोनॉमी में जब जहां बहुत सी इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट्स के ज़रिए होती है तो हाइड्रोग्राफी की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये दिन जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। अच्छा एक और दिन मतलब आज तो बहुत सारे दिन है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया आज एक और दिन है 21 जून को जिसको कहते हैं वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे और इस दिन ये जो दिन है वो वैल्यूज़ को हाईलाइट करता है ह्यूमैनिटी रीजंस कंपैशन ह्यूमन वेलफेयर के जो गिर्द जो घूमती हैं उन चीज़ों को इंसानी डिग्निटी एथिकल वैल्यूज़ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये सब कुछ जो है वो आज के दिन देखा जाता है। इसके हवाले से सेमिनार्स डिस्कशंस गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं जहाँ पे इंसान की राइट्स हुकूक और अमन सोशल प्रोग्रेस पर बात की जाती है तो ये भी आज होता है। अच्छा इंसानों के दिन के अलावा जो है आज दुनिया में वर्ल्ड जिराफ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के तौर पे खास तौर पे ये जिराफ्स के लिए जो है वो डेडिकेटेड होता है और आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा ज़मीनी जानवर है और इसलिए साल के सबसे लंबे दिन यानी 21 जून को उसके नाम से ऑब्जर्व करना सिम्बोलिक भी माना जाता है और इस दिन का मकसद है जिराफ्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना उनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पर तवज्जो देना और हैबिटेट लॉस और जो इशूज़ हैं इनके उनको जो है हाईलाइट वगैरह करना तो ये है भाई मतलब आज तो दिन ही दिन है मैं कितने दिन आपको बताऊँ। गोहो स्केट बोर्डिंग डे भी है आज ठीक है तो मतलब जो स्केट बोर्डिंग करते हैं उनके लिए भी है वो भी जाके कर सकते हैं सिर्फ ये बेसिकली एक स्पोर्ट को प्रमोट करना नहीं है बल्कि इसमें भी क्रेडिबिलिटी आ जाती है फ्रीडम आ जाता है कॉन्फिडेंस आ जाता है ये सब कुछ है और बहुत कुछ है अभी भी और बाकी है तो मेरा ख्याल है इतना सब कुछ तो मैं नहीं बता पाऊँगी आपको। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाई आज इंटरनेशनल डे है सेलिब्रेशन का और ये आज बेसिकली एक तरह से देखा जाए जो सबसे लंबा दिन होता है साल का तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि सबसे लंबे दिन के तौर पे मनाया जाता है होता है सबसे लंबा दिन तो उसको सेलिब्रेट भी कर लिया जाता है ठीक है। और कुछ जगहों पे फादर्स डे भी सेलिब्रेट होता है तो भाई ये इतने सारे डेज हैं आज जो दिन आप मनाना चाहें आपका जो दिल चाह रहा हो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो दिन आप अपना सेलिब्रेट कीजिए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर सवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: दोस्तों अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल टॉर्च पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें। अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं। इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें। ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है। ड्राइव सेफ, सोचिए, समझिए और महफूज रहिए। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान।

Right. Welcome back. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महेश खान और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आज बेसिकली 21 जून को तो नहीं लेकिन हर साल जो थर्ड कह सकते हैं आप संडे आता है ना तो जून का थर्ड संडे तो इस दिन मनाया जाता है फादर्स डे भी तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल मतलब ये 21 जून को हर दफ़ा नहीं आता कभी 21 जून हो सकता है कभी और कोई सा हो सकता है 22 हो सकती है कभी 19 हो सकती है लेकिन थर्ड संडे को मनाया जाता है तो आप जितने भी यहाँ पे सुनने वाले फादर्स हैं आप सब लोगों को हैप्पी फादर्स डे कुछ मुल्कों में मनाया जाता है अब ये मुझे नहीं पता कि यहाँ मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता लेकिन ये कि बच्चे गिफ्ट्स कार्ड्स वगैरह ये जो चीज़ें हैं अपने फादर्स को देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं फादर फिगर को ये बहुत अच्छी बात है करना चाहिए डेफिनेटली लेकिन मैं सोच रही थी कि बाकी सारे दिन बता दिए ये जो सबसे अहम दिन था ये वाला रह गया तो ये भी आपसे शेयर कर लें कि भाई जो जितने भी फादर्स हैं उनकी बहुत ही कंट्रीब्यूशन होती है बच्चों की ज़िंदगी में डेफिनेटली और सारी जो कोशिशें होती हैं वो उन्हीं की होती हैं जो बच्चे किसी मकाम पर पहुँचते हैं तो डेफिनेटली ये दिन भी सेलिब्रेट करना चाहिए और सारे फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या होने वाला है? हाँ, सवाल मैंने आपको बताना है, पहले मैं देख लूं कौन सा सवाल है आज का।

0: पढ़ती है, अगर बोल दिए तो तकरीबन ये कर लिया जाता है, राइटिंग कर दिया जाता है, तो वो भी ज्यादा आसान कर दिया गया है अभी। तो मोबाइल तो बहुत जरूरत है आजकल, और खासकर अगर साथ में रहे तो आदमी को ये रहता, तसल्ली रहता है कि चलो भाई ठीक है, हमारे साथ जरूरत पड़ा तो हम देख लिए या किसी से बात कर लिए। लेकिन कुछ कभी कभी हम अगर रूम से भी निकलते, कभी गाड़ी लेके निकल गए, कभी कभी इतना मसला हो जाता कि भूल के चले गए मोबाइल, तो इतना अब कभी कभी बाहर निकल गए, एक घंटे डेढ़ दो घंटे का सफर है, अब हम वापस भी नहीं आ सकते हैं, और जाना भी मतलब तो बहुत बहुत बहुत भारी भारी लगता है दिल पे यार, कितना जल्दी वापस जाऊँ और मोबाइल अपने हाथ में रखूँ। पता नहीं अल्लाह आलम किसने मुझे फोन किया होगा, या हमारे घर से ही फोन आया होगा, या जरूरत पे कोई बात, क्योंकि ये बहुत आसानी मतलब ये कर दिया गया है ना लोगों के लिए कि कुछ बात है, जरूरत है तो मैसेजेस कर लो, बात कर लो। कल मैंने एक न्यूज में देखा कि एप्पल फोन जिसने बनाया है वो खुद अपने बच्चों को नहीं दिया उसने,
1: हाँ, ऐसे ही।
0: तो लोगों ने पूछा, शायद आपने भी पढ़ा होगा या देखा होगा,
1: देखा है बिल्कुल।
0: तो उसने कहा कि भाई फोन बनाया जिस मकसद के लिए, वो मकसद कुछ और था, लेकिन आजकल तो कुछ अलग मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसने वजाहत भी किया कि मतलब किसी के पास कोई जरूरत पे कहीं खबर देना हुआ या कहीं पे बात करना हो, इमरजेंसी के लिए, लेकिन आजकल लोग उसको अलग अलग एंगल से यूज कर रहे हैं। तो ये बच्चों को खासकर अगर उस उम्र में दे दिया गया जो उनका तालीम का वक्त है, तो बहुत ज्यादा उनका तालीम बहुत ज्यादा समझ लो ये हो जाता है, बर्बाद हो जाता है उनके उसके लिए। तो ये सब बहुत जरूर फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है, अपने अपने हिसाब से आदमी को अगर इस्तेमाल करे तो फायदेमंद भी है ये मोबाइल, और अगर बिला जरूरत उसी में एक रहते हैं कि कोई कोई 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बेचारे उसी में घुसे ही रहते हैं स्क्रीन में, तो ये थोड़ा सा मतलब उनके लिए टफ भी है, और उनको उसके ऊपर ख्याल भी करना चाहिए कि जिंदगी बहुत कीमती है, उससे कीमती कोई चीज नहीं है, अपने आप को बर्बाद से करें। और इसके
1: जी जी कहाँ चले गए रेश भाई, जी
0: आवाज नहीं जा रहा
1: है? नहीं, हाँ अभी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। तो राइट, मतलब आपको मतलब ये कहने का मकसद है कि रह तो नहीं सकते हम मोबाइल फोन के बगैर, लेकिन एक मतलब एतदाल के साथ यूज करना ना वो बड़ा जरूरी है, खासतौर पे बच्चों के लिए। सही सही, चलें जी, गुड, जबरदस्त रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।
0: है कि हर चीज में म्याना रवि अगर आदमी करे, हर चीज को अपने जहाँ पे जरूरत रहे तो उतना ही इस्तेमाल करे, तो हमारे कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी जरूरत हो, तो उसपे हमारे लिए मुसबत साबित होता है, और अगर जरूरत से ज्यादा अगर हम अपने उस पर हावी कर लेते हैं तो वो हमारे लिए मनफी हो जाता है, तो थोड़ा सा ये ख्याल करना जरूरी है। हालांकि मैंने कहा
1: सबकी आवाज ब्रेक हो रही है, बीच बीच में आपकी आवाज ना आना खत्म हो रही है, तो शायद कुछ इशू है। चलो कोई मसला नहीं है, हम फिर दोबारा बात करते हैं, रईस भाई की जो है वो बीच बीच में आवाज़ रुक जाती है, फिर वो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, तो शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। खैर जी, तो सिलसिला ये चल रहा है, मैंने आपसे सवाल ये किया है कि अगर आपसे मोबाइल फ़ोन ले लिया जाए एक दिन के लिए, तो ये आपके लिए होगा स्ट्रगल या फिर आपको लगेगा फ्रीडम। आप मैसेज कर सकते हैं 6622107 पे, साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे।
2: One hits music station. Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
5: दोस्तों, गाड़ी की रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे

0: सारे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरी

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश और हमारे साथ हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं?
3: आपके खालू सलाहुद्दीन।
2: ये अच्छा था। जी बस मेरी कल ही मेरे खालू से बात हुई है, आज आपसे हो गई। ठीक बात है। जी क्या हाल चाल है सलाहुद्दीन साहब?
3: अल्लाह का शुक्र है, सब बढ़िया है।
2: जबरदस्त, ग्रेट भाई। तो सवाल भी आपने सुना होगा, पहले तो ये बताएं वीकेंड कैसा गुजरा?
3: वीकेंड नॉर्मली दोस्तों को दावत दी थी और मटन बनाया था।
2: अच्छा, सही, गुड, जबरदस्त।
3: मटन था और मीठे चावल थे।
2: अच्छा, वाओ।
3: बघारे चावल थे।
2: बाहर
3: से तंदूरी रोटी बस।
2: हाँ, ये मीठे चावल यानी जर्दा?
3: हाँ,
2: जरदा। सही सही सही, गुड, जबरदस्त। आप लोगों के यहाँ मीठे में अभी ज्यादा जो है क्या बनता है, जरदा बनता है?
3: हम लोग का तो सब कुछ बनता है।
2: सब कुछ बनता है,
3: जरदा तो बनता ही है।
2: अच्छा, मुंबई
3: मिक्स है।
2: अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ ना जरदा काफी कम बनता है, कभी सुनने में नहीं आता। पहले हुआ करता था, मतलब पहले भी क्या, मतलब अम्मी लोग ही बताते थे, अब नहीं होता जरदा वरदा इतना ज्यादा। तो इसलिए मुझे हैरत हुई थोड़ी सी कि मीठे चावल आपने कहा।
3: फ्रेश खाने मजा नहीं आता।
2: अच्छा, सही। और मैं आपको मतलब हैरान कुन बात बताऊं, मैंने आज तक जर्दा नहीं खाया है। अरे खाया ही नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि मीठे चावल क्यों, मतलब हमें तो स्पाइसी खाने हैं तो मीठे कैसे खाएंगे?
3: उसका भी खाने का स्टाइल और तरीका होता है ना। हाँ, जर्दा हम खाओ लेकिन बासी खाओ उसमें दूध डाल के।
2: आहा, ओके, सही सही सही सही, गुड। अच्छा अच्छा, चलें, गुड, जबरदस्त। तो आपने मतलब
3: तो ठंडा करके खाने मजा आती है।
2: क्या चीज, क्या ठंडा खाने में?
3: मीठा
2: मीठा तो ठंडा, हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसे ही ऐसे ही सही है। तो जरदा वैसे मतलब ट्रेडिशनली किस तरह से खाया जाता है, गर्म या ठंडा?
3: लोगों को पसंद है, मुझे तो ठंडा पसंद है।
2: आपको ठंडा पसंद है, सही है सही है, गुड। चलें जी, और लोगों से भी पूछेंगे कि जर्दा मतलब जो है वो क्या प्रेफर करते हैं। मुझे वैसे आइडिया नहीं है इतना, मेरा ख्याल है जैसे आ जाता है लोग खा लेते हैं ना।
3: लेकिन उसमें थोड़ा क्वांटिटी में खाया जाता है, जब गरम गरम होता है ना तो थोड़ी क्वांटिटी में खाया जाता है, और जब ठंडा हो जाता है ना ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है।
2: ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है,
3: मेरे हिसाब से, मुझे तो ऐसा पसंद है।
2: सही सही, ठीक हो गया। अच्छा तो भाई ये बताएं आज के, अगर आपसे ले लिया जाए आपका मोबाइल फोन तो आप क्या करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे या फिर आप खुश हो जाएंगे?
3: अगर यहाँ कतर में ले लिया जाए तो परेशान हो जाऊंगा।
2: परेशान हो जाएंगे।
3: हाँ।
2: सही,
3: इसी से सब कुछ चल रहा है।
2: हाँ, इसी
3: फोन आया है, हाँ। है कुछ ताल्लुकात है। हाँ। तो इसी से जरिया हो रहा है, और घर में अगर इंडिया में हो तो फिर कोई ले लेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोबाइल अभी यहाँ पे ना चार्जिंग भी लगाए रखना पड़ता है। चार्जिंग पे लगाओ, गाड़ी में है तो चार्जर है, घर में है तो चार्जर है, सब जगह चार्जिंग लगाई रखनी पड़ती है, और बैटरी भी जल्दी डाउन हो जाती है। और इंडिया में रहो बैटरी का डाउन नहीं होती, पूरा दिन चल जाती है। तो मतलब ये है ले लिया जाए वही बेहतर है।
2: अच्छा एक बात बताएं, मतलब ये तो हम कह रहे हैं ना अगर आपसे ले लिया जाए, अगर वो वाला दौर आ जाए जैसे पहले कभी मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था ना, तो वो वाला दौर अगर वापस आ जाए, किसी के पास भी ना हो, ना आपके पास है ना किसी और के पास है, तो फिर क्या लगेगा, फ्रीडम लगेगा या जब भी स्ट्रगल ही लगेगी?
3: फ्रीडम लगेगा,
2: फिर फ्रीडम लगेगा। सही, ठीक है।
3: 90s का बच्चा होगा।
2: हाँ वही तो इसलिए तो पूछ रही हूँ। सही है ना, मतलब अगर वो
3: वाला दौर, बहुत अच्छा लगेगा
2: है ना, कितना सुकून सा फील होता है ये सोचकर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, किसी की कॉल नहीं आनी, किसी की ईमेल नहीं आनी, आप आराम से अपनी जिंदगी में जो ना रह सकते हैं।
3: कितनी एक्टिविटीज कर लेते थे हम लोग।
2: हाँ अभी मोबाइल की वजह से सब अपनी अपनी जिंदगी में
3: अभी अपने अपनी जिंदगी में बाजू वाले भी रूममेट भी हूँ ना तो वो बात करेगा कब जैसे कि एकदम अलग ही टाइप में हाँ मुख्तसर से बात हो गई तो वो अपने मोबाइल में ऐसी जिंदगी चल रही है
2: ऐसे ही हो गया भाई। अच्छा जरा एक मिनट होल्ड करें वापस आते हैं।

0: FM 107. Time check.
1: जी 7:02 हमारे साथ एक कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
1: जी जी, तो मोबाइल फोन, अभी आप बता रहे थे कि दोस्त वो कमरे में साथ बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, राइट?
2: जी जी
1: जी जी जी. तो आपको मतलब अगर ऐसे ले लिया जाए तो फिर फ्रीडम है, दुनिया भर का ले लिया जाए. हाँ, सिर्फ अगर आपका नहीं होगा तो फिर टेंशन हो जाएगी, घर वाले सोचेंगे कहाँ गया भाई बंदा, क्यों कॉल नहीं आ रही, ये सब कुछ है ना, वो परेशानी हो जाती है. सही सही.
2: तो आप पहले का दौर बेस्ट था, मोबाइल नहीं था, मजे की लाइफ,
1: मजे की लाइफ.
2: मोबाइल के बगैर चलता नहीं है. फोन आना है, किसका क्या है, घर वालों की खबर लेनी है.
1: यही मसला है, यही मसला है. अब जरा मतलब जो ना लाइफ ही डिफरेंट हो गई है.

0: बोलने वाले, उनमें मुझे ऐसा लगता है कि आपका लहजा सबसे साफ है।
1: इसकी वजह ये है कि मैंने ज्यादा टाइम जो है यूपी वालों के साथ गुजारी है, बहुत ज्यादा, तकरीबन 16 साल में हमारे एक सुपरवाइजर थे यूपी से, थे लखनऊ से, उसके साथ मैंने ये टाइम गुजारा। और दूसरी एक बात, एक मैं और बताऊं कि मेरा एक बेटा है जवार हुसैन नाम है उसका, वो माशाल्लाह पश्तो, उसने स्कूल में नहीं पढ़ी, वो लिखते भी पश्तो है माशाल्लाह और पढ़ते भी है, और उर्दू उनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत
0: सही,
1: बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं वो, और इंग्लिश उर्दू ये पश्तो, लेकिन उसको ज्यादा शौक उर्दू और पश्तो से है।
0: हाँ सही, गुड, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी चीज है।
1: इसलिए कि वो ये, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि ये हमारी जुबान है, ये उर्दू और पश्तो।
0: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल,
1: लेकिन लेकिन ये है कि इंग्लिश अभी मजबूरी है, इसलिए दुनिया के साथ उस पे चलना पड़ता है।
0: हाँ नहीं, जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हो ना, इंग्लिश की क्या बात है, मतलब आपको जितनी लैंग्वेजेस आती हो आपको उतनी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा, मतलब आपकी पर्सनालिटी में भी फर्क पड़ता है, आपका आईक्यू भी बहुत बेहतर होता है।
1: अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मैं आपसे ये बात शेयर की थी कि मुझे चार लैंग्वेज, अरबिक, इंग्लिश, पश्तो और उर्दू, ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लिखने पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है माशाल्लाह।
0: जबरदस्त, ग्रेट भाई, मतलब ये बड़ी अच्छी स्किल है, बहुत अच्छी बात है ये आपने सीखी है।
1: ओके, बहुत शुक्रिया
0: जलेली भाई, बहुत शुक्रिया खादिम भाई, ख्याल रखिए अपना,
1: जाने का टाइम है।
0: हाँ हाँ, इंशाल्लाह ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ खादिम भाई थे हमारे, और उन्होंने बताया, उन्होंने जैसे कहा कि अगर तो भाई मतलब ये वाला आ गया जमाना तो उनको कोई मसला नहीं है, लैंडलाइन पे कॉल करेंगे और इसके साथ ही आराम से जो है खतवत लिखेंगे। और खत देखा जाए ना तो हमारे बहुत सारी, एक मेजॉरिटी है जिसका एक तरह का ना खत के साथ एक अलग ही दिली ताल्लुक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको खुश ही रखे, ठीक ठाक रखे। ये बताइए कि अगर तो भाई आपसे ले लिया जाए आपका मोबाइल फोन, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप परेशान हो जाएंगे या बहुत खुश होंगे?
2: काम तो मोबाइल से ही चलता है।
0: काम तो मोबाइल से ही चलता है, लेकिन समझे पूरी दुनिया में नहीं है मोबाइल फोन, अब फिर क्या होगा?
2: नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल से उतना लगाव नहीं,
0: उतना
2: रूम में भी खाली रहता, मोबाइल लग के सो जाएगा।
0: अच्छा सही, मतलब वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ बस काम की वजह से फर्क पड़ेगा, राइट? सही हो गया। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, आप बताएं आपके यहाँ सब खैरियत?
2: सॉरी,
0: नाजिया आ रही है 19 जुलाई से इंशाल्लाह। सॉरी, सफा दादी जो है वो कब आ रही है? वो भी कुछ ऐसी आ रही है 15 जुलाई तक, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएंगी 15 जुलाई तक आएंगी। हाँ ऐसे ही कुछ बताया था उसने, तो 15 तक, ये 19 तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने जाना है तो उसने आना है, इसलिए मुझे पक्का याद है, लेकिन मेरा ख्याल है हम 15 तक सफा भी आ जाएगी। जी जी जी, और कुछ भाई, नसीम भाई कुछ और बोलना चाहेंगे आप? चलें तो फिर बात होती है, ठीक है, ख्याल रखिएगा। चलिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। रही तो हमारे साथ थे नसीम, और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ, पहले आपके फिर मैं कॉल किया, वो एक गाना चलाएंगे आपके लिए। हाँ जी, तो मेरे पास मैसेज है, किस किस का है, और ये मैं मुझे कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम हबीब अली खान। वालेकुम सलाम हबीब अली खान, क्या हाल है आपके? ठीक है। इसके साथ ही गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड प्रोग्राम, जसविंदर सिंह काला दिल से देसी, आई लव 107 और मोहब्बत की होंगी है। समझ गई आपने गाना सुनना, लेकिन हमेशा की तरह टाइटल जो गलत ही लिखा है। और जी सलाम, माय आंसर इज फ्रीडम, और दोस पीपल हु फील स्ट्रगल डजंट लाइक टू गो पीसफुल एंड माउंटेन एरियाज वेयर वी यूजुअली वेंट फॉर पीस ऑफ माइंड। और ये हैं कौन? ये है हमारे साथ फराज अहमद। हाँ सीरियसली, मतलब अगर मुझसे भी पूछा जाए ना कि ये वाला दौर या वो वाला दौर, मोबाइल फोन के बगैर वाला, तो मैं भी वाकई वही प्रेफर करूंगी जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, सुकून की जिंदगी, किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। हाँ लेकिन हो सकता है शुरू शुरू में हम लोग कोई भी ना रिमोट उठा के, मतलब इतने हमारे हमारे हाथ जो है ना वो आदि हो चुके हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ उठा के देखेंगे, कुछ एक हफ्ते तक तो होगा। वैसे आपको पता है कि बहुत सारी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा, इस किस्म की बातें हो रही होती हैं। तो हो भी सकता है कि वो दोबारा जो है ना इंसानियत को वो दौर देखने को मिले जब इंटरनेट ना हो। शुरू में तो खैर लोगों को होगी वाकई बड़ी परेशानी होगी, बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे एकदम से लोग, उसके साथ फिर मतलब एडॉप्ट करते करते थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ों को समझते समझते थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर जी, अभी हम बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, और जैसे हमारे एक भाई ने कहा था कि फादर्स डे है तो ये वाला गाना चलाएं, तो पापा कहते हैं आप सब फादर्स के लिए हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू, इंजॉय कीजिए पापा कहते हैं उदित नारायण की आवाज़ में FM 107 पे। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है,
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस, और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हमारे साथ हैं कॉलर, आज मैंने सवाल आपसे किया है कि अगर तो ऐसा हो कि आपसे ले लिया जाए आपका मोबाइल फोन, और मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि अगर सबसे ही ले लिया जाए, मतलब मोबाइल का खात्मा हो जाए, नो मोर मोबाइल फोन, तो कैसा फील करेंगे, स्ट्रगल या फिर खुश? अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम
5: जी, कौन बात कर रहे हैं?
6: कमालुद्दीन बोल रहा हूँ।
5: कमालुद्दीन बात कर रहे हैं जी, कैसे हैं कमालुद्दीन? ठीक ठाक है, खैरियत?
6: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बताएं भाई, कैसा गुजरा, मतलब दो दिन कैसे गुजरे आपके?
6: हम लोग क्या है, तो भाई हम हाउस ड्राइवर में है, तो कोई वही नहीं है।
5: हाँ,
6: सब रूटीन एक ही जैसा रहता है।
5: एक ही जैसा रूटीन
6: है कि छुट्टी रहती है, बस अपने वक्त की नहीं रहती है, कि जैसे अभी अभी भी रेडी रहना पड़ता है। आ गया 5-10 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ, चले जाओ।
5: सही सही, ये वाला सीन है,
6: ये वाला। और जैसे आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सी कंपनी में 12 घंटे काम करते हैं, तो उनके लिए मोबाइल रखा जाता है, जमा किया जाता है। तो हाँ, और इंसान की फितरत होती है कि जो चीज नहीं रहेगी उसके जो है एडजस्ट कर लेता है इंसान।
5: एडजस्ट कर लेता है, तो आपको लगता है कि एडजस्ट कर लेंगे हम? सही हो गया, ठीक है। ये है, मतलब कुछ आ रही नहीं है ना
6: अचानक में, जो है ना, हाँ अचानक में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जैसे 10-12 घंटे के लिए, या समझो 24 घंटे के लिए मोबाइल लेना है, तो अगर 5-10 मिनट का पहले अलर्ट आ जाए, तो इंसान अपने अपने खास है उनको बता सके ना, तो वो भी परेशान रहेंगे, हम भी परेशान रहेंगे।
5: असल मसला होता यही है कि घर वालों की एक फिक्र लगी हुई होती है भाई, उनको मतलब उनको पता चल रहा है, फिक्र होती है। सही है, सही है, राइट। तो मतलब वैसे अगर हो, रूटीन का हिस्सा हो, तो मसला नहीं है,
6: कोई मसला नहीं है। इससे पहले मोबाइल नहीं था तो लोग परेशान थे, नहीं थे, बहुत सुकून से थे, कम से कम एक दूसरे से मिलते थे, नए कॉन्टेक्ट होते थे। अब तो सब कुछ खत्म हो गए हैं।
5: हाँ, लेकिन
6: मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पहले जैसा था, जो मैं 2012 में कतर में आया था, उस टाइम पैसा था कि छोटी मोबाइल थी, तो उसमें भी जो है इतना रिचार्ज हम लोग उतना कराते नहीं थे, तो मिस कॉल से काम चलता था कि भाई मिस कॉल मार देंगे समझ लो कि जो है आपको यहाँ मिलना है आना है तेरे दोस्तों से, ऐसा सिस्टम चलता था। और कहीं भी पार्किंग में रुके या कहीं भी रुके जाके तो जो है एक दो लोग बैठे रहते थे, जाके उनसे मुलाकात करते थे कहाँ से है भाई, क्या है क्या नहीं। अभी मोबाइल होने की वजह से तो हम लोग गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं।
5: हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मूड ही नहीं हो रहा होता किसी से बात करने का, क्योंकि आपके 10 झमेले चल रहे होते हैं फोन के ऊपर, है ना।
6: मोबाइल नहीं रहेगा तो बहुत बेहतर है, कम से कम जो है कॉन्टेक्ट होते रहेगा एक दूसरे से, लोगों से जानकारी मिलते रहेगी, बातें होते रहेगी, बाकी जो है सुकून एक चीज का और हो जाएगा, जो अफवाहें और जो चीज जो है ना इससे देख देख के इंसान जो है
5: हर कोई अपनी अपनी जो है ना वो अपने तरफ से मसाले मिर्च मसाले लगा के बता रहा होता है हर चीज को। राइट, बिल्कुल सही। तो ये वाला सीन है भाई, आपको मतलब मसला नहीं होने वाला, आप एडजस्ट कर जाएंगे।
6: नहीं कोई मसला नहीं है,
5: सही हो गया।
6: बस थोड़ा पहले बताना चाहिए कि भाई मोबाइल हमसे जा रही है, नेट पूरा बंद हो रहा है।
5: सही हो गया, ठीक है कमाल भाई, और कुछ कहना चाहेंगे?
6: जी नहीं मैडम,
5: चले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना। रही जी, तो हमारे साथ थे कमालुद्दीन शेख, कह रहे हैं मुझे पहले से बता दिया जाए फिर कोई मसला नहीं है, फिर मैं बिल्कुल ओके हूँ। चलिए जी, खैर मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, अच्छी सी खबर है कतर की, जो कतर रेलवेज कंपनी है यानी कतर रेल को यूके की मशहूर प्रोफेशनल बॉडी चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन CIHT की तरफ से 2026 हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस कैटेगरी में मिला है, इनको कमेंडेशन हासिल हुई है, और ये इज्जत लंदन में होने वाले CIHT एनुअल अवार्ड सेरेमनी के दौरान दी गई, जहां कतर रेल को वर्कप्लेस सेफ्टी प्रैक्टिसेस और सेफ्टी कल्चर को बेहतर बनाने की कोशिशों पर सराहा गया। और ये कमेंडेशन जो है वो असल में कतर रेल के उस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम का नतीजा है जो 2024 और 25 के दौरान इम्प्लीमेंट किया गया, और इस प्रोग्राम का मकसद था वर्कप्लेस हेल्थ और सेफ्टी को मजबूत बनाना, एम्प्लॉयज और पैसेंजर्स दोनों को ज्यादा महफूज इन्वायरमेंट देना, और पूरी ऑर्गेनाइज में प्रो एक्टिव सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना। तो कतर रेल ने अपने हेल्थ और सेफ्टी फ्रेमवर्क को सिर्फ पॉलिसीज तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि उसे एनुअल बिजनेस प्लानिंग का हिस्सा भी बनाया है, और इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में क्लियर माइलस्टोन सेट किए गए हैं और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफाइन किए गए और रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स को एक्टिवली अप्लाई किया गया। तो अपनी इस कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट के अंडर कतर रेल ने अपना जीरो हार्म स्टैंडर्ड भी अपडेट किया है और एक 3-year प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान का फोकस होगा सेफ्टी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना, बेटर लीडिंग इंडिकेटर्स यूज करना, मेंटल हेल्थ और वेलबींग इनिशिएटिव को इंक्लूड करना, और ट्रेनिंग को एक्सपेंड करना, सीनियर मैनेजमेंट इंगेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना, और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए सारी चीज़ों को बेहतर बनाना। तो एक बात है जो सीधी सी समझ में आती है कि कतर रेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं चला रहा, बल्कि एक ऐसी वर्कप्लेस कल्चर को बिल्ड कर रहा है जहां एम्प्लॉय सेफ्टी, पैसेंजर प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म वेलबींग को सेंट्रल इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हमारे साथ हैं कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
7: जी अस्सलाम वालेकुम।
5: जी कौन बात कर रहे हैं?
7: जी मेरा नाम समीर, पहली मर्तबा एफएम 107 पे कॉल लग गया।
5: हां चलें जी, हम आपको पहली मर्तबा वेलकम करेंगे अपने शो में। कैसे हैं समीर आप?
7: जी मैं फर्स्ट क्लास, मैं अभी गाड़ी पे आ रहा था आपका शो सुनता हुआ, तो बस ऑफिस पहुंचा हूँ और ऐसे ट्राई किया कॉल

0: काफी अच्छा, लग गई है।
1: गुड, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा किया। तो समीर क्या करते हैं आप, पहली दफा आपसे बात हो रही है तो थोड़ा इंट्रो हो जाए।
0: जी जी जी, मैं इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे रासलाफार में, कतर एनर्जी एलएनजी में।
1: जबरदस्त जबरदस्त, कहाँ से ताल्लुक है?
0: और मुल्तान,
1: मुल्तान पाकिस्तान। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। तो जी आप ये बताएं समीर कि अगर आपसे ले लिया जाए आपका फोन तो आपके लिए होगा स्ट्रगल या फिर फ्रीडम?
0: देखें, दिस यूज टू काफी हो चुके हैं मोबाइल के, शायद थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन क्योंकि हम उस दौर से आ रहे हैं जिस दौर में हमने मोबाइल नहीं देखे और एक अच्छी लाइफ गुजारी है, तो आई थिंक वी विल डेफिनेटली एंजॉय आल्सो, एक सुकून सा हो जाएगा। बट मेरा ख्याल है कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि वो तो यूज टू नहीं इन चीजों के।
1: उनके लिए मसला बनेगा, लेकिन हमारे लिए तो मतलब जो ना हम हो जाएंगे, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कुछ दिन लगेंगे लेकिन फिर हम ढल जाएंगे इस सारी के सारे मामले में। सही सही, चलें जी, गुड जबरदस्त। तो मुल्तान से ताल्लुक है आपका, मुल्तान तो वैसे ही बड़ा पुरसुकून शहर है।
0: जी जी, पुरसुकून है, अब तो खैर पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है जैसे ही ये एक्सपेंशन होती जा रही है, बट मुल्तान पे भी मुझे बाकी सिटी पे काफी बेहतर लगता है। हिस्टोरिकल सिटी है,
1: हिस्टोरिकल सिटी है उसकी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं भी गई हुई हूँ और मुझे भी काफी पसंद आया था, काफी चौड़े चौड़े रोड, मतलब सफाई काफी हद तक अच्छा, एक मतलब पुरसुकून सा जो है ना एक एहसास होता है आपको मुल्तान में।
0: हाँ जी, वो आप कराची से किसी को भी कंपेयर करेंगे दूसरा शहर अच्छा लगेगा आपको।
1: आजकल तो वैसे यही हालात हो गए। लेकिन मैं अभी नहीं गई थी, मैं बेसिकली गई थी कुछ, मेरा ख्याल से 2007 की बात है ऐसे कुछ है। अच्छा, तो हाँ उस जमाने में गई थी, तो उस वक्त में कराची अच्छा होता था।
0: जी जी, कतर में मैं 2009 से हूँ, जनवरी से आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ।
1: अच्छा, अच्छा।
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काफी दफा सोचा कॉल करने के लिए लेकिन कभी कॉल नहीं लगी, काफी दफा लगी नहीं, काफी दफा मैंने नहीं की। और आई थिंक काफी स्टाफ चेंज हो गया है मुझे।
1: वो बिल्कुल ऐसे,
0: पहले बहुत सारे लोग थे जो मैं सुनता था डेली, तो आई थिंक यू आर द ओनली वन
1: कह सकते हैं। हाँ, ऐसे ही है। मेरा ख्याल उस वक्त में मेरे अलावा
0: बहुत अच्छा चलता है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ आपका शो FM 107 का और आपका स्पेशली आपका और नाजिया का।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि 2009 से सुन रहे हैं तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन आप आगे जरूर कॉल कीजिएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू समीर, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी। जी तो हमारे साथ हमारे कॉलर 2009 से सुन रहे हैं लेकिन आज पहली दफा कॉलर बने, बेसिकली लिसनर ये कहना चाहिए इनको। गुड जबरदस्त, लेकिन अच्छा लगा बात करके, जो इतने अरसे से सुन रहे होते हैं उनसे फिर बात हो तो एक होता है कि भाई हम उनको पहचान रहे हैं, वो हमें जान रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त है हमारे साथ कौन, देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत, आप ठीक है? अब ये दो दो लोग हैं, खैर मैं पहचान गई आपको, नूर मोहम्मद मंसूर बात कर रहे हैं, लेकिन ये दो लोग हैं, दो लोग हैं भाई, दोनों ने यही अंदाज बना लिया, फोन करते हैं और फिर पूछते हैं खैरियत, किसने किसको कॉपी किया?
2: मैंने किसी का कॉपी नहीं करता, हो सकता है मेरा कॉपी करे लोग।
1: नसीम भाई आप क्यों कॉपी कर रहे
2: हैं? क्योंकि मुझे गिराना बहुत मुश्किल है, मैंने चलना ठोकरों से ही सीखा है।
1: सही। अच्छा, लेकिन आपने भी महसूस किया ना, वो भी बोलते हैं ऐसी खैरियत। अच्छा, मेरा क्या कसूर है अगर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ तो?
2: आपका कोई कसूर नहीं है, ना उसका कसूर है, ना मेरा कसूर है, बस
1: वक्त और हालात ही बुरे हैं। सही। तो जी, नूर मोहम्मद मंसूर साहब, ये बताएं भाई कैसे हैं, पहली बात तो ये बताएं, खैर खैरियत है, सब ठीक ठाक है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं
1: हैं। जबरदस्त,
2: अल्लाह तआला रखे, इस हाल में हम लोग का रहना है।
1: क्या बात है, जबरदस्त, अच्छी बात है, माशाल्लाह से खुश हैं, सेहतमंद हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि मोबाइल फोन अगर आपसे ले लिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे?
2: मोबाइल तो एक ऐसी चीज है कि इंसान को जरूरत के वक्त अच्छा लगता है, पर जरूरत मिल जाए तो मोबाइल बहुत भारी लगता है।
1: अच्छा।
2: मैंने देखा, मेरे पास गेस्ट आया बहुत दिनों के बाद, तो वो आया बात करने के लिए, दो तीन बात किया, सब बाद में पूछा था वाई फाई का पास कितने लेगा, बोला बात करने के लिए वाई फाई चलाने के लिए आया बात कर।
1: सही,
2: पूरे भाई ने जवाब तो सही दिया है, अगर मोबाइल है इंसान का दूरी तो बनाया है पर उसमें नजदीकी भी बनाया है, मजबूरी के टाइम जो भी

0: काम हो बहुत जल्द होता है, पर सामने हो तो बस कोई बात नहीं करता।
1: सही सही, ऐसे ही भाई, ऐसे ही है। तो भाई आप मतलब खुश फील करेंगे, आपको मसला नहीं है मोबाइल फोन ले लिया जाए तो, ठीक है? ऐसे ही है?
0: मसला कैसे नहीं, मसला बहुत बड़ा है।
1: मसला बड़ा है? अच्छा अच्छा।
0: आदमी कहते हैं ना, एक मेरे एक मेरे ओपिनियन है, इंसान दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, गरीब कोई नहीं बनना चाहता।
1: अच्छा ठीक है।
0: कहने के लिए मोबाइल कहता है मुश्किल, अगर मोबाइल दे लिया जाए तो मेरे ख्याल से दो मिनट भी नहीं रह सकते जब तक आँख खुला है। आँख बंद है तो मुश्किल नहीं।
1: सही, मतलब
0: आँख खुला है तो मोबाइल बगैर एक सांस
1: गुजारा नहीं है। सही सही, ये वाला सीन है। ठीक है ठीक है, चलें जी, गुड। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
0: बस आपके प्रोग्राम तभी मैं स्टार्ट किया हूँ थोड़े अच्छा, दिन पहले।
1: अच्छा अभी भी सुनना शुरू किया?
0: सुबह से जरा मशगूल था किसी काम में।
1: हाँ।
0: यहाँ पर फर्स्ट काम है।
1: हाँ।
0: क्योंकि कहते हैं ना, सुबह सुबह उठते हैं तो कोई काम कर लेते हैं, जब भी दिल उदास होता है 107
1: ऑन कर लेते हैं। ओए होए होए होए, क्या बात है क्या बात है। चलें जी, गुड, जबरदस्त, ख्याल रखिएगा भाई अपना बहुत बहुत, ठीक है, खुश रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रोही जी, तो इसी के साथ हमारे पास कॉल्स और भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आपके मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हमने चलना है एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: सुन सकते हैं FM 107 लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: राइट, वेलकम बैक। समर मॉर्निंग में आपको एक दफा फिर से हम कहेंगे वेलकम बैक, और मैं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान। कुछ हो गए हैं 7:49 और मैं आपके साथ हूँ। अजरी अग्रीड ये मैसेज में बहुत पहले किया था, और उन्होंने इस बात पे किया था कि मोबाइल फ़ोन वाले पे ना, कि अगर हाँ ले लिया जाए तो ठीक है, इतना मसला नहीं होगा। शुक्रिया मैम। और फ्रोसन चकवा कहते हैं इसके साथ ही जी, शहजादा सलीम का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ एफ एम 107 टुडे, बिजी बिजी। ओके चले जी, आप बिजी रहें। अस्सलाम वालेकुम भाजी, कैसी हैं आप? मैं अच्छा हूँ। मेरे से तो फ़ोन ले लिया जाए तो बस, घर का फ़ोन आए तो दे दो, बस एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है। मैं मैं देख लेती हूँ, उससे पहले हम ले लेते हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी जमाल भाई, क्या हाल चाल हैं आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
1: अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं कैसा है सब कुछ? सही चल रहा है? और कैसे रहे आपके दो दिन?
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: गुड, जबरदस्त जी।
2: हर दिन, हर पल, हर लम्हा बेहतर होता है।
1: चले गुड, जबरदस्त, अच्छा गुजर रहा है यानी जी। तो जमाल भाई आप बताएं भाई, फोन ले लिया गया आपसे तो क्या होगा?
2: असल में हाजिर का बड़ा सुलगता हुआ सवाल आपने छेड़ा है। तो जाने कितने लोगों की दुखती हुई रग को ऐसे आपने दबाया है कि बेचारों की जान निकल जाए। मैं सवाल सुन सुन के जब बड़ी देर से हंस रहा हूँ, तो आप सोचिए हंसने की क्या वजह होगी। अगर कोई आस पास से गुजर रहा होगा तो सोच रहा होगा ये बंदा पागल तो नहीं है यार, है भी तो नहीं आस पास, बोल भी तो नहीं रहा, फिर क्यों हंसे जा रहा है।
1: होता है, होता है कभी कभी, बिल्कुल।
2: ये जो मोबाइल वाला मसला है ना, दौरे हाजिर में यकीनी तौर पर ये इतना पेचीदा हो गया है, इतना पेचीदा है। तो अभी कुछ लोगों ने थोड़ा सा इशारा किया था कि आजकल सबसे ज्यादा जो कुड़न होती है ना एक चीज को लेकर, कि आप किसी की मतलब ये सोचते हैं कि यार वालहाना इस्तकबाल किया जाए, बंदा बड़े दिन पे आ रहा है, चाय वगैरह सर्व कर दो आप, या जो भी खातिर तवाज़ो आपसे बन पड़ती है आप करो, उसके बाद आप ये देखोगे कहीं ना कहीं वो मोबाइल एक मतलब क्या कहते हैं, बड़ी सख्त दिल वाली कोई सौतन है जो उसमें ही लगा पड़ा है बेचारा, अपनी तरफ कोई तवज्जो नहीं है।
1: ऐसे ही हो गया।
2: और जानते हैं आप, बहुत सारी जगहों पर तो लड़ाइयां भी होती हैं बाकायदा घरों में भी अभी भी।
1: अच्छा, इस बात पे?
2: हाँ, एक छोटा सा दो दिन पहले मैंने एक क्लिप देखा है, मतलब उससे भी हंसी आई मुझे। तो वो बेगम जाती है और अपने शौहर से कहती है कि जब देखो, जब ऑफिस से आने के बाद आप मोबाइल पे ही लगे रहते हो, कभी दो मिनट अपनी बेगम से भी बात कर लो। तो मियां जवाब देता है, हालांकि उस किसी दूसरी टॉपिक पे उसको जोड़ा गया है। मियां कहता है कि ठीक है, ये ले मोबाइल रख दिया, बैठ, दो मिनट तेरा भी सुन लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। बस दो शर्तें हैं मेरी, दो शर्त वो ये है कि तू किसी की मतलब क्या कहते हैं, किसी के मुतालिक बात नहीं करेगी, यानी किसी की चुगलखोरी नहीं करेगी। एक और दूसरा ये है कि इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं, सीरियस टॉपिक में बात करना हो कर ले। तो बेचारी थोड़ी देर सोचती है मुझे क्या बोलना,
1: फिर कहती है मोबाइल ही देख लो। तो अब हमसे नहीं हो पाएगा। ये भी सही है,
2: तुम काम करो, तुम लो अपना मोबाइल ही देखो, हम जा रहे हैं। अब आप एक देखिए, मतलब अपने कौम में से एक तबका तो ऐसा है कि जिनके हाथ से अगर मोबाइल छीन लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत देर तक जिंदगी नहीं रह पाए। और इत्तेफाक से वो तबका आशिकों का है।
1: अच्छा,
2: बेचारे बहुत
1: सही। हाँ, ये भी तो एक कैटेगरी है
2: ना, बहुत दम तोड़ देंगे। या फिर वो लोग जिंदगी में ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल के बिना चंद कदम, एक कदम का आधा कदम भी वो आगे नहीं बढ़ा सकते, उसमें से बहुत बड़े बड़े बिजनेस लोग मैन लोग हैं। आप सोचिए एक बार, इमेजिन करके तस्वीर में जाकर, है ना, उनके बारे में सोच कर देखिए कि

0: हर चंद मिनट पर
1: हाँ.
0: दो मोबाइलों पर एक साथ दो कॉल्स आ रहे हैं.
1: हाँ.
0: बड़े भाई बिजनेस का पैमाना बहुत
1: हाँ, लेकिन अगर उनसे भी पूछो ना, मतलब अगर तो ये तो अब हो गया ना सिलसिला, पहले भी तो बिजनेस चलते थे, उनसे भी पूछो तो प्रेफर वो यही करेंगे, उनकी तो और बेचारों की मुश्किल बनी रहती है हर वक्त की.
0: तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, अब दोनों पहलुओं पे जरा गौर कीजिए. एक तो वो है कि चलो भाई अपनी मफाद के लिए, या मान लीजिए तो उसमें अपने बिजनेस के चक्कर में जो हर लिहाज से मुफीद है भाई, फायदेमंद है. और एक वो कि सारी दुनिया छोड़ कर सिर्फ एक इंसान के लिए भी मोबाइल अगर थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके झांकनी का आलम आ तो देखा गया है. ऐसा मैंने देखा है. इवन एक बार यही कतर में तो मैंने देखा है कि जो वो लकड़ी के पैलेट नहीं होते जिस पर आम तरीके से कुछ चीजें रखकर और फोर क्लिप वगैरह से उठा के यहाँ वहाँ जो वो किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, लकड़ी के निकले हुए कील वगैरह की पैलेट पर भी एक बंदा ऊपर जाके गली में जहाँ मतलब दो तीन लाइन में वो पैलेट लगे हुए हैं काफी हाइट तक, छह सात बार फुट पर बैठ के बात कर रहा है कि कोई
1: ये सीन है, मतलब इतना क्रेज है लोगों को.
0: आप मोबाइल के बारे में जो सवाल कर रही है, आप तो सोच कर देखिए कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर ये कह दिया जाए कि भाई आप मोबाइल रख दो, है ना. और इवन एक चीज और मैंने सुना है, कहीं पे सुना है, शायद रेडियो पे ही सुना मैंने या कहीं किसी जगह सुना, याद तो अच्छी तरह से नहीं आ रहा मुझे, कि कुछ सालों पहले एक महासभा किया गया था आलमी पैमाने पर, जब लोगों से ये सवाल किया गया था कि मोबाइल जरूरी है या बीवी,
1: क्या जवाब दिया था लोगों ने?
0: तो लोगों ने पहले मतलब कुछ काफी पहले की बात ये थी कि जब 35 और 65 का इशू था, ठीक है, और उसके बाद दो तीन साल गुजरने के बाद फिर वही 52 और 48 वाला हुआ. और अब दौरे हाजिर में लोग ये कहते हैं कि बराबर हो गया, कुछ तो लोग ये कहते हैं कि 45 और 55 हो गया, यानी उल्टा.
1: ओके, ये वाला सिलसिला हो चुका है. उफ, अल्लाह. मतलब लोग नहीं रह सकते इसका, इससे निकल यही रहा है नतीजा कि लोग नहीं रह सकते. हाँ.
0: सवाल आपने मुझसे किया तो मैं अपना जाती एक बात बता दूं.
1: जी जी.
0: कि दिल में मेरे बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, उमड़ती हैं, कि सोचता हूँ कि वो जैसे कहा नहीं गया है कि लेते शबाब दो यमन, तो मैं लेते शबाब नहीं ये कर दूंगा कि मतलब जैसे लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि काश की बुढ़े लोग की जवानी का एक ही दिन को लौट आती, तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं यार, बचपना काश एक ही दिन को लौट आता तो बहुत बेहतर होता, जिसमें इन तमाम चीजों से कहीं दूर दूर तक पाला नहीं था और बाकायदा तौर पर कलम उठाकर और खत लिखा जाता था, चाहे वो घर वालों के लिए हो या दोस्त के लिए हो या किसी रिश्तेदार के लिए हो, तो बड़ा अच्छा सा दौर लगता था वो. एक इंतजार और बड़ा मीठा, बड़ा सुनहरा, बहुत प्यारा इंतजार होता था, इतने दिन के बाद जवाब आएगा, है ना. तो वो गुजर पर आंखें एकदम बिल्कुल बिछी होती थी, है ना, लगाती थी गुजर पे हम आके बिछाए ऐसे बैठे हैं, घुमा होता है हर आहट पे जैसे आप आए.
1: ओए होए.
0: तो उसका अपना एक अलग मजा था.
1: हाँ.
0: जो मुझे लगता है कि मोबाइल से हासिल नहीं हो सकता है.
1: सही है. तो मतलब अपनी तमन्ना तो यही है, लेकिन ये कि हो नहीं सकता, ये वाला सीन है.
0: हाँ, हो नहीं सकता,
1: हो नहीं सकता. नहीं
0: है, क्योंकि देखिए आप 100 में एक अकेला तनाव बनकर तो नहीं रह सकते, उसमें भी जिंदगी न सिर्फ मतलब दुश्वार होगी बल्कि अजीरन हो जाएगी.
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है. चलें जी जमाल साहब, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने तकरीबन सभी लोगों का हाल दिल बयान फरमा दिया है यहाँ पे. चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी.
0: हर दिल की कहानी है, बस ये है कि इत्तेफाक की बात है, आज मैंने बहुत लोग ये टॉपिक ऐसा है, आप यकीन माने उसको भी बात करेंगे, अंदाजा लगा के देख लीजिएगा. बहुत सारे सवाल अगर मीडिया की तरह आप करना शुरू करेंगी ना, तो फिर वो बेचारे
1: आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. रही जी, तो हमारे साथ थे जमाल भाई, इन्होंने कहा है कि हो नहीं सकता ऐसा, लेकिन हाँ मतलब इंजॉय तो करेंगे. फिर जी मेरे पास है खबर जो कि आपसे शेयर करनी है. कतर की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अखलाक अवार्ड की सेकेंड एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशली ओपन कर दी है. ये एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है जो अरबिक कैलीग्राफी के फन को प्रोमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इस ग्लोबल कॉन्टेस्ट का मकसद

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। मैंने आज आपसे पूछा है कि अगर आपसे ले लिया जाए आपका मोबाइल फोन तो आपको स्ट्रगल लगेगा या फिर आपको लगेगा कि अच्छा हुआ, ठीक है, तो उनमें से क्या आपको लगेगा आप मुझे भेज सकते हैं। अच्छा, ये जो है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, ये वाला सुनना है, ये नैना रे सुनना है आपने, ये राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ना, और जो आपने ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी, और हिमेश रेशमिया राहत फतेह अली खान यही वाला गाना है, वो मुझे बता दें दोनों में से कौन सा सुनना है, ये वाला भी बता दें। अच्छा जी, इसके साथ ही सेम फॉर मी क्या, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हैं अब्दुल समद, और ये कहते हैं, अच्छा ये सेम फॉर मी जो कह रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने वीडियो भेजी हुई है, ये उस पर कह रहे हैं तो वीडियो देखना पड़ेगी, फिर पता चलेगा कि क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई, कौन बात कर रहे हैं?
2: कम बात कर रहा हूँ।
1: कौन बात कर रहे हैं, सॉरी?
2: कम कम।
1: राइट, कम कम, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं?
2: खैरियत है।
1: जबरदस्त जबरदस्त। और क्या चल रहा था, कैसे गुजरा आपके इतने दिन, काफी दिनों के बाद कॉल?

0: कॉल किया आपने?
1: नहीं, मोबाइल की बात हो रही थी तो मैं मोबाइल ही देख रहा था.
0: इतने दिनों से मुसलसल मोबाइल देख रहे थे आप.
1: अब पूछ लेते ना, मोबाइल नहीं है तो कैसा है क्या है. मोबाइल है तो आदमी का टाइम पास जो होता है सही करे तो सही है, गलत के लिए मोबाइल टाइमिंग ठीक ठाक.
0: अच्छा, तो मोबाइल फोन आपके लिए मतलब मस्ट है, जरूरी है, राइट?
1: मोबाइल फोन में तो बहुत मुश्किल है.
0: बहुत मुश्किल है, तो मोबाइल फोन नहीं देंगे आप किसी को. अगर लेना कोई चाहेगा तो मना कर देंगे बिल्कुल. ऐसे ही है. ओके, सही है. और बताएं कम, और क्या कहना चाहेंगे?
1: सब बढ़िया, यही मोबाइल है. जैसे आप भी अकेले रूम में, अभी काम नहीं है.
0: अच्छा, अभी इस वक्त काम नहीं है, वो सुबह की टाइमिंग चेंज हुई भी इस वजह से. अच्छा, सो जाते होंगे इस वक्त आप रोजाना? हाँ,
1: अभी नाश्ता करके सो जाएंगे.
0: नाश्ता करके सो जाएंगे, फिर कब तक उठते हैं?
1: 2 बजे. फिर जब आदमी उठाना बस लेके 2 बजे निकलेंगे, 3 बजे साइड में पहुँचेंगे. हम लोग बस ड्राइवर है तो एक ही
0: सही सही सही सही चले जी. गुड, जबरदस्त जी. कुछ कहना चाहेंगे कम और? सही है, तो मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना कम. चले जी, कोई मसला नहीं है. थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए. ठीक है, अब आप नाश्ता कीजिए अच्छा सा, और फिर उसके बाद सो जाइए आराम से, सुकून से. ठीक है, चले थी, कॉल कट हो गई. अच्छा, मुझे इनकी आवाज़ जो है ना काफ़ी मतलब मुश्किल से आ रही थी. मेरा ख्याल है या तो आ गए होंगे रूम में, हो सकता है और लोग भी सो रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा आहिस्ता बात कर रहे थे. खैर जी, तो आपसे शेयर करना था क्या, आपके मैसेजेस भी हैं, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ और शेयर करते चले आपसे. और ये भी एक अच्छी सी न्यूज़ है, वो ये कि फैमिलीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रॉलर जो सर्विस है वो शुरू की है. स्ट्रॉलर्स होते हैं ना बच्चों के, तो वो लॉन्च किए हैं इन्होंने. और इसमें इन्होंने ये रखा है कि ने 300 फ्री टू यूज़ चाइल्ड स्ट्रॉलर्स का एक फ्लीट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि टर्मिनल के मुख्तलिफ हिस्सों में अवेलेबल होंगे, और ताकि बच्चों के साथ सफ़र करने वाली फैमिलीज़ को आसानी से मिल सकेंगे. और वाकई डेफिनेटली अगर आपके जब बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि ये वक्त जो है ना मैंने देखा हुआ है, इतना मुश्किल होता है. और वो भी ख़ास तौर पर अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हो, मतलब यूजली ऐसा होता है ना कि हम पहले चले गए या फिर वापसी पर लेट आ रहे हैं, हस्बैंड को ज़रा जल्दी ज्वाइन करना. तो ऐसा कई दफ़ा मेरे साथ हुआ कि दोनों बच्चों को एक साथ लेकर आना, लिटरली मतलब आप एक का हाथ पकड़े हुए दूसरे को गोद पे आपने मुसलसल लटकाया, वह बड़ा मुश्किल हो जाता है. और स्ट्रॉलर अगर आपको ना मिल रहा हो खास तौर पे, तो फिर बड़ा, क्योंकि वो लेके रख लेते हैं आपका वाला, तो वो लेके रख लेते हैं. फिर बाद में अगर आपको एयरपोर्ट पे नहीं मिल रहा, दोनों को ले लेकर आना, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका हैंड कैरी है उसको संभालना, कैरी करना बड़ा ही मुश्किल काम है. तो ये बड़ी अच्छी खबर है तमाम उन लोगों के लिए जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, कि स्ट्रॉलर यूज़ करने के लिए कोई प्री बुकिंग नहीं चाहिए आपको, कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं, कोई हिडन रेंटल फी या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है. पैसेंजर सिंपली टर्मिनल के अंदर मौजूद जो स्ट्रॉलर नेस्ट है वहां से जाके स्ट्रॉलर को पिक कर सकते हैं. और ये स्ट्रॉलर्स जो है वो ABCD और E, मतलब जो ये कॉनकोर्सेस हैं, इधर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिससे फैमिली ट्रैवल का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, खासतौर पर उन पेरेंट्स के लिए जो लॉन्ग ट्रांजिट और कनेक्टिंग फ्लाइट्स या फिर टाइट टॉडलर्स के साथ ट्रैवल करते हैं. तो ये जो सर्विस है वो एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली बनाती है, और ये दिखाती है कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर कंफर्ट को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. तो ये ज़बरदस्ती खबर आपके साथ. अगर सफ़र करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि लगेज में तो चला जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ईजिली एयरपोर्ट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, उसके बगैर आपको स्ट्रॉलर अवेलेबल होगा, जहाँ पर अपने बच्चों को चाहे आप एक को बिठाएं, दो को बिठाएं, ईजिली मिल जाएंगे आपको. तो परवाह करने की, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. चलिए जी, अभी हम चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सुनते हैं सॉन्ग, वापस आते हैं, सुनते रहें फिर 107 दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. टॉप 10 काउंटडाउन. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आप

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है. हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो. याद रखें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें. अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते. आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है. फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है. सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है. ड्राइव सेफली क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है. तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए फासला जरूरी है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है

खुद से मिलेगा। आरजे ईफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।

जी राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग और मेरा ख्याल है आपने इसी गाने की रिक्वेस्ट की थी, है ना? वो मुझे बता दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे यही वाला मिला था तो मैंने ये वाला चला दिया। अच्छा जी, इसके साथ ही आ जाते हैं मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, गुड मॉर्निंग मामा जी, कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी। कैसा रहा आपका वीकेंड? होप गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा वैसे मतलब कुछ कामों शामों में ज़रा निकल गया, काम ज़रा ज़्यादा थे तो वो उसमें निकल गया, बाकी सोने में निकल गया, तो इस तरह का मामला रहा है। और आज का सवाल नहीं सुना, अच्छा सवाल नहीं सुना है आपने, मैं आपको बता देती हूँ सवाल क्या है हमारा आज। बेसिकली मैंने ये पूछा है कि अभी जिस मोबाइल फ़ोन से आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, अगर ये आपसे ले लिया जाए, आपसे आपको कहा जाए भाई अब नहीं मिलेगा, मतलब ठीक है अब ज़िंदगी विदाउट मोबाइल गुजारना पड़ेगी, तो आपको ये स्ट्रगल लगेगा या फिर फ्रीडम, इन्जॉय करेंगे इसको या फिर आप जो है ना मतलब परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। अच्छा जी हाँ, यही था, चले गुड, ज़बरदस्त भाई, मतलब गाना आपका यही वाला चल गया, अच्छी बात है। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, मैम कैसा है अरबिक कैलीग्राफिक कल्चर रजिस्ट्रेशन का लिंक सेंड कर दें। अच्छा कैसा, मैं आपको लिंक सेंड करूँ? ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भाई, थोड़ा सा देखिए ना, अगर आप मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करवाया है ये, तो अगर आप सर्च करेंगे लिख के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कैलीग्राफी कंपटीशन, तो ये आपको मिल जाएगा फ़ौरन से। ठीक है, अखलाक कंपटीशन है बेसिकली है, तो आप इसको सर्च कीजिए और मिल जाएगा। मैं अभी भेजूंगी ना, भेज तो मैं दूँ, और मैं ये भी कह दूँ कि मैं बाद में भेज देती हूँ, लेकिन बाद में मैं भूल जाऊँगी, तो इसलिए ऐसा वादा करूँगी नहीं, और अभी मैं मैसेजेस पढ़ते हुए फिर रह जाऊँगी, इसलिए फिर मैं अभी दे नहीं सकती, वरना मैं आपको ज़रूर दे देती वाकई। अच्छा जी, इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरी लिटिल बिलियन थिंग्स ऑफ इन माय लाइफ, और अल्लाह नोज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, सो वेट पेशेंटली डियर अल्लाह, रिमूव अस फ्रॉम दीज फाइव थिंग्स, सिकनेस, डेप्थ और पावर्टी एंड हार्डशिप और फेलियर। चले दी गुड, ज़बरदस्त नाम इन्होंने नहीं लिखा, हसब मामूल जी वीडियो देखे हैं। अच्छा वीडियो मैं देखूँ, अभी देखती हूँ, पहले मैसेजेस पढ़ लूँ, और काश ऐसा तो काश ऐसा हो पता तो कोई फ़ोन ले ले हमसे, कम से कम एक दिन तो सुकून का हो लाइफ में। ओके इनका ये कह रहे हैं काश ऐसा हो कोई फ़ोन ले ले हमारा, कम से कम एक दिन तो सुकून से गुजरे। अच्छा जी, और ये बेसिकली कुछ मुझे लग रहा है कि सेल्स वगैरह में काम करते हैं, मैं समझ सकती हूँ भाई, मैं समझ सकती हूँ आपका गम कि किस किस्म का होगा। इसके साथ ही मुमताज़ अहमद का मैसेज और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हाविश खान, मैम कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, नो मोबाइल नो टेंशन। मैम एक बार अपना मोबाइल गुस्से में तोड़ दिया था वाइफ की वजह से, और किसी का भी फ़ोन आएगा तो फिर बताओ कौन है। अच्छा जी, अच्छा, इस वजह से तोड़ दिया था कि वाइफ पूछती थी कि किसी का भी फ़ोन आ रहा है, तो फिर सवाल होता था ये, तो तोड़ ही दिया था। और मामिश मैम, जिस दिन मोबाइल तोड़ा था उस दिन इतना सुकून फील हुआ था, दिन तो अच्छे से कट गया, लेकिन जब रात में बेड पे

0: या फिर एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया फिर दो दिन के बाद नया मोबाइल फ़ोन लेना ही पड़ा मुमताज़ अहमद। ओके जी, थैंक यू आपके मैसेज का, और इसके साथ ही देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातहू, कैसे बहन आप? खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं भाई?
1: जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, जबरदस्त। आपका वीकेंड अच्छा गुजरा इंशाल्लाह?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र
1: जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा चलो टाइम थोड़ा सा है, फिर इसके बाद शो वो शुरू हो जाएगा,
0: जी जी
1: हम भी आजमा लेते हैं आज
0: तो आपसे ले लिया जाए मोबाइल तो क्या होगा?
1: मुझे लगता है मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
0: सही
1: जी, मुझे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी एक ये है ना कि मोबाइल अगर ले लिया जाए तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, ये बड़ा सवाल है ना।
0: लैंडलाइन ना, अभी एक भाई ने बताया था लैंडलाइन पे कॉल करेंगे, घर वालों को बता देंगे।
1: नहीं, कॉल देखें वो कॉल के लिए वो तो ऑप्शन और भी हो सकते हैं, खतूत भी हो सकते हैं, कैस्टी भी हो सकती हैं जो पहले जमाने में होते थे। ये जो एंटरटेनमेंट हमारी जिंदगी में आई है इतनी बड़ी मोबाइल की सूरत में, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव क्या होगा?
0: कुछ नहीं होगा ये। अच्छा वैसे ये वाकई मतलब थ्योरी है ये एक कि अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है, वो क्यों आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब ये ऐसा हो सकता है कि लाइफ जो है वो फिर से एक ऐसी जगह पे चली जाए जहाँ पे कोई इंटरनेट कोई मोबाइल फोन कोई इस किस्म की चीज ना हो। तो सोचा हुआ उस वक्त में क्या करेंगे आप?
1: मैंने तो अपने लिए अल्टरनेटिव पहले से बंदोबस्त कर लिया है किताबों की सूरत में। जी किताबें जो कि ये है कि मैं आपने एक दिन का कहा तो तकरीबन एक दिन तो मैं मोबाइल के बगैर गुजारता ही हूँ ऑलमोस्ट, मतलब मैं पक्का ये नहीं कह सकता लेकिन ऑलमोस्ट, क्योंकि थर्सडे नाइट को मेरी ये रूटीन होती है कि मैं रात 8 बजे से तकरीबन 11:30 बजे तक पढ़ता हूँ, ठीक है, वो मेरा टाइम होता है। उसमें मैं कोई मोबाइल नहीं, वाईफाई बंद, मोबाइल साइलेंट पे, किसी से कोई बात नहीं, तो तकरीबन 3-4 घंटे वो मेरे गुजरते हैं। और उसके अलावा जुमे को जब लंच के बाद या जुमे के बाद आप कह लें तो उसके बाद या मतलब असर के बाद 3-3:30 बजे के बाद फिर मैं रात 8 बजे तक, तो ये मतलब मैं बैठा रहता हूँ एक ही जगह पे, और उस दिन मैं कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं, बस मैं किताब को ही टाइम देता हूँ। कम से कम मैं 100 पेजेस पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम किताबों पे आए, किताबें पढ़ें, और ये एंटरटेनमेंट जो हमारी जिंदगी में मुसीबत डाली हुई है इसने, तो उसका अच्छा अल्टरनेटिव हमारी लिए किताबें ही हो सकती
0: है। हाँ वो तो किताबों की तरफ सही। बिल्कुल सही,
1: किताबों की तरफ।
0: लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि इस वक्त में अगर मोबाइल फोन चला जाता है तो मुझे और कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि मैं अपनी बहन से कैसे बात करूंगी ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
1: हाँ।
0: क्योंकि हर एक दो दिन के बाद मुझे अपनी बहन से मतलब 3-4 घंटे कंटिन्यूसली बात करना होती है, तो वो वहां पे मैं फंस जाऊंगी अगर इंटरनेट ना हुआ, अगर मोबाइल फोन ना हुआ।
1: ये चीज, हाँ, ये कम्युनिकेशन के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं एंटरटेनमेंट वाइज बात कर रहा हूँ, ये हम ड्रामे और फिल्में और रील देख रहे होते हैं ना, तो उसका अच्छा अल्टरनेटिव मेरे हिसाब से किताब ही होना चाहिए। बल्कि मैं ये, क्योंकि जहनीयत ऐसी बनी हुई है जब मैं बैठता हूँ ना पढ़ने के लिए, तो अच्छा मैंने देखा है वो अक्सर लोगों को जो लोग आते हैं, जब मैं ये पढ़ रहा था ये आबे हयात और उसके अलावा जो है जन्नत के पत्ते, अच्छा ये दोनों किताबें बहुत बड़ी है, साइज उसका बहुत बड़ा है, तकरीबन 700-700 पेजेस हैं उसके ना, तो जब मैं वो पढ़ रहा था तो अच्छा एक आदमी ने भी मेरी हौसला अफजाई नहीं की।
0: अच्छा।
1: एक आदमी ने भी, जो भी आता था, भाई क्या बोरिंग इंसान है आप, ये क्या पढ़ रहे हैं इतनी बड़ी किताब गोद में लेके, ये क्या कर रहे हैं आप, कौन से जमाने में जी रहे हैं। अच्छा मैं सोच रहा होता था कि यार ये लोग ये है ही ऐसे या सिर्फ मेरी हौसला शिकनी करते हैं, मतलब कोई हौसला अफजाई करो, आप अच्छी बात भी कर सकते हैं कि यार आप किताब पढ़ रहे हैं इस जमाने में, यार ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा जो भी आया, जो भी, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हमारे भाई हो, भाई ये कौन से जमाने में जी रहे हैं आप, आपने किताब इतनी बड़ी किताब गोद में ली हुई है, ये क्या कर रहे हैं आप। तो फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि अच्छा ये जो हमारी मेंटेलिटी मोबाइल ने इतनी बिगाड़ दी है कि अगर कोई किताब या कुरान ले रहा है गोद में या कोई तफसीर की किताब ले रहा है तो उनको लग रहा है कि यार ये बंदा अपनी किसी और खला में जी रहा है, क्या ये कौन है। तो ये हमारी जहनीयत इस तरह की बनी हुई है। तो फिर खैर लोगों से गिला नहीं है, लोगों से गिला नहीं है, ये मतलब हम जैसे सुबह सुबह आपने कहा कि एक हम रोबोट की शक्ल हमने अख्तियार की हुई है, कि मतलब हम उसी फ्लो पे चल रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है जिंदगी में, बस जो बस अब 12-12 10-10 घंटे मोबाइल को देने हैं, जॉब भी करते हैं तो

0: मोबाइल के साथ करते हैं। तो ये एक ये लोगों का मसला नहीं है, ये जो ये चीज हमारे हाथ में थमाई गई है ना, मुझे लगता है ये इसने लोगों की ज़हनियत पे असर डाल दिया है। तो अब जो है इस तरफ कोई नहीं आता। मतलब मैंने किताबें रखी हुई हैं, मैं सबको ऑफर कर रहा हूँ कि यार मैंने ली हुई है, आप लोग पढ़ें, मुझसे लें, हाँ मुझे वापस करनी है। वो लोग कहते हैं कि ठीक है आप दे दे हमें देखेंगे, वो जब देखते हैं उनका साइज देखते हैं वो कहते हैं नहीं भाई ये हमसे नहीं होगा, ये किताब अपने पास ही रखें। तो खैर ये कम्युनिकेशन का मसला हो सकता है मेरे लिए भी, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए जी बिल्कुल मैं मोबाइल के बगैर बिल्कुल
1: एंटरटेनमेंट का तो मेरा इतना मसला ही नहीं है, मैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए खुद ही काफी हूँ, मुझे मसला नहीं है, बोरियत तो मुझे होती नहीं, मैंने पहले भी बताई ये बात। लेकिन हाँ ये है कि बहन से बात करनी होती है और वो सारी जो चीज़ें जमा हुई हुई होती हैं ड्रामों के बारे में, अब मैं ऑन एयर नहीं बात कर रही हूँ लेकिन बहन से हमारी मुसलसल बात हो रही होती है, इसमें क्या हो गया उसमें क्या हो गया, तो वो फिर नहीं हो सकता भाई, मतलब उसके बगैर तो नहीं गुजारा। हाँ
0: जी ये चीज मसला हो सकता है, लेकिन फिर भी सही है चलता है, अगर चला भी जाए मोबाइल तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा मुझे, मैं अपना बता सकता हूँ।
1: सही हो गया, चलें जी, गुड,
0: ठीक है,
1: चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। राइट, तो हमारे कॉलर इन्होंने तो कह दिया भाई मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं किताबें विताबें लेके बैठ जाऊंगा अपना किसी जगह पे और कोई मतलब मुझे इशू नहीं होने वाला। अच्छा, छोटे भाई असमत आफरीदी को मेरा सलाम, और ये कहते हैं खातिम हुसैन भाई, और इसके साथ ही हमारे पास मैसेज है, हो सके तो ये भी अच्छा, ये मैं आखिर में चलाने की कोशिश करती हूँ, एक दफ़ा फिर मैसेज कीजिएगा याद दिलाने के लिए थोड़ी देर में, ठीक है। और इसके साथ ही मोहम्मद यूसुफ खान, या ला, अच्छा जी मावशी, स्ट्रगल लगेगा नॉट फॉर द सोशल मीडिया बट फॉर द होम कॉलिंग एंड अदर यूजफुल ऐप लाइक बैंकिंग एंड ऑफिस वर्क, और मैं मोबाइल जस्ट अपनी ज़रूरत के लिए ही यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया बस थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह के लिए देख लेता हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। या अल्लाह, 3-4 घंटे आप बात करती हैं अपनी सिस्टर से, सीरियसली, मतलब अभी कल नहीं बात हुई, कल क्योंकि वो गई हुई थी बाहर, और परसों हम लोगों ने ऐसे ही हमारी किस्तवार बात होती रहती, बीच में नमाजों के वक्फे आते रहते हैं और उसमें जो है हम बात करते रहते हैं, तो चलती रहती हैं भाई, बहुत लंबी लंबी बातें चलती हैं, ये वाला सिलसिला है। खैर जी, इसके साथ ही पहले ज़माने में जब कोई मेहमान किसी नई जगह जाता था तो सबसे पहले कबीले का पूछता था ताकि किबले का अच्छा, ताकि सही रुख पर नमाज अदा कर सके। आजकल मेहमान सबसे पहले पूछता है कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है या कौन सा नेटवर्क अच्छा चलता है। वक्त बदल गया है, मोबाइल और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुके हैं कि इनके बगैर लोग खुद को अधूरा महसूस करते हैं। अगर एक दिन के लिए मोबाइल मुझसे ले लिया जाए तो इब्तिदा में मुश्किल होगी, लेकिन ये एहसास भी होगा कि हम टेक्नोलॉजी पे कितना इनसार करने लगे हैं। राइट, और इसके साथ ये कौन है, खान का मैसेज है, खान बस आप खान हैं, खान के साथ कुछ और नहीं लगाते आप, लेकिन अच्छा मैसेज है आपका, ज़बरदस्त। और मुझे इससे याद आया, इनके मैसेज से बहुत अरसा हो गया, हमारे वो जो कराची वाले भाई हैं सलमान फारूकी, उनका मैसेज नहीं आ रहा है, मेरा ख्याल है वो शाम में ही मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं नहीं मिल रही होंगी उनको। चलें अगर मतलब हो सके तो सुबह में भी, अब कौन उन तक पैगाम पहुँचाएगा, वो तो कराची में रहते हैं। फिर जी अभी है क्या, अभी सिलसिला ये है कि मैम मैं आपको कई दफ़ा कॉल कर चुका हूँ लेकिन बिजी है, आपको टाइम मिले तो कॉल बैक कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको कॉल बैक कर लेती हूँ।

0: ब्रेक, तो कॉल करते हैं, इनकी कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, गेम खेलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम आयुष मैम, कैसी हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं?
1: बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र है, हम तो बिल्कुल आपके पास में रहते हैं, बस मुश्किल ये है आपके ऑफिस में नहीं आ सकते।
0: सही, वही वाले 37 वाले भाई हैं
1: जी? जी
0: हाँ हाँ, सही सही,
1: मैं भी तो वही टेलीविजन जी 37।
0: हाँ हाँ, मैं समझ गई, नदीम भाई ना?
1: जी जी जी बिल्कुल
0: जी जी जी जी।
1: कैसी हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपका मैसेज मैं पढ़ती हूँ अब्दुल समद के नाम से, तो अब्दुल समद आपका बेटा है?
1: असल में वो नहीं नहीं नहीं, वो मसला ये है कि मेरा निकनेम जो है वो नदीम नजाकत है, लेकिन मैं अब्दुल समद के नाम से सब लोग मुझे जानते
0: हैं। ये निकनेम इतना बड़ा कौन रखता है, नदीम नजाकत?
1: नहीं, मेरे वालिद का नाम नजाकत है ना।
0: अच्छा अच्छा,
1: अब तो
0: नदीम कहाँ से आया?
1: नदीम मेरा नाम है।
0: नदीम भी आपका नाम है? अच्छा,
1: वालिद का नाम जो था वो नजाकत मियां था, लेकिन मेरा नाम नदीम था, तो इसलिए मैं नदीम नजाकत लगा था।
0: और अब्दुल समद भी हैं आप साथ में, मतलब दादा और नाना ने अलग अलग नाम रखे हैं, राइट?
1: जी जी बिल्कुल, असल में मम्मी ने या पापा ने नाम रखा था, दोनों ने मिक्स करके मेरा नदीम, क्योंकि मम्मी का नाम है नाजुक, पापा का नाम था नजाकत, तो नाजुक नजाकत से नदीम।

0: बनाना।
1: नाजुक नजाकत से नदीम कैसे बना?
0: पता नहीं, वही लोग कहते थे।
1: अच्छा, लेकिन मुझे तो मतलब कुछ बहुत ही नज़ कुछ ज़हन में आ रहा है, नाजुक नजाकत। अच्छा, तो फिर नदीम बन गया। चले गुड, जबरदस्त। और अब्दुल समद भी बन गया। वैसे मेरे दादा ने मेरा भी नाम रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मतलब नहीं रखा गया, नाहीद नाम रखा था उन्होंने मेरा। ये मेरी खाला ने रखा था। उन्होंने उस वक्त में कोई पर्शियन आई थिंक कोई डायरेक्टर थे कोई थे, तो उनकी बेटी का नाम देखा था, तो उनको ये अच्छा लगा। उन्होंने कहा नहीं, नाहीद नहीं रखेंगे हम ये नाम रखेंगे।
0: जी ये अच्छा नाम है, महवेशी।
1: जी।
0: और आप सुनाए, कैसे हैं? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं नदीम भाई, आपसे ले लिया जाए फोन तो क्या करेंगे?
0: कि महवेश मैम, आज के दौर में फोन जो है सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप बाहर कहीं रहते, जैसे कि मैं कतर में हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि फोन के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे आप मुझसे अगर फोन ले लेंगी तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा?
1: ये तो है।
0: या अपने दोस्तों से कनेक्ट कैसे करूंगा?
1: लैंडलाइन पे कर लीजिएगा, ऑफिस से इजीली कर लीजिएगा, है ना?
0: आजकल तो मैम लैंडलाइन वाली डोरी कहाँ आ रहा, कहीं 100 में एक आज के घर मिल जाएगा लैंडलाइन तो वरना तो नहीं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ तो देखिये मैम के फोन तो फिर के फोन आपसे बात हो जाती है, और दोस्तों से अहबाबों से बात हो जाती है। ये हाँ, गाड़ियों में हम लोग वेट करते हैं या कहीं पर भी वेट करते हैं, अपने फोन में बिजी रहते हैं, इसलिए टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन मेरे अंदर एक खासियत ये, जब भी मैं छुट्टी जाता हूँ तो फोन को उठा के बस एक तरफ रख देता हूँ। मैं ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ देता हूँ।
1: सही सही,
0: क्योंकि वहां पर सारे लोग हैं अपने। अब मैंने तो बहुत अक्सर बहुत सी जगहों पर ये देखा है कि भाई लोग भी बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं, सब अपनी अपनी किताबें खोले पड़े हुए हैं, कि सब ने फोनों में बिजी हैं। अगर किसी ने कोई बात भी कही है ना, तो उसका जवाब भी वो मोबाइल से दे रहा है, थैंक यू। अरे सामने सामने बोलो कि आपको शुक्रिया, सामने नहीं बोलेंगे लेकिन मोबाइल पे मैसेज करके बोल रहे थैंक यू। तो इस वजह से ये मोबाइल ने बहुत दूरियां बना दी है, जो उनको खास रिश्ते थे उनसे बहुत दूरियां बना दी है। लेकिन यहाँ के हिसाब से जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है कि फोन के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं तो सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी फैमिली में जाएं तो फोन को एक तरफ उठा के रख दें, जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके वालदा वालिद और जितने भी रिश्तेदार हैं सब आपके पास जाएं, उनसे मुलाकात करें, बातचीत करें, लेकिन फोन पे नहीं। आजकल फोन से मैं इसने इतनी दूरियां बना दी है लोगों की कि भाई से बात नहीं करता है, सिर्फ खैरियत पूछ लेता है कि तुम ठीक हो, वो भी मोबाइल पे, वो भी फोन के लिए तो ठीक है, नहीं तो मैसेज में। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इस चीज को जो बहुत करीबी रिश्ते हैं उनको आपसी बातों में करा करें तो वो बेहतर है, ना कि मैसेज का यूज करें।
1: सही सही,
0: दुनिया बढ़ती है आज के दौर में, तो लोग ऐसे हैं कि बस सामने भी बैठे हुए हैं तो बस मैसेज में हाय हेलो हो रही है, यानी सामने सामने बैठे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन मैसेज में बातें हो रही है कि ये ऐसे नहीं है ऐसे, तो अगर किसी की बुराई भी कर रहे हैं ना तो मैसेज में लिख दिया नहीं ये ऐसे कर रहे, ये सही है ना? मैं मशीन
1: बिल्कुल ऐसे ही,
0: क्योंकि कोई अगर पास में बैठा हुआ है और वो उससे कुछ बोला था तो वो मैसेज में लिख के बोल दिया कि आपके बारे में ऐसा बोल रहा था और बनाना ये था और ये था, तो लोगों में और दूरियां बढ़ रही हैं।
1: नहीं ये तो है, बहुत से रीजन है। आप देखिए ना, जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया पे आपने वो वाली फुफुओं के मैसेज वो देखे हैं, पेजेस जो बनाए हुए उन्होंने, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके कपड़े देखो, उसका वो देखो, तो ये सारे के सारे मसले तो हो गए हैं बहुत ज्यादा। चले जी नदीम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू,
1: नहीं कोई मसला नहीं है, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कबीर भाई कैसे, उनको सलाम बोलिएगा।
1: कबीर भाई से मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन हाँ मेरी कल बात हुई थी कबीर से, फोन पे बात हुई थी, लेकिन वैसे मैं हाँ बिल्कुल मैं सलाम कह दूंगी आपको।
0: नीता जी ठीक है?
1: जी जी,
0: उनको भी बोल दीजिएगा।
1: चलें ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ रही जी। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं सॉन्ग की तरफ, वापस आते हैं आपके साथ, गेम खेलते हैं। आज जो है ना वो होगा ये कि मैं आपको सुनाऊंगी थोड़ा सा गाना, और जहां से

खत्म हो रहा है, वहीं से आपने वो गाना गाना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब मजे का होगा, मुझे लगता है ऐसा, देखते हैं आज क्या होता है। मतलब जैसे ही खत्म होगा, जिस बोल पे खत्म होगा, वहीं से आपने गाना है। इस वक्त हमने ये वाला गाना सुनना है।

0: जी राय जमाना लगे. अभी मैंने घड़ी के ऊपर नजर एकदम से पड़ी, मैंने कहा भाई टाइम ही नहीं रह गया, तो फटाफट कॉल्स ले लेते हैं हम. आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, जल्दी से कॉल कीजिए, फटाफट हम गेम खेलते हैं. आज मैंने इतनी मेहनत करके ना मतलब सारे गाने निकाल के रखे हैं, तो इसलिए आज तो गेम हो जाना चाहिए. जी जल्दी से कॉल कीजिए जिसने भी गेम में शिरकत करनी है, 4434377 पे आप हमें कॉल कीजिए और जल्दी से शामिल हो जाए, वरना मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी. मैंने आज सुबह जल्दी आके गाने निकाले थे. खैर जी देखते हैं, उस वक्त तक मैं आपके मैसेजेस शामिल कर लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम मैडम, मोबाइल के बगैर जिंदगी अधूरी है, माय निक नेम इज जोजी टोटी. अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?

0: आपकी आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है बेसिकली।
1: हाँ मैम, मैं उमेर बात कर रहा हूँ, अब आ रही है बस।
0: हाँ, आपने अगर ब्लूटूथ वगैरह लगाया हुआ तो प्लीज रिमूव कर देंगे आप?
1: ऑफ कर दिया।
0: अच्छा चलें जी, तो मैं ऐसा करती हूँ कि जल्दी से जो ना मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, जहाँ पे एंड होगा वहीं से आपने गाना गाना है, ठीक है?
1: ओके ठीक है।

0: जी
1: इस दिल लगे के सिवा दिल ने किया भी है क्या.
0: वेरी नाइस. अच्छा चलेंगे वाला.
2: तू मेरे दिन में रातों में खामोशी में बातों
0: जी भाई
1: मुझे सुना सुना है मुझे भूल रहा है लिरिक्स इसका ना.
0: अच्छा चले कोई मसला नहीं है भाई. नाम एक दफा फिर बता दीजिएगा.
1: उमेर.
0: उमेर उमेर चले बहुत बहुत शुक्रिया. फिर जरूर कॉल कीजिएगा. अच्छा लगा आपसे बात करके. हम दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं. ठीक है. थैंक यू जी. थैंक यू उमेर. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू जी. तो जल्दी से आप मुझे कॉल कर लीजिए. अभी कॉल एक मैंने ले ली थी इसी वजह से क्योंकि मुझे पता था कि जल्दी हमें दूसरी कॉल लेना पड़ेगी. जल्दी कॉल कीजिए 4434377 पे. फटाफट कॉल मिला लीजिए. शामिल हो जाइए. हम जल्दी से गेम खेलते हैं. देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इस तरह से कौन है जो गाने गा लेगा. बस उमेर की आवाज़ बड़ी अच्छी थी. मैं कहना भूल गई उनसे. क्या आवाज़ क्या गाया उन्होंने. गाना बड़ा कमाल गाना गाया उमेर. अच्छी आवाज़ है आपकी. खैर तो जल्दी से मैसेज कीजिए भाई. टाइम नहीं है. वो मैसेज कीजिए कह रही हूँ. कॉल कीजिए जल्दी से कीजिए. फटाफट कीजिए. टाइम हमारे पास नहीं है. रईस भाई टाइप कर रहे हैं. रईस भाई कॉल कर लीजिए. कॉल करके शामिल हो जाइए. आप कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. बड़ा मेहरबानी उन भाई का मोबाइल नंबर दे दें जहाँ से इनाम के लिए बुलाया जाता है. उन भाई का नंबर के एक बार बुलाया था मैं नहीं पहुँच पाया. उन्होंने जिस नंबर से किया था ना उसी पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा. अभी मैं कॉल का वेट कर रही हूँ. जल्दी से कॉल कर लें भाई. अभी जो थे कॉल पर वो कहाँ चले गए. जल्दी कॉल कीजिए शामिल हो जाएँ वरना फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. गेम फिर यहीं की रह जाएगा. 10 गाने निकाले मैंने पूरे के पूरे. इतनी मेहनत की है. मेरी मेहनत का कुछ ख्याल कर लें और कॉल कर लें जल्दी से 4434377 पे. देखते हैं कोई आ गया. उनको मतलब कम एहसास हुआ मेरा. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: चले तो फिर हम आपको सुना देते हैं फटाफट से. ठीक है. ये इधर से ही गाना है.
2: तू मेरे दिन में रातों में खामोशी में बातों.
1: नहीं नहीं नहीं पास
0: ये वाला नहीं. अच्छा पास चलें दूसरा.
2: रोजा जाने मन तू
1: अरे बाबू बाबू. नहीं नहीं नहीं नहीं ये भी नहीं.
0: अच्छा चलें.
2: तौबा तुम्हारे ये इशारे
0: जहां एंड होगा वहां से गाना.
2: दीवाने हैं तुम्हारे
0: राइट. हाँ
1: जी जी.
0: राज ये कैसे खोल रही हो.
1: जी जी.
0: हाँ हाँ आगे क्या है गाना क्या है.
1: आगे गाने थोड़ा सा फिर से करें जहन से निकल जाता है गाना.
0: फिर चलाऊं चलो.

0: आंखों से बोल रही हूँ कुछ ऐसे ऐसा
1: है यही चैलेंज ही गुड जबरदस्त दूसरी दफा में आपको समझ में आ गया अब ये वाला गाना
2: आशिक दिल की टशन पुरानी कहते ज्ञानी इश्क से आप जवानी चली गई तो फिर नहीं आनी
1: चले चले चले बहुत शुक्रिया रईस भाई फिर आपकी कॉल का हमारे साथ एक और कॉलर है ठीक है थैंक यू जी थैंक यू बहुत शुक्रिया जी अच्छा जी तो हमारे साथ हैं कौन हेलो अस्सलाम वालेकुम जी यूसुफ
3: जी कैसे हैं भाई
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप बताएं कैसे हैं
3: नहीं मुझे गाने नहीं समझ आते मैं गाने मतलब सुनता नहीं प्रॉपर जस्ट मैं आपको जस्ट इनकरेज करने के लिए आ गया
1: हाय कुछ कुछ तो सुना देती हूँ आपको हाँ नहीं
3: जी जी कोशिश करता हूँ
1: चले अच्छा फिर आपको मैं इजी वाला ही देती हूँ ठीक है
3: जी शुक्रिया

0: राइट यहाँ से
1: बदन की ये खुशबू उसके बाद कुछ नहीं जगाने लगी जादू
0: सही है सही है अच्छा ये वाला
1: बदन की ये खुशबू जगाने
2: चेहरे का जाना कुछ ऐसा जादू छा गया मेरे चांद को देख कर
1: चांद भी शर्मा गए
0: वेरी नाइस यूसुफ आप तो कह रहे थे कि आपको नहीं याद है आपने तो फिर भी गेस कर लिया
1: मतलब सुनता नहीं वो याद नहीं है उसकी कंटिन्यूशन में जो हुआ
0: अच्छा चले एक और चलें ये वाला भी चलाते हैं ये भी शायद आपको आता हो

0: नहीं याद नहीं,
1: नहीं याद नहीं
0: तो मुझे
1: ऐसी कुछ चले गुड है, चले मैं आपको अब इंशाल्लाह आइंदा हम करते रहेंगे ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ठीक है।
0: नहीं गानों के लिए सही दूसरा कुछ हो जाएगा।
1: अच्छा ये नहीं हो पाएगा।
0: राज भी अच्छा गाते हैं, राज हैं और एक प्रिंस भाई भी थे, उन्होंने भी अच्छा खेलते थे, शायद नहीं है नहीं सुन पा रहे शायद,
1: हो सकता है। नहीं वो बहुत सारी तो ऑडियंस वो वाली होती है जो आरजे की बड़ी लॉयल होती है तो वो उनके साथ चली गई होगी, ये वाला मामला भी होता है। चलिए यूसुफ बहुत हाँ बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू जी, थैंक यू, बस लास्ट कॉलर है, थैंक यू जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। राइट जी तो हमारे कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? राज। ओके राज, आपसे फिर वो वाला गाना सुनाऊं मैं आपको जो कोई नहीं कर पा रहा?
2: हां सुना दो, देखते हैं।
1: चलो देखते हैं।
3: तू मेरे दिन में, रातों में, खामोशी में, बातों
1: इतना याद नहीं है, चलें ठीक है, मसला नहीं।

0: आंखें बंद कर
1: राइट
0: तो मन में भी तू है
1: बिल्कुल सही राज जबरदस्त अच्छा ये वाला

0: तुम आंखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे।
1: कमाल है।
2: आशिक दिल की टशन पुरानी, कहते ज्ञानी इश्क से आपा आग जवानी, चली गई तो फिर नहीं आनी कुड़ी बेगानी।
0: रहने दे जीन, रहने दे जीना।
1: हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसा आई थिंक सीधा साधा है ना, ऐसा कुछ है, मुझे ऐसा लगता है। राइट। अच्छा जी, अगला, अगले पे आ जाते हैं हम।

0: जी।
1: तूने छेड़ा तार दिल के, आज चले हम साथ मिलके।
0: अरे मुझे खुद याद नहीं है, मैं कैसे बताऊं ये सही है कि नहीं है, गा के बताना था ना। लेकिन राज आपने बहुत अच्छा खेला, यूसुफ ने भी बहुत अच्छा खेला, आपने मेरे ख्याल से उनसे भी ज्यादा गेस किया, तो आपके लिए बहुत सारी तालियां।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू
0: जाने का वक्त। यूसुफ ने भी जबकि कह रहे थे वो कि मुझे अच्छा नहीं आता है, मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा खेला। और इसी के साथ राज तो खैर हर दफा ही कमाल करते हैं, और बाकी भी वो लोग जो कि आते थे पहले उनसे भी मैं कहूंगी जरूर आए और आके जरूर हमें जो है ना मतलब हमारे साथ गेम खेलें, थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता करके, मैं जब तक मुझे लगता है कि मैं इसमें सेट होंगी ना, फिर नाजिया आ जाएगी, फिर आप नाजिया के साथ गेम खेलते रहिएगा। गाने के एक दो बोली याद रहते हैं, ये रईस कह रहे हैं। और इसके साथ ही जी मेरे पास मैसेज है, गुलाम रसूल हाजिज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, और फ़ोन वक्त की ज़रूरत बन चुका है, फ़ोन के बगैर रहना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम हो जाते हैं, जैसे कि आपके प्रोग्राम से भी। ओए होए ये वाला भी तो सीन है। मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं कि एक फैजल है केरला के, अच्छा वो बहुत अच्छा गाते हैं, नाइस टू टॉक विद यू आरजे मावजी एज ऑलवेज, और यस राज भी बहुत अच्छा खेले, जबरदस्त जबरदस्त। चले दी इसी के साथ, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ आपका एक तो पहले, और फिर इसी के साथ मुझे इजाजत, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल सुबह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से हाफिज़ एंड बाय।

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: न्यूज एट 9 AM फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का पहला मुफसल नशरिया, इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। वज़ारत औक़ाफ़ो इस्लामी उमूर ने तालीमी साल 2025 से 2026 के लिए अपने सालाना स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन प्रोग्राम की तकरीब मुनक़िद की, जिसकी सरपरस्ती वज़ीर औक़ाफ़ो इस्लामी उमूर ने की। कतर चैरिटी और अक्वामे मुत्तहदा के इदारा बराए मुहाजरीन ने लुबनान और मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के खित्ते में 15,000 से जायद बेघर और जबरी नकल मकानी का शिकार अफराद की मदद के लिए 2 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। रियासत कतर ने जमहूरी नाइजर के दारुलहकूमत नियामी में वाक़ ड्यूरी हमानी में बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाने वाले हमले की शदीद मजम्मत और सख्त अल्फाज में मुखालफत की है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक कल सुबह से अब तक गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फिजाई हमलों और फायरिंग के वाकयात में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा लुबनान की वजारत सेहत के मुताबिक सईदा ज़िला के इलाके में इलाके कनारीत पर इसराइली फिजाई हमले में इब्तदाई इतलात के मुताबिक 7 अफराद जाँ बहक और 13 ज़ख्मी हो गए हैं। और अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त MOU में शामिल 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान आबनाए हुरमत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर कोई ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी, जबकि उन्होंने मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में मुस्तकबिल में अमरीकी फ़ीस आयद करने का अंदिया भी दिया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ और अब समात की जी मुफसल नशरिया।

0: رازداری کے تقاضوں کے باعث مذاکرات میں شریک افراد اور بات چیت کے مواد سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کی جائیں گی۔ دوسری جانب مغربی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف مذاکرات کے پہلے مرحلے میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت یاداشت پہلے ہی نافذ العمل ہو چکی ہے، جبکہ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے آئندہ 60 دنوں کے دوران مزید مذاکرات جاری رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یاداشت ایم او یو میں شامل 60 روزہ مدت کے دوران آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر کوئی ٹرانزٹ فیس عائد نہیں کی جائے گی، جبکہ انہوں نے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں مستقبل میں امریکی فیس عائد کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ جنگ بندی کے عرصے کے دوران 60 دن تک آبنۂ ہرمز میں کوئی ٹول یا فیس نہیں ہوگی، اور 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی کوئی فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ مکمل نہ ہوا تو اخراجات کی تلافی کے لیے مستقبل میں امریکہ کی جانب سے فیس عائد کی جا سکتی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران زیر التوا معاملات پر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کے نئے دور میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو رہے ہیں۔ مذاکرات میں اہم امور میں ایران کا جوہری پروگرام، امریکی پابندیوں کا خاتمہ اور آبنۂ ہرمز کو مستقل طور پر دوبارہ کھولنے جیسے معاملات شامل ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے تصدیق کی ہے کہ آبنۂ ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ امریکی افواج خطے میں جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سینٹرل کمانڈ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ 20 جون کو آبنۂ ہرمز سے تجارتی بحری ٹریفک میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، کیونکہ امریکی افواج خطے میں محفوظ بحری راستوں کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہ سے محفوظ آمد و رفت کا سلسلہ برقرار رہا، جہاں 55 تجارتی جہازوں نے سفر کیا، جن کے ذریعے بڑی مقدار میں سامان اور 17 ملین بیرل سے زائد تیل عالمی منڈیوں تک پہنچایا گیا۔ یوکرین کے جنوب مشرقی شہر زاپوریزا پر روسی افواج کی جانب سے کل گلائیڈ بمبوں سے حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ زاپوریزا کے گورنر ایوان فیڈروو نے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارمز پر جاری بیان میں بتایا کہ شہر کو 9 فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ بعض شہری تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں۔ یوکرین نے روس کے علاقے یورال میں واقع تیومن آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے، جو یوکرین کی سرحد سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ حملہ روسی سرزمین پر توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی جاری کارروائیوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تیومن ریجن کے گورنر الیگزینڈر مور نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا کہ ریفائنری کے قریب ملبہ گرنے کے بعد ہنگامی ٹیمیں موقع پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ریفائنری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تاہم احتیاطی طور پر وہاں موجود کارکنوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تیومن آئل ریفائنری روس کی بڑی نجی ملکیت والی آئل ریفائنریز میں شمار ہوتی ہے، جن میں روزانہ تقریباً 151,000 بیرل خام تیل پروسیس کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ریفائنری روسی داخلی مارکیٹ کو ایندھن فراہم کرنے والے اہم مراکز میں سے ایک ہے۔ جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کی وبا بدستور پھیل رہی ہے، جہاں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بڑھ کر 956 ہو گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 247 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ پیش رفت عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی جانب سے اس تصدیق کے بعد سامنے آئی ہے کہ موجودہ وبا کے آغاز سے اب تک 75 طبی کارکن ایبولا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 17 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس سے قبل کانگو کے وزیر صحت سیمول راجر کامبا نے ہفتے کے روز 933 تصدیق شدہ کیسز اور 245 اموات کی اطلاع دی تھی، تاہم وزارت صحت کی تازہ رپورٹ میں متاثرین اور اموات کے اعداد و شمار میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہفتے کے روز سڑک کنارے ہونے والے 2 دھماکوں میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक बनू ज़िला के इलाके में एक छोटी मुसाफिर गाड़ी को रिमोट कंट्रोल से नस्ब किए गए देसी साख्ता बम यानी आईईडी के जरिए निशाना बनाया गया। बन्नू के पुलिस सरबरा यासिर अफरीदी ने बताया कि जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि इसी दौरान एक दूसरा धमाका हुआ जिसके नतीजे में मजीद अफराद हलाक हुए। अभी तक किसी ग्रुप ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की जबकि हुक्काम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहरियों की हलाकत का बाइस बनने वाले इन धमाकों की शदीद मुज़म्मत की है। सदर जरदारी ने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी अनासिर मुसल्ला गरोहों को महफूज पना गाहें लॉजिस्टिक मदद और माली मुआवनत फराहम कर रहे हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान कौमी सलामती को दरपेश खतरात पैदा करने वाले नेटवर्क्स के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इसी तरह बन्नू के पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक जब जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था इसी दौरान एक और धमाका हुआ और जिस दौरान मजीद अफराद जख्मी हुए। सामीन खबरों के इस मरहले में अब समाप्त कीजिए बिजनेस न्यूज हेडलाइंस।
1: बिजनेस न्यूज हेडलाइंस विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
2: कतर चैम्बर ने कतर और जर्मन के दरमियान कतर और नॉर्थ राइन वेस्ट फेलिया मंडियों को जोड़ना और मौके पैदा करना के उनवान से एक गोल में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसका मकसद दोनों फरीकों के दरमियान इकतसादी और सरमायकारी तआवुन को मजबूत बनाना और निजी शोबे के दरमियान शराकतदारी के नए मौके फराहम करना है। कतर रेल को बरतानिया में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट की जानिब से लंदन में मुनक़िदा 2026 के सालाना अवार्ड्स में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के शोबे में एजाज़ से नवाजा गया। वाज़ह रहे एजाज़ इदारे के अंदर हिफाजती सकाफत को फ़रोग़ देने और हिफाजती इकदामात को बेहतर बनाने में उसके नुमाया किरदार के एतराफ़ में दिया गया है। कतर एयरवेज़ ने बहरान से पहले की अपनी 85% फ़िज़ाई ऑपरेशनल सरगर्मियाँ बहाल कर ली हैं जिनमें आज से कुवैत शहर के लिए रोज़ाना परवाज़ों की बहाली भी शामिल है। कतर नेशनल बैंक ने कहा है कि तरक्की याफ्ता बड़ी मईशतों में हुकूमती बॉन्ड हेल्ड्स में इजाफा आलमी माशी हालात के वसीय तर जायजे की अक्कासी करता है जिसमें मुसलसल महंगाई तवील अरसे तक ज़्यादा शरा सूद की तवक्कुआत और बढ़ती हुई हुकूमती कर्ज की ज़रूरियात शामिल हैं। और मशरक़ वस्ती में जारी जंग के मआशी असरात के बाइस बरतानिया में गुज़श्ता मई के दौरान हुकूमती कर्ज गिरी तवक्कुआत से ज़्यादा रही और 23.3 अरब पाउंड स्टर्लिंग तक पहुँच गई है। बिजनेस अपडेट्स मुकम्मल हुई, अब समाप्त कीजिए स्पोर्ट्स की दुनिया से अहम और दिलचस्प खबरें।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
3: अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स हेडलाइंस में। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ मुकाबलों में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 1-5 गोल से शिकस्त दी जबकि जापान ने ट्यूनिशिया को 4 गोल से हराकर फतेह हासिल की। ग्रुप ई में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 1-2 गोल से हराया और दूसरी तरफ इक्वेडोर और कुरासाओ का मुकाबला गोलेस ड्रॉ रहा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज के अहम मुकाबलों में ईरान का सामना बेल्जियम से और सऊदी अरब का सामना स्पेन से होगा। कतर की कौमी बास्केटबॉल टीम ने तुर्की के शहर अंताल्या में अपना ओवरसीज ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल कर लिया है। ये कैंप कतर बास्केटबॉल फेडरेशन की जानिब से टीम के आने वाले टूर्नामेंट के लिए मुनज्जम किया गया था। टीम खास तौर पर फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 के एशियन और ओशेनियन क्वालिफायर्स के अगले मराहिल के लिए तैयारी कर रही है। यशस्वी जायसवाल की शानदार सेंचुरी और प्रसिद्ध कृष्णा के 5 विकेट की बेहतरीन बॉलिंग ने इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 3 3-0 से क्लीन स्वीप दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। चेन्नई में खेले गए तीसरे और आखिरी ओडीआई में इंडिया ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त दी। और तीन मैचों की टी20 क्रिकेट सीरीज के आखिरी मैच में आज मेजबान बांग्लादेश का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
4: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद फुरकान शाहिद।
2: वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर ने तालीमी साल 2026-2025 के लिए अपने सालाना स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन प्रोग्राम की तकरीब वज़ीर औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर गानी बिन शाहीन बिन गानी माल गानी की सरपरस्ती में मुनाकिद की। ये तकरीब वजारत के साज़म की अक्कासी थी कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए और ऐसी नस्ल तैयार की जाए जो इल्म अख़लाक़ से आरास्ता हो और अपनी बिरादरियों की खिदमत के काबिल बन सके। कतर चैरिटी और अक़्वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन ने लुबनान और मशरक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका के ख़त्ते में 15,000 से ज़ायद बेघर और जबरी नकल मकानी का शिकार अफराद की मदद के लिए 2 माह पर दस्तखत किए हैं। रियासत कतर ने जमहूरिया नाइजर के दारुलहकूमत नियामी में वाक़ ड्योरी हमानी बैन अक्वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाने वाले हमले की शदीद मजम्मत और सख्त अल्फाज में मुखालफत की है, जिसके नतीजे में मुतअद्दद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। तिब्बी ज़राए के मुताबिक कल सुबह से अब तक गज़ा के मुख्तलिफ इलाक़ों में इसराइली फ़िज़ाई हमलों और फायरिंग के वाक़ियात में 11 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं जबकि मुतअद्दद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा लुबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक सैदा ज़िला के इलाके कनारीत पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में इब्तदाई इतलात के मुताबिक 7 अफराद जाँ बहक और 13 ज़ख्मी हो चुके हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त MOU में शामिल 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान आबनाए हुरमुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर कोई ट्रांज़िट फीस आयद नहीं की जाएगी, जबकि उन्होंने मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में मुस्तकबल में अमरीकी फ़ीस आयद करने का इंदिया भी दिया है। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 के स्टूडियो से हमारे साउंड टेक्नीशियन नूर और सोशल मीडिया से युसरा और न्यूज़ रूम से इस्माइल ख़ान मोहम्मद अमीन और मुझे फुरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
4: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। समय कराम, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत घर है। ये घर सुकून, मोहब्बत, राहत और खानदान का मरकज होता है, सिर्फ ईंटों और दीवारों का मजमुआ नहीं। दिन भर की थकन के बाद इंसान जिस जगह लौटता है वो उसका घर होता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि घर को अल्लाह की याद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आबाद किया जाना चाहिए। और इसी सिलसिले में एक खूबसूरत सुन्नत ये है कि घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेना। जब हम घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो हमारे जहन में अमूमन मुख्तलिफ ख्यालात आ जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि घर में दाखिल होते वक्त सबसे पहले अल्लाह ताला को याद किया जाए। ये खूबसूरत दुआ पढ़ी जाए, बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। अल्लाह के नाम से हम दाखिल हुए, अल्लाह के नाम से हम निकले और अपने रब ही पर हमने भरोसा किया। फिर घर वालों को सलाम किया जाए। सामने कराम, इस तरह हमारा आना जाना, हमारी जिंदगी, हमारे मामलात, ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं और ये अल्फाज हमें इस बात ही की याद दिलाते हैं। मजीद सामने कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेता है और खाने के आगाज में भी अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, आज तुम्हारे लिए यहाँ न रहने की जगह है और न खाने का मौका। लेकिन अगर अल्लाह का नाम न लिया जाए तो शैतान कहता है, तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई और खाना भी। सामने का नाम सिर्फ चंद सेकंड की दुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके नतीजे में घर अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, कितना बड़ा फायदा है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
0: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
4: दोस्तों,
1: साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे असीम मादिबो की। असीम मादिबो कतर नेशनल टीम के मिडफील्ड इंजन के तौर पर मशहूर हैं। हाना में पैदा होने वाले असीम ने कतर में फुटबॉल तरबियत हासिल किया और बाद में नेशनल टीम का अहम हिस्सा

0: कायम रखना और ऑपोजिशन के अटैक्स को रोकना। असिम डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर टीम को स्टेबिलिटी देते हैं और बॉल रिकवरी में महारत रखते हैं। 2019 एफसी एशियन कप की फतह और फीफा वर्ल्ड कप कैंपेंस में उन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई। उनकी वर्क रेट और टैक्टिकल अवेयरनेस कोचेस के लिए हमेशा काबिले तारीफ रही है। असिम अदी वो मॉडर्न फुटबॉल के उन मिडफील्डर्स की मिसाल हैं जो टीम के लिए खामोशी से बहुत बड़ा काम करता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है, जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं। डेफ इमरजेंसी

0: सुन के लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से दे

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम के जहनी सेहत, नींद और रोजमर्रा जिंदगी पर जो असरात हैं उनके बारे में। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनका हद से ज्यादा इस्तेमाल हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर मनफी असर डाल सकता है। मुसलसल नोटिफिकेशंस, वीडियोस और सोशल मीडिया अपडेट्स बाज़ अफराद में ज़हनी दबाव, बेचैनी और तवज्जो की कमी का बायस बन सकती हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों में स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त गुजारने से हकीकी समाजी जो रवाबत हैं वो कम हो सकते हैं, जिससे तन्हाई और जज्बाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक और अहम मसला नींद की खराबी है। सोने से पहले मोबाइल या टैबलेट का इस्तेमाल हमारे ब्रेन को मुतहरक रखता है। स्क्रीन से खारिज होने वाली नीली रोशनी जिस्म के कुदरती नींद के निज़ाम को मुतासिर कर सकती है, जिसकी वजह से नींद आने में दुश्वारी होती है। मगर अच्छी खबर यह है कि चंद आसान आदत अपनाकर हम इन असरात को कम कर सकते हैं। सोने से कम एक घंटा पहले मोबाइल और कोई भी जो स्क्रीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल महदूद कर दीजिए। घर में आप स्क्रीन फ्री टाइम मुकर्रर कर लीजिए, मसलन खाने के दौरान या खानदान के साथ अगर आप बैठे हैं तो उस वक्त। रोजाना कुछ वक्त किताब पढ़ने, एक्सरसाइज करने, वॉक करने या फिर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गुफ्तगू में गुजारिए। वालिदैन बच्चों के लिए स्क्रीन के इस्तेमाल के

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी। सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सर्वर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वातीन और हजरात, मेरे यानी सर्वर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे। समीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अरब मुस्लिम तबीब के बारे में जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन के हवाले से इब्तदाई मालूमात में अहम हिस्सा डाला। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे इब्न अल नाफिस की। इब्न अल नाफिस जो सन 1213 से 1288 तक जिंदा रहे, उनके बारे में साइकोलॉजी की लिटरेचर में कम ही लिखा गया है। वो गैलन सन 130 से 199 के सेकंड सदी के इल्मी हवालों और यूरोपियन रेनेसेंस के उलेमा जैसे माइकल सर्विटस 1511 से 1553, रियल्डस कोलंबस 1516 से 1559, एंड्रियास वेजुलियस 1514 से 1564 और विलियम हार्वी 1578 से 1657 के दरमियान एक लिंक का काम करते हैं। लगभग 1300 साल का ये दरमियानी दौर, जो कुछ हिस्सा इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और इस दौर के कुछ अहम कंट्रीब्यूशन पे यहाँ पर रोशनी डाली गई है। इब्न अल नाफिस एक अजीम शख्सियत थे और इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आइए इनको हम अब बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इब्न अल नाफिस का असल नाम आला अल दीन अबू अल हसन अली इब्न अबी हजम अल कुरैची अल दमश्की था, इसलिए अमूमन इन्हें आम तौर पर इब्न अल नाफिस के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म दमास्कस या उसके करीब में

0: 1213 में हुआ और उनकी तिब्बी तालीम वहां के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बीमारिस्तान अल नूर में हुई। 23 साल की उम्र में वो कैरो चले गए, जहां पहले उन्होंने अल नसरी हॉस्पिटल में काम किया और बाद में अल मंसूरी हॉस्पिटल में काम करते हुए फिजिशियन इन चीफ बने। सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना सबसे अहम काम कमेंट्री ऑन एनाटॉमी इन एवेसिनास कैनन शाया किया, जिसमें उनके पल्मोनरी सर्कुलेशन और दिल के हवाले से नए नजरियात दिए गए जो आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने द कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ मेडिसिन पर भी काम किया जो कभी मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन अपने वक्त की सबसे बड़ी तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया थी ये और आज भी इसे स्कॉलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समाइन इब्न अल नाफिस एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे और जैसे कि मैंने इससे पहले जिक्र किया कि उन्होंने मेडिसिन के अलावा भी कई मकामात पर लिखा, जैसे कि फिक, इल्म उल कलाम, फलसफा, मुआशरा शास्त्रा और इल्म उल फलक। उन्होंने अपनी एक नॉवल भी लिखी थी जो थियोलॉजिस ऑटोडिडेक्टस के नाम से जानी जाती है। ये एक साइंस फिक्शन कहानी थी जो एक बच्चे के बारे में थी जो एक तन्हा से शहर में पले बड़े और फिर बाद में दुनिया से राब्ता बनाता है। आइए सामीन अब रोशनी डालते हैं इस्लामिक साइंस पे जो 8th to 16th centuries के दरमियान हुई। जैसे कि हमने इससे पहले जिक्र किया, उन लोगों में जो फिजियोलॉजी के तारीख में दिलचस्पी रखते हैं, एक रुझान है कि वो ग्रेको रोमन स्कूल ऑफ गैलन के दूसरे सदी में फैले होने के बाद रिनेसेंस के आगाज तक के 1300 साल को जल्दी से पार कर जाते हैं। इसका एक सबब ये है कि गैलन के तालीम का असर 1400 साल तक बहुत ज्यादा था। मिसाल के तौर पर जब विलियम हार्वी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1500 के आखिरी दहाई में थे तो उनकी तालीम में गैलन के लिखे हुए मजामीन शामिल थे। हकीकत ये है कि कुछ गैलन की तालीमात जैसे खून निकलने का अमल 18th सेंचुरी तक भी इस्तेमाल हो रहा था, मगर जब यूरोप में 15th और 16th सदी में साइंटिफिक रेनेसेंस का दौर शुरू हुआ तो स्कॉलर्स जैसे माइकल सेरेविटस, रियल्डस कोलंबस, जॉन वर्वर्डी तकरीबन 1525 से 1587 के दरमियान, एंड्रियास विजुलियस और आखिरकार विलियम हार्वी ने गैलन की तालीमात को सवाल के लिए छोड़ा। इसलिए ये रुझान है कि लगभग 1300 साल का वक्त नजरअंदाज कर दिया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ तारीखी इल्मियात के मुताला करने वाले 8वीं से 16वीं सदी तक के दौर को इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। ये टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये एक शॉर्ट हैंड है उस इल्मी एक्टिविटी के लिए जो यूरोप और एशिया के एक वाजे हिस्से में हुई, जो इब्रियन पेनिनसुला और नॉर्थ अफ्रीका से लेकर इंडस वैली तक और साउथ अरेबिया से लेकर कैस्पियन सी तक फैली हुई थी। कुछ स्कॉलर्स अरब साइंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज्यादातर हवाले अरबिक में लिखे गए थे जो इस इलाके की लिंगुआ फ्रैंका थी, लेकिन तमाम साइंटिस्ट अरब्स नहीं थे। असल में कुछ बेहतरीन साइंटिस्ट जैसे कि एविसिना तकरीबन 980 से 1037 तक जिंदा रहे पर्शियन थे। इसके अलावा जबकि ज्यादातर स्कॉलर्स मुस्लिम थे, ये सब काम इल्मिया नहीं था।
1: आप सुन रहे हैं साइंटिस्ट वर्ल्ड सर्वर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: दोस्तों, इस दौर में काफी अहम इल्मियती इदारे उभर कर सामने आए। कुछ सबसे ज्यादा अहम मरकज बगदाद, दमास्कस और कैरो थे। इन इदारों में इल्मी ग्रुप काम करते थे जो मदरसे के जैसे थे, जो कि अभी नई नई यूनिवर्सिटी की तरह उभर रहे थे, जहां एक जैसे सोच रखने वाले उस्ताद और तलबा का जमा होना आम था। इसके अलावा एकेडमिक हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज और ऑब्जर्वेटरीज भी थीं। मिसाल के तौर पर दमास्कस, जहां इब्न अल नाफिस ने तालीम हासिल की, ने 12वीं सदी में नसरी हॉस्पिटल का हवाला दिया जो कई इल्मी अत्तिबा को अपने में शामिल करता।

0: करता था, जिसमें अद-दख़वर भी शामिल थे, जिन्होंने तिब्बी किताबों के बारे में मजमुआ इकट्ठा किया। एक सूत्री के मुताबिक फैस मोरक्को में अल करौनी यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी होने का दावा है, जो 859 में बनाई गई थी। कैरो में अल अजहर यूनिवर्सिटी थी, जो 10वीं सदी में शुरू हुई थी और एकेडमिक डिग्रीज भी फराहम करती थी। सामिन, इन इदारों की एक खसूसियत ये थी कि यहाँ पॉलीमैथ का उभरना हुआ, यानी वो स्कॉलर्स जो बहुत सी मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते थे। हम ये बात यूरोपियन रेनेसेंस में किस हद तक समझते हैं, जब लोग जैसे रॉबर्ट बॉयल 1637 से 1691 ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैकेनिक्स और साइकोलॉजी में अहम कंट्रीब्यूशंस किए। लेकिन जैसे कि हम देखेंगे, इब्न अल नाफिज ने एक हैरत अंगेज तौर पर बहुत सी फील्ड्स में लिखा, जिसमें साइकोलॉजी, मेडिसिन, ऑप्थोमोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लॉ और थियोलॉजी शामिल हैं। दोस्तों, इब्न अल नाफिज का एक बहुत अहम लिखा शरा तशरीह अल कुनून इब्न सीना यानी एविसीना के कैनन पर तफसीर था। एविसीना को आम तौर पर उनके लैटिन नाम से ज्यादा जाना जाता है, ना के इब्न सीना से, और वो अपने दौर के सबसे मशहूर उलूम के खुदाई फिक्रमंद थे। हालांकि वो इब्न अल नाफिज से तकरीबन 200 साल पहले गुजर चुके थे। एविसीना का असल जन्म ईरान के बुखारा इलाके में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, और उन्हें आज भी मॉडर्न मेडिसिन का बाबा कहा जाता है। उनकी तालीमात इस्लामिक और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में 19th सेंचुरी के आखिर तक रहती रही। वो खास तौर पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीजेस और क्लिनिकल ट्रायल्स में दिलचस्पी रखते थे, मगर उन्होंने फिजिक्स में भी अहम खोजें की थीं। उनकी मशहूर किताबें द कैनन ऑफ मेडिसिन और द बुक ऑफ हीलिंग थी। सियासत के मसाइल की वजह से उन्हें जिंदगी भर अपना मकान बदलना पड़ा, लेकिन उनका ज्यादा वक्त जो अब के ईरान के इलाके में है, वहां गुजरा। एविसीना शायद इस्लामिक गोल्डन एज के सबसे अजीम इल्मी शख्सियत थे। तो ये 300 साल बाद था जब यूरोप के उलमा ने ये ही नतीजा निकाला कि खून को पल्मोनरी सर्कुलेशन से गुजरना जरूरी है, और वो सीधे दाएं वेंट्रिकल से बाएं वेंट्रिकल तक नहीं जा सकता। पहले शख्स जो इस बात का इजहार करते हैं वो माइकल सर्विटिस थे, जिसने लिखा, हाँ, ये राब्ता उसके दरमियान वाले दीवार से नहीं होता जैसे आमतौर पर समझा जाता है, बल्कि एक बहुत ही जहानत से बना हुआ निजाम है, जिसमें रिफाइंड खून दाएं वर्टिकल से लंबी राह तय करते हुए पल्मोन्स यानी लंग्स से गुजर कर आगे बढ़ता है। ये पल्मोन्स से गुजरता है, लाल पीला हो जाता है और फिर पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन में डाला जाता है। ये बयान असल में एक इल्मी तहकीकात में दिया गया था, क्रिश्चियनिज्म रेस्टिट्यू, क्रिश्चियनिटी की बख्शिश, जो कैथोलिक और कैल्विनिस्ट दोनों के लिए हेरेटिकल यानी गलत समझा गया, और इस वजह से सर्विटस को जिनीवा में सूती की मार से मार दिया गया। आज सिर्फ इस किताब के 3 नुस्खे जिंदा हैं। बाद में यही ख्यालात रेडिकुलस कोलंबस, उसके तालिब इल्म जॉन वलवर्डी, एंड्रियस वेजुलस और विलियम हार्वी ने भी इजहार किया।
1: आप सुन रहे हैं साइंटिस्ट वर्ल्ड सर्वर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: दोस्तों, ये दिलचस्प बात है कि हार्वी को पल्मोनरी सर्कुलेशन की साइकोलॉजी पहले समझने में मुश्किल होती थी। मिसाल के तौर पर उसने कहा, ये बिल्कुल बेचैनी की बात है कि ये सोचा जाए कि लंग्स को अपनी कोशिश के लिए इतना ज्यादा खून चाहिए जो कि इतनी ताकत से फैलता है। असल में उसकी मौत के चंद साल पहले ही हार्वी ने ऐसे तजुर्बे दिए थे जहाँ उसने इस बात को यकीनन साबित किया कि लिक्विड पल्मोनरी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
1: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर इन्वायरमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
0: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
5: Aap sun rahe hain FM 107.
0: दिल से देसी।
6: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
7: आज ही राब्ता करें
6: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लीजिए साहब, शुरू हुआ हफ्ते का पहला दिन और ऐसी खूबसूरती से शुरू हुआ है जिसके क्या ही कहने। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है फादर्स डे, और इस मौके पर, इस दिन पर वालिदैन को, खासतौर पे वालिद साहब को खराज तहसीन पेश किया जाता है। फादर्स डे हर साल जून के तीसरे इतवार को मनाया जाता है, और इस दिन की खास अहमियत वालिद साहब को, अब्बा जी को मोहब्बत और उनकी रहनुमाई और उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करना है। अब्बा जो हैं साहब, अपनी औलाद के लिए एक मजबूत सहारा होते हैं जो उनकी बेहतरीन परवरिश और मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आज के दिन, आज का ये जो खास दिन है, ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने वालिद साहब का शुक्रिया अदा करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ बैठें और उनकी मोहब्बत जो है और मेहनत जो है उसको सराहें। भाई वैसे तो हर दिन इस चीज़ के लिए गुजारना चाहिए, मगर जैसे कि दुनिया में अब चीज़ें हो गई हैं, तो आज खास हम खास दिन ये भी है। बाप वो हस्ती है जो खुद धूप में रहकर भी अपनी औलाद को साया देता है, और आज फादर्स डे के मौके पर अपने वालिद साहब को ज़रूर याद कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, और अगर वो आपके साथ हैं तो उन्हें बताइए कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तमाम वालिदैन को और स्पेशली वालिद साहब को हैप्पी फादर्स डे।
4: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: हाँ जी, स्टूडियो की घड़ी में 11:03 और इस्तकबाल है आपका सन एंड साउंड में, जहां पर सन तो भाई अपनी एकदम रवानी में है ही, और जैसा कि मैं कहता हूं कि आवाज जो साउंड है वो आप लोगों की है जो हमारे साथ घुल मिलती है, और 11 बजे से 1 बजे तक हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, और ये वादा तो मैंने आपसे लिया हुआ ही है कि भाई प्रोग्राम में आपकी शिरकत और ये प्रोग्राम

0: मुबारकबाद आज के दिन की, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। नंबर आपको बताइए है 666-22-107 इज द नंबर। इस पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह भेज सकते हैं, बता सकते हैं भाई खासम खास क्या है और क्या खासम खास कुछ आज हुआ है। अब्बा के हवाले से भी बात करी जा सकती है, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अपने एहसासात जो है मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। भाई अब्बा जी को जो है अम्मा के सामने जाहिर बात है जो हकीकत है, कहीं ना कहीं कम वोट मिलते हैं ऐसा है, मैं खुद भी इस बात को समझता हूँ। बट जाहिर है कि हम उनकी सख्ती, उनका जो रोब है उसकी वजह से इजहार भी करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। बट अगर ये चीज़ें ना हो और घर का सरबरा जो है वो थोड़ी सख्तियाँ ना दिखाए और हमें ना बताए क्या करना है कैसे करना है, या हमारी गुस्ताखियों पे हमें डांट मार और डंडे ना पड़े भाई स्पेशली हम लड़के, तो फिर क्या ही होना है ये हम सब जानते हैं। इसलिए वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। हमारे साथ जो ज्वाइन कीजिए, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो हमारा है वो है 443-443-77। व्हाट्सएप के लिए मैंने नंबर आपको बता ही दिया है 666-22-107 पे आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो साहब गर्मियों का मौसम जो है वो कतर में जारी और सारी है और गुजर रही है गर्मियां हमारी आपकी सबकी एक साथ, जबकि बहुत कुछ करने के लिए है। वीकेंड कैसा रहा आपका? उम्मीद करता हूं कि वीकेंड भी अच्छा रहा होगा। जिन जिन की छुट्टी थी उन्होंने अच्छी तरीके से वीकेंड गुजारा होगा, अपनी चीजें पूरी करी होंगी, अपने जो भी काम थे जो पूरे पूरे हफ्ते रोक रखे थे, संभाल के रखे हुए थे, वो भी भाई अच्छे तरीके से पूरे करने में कामयाब रहे होंगे, उम्मीद तो यही है मेरी। अब बाकी है कि आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कि क्या क्या किया और क्या क्या हुआ वक्त चलते। तो भाई खासम खास जो फादर्स डे है उसके हवाले से भी थोड़ी और बातचीत आज करना चाहूंगा मैं प्रोग्राम की शुरुआत में ही, क्योंकि खासम खास दिन है, कुछ शेर व शायरी भी होगी भाई बिल्कुल। साथ ही में आप लोगों के लिए अपडेट्स हैं मेरे पास और फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट के हवाले से हम गेम की तरफ भी बढ़ेंगे, जहां पर तीन कदम जो है उसमें सवाल जवाब होने हैं, आपके जवाब मेरे सवाल, जो कि बहुत आसान होते हैं। जाहिर बात है परेशान तो आपको करते ही करते हैं कहीं ना कहीं से, बट फिर भी उम्मीद ये है कि उनके जवाब जो है मुझे मिल जाएंगे पूरे तरीके से। तो भाई कुछ और भी है मेरे पास आज, अब्बा जी के लिए बहुत कुछ है बात करने के लिए, पूरी जिंदगी कम है। जिनके वालिदैन हयात हैं, जिनके वालिद साहब हयात हैं, वो वाकई इस बात का मतलब किसी तरीके से भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करने की कोशिश करें, उनके पास बैठिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि जब एक बार खुदा न खास्ता ये दरवाज़ा बंद हो जाता है ना मिलने मिलाने का, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर जिंदगी भर सोच ही सोच और अफसोस ही अफसोस रह जाता है। तो आइए जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और पहले कॉलर का भी इस्तकबाल करते हैं और जानते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
1: वालेकुम अस्सलाम सरवर भाई, क्या हाल है? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, और आप कैसे हैं और कौन है हमारे साथ?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबशर मुबीन बात कर रहा हूँ।
0: मुबशर भाई अहलन वसहलन, कैसे हैं मुबशर भाई, कैसा रहा वीकेंड और आज का दिन अभी तक का?
1: अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत अच्छा रहा और वीकेंड तो हमारा नहीं था क्योंकि हम खुशियां बांट रहे थे।
0: मेरा भाई यार ये जो तसल्ली होती है ना सुन के, जब मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच जाती है और दिल से दिल जुड़ जाता है, तो भाई ये वाकई ये मोहब्बत से नवाजना है आप लोगों का। मुबशर भाई दिल खुश कर दिया आपने, दिन बना दिया आज मेरा यार खासम खास।
1: जी।
0: क्या बात है भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे,
1: सेहतियाब रखे।
0: मेरा वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा और अपनी जो जो कहना चाहिए काम थे मेरे जो मैंने पूरे करे अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनों से मिले भी और सेट रहा, अल्लाह का शुक्र है सेट रहा और वापसी हुई।
1: आप कबीर भाई की तरह सारा टाइम हॉल में तो नहीं गुजार देते बैठ के?
0: नहीं नहीं मैं देखिए कुछ बीमारियां हमारी एक सी हैं और मगर कुछ ऐसी मैं तो बीमारी कहता हूँ
1: खाने के अलावा
0: इसी तरीके से जैसे मेरे खाने से उनका खाना मैच नहीं होता, उनकी एक दो चीजें ऐसी मेरी मैच नहीं होती, हमारी उनकी, बाकी आप कह सकते हैं कि 70-75% जो है हमारा जहन जो है वो भाई काफी मैच खाता है और एक दूसरे का दिमाग भी खाता है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई आज खासम खास दिन है, अब्बा जी के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, क्या कहना है आपका, याद करते हैं अब्बा को, अब्बा आपके हयात हैं इंशाल्लाह।
1: सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब मगफिरत फरमा गए हैं।

0: ताला गरीब ने मत करे, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए।
1: ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं इस बात को।
0: तो
1: अभी बस मैंने इसीलिए मैंने आपको कॉल कर ली, मैंने बोला चले शुरू हम ही कर लेते हैं, अच्छे से शुरू कर लेते हैं, तो बाकी भी कॉल करते रहेंगे।
0: अहलन व सहलन मुबशर भाई, तो कैसा रिश्ता था आपका अब्बा जी से, मतलब एक दोस्ताना या थोड़ा लिहाज वाला? दो तरीके के होते हैं ना, कुछ अब्बा होते हैं बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ, कुछ होते हैं थोड़े लिहाज वाले होते हैं। मेरे साथ मुझे सुन रहे होंगे, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, बट फिर भी आपका कैसा रिश्ता था अब्बा के साथ?
1: असल में मेरा ये सीन था कि एक तो मैं घर में बड़ा बेटा हूँ, और उनका तो आपको पता है कि बस वो जो डंडा प्रोग्राम है वो तो चलता ही रहता है, लेकिन लेकिन उसको हम अभी अभी हम अगर सोचे तो उसको हम सबक कहते हैं कि भाई वो हमारे लिए
0: बिल्कुल हमारे लिए अच्छा सबक था भाई। सही सही बिल्कुल।
1: और वो बहुत अच्छा था, और उस सब ने तो एक मुझे वो ऐसी लाइन बना के खड़ा किया कि बस अब मैं बिल्कुल सीधा हूं, मुझे किसी की कोई टेंशन परेशानी नहीं है।
0: वाह वाह, क्या
1: तो इस चीज को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। और रही बात तो उनकी फ्रैंकनेस की मेरे साथ, तो वो भी बिल्कुल दोस्तों की तरह थी।
0: okay,
1: जो भी बात है okay. वो बिल्कुल नहीं थी इस तरह, हालांकि एक दो बार मेरे एक दो केस उनके सामने आ गए थे, लेकिन पास वो चुप करके साइड पे हो गए, उन्होंने बोला कि नहीं अभी ठीक है, हो जाएगा मसला, क्लियर हो जाएगा मसला, नहीं है इतना।
0: चलिए,
1: लेकिन दोनों तरफ से वो एक जैसे ही थे हमारे साथ, तो
0: दोनों तरफ से बैलेंस करके चलते थे। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और तमाम वालदेन की अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। और यही मेरा कहना है, मैंने बात यहीं से शुरू करी थी कि अगर अब्बा साथ हैं अम्मा साथ हैं, अल्लाह ताला दोनों को लंबी ज़िंदगी दे। अगर आप लोगों के साथ हैं, जो सुन रहे हैं, वो इस बात का ख्याल करें कि भाई जितना वक्त उनके साथ गुजर सकता है गुजारें, ये चीज़ ये टाइम वापस लौट के नहीं आता। मुबशर भाई के पास जैसे अब्बा की कमी है, हमारे पास अम्मा की कमी है, तो चीजें चलती रहती हैं, जिंदगी गुजरती रहती है, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, बट जो सबक उन लोगों से हमने हासिल किया है वो पूरी जिंदगी याद रहता है, और उससे आपके जरिए से उनको याद किया जाता है। आपकी जो तरबियत है, जो तालीम है, जो आपसे उन लोगों से हम लोगों के अंदर आई है, यही एक बहुत बड़ा सबक है, और उनके लिए सवाब का भी मैं कहता हूँ जरिया बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो मुबशर भाई
1: जी बताएं।
0: मैं तो दूसरे सवाल की तरफ,
1: अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान भी गया हुआ था, और मेरे जो नाना जान थे वो भी, जब मैं इधर कतर मूव हुआ था उस टाइम पे वो भी पीछे से वफात पा गए थे। तो बस ये दो बंदे हैं जिनको मैंने अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ही कोई मिस किया है, इन दो को, तो बाकी तो
0: जाहिर है
1: लेकिन बस ये दो चीजें हैं,
0: जाहिर है, क्योंकि भाई वो अब्बा की जगह ही हैं। और मैं ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब से के साथ जितना वक्त गुजारा है उससे कहीं ज्यादा वक्त मैंने अपने दादा जान के साथ गुजारा है, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी शख्सियत में, मेरी लाइफ में, जितनी भी है टूटी फूटी छोटी, उनका बहुत ज्यादा हाथ रहा है, और उनके साथ बहुत मैंने वक्त गुजारा है। उनकी उम्र 92 की थी जब उनका इंतकाल हुआ, और अल्लाह ताला ने मुझे मेरे ऊपर रहम किया, मेरे वालिद ने मेरे ऊपर रहम किया कि उनके पास मुझे भेजा, पढ़ाई तो एक बहाना था, उनका ख्याल रखना भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, और जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनकी बहुत खिदमत करी, जिसका मुझे बहुत सुकून होता है, बड़ा सुकून मिलता है उस चीज से मुझे कि मुझे ये मौका अल्लाह ताला ने दिया और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुबशर भाई, दिन की शुरुआत, आज टॉपिक कुछ और ही था, बट क्योंकि खासम खास दिन हो गया आज ऐसा, तो भाई अब इससे ज्यादा बात आदमी क्या ही कर सकता है, तो फिर भी लगे हाथों एक छोटी सा सवाल और कर लेता हूँ कि सबसे कहना चाहिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम?
1: मैं तो सबसे पहले बहुत मुश्किल से उठता हूँ, मेरे से उठा ही नहीं जाता
0: यही काम मुश्किल है यही काम मुश्किल
1: है। दूसरी चीज ये है कि भाई हम अपना शेड्यूल चेक करते हैं अपने काम का, कभी अभी हमारा क्या शेड्यूल है, क्योंकि अभी NRUS की वजह से हमारी कुछ शेड्यूल है हमारे चेंज होते रहते हैं, कभी दो दिन बाद, कभी तीन दिन बाद, तो फिर बस उसके बाद सिंपल बस काम की तैयारी करो और बस काम पे।
0: क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बड़े ही अच्छे हैं आप, और जिस तरीके से बात करी पता चल जाता है भाई कि कितना आपके ऊपर वालदेन ने वक्त लगाया है और वो कितने कामयाब रहे हैं इसके अंदर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखिए, और जो आपकी ड्यूटी है उसमें एक वादा जरूर कीजिए कि पानी शानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, है ना मुबशर भाई? बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे साथ जुड़ने के लिए, ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये थे मुबशिर भाई। आप भी अपने दिल का इजहार, अपने एहसासात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं सन एंड साउंड पे, जहां पे बातचीत हो रही है कि भाई आज खासम खास दिन जो है अब्बा जी के हवाले से, और सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना पसंद करते हैं, ये भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखते हैं कि कौन है अब हमारे साथ अगले कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: अहलेल अहलेल, क्या बात है भाई, हमारे साथ खादिम भाई जुड़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का करम है साहब, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं सरवर भाई?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है हम सभी के ऊपर, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए यही उम्मीद है और इसी की दुआ भी है। कादिम भाई, आज हम बात कर रहे हैं जिस हवाले से, उसके ऊपर आपका क्या कहना है मैं जिक्र कर देता हूँ। आज जैसे कि फादर्स डे दुनिया भर में मनाया जा रहा है, तो एक तो यही जानना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब का कितना हाथ रहा है आपकी तरबियत में, और उनसे आपने क्या सीखा है, और क्या उनका नेचर था आपके साथ, थोड़े सख्त वाले थे या थोड़े एंटरटेनमेंट और कहना चाहिए आसानी वाले थे?
1: सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आज सुबह, वैसे मुझे नहीं मालूम था, मुझे याद ही नहीं था, और मेरे बड़े बेटे ने मुझे एक मैसेज भेजा,
0: पता चला होगा एग्जैक्टली,
1: तो उसने मुझे ये मैसेज, कल मुझे मालूम था कि कल, यानी कल मुझे मालूम था, मैंने पढ़ा था कि कल
0: होने वाला है,
1: ये है फादर डे है। हाँ, तो सुबह नमाज पढ़ के जब उठा मैं, सुबह जल्दी उठ के जब नमाज पढ़ के आया, देखा तो बेटे ने मैसेज किया था और बेटी ने भी मैसेज किया था उसके साथ ऐसे, तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, आज याद आया मुझे फादर डे। अपने वालिद अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, वो माशाल्लाह 103 साल की उम्र में उनके इंतकाल हो गए,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: और मैं कहता हूँ कि 103 साल, लास्ट टाइम उनको 3 बार हार्ट अटैक हुआ था, और जब भी चौथी बार उसको हार्ट अटैक हुआ, तो वो उससे फिर वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा वो खराब हो गए, एकदम ऐसे हो गए कि बातचीत कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो वो लास्ट सॉरी वो लास्ट टाइम तक वो कुरान पाक की पैर चश्मे के करता था।
0: माशाल्लाह,
1: गन्ना जो है, गन्ने को हम लोग ऐसे चूसते हैं तो वो हमारे दांत, तो मेरे अपने दांत भी ऐसे टूटे हुए हैं, लेकिन उनके दांत माशाल्लाह बिल्कुल बराबर थे, ये मैं बताऊं।
0: क्या बात है।
1: और इतने शफीक इंसान थे, इतने मोहब्बत वाले इंसान थे माशाल्लाह,
0: कबूल फरमाए,
1: सख्त बहुत थे लेकिन मोहब्बत करने वाला रहमदिल इंसान बहुत ज्यादा।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: और हमेशा सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, दूसरे के बच्चों को भी, हर जो भी बंदा देखता था वो उसको नसीहत करते थे। एक वाकया मुझे याद आ रहा है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: हम गाड़ी में बैठे हुए थे, एक गाड़ी में बैठे हुए थे सुबह, हम स्कूल में जा रहे थे, वो हमारे साथ किसी काम के सिलसिले में बाजार जा रहे थे, तो गाड़ी में एक छोटा लड़का था, दो लड़के थे, उसने पुराने जमाने में VCR किराए पे लेके आते थे, और वो फिर तो वो टीवी और VCR ऐसे रखे, तो वो उसने वो बच्चों से पूछा कि ये क्या है, बोले कि ये टीवी है और ये VCR, बोले ये किस लिए लाया, क्यों लाया, तुम लोग पढ़ते नहीं, वो शुरू हो गए उसके साथ। जब भी वो शुरू हो गए तो उधर एक दूसरा वो भी बुजुर्ग आदमी थे, वो उसने पूछा उससे कि आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार है क्या, क्यों आप इसको, बोलते नहीं ये सारे हमारे बच्चे हैं, अगर हम नहीं बताएंगे कौन बताएगा। ये बात मुझे याद आ रही है,
0: माशरे की भी इतनी फिक्र करते थे आसपास के लोगों की भी। क्या बात है यार, क्या बात है, ऐसे लोग नहीं रहे भाई, अब वाकई ऐसे लोग नहीं रहे, हम ऐसे नहीं रहे भाई।
1: अभी अभी ऐसे है ना सरवर भाई की आंखों पे हाथ रख के ऐसे ना, वो कहते हैं ना कि पट्टी लगा के ऐसे तो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी की बिल्कुल परवाही नहीं करते। वो माशाल्लाह माशरे में उसने कभी भी, अगर दो बंदे आपस में, दो भाई या दो पड़ोसी जो भी आपस में अगर कुछ तू मैं हुई, तो शाम के मगरिब के नमाज के बाद वो सीधा उसके घर जाते थे और उसको बोलता कि यह बात अच्छी नहीं है, या आप गलत हो या ये गलत हो, ये सब वो सुलह कराते थे। वो हमारे इलाके में मशहूर थे उसके लिए। मैं सिर्फ ये नहीं कि उसकी तारीफ कर रहा हूँ, वो माशाल्लाह इन ये बातों के लिए बहुत मशहूर थे। दूसरी बात, पॉलिटिकली वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव थे लास्ट टाइम तक, बहुत यानी लास्ट टाइम तक, और उनसे हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्टोरियां, कहानी, यह सब ऐसे सुनी है कि आज भी अगर हम अपने बच्चों, हमारे बच्चे भी उनके साथ बैठ के उनसे पूछते थे, वो पुराने जमाने के कि क्या ऐसे अंग्रेज कैसे गए, क्या हुआ कैसे, ये पूरा हिस्ट्री
0: गांधी जी, ये बच्चों के अंदर होता है। जब हम भी छोटे थे तो मैं भी दादा दादी के पास वक्त गुजारता था तो पूछता था कि भाई 47 में क्या हुआ था और कैसे हुई थी चीजें, क्योंकि वो उस वक्त आया थे और वो उस चीज से गुजर रहे थे। तो ये होता
1: है। बिल्कुल। एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि गांधी जी जब पेशावर आते थे तो हमारे बाबा उस टाइम जवान थे तो वो उससे जरूर मिलते थे, वो उसने देखे थे गांधी जी को। ये एक तो जब वो बात करते रहते हैं तो हम लोगों जब बैठ के ना खामोश बैठ के तो ऐसे लगता था कि वो टाइम हम लोग खुद देख रहे हैं, जैसे कोई लाइव मैच देख रहे हैं।
0: एग्जैक्टली, जो एक बताने का तरीका होता था वो भी तो अब कम हो गया है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। अगर कोई किस्से का जिक्र कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो भाई वो भी शॉर्ट में, अब वो वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना शऊर भी नहीं है और कहना चाहिए इतना अच्छा कलाम करने की का तरीका भी नहीं है और आदत भी नहीं है, एक ये भी वजह है।
1: जी जी बिल्कुल। और एक और चीज के अखबार, सुबह कि अखबार हर रोज अखबार उसके लिए हम लोग लेकर के आते थे, अखबार पढ़ते थे पूरा अखबार हम लोग,
0: और बैठ के बैठ के उनसे सुनते भी थे, क्योंकि टाइम भी बच जाता था कि भाई आप जरा सा हमें बता दें या जोर से पढ़ दें, ये भी होता था एक तरीका, ये भी होता था।
1: ये बातें वालिद मुहतरम की ये मैं अभी भी याद, हमारे बच्चे भी याद करते हैं, और रेडियो बहुत शौक से सुनते थे और वो शौक हम लोगों में बहुत ज्यादा है कि वही शौक, मैं मुझे रेडियो की बेइंतहा शौक है, मैं रेडियो बचपन से बिल्कुल उनसे आया। पढ़ाने में वो उसने बिल्कुल एक दिन भी स्कूल में नहीं गया, लेकिन उनको इंग्लिश भी मालूम थी, उनको उर्दू भी बहुत बच्चे अच्छी तरीके से, वो पढ़ते भी अच्छे तरीके से थे, पढ़ाते भी अच्छे तरीके से, लेकिन वो एक दिन भी स्कूल में नहीं गया। लेकिन मेहनत उसने इतनी की, इतनी मेहनत की उसने बच्चों पे, अपने जो इलाके के बच्चों के ऊपर एक स्कूल उधर, उसने इतनी कोशिश की कि एक हाई स्कूल उधर, फिर वो सेकेंडरी को कर दिया उसको। इन्हें वो पॉलिटिकली आपको बताया कि इतने असर रसूख थे उनके कि वो कर सकते थे।
0: और ये बहरहाल इस चीज में रहने की नीयत ये भी थी कि खिदमत खल्क, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सके, ये भी तो नीयत हुआ करती थी ना लोगों की पहले। बहरहाल अल्लाह ताला भाई उनको गरीक रहमत करे, उनकी मफरत फरमाए, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। क्या इसमें ग्रामी था उनका खादिम भाई?
1: सैयद अनवर,
0: अल्लाह ताला मफरत,
1: सैयद अनवर जी जी। अच्छा वो उसके वो एक चीज और के वो वालिद साहब ने हमारे साथ इतनी वो मेहनत, और वो नहीं कि हमारे भाइयों ने जितनी, कि भाइयों ने हमें अपने बाप से भी ज्यादा प्यार दिया, और बड़े भाई थे जो भी थे वो हमें इतना प्यार दिया हुआ है कि वो हम ये आज भी ये सबको कहते हैं कि वालिद का प्यार और वो भाइयों का प्यार मिलके ये इतना ज्यादा हो गया कि माशाल्लाह
0: किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी। वाह वाह वा,
1: नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल नहीं। और बाबा की ये एक ख्वाहिश थी कि वो आपसे उस दिन भी शेयर किया था कि ज्वाइंट फैमिली के, ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे और उनके आने वाली नस्लें जो एक ही घर में रहें और एक साथ रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिश अल्लाह पाक ने पूरी की है। बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत
0: नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात करी एज यूजुअल, और यही दुआ है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी आप वही रोल अदा करें जो आपके अब्बा ने अदा किया, और आप करते हैं मुझे पूरी उम्मीद भी।
1: आमीन आमीन,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी जी
1: सरवर भाई, ये एक बात कि मैं कभी भी या किसी आपका जो टॉपिक होता है या कोई प्रोग्राम का मौजूद जो होता है उसके लिए ये नहीं कि मैं तैयारी करके आया हूँ या कुछ,
0: आई नो
1: आप मौजूद ऐसे आज ऐसे मौजू छेड़ते हैं, माशाल्लाह ऐसे मौजू लेकर के आते हैं, तो उस पे बात करना हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा।
0: अल्लाह ताला
1: हम इतने वो नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं
0: है, मालूमात
1: भी नहीं है, लेकिन
0: आपसे हम सीख रहे हैं खादिम भाई, बहुत चीजें।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका सरवर
0: भाई, अहलन वसहलन सर, थैंक यू सो मच।
1: आपको भी खुश रखिए, और FM 107 के जितने भी सुनने वाले हैं, इनके वालिदैन को अगर जो हयात है उन सबको अल्लाह पाक सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए, और जो हयात नहीं है अल्लाह पाक माफ़रत
0: नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो जनाब बात हो रही है आज अब्बा जी के हवाले से, और क्यों ना भी हो, खासम खास आज दिन, और जाहिर बात है इंसान को एक बहाना चाहिए होता है अपनों से कनेक्ट होने का, तो क्यों ना हो फिर आज के दिन को हम भी क्यों ना उस तरीके से इस्तेमाल करें, और क्यों ना उनको याद करें, और क्यों ना अपनी खुशी और अपनी मोहब्बत का इजहार करें उनके हुजूर जाकर। आज ये खास दिन है तो जरूर

0: को मनाइए भी और उनसे बातचीत करिए और उनको बताइए कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम सरवर भाई, कैसे हो? ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ?
1: यूसुफ खान।
0: यूसुफ भाई, अहलन व सहलन, कैसे हैं यूसुफ भाई, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आप कैसे हो? ठीक हूं,
0: मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तबीयत भी ठीक है सर, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आपका अभी तक का दिन यूसुफ भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो सबको जो है ना, जिसकी भी अब्बा जिंदा है अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी दी, और जिसके अब भी चले जाएंगे अल्लाह उनकी मौफिरत नसीब फरमाए।
0: आमीन आमीन।
1: और सबसे पहले भाई ने बहुत जबरदस्त बातें बताई है, सबके वालिद साहब सब जितनी भी है सब यही चाहते हैं कि मेरे औलाद मेरे बच्चे अच्छे से अच्छी जिंदगी अच्छे से अच्छी तरबियत हासिल करें। यही तो सबसे पहली बात है, बाप की तो यही खूबी होती है।
0: सही, और ये फिक्र भी होती है।
1: लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि बाप की जो नक्शे कदम पे उस पे चलने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वो भाई की बात वो हमने सुनी थी तो बहुत अच्छा लगा हमको, इसी तरह हमारी भी वालिद साहब गुजर गए है,
0: अल्लाह ताला मग़फ़िरत।
1: तो जैसे उसको बच्चे ने मैसेज किया था तो सुबह मुझे भी ऐसा
0: क्या बात है। हाँ, ये अब क्योंकि उस कहना चाहिए एज में अब हम लोग भी हैं भाई, और ये बड़ी खूबसूरत बात भी है, और जाहिर है उनकी याद भी है कहीं ना कहीं जो चले गए हैं, बट आगे की फिक्र वही जैसे हम बात करते हैं कि अब हमें वो जिम्मेदारी उठानी है इंशाल्लाह ताला। और जो अभी तक अपने आप को बच्चा समझ रहे हैं और बच्चे हैं भी भाई, तो खूब मजे लीजिए, हमारा यही कहना है, खूब मजे लीजिए और अब्बा के साथ और अम्मा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त भी गुजारिए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह अब्बू के साथ जिस तरह वक्त गुजारे वो तो हमको महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये हमारा अब्बू है, कसम से हम तो सोच रहे थे कि हमारा दोस्त है।
0: क्या बात है यार, ये वाह भाई, मैं इसमें खुश, मैं बता दूं दूसरे लिसनर्स भी हमारे साथ होंगे, खुश हो रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे भी अब्बा ऐसे रहे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ सख्त हैं, हाँ उतने सख्त भी ना हो, क्योंकि मालूम है फिर कि भाई सूखी लकड़ी के साथ क्या होता है, माजरत के साथ, बट इतना इतनी गुंजाइश होनी चाहिए।
1: पता था कि जब वो दूसरे मोड पे आ जाते हैं तो उसको फिर हम जानते थे वो क्या करते
0: हैं। एग्जैक्टली, आप बराबरी का भी रख सकते हैं।
1: लेकिन जिस तरह वो हमको तरबियत जिस तरह दे रहा था ना, उसने कभी डंडा कभी गुस्सा नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी हासिल किया, तिलावत कुरान भी पढ़ाया, सब कुछ हमसे ले लिया, लेकिन बगैर डांट बगैर डंडे का, क्योंकि उसमें इतना कशिश था, इतना प्यार मोहब्बत था ना कि वो
0: नहीं। यूनिस भाई देखिए, इसके अंदर एक मसला ये भी आ जाता है, बात लंबी हो जाएगी, आप इस लायक होंगे ही नहीं कि आप पे डंडा उठाया जाए। एक्चुअली ये भी होता है ना, अब जैसे मैं हर इस लायक था कि मुझ पे डंडा उठाया जाए, डंडे से काम लिया जाता था। अब आप इतने माशाल्लाह शरीफ, और ये बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि हम कितना परेशान कर रहे हैं।
1: जब बाप को परेशान करते हैं तो डंडा लेकिन हमारा अब तो अल्लाह का शुक्र है, तो हम भी इस तरह जिस तरह अबू ने किया इस तरह हम भी अपने बच्चों के साथ करें, बच्ची भी ताबेदार है, जैसा आप करेंगे बाप के साथ वैसे आपके साथ बच्चे करेगा फिर।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि जो आपका अपने बाप के साथ जो गुजरा हुआ जिंदगी आप देखेंगे ना, तो जैसा आपने किया उस तरह उसके साथ आपके साथ भी अपने बच्चे करेंगे फिर।
0: सही।
1: लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस सुबह की जो बात हुई थी
0: जी
1: सरवर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठ के नमाज के बाद आधा पारा तकरीबन निकलते हैं,
0: अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे भाई।
1: तो यही हमारा रूटीन है, मुसलमान का तो यही रूटीन होता है,
0: अल्लाह ताला।
1: और बाकी जो बात है तो अल्लाह साहब के अब्बू को लंबी जिंदगी दी, जिसकी भी अब्बू जिंदा है, जिसकी भी जिसके जा चुके हैं उनको माफ़िरत नसीब फरमाए, अल्लाह आपको भी खुश रखे, हमारी निस्बत को भी खुश रखे, सबको दुआ
0: सलाम। भाई बहुत अच्छी बात है यूनुस भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू भाई,
0: मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो खातिन हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज खासम खास दिन भी है, और जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि ये तो हमारे ऊपर बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम भाई कितनी बात कितनी टाइम में सुन रहे हैं। और मेरी तो हालत कभी कभार ऐसी भी हुई जो बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मेरे ऊपर तो दादा अब्बा जो हैं वो लेट जाया करते थे ताकि मेरे ऊपर जो डंडे बरस रहे हैं वो कहीं ना कहीं से कम हो जाएं, उनकी शिद्दत जो मेरे ऊपर मेरी पीठ के ऊपर जो निशान छप रहे हैं वो कहीं ना कहीं से कम हो जाए। तो भैया ये तो अब्बा का रसूख है, और फिलहाल आइए शो का करते हैं बाकायदा आगाज और सुनते हैं ये गाना, आयशा भोसले और आदित्य ना

नारायण यहाँ पर उदित नारायण के साहबजादे जो हैं रंगीला रे एंजॉय कीजिए ट्रैक सन एंड साउंड में सुखद सर्व मेरे साथ आपके साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
1: दोस्तों इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम और जरूरी नंबर है. हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें फौरन मदद की जरूरत पड़ती है.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: दोस्तों लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें. सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है. अल्लाह

0: देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
2: माहिरीन की राय पर।
1: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
2: हेल्थ गाइड,
1: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
2: इलाज और एहतियात तक।
1: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
2: दिल से देसी।
1: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: क्रिकेट हो
4: and he's hooked that away. That's four runs.
3: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
5: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की,
6: स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
7: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड
8: आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हर दम, वो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामन से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, और न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात कम नहीं कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। जी तो वेलकम बैक, हेलो एंड वेल एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द पापा, ऑल द बाबा, ऑल द अब्बू, अब्बू जी और सभी दादा जी को भी, भाई नाना जी को भी, क्यों नहीं, और बड़े भाई को भी। भाई वो भाई मौजूद हैं, भाई साहब मौजूद हैं जो के वालिद साहब के होने का फ़र्ज अदा करते हैं। कहीं अगर वालिद किसी के चले गए हैं, इस दुनिया से रवाना हो गए, तो ऐसे ऐसे भाई हैं जो वाकई बाप का फ़र्ज और हक अदा कर रहे हैं। तो आइए भाई जुड़ते हैं एक और कॉलर के साथ, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है हमारा 4434377, और मैसेज भी भेज सकते हैं ऑन द नंबर 6662107। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम सलाम जनाब, की हाल है?
3: हैप्पी फादर्स डे गाबा भाई।
9: सेम टू यू सरवर भाई, यार
3: क्या बात है,
9: सुनाया ना अभी।
3: ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से, क्या बात है। हर वक्त हम कहते हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि अम्मा का और अब्बा का कोई वो नहीं, बट कहीं ना कहीं हम अम्मा अम्मा अम्मा और अब्बा में कुछ ना कुछ तो फर्क कर ही देते हैं,
9: कर ही देते हैं। आपने वो खिलौनों का जिक्र किया ना सरवर भाई,
3: होए, क्या बात है भाई। पुराने सूट पहनता है, सुनिए, पुराने सूट पहनता है कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, ना जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से।
9: माँ से, वाह जी वाह सरवर भाई, यार आपकी सूटों वाली बात पे तो मैं अभी मोहर लगाता हूँ।
3: वाकई यार हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। देखिए, और माजरत के साथ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बेटियां तो सर का ताज होती हैं अब्बा के, बट ये जो मैंने अभी शायरी करी है जिन साहब की भी है, मैं शायर का नाम भी बता देता हूँ, ये मेरी बिल्कुल भी नहीं है, ये है साहब ताहिर शहीर साहब, और वो कहीं ना कहीं लड़कों से ज्यादा, लड़के ज्यादा रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों से। और होता भी यही है ना कि लड़कों में, मतलब बेटों में और अब्बा में

0: वो बात नहीं आ पाती जो बेटी और अब्बा में आती है। सही कह रहा हूँ बाबा भाई?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: कहीं ना कहीं लिहाज के चक्कर में हम रह जाते हैं पीछे थोड़ा बहुत,
1: हाथ हल्का रह जाता है,
0: हाथ हल्का रह जाता है। तो गावा भाई, पहले तो कैसा रहा वीकेंड भाई? सब ऑल ओके, ऑल सेट?
1: वीकेंड एज यूजुअल, हाँ जी, ओके रिपोर्ट सर।
0: ओके रिपोर्ट। और आज का दिन अभी तक का कैसा रहा, कैसा गुजरा? और अब बच्चों ने विश किया, बताया उनको? छोटे हैं तो छोटों को तो बताना पड़ता है, आजकल तो टीचर्स वगैरह भी सिखाई देते हैं, बताई देते हैं।
1: जी बिल्कुल सरवर भाई, देखिए मैं शुरू करता हूँ अपने फादर साहब से।
0: ओके
1: सरवर भाई, थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है यार, आज तक क्या अभी तक भी मेरे फादर ने ना एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं की हमारे साथ। हम दो ब्रदर हैं सर।
0: तो यार मैं देखिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, आप इस लायक हैं कि आपसे इतनी प्यार से बात करी जाए? मैं इस लायक था ही नहीं कि मुझसे प्यार से बात करी जाए, या लठी या थप्पड़ ला लगाया जाए। एक्चुअली ओके कंटिन्यू,
1: हरियाणे वाला था सर।
0: चलिए आप अपनी बात पूरी करिए। ओके ओके
1: जी, तो सरवर भाई क्या है, आजकल तो हम लोगों को अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है ना, भी आप गलत ट्रैक पे मत जाना, ये चीज का ये नुकसान होगा। यकीन मानिए, फादर से बचपन में कोई कन्वर्सेशन हुई नहीं।

0: दालान में या फर्श पे घिसते घिसते उसके आगे शार्प हो जाता बहुत, वो तीर जैसे हो जाते हैं उसकी जो सीखे हैं, समझ रहे हैं। तो अब्बा कोई हरकत कर रहे थे बारिश में नहाने वगैरह का कि जो सुन नहीं रहे थे, तो खाल सॉफ्ट हो जाती है बारिश में वैसी, तो दादी ने वो खींच के मारी और भाई वो गड़ गई पेट में।
1: उसके निशान इतने पड़ते हैं ना सरोवर भाई, जैसे तारों के निशान पड़ जाते हैं ना।
0: तो भैया हमारे तो खून में है लठ और थप्पड़ और सारी चीजें, तो हम क्यों ना पिटते, हमें तो फख्र है इस बात पे कि हम पिटे हैं।
1: जी सरोवर भाई, हमारे ना वहाँ पे प्यार से पापा को बोलते हैं बापू।
0: बापू जी जी बिल्कुल
1: जी। तो यकीन मानिए सर, मेरे फादर साहब ने बापू ने, मैं सिंपल बोलता हूँ, 18 साल एक ही डिपार्टमेंट में जॉब की है पंजाब में जी।
0: ओके ओके समझ सकता हूँ मैं जी।
1: तो उनसे सर एक बात मेरे को सीखने को ये मिली है भी, आपने कभी भी जिंदगी में सर रिश्वत नहीं लेनी।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात, बिल्कुल
1: जी। क्योंकि सर जो उनकी पोजीशन थी ना वो हाई लेवल की नहीं थी, बिल्कुल जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है ना उस लेवल पे जॉब किया उन्होंने, नॉर्मल लेवल पे। तो हम लोगों ने सर बहुत बोला उनको, बहुत कोशिश की भी, सभी अपना अपना कर रहे हैं सिस्टम, आप भी देखो ना अपने घर की तरफ। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी मेरी मदर को, भाई चलो मैं मान लो आज रिश्वत ले लेता हूँ, कल ले लेता हूँ, तो आने वाले समय में अगर वही मेरे बच्चों के ऊपर निकल जाए तो फिर क्या होगा।
0: क्या बात है क्या बात है गाबा भाई, बिल्कुल सही बिल्कुल सही है ये सोच, और ऐसी सोच रखना ये अपने आप में एक रहमत है वाकई वाकई साहब।
1: सरवर भाई यकीन मानिए, आप भी आप आज भी उनका सुबह देखेंगे ना नेचर, सर उनका क्या सुबह है, जब शाम होती है ना तो उन्होंने अपना सामान सुमून सारा सिस्टम लेके कमरे में बैठ जाना है जी। फिर उसके बाद में वो खबरें सुनते हैं मोबाइल पे, और जो पुराने गाने हैं ना सर 70s 80s के बॉलीवुड के, उनको उन गानों का बहुत ज्यादा शौक है।
0: ओके ओके, रेडियो सुनते हैं?
1: रेडियो सुनते थे पहले, अभी नहीं सुनते सर।
0: ओके
1: क्योंकि अभी मोबाइल में ही उनको सारा सिस्टम मिल जाता है।
0: ये बात भी सही है ये बात भी सही है। तो मतलब क्योंकि मोबाइल अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, वरना काफी बताना भी पड़ता है जो थोड़े से एजेड हैं, अम्मा अब्बा वो मेरी बात समझ रहे होंगे, तो जरा सिखाना भी पड़ता है कि नहीं ऐसे नहीं डैडी, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, थोड़ा करना पड़ता है।
1: पहले सिखाया सरवर भाई, बिल्कुल सिखाया है पहले, उनको नहीं पता था एंड्रॉइड का, इतने सारे फंक्शंस हैं, कुछ ओपन रह गया वो भी दिक्कत करता था पहले।
0: क्या बात है क्या बात है क्या बात।
1: उनका सरवर भाई एक ही नेचर है जो मैंने देखा है, अभी आए की खुशी नहीं और गए का गम नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, यही तरीका है और यही एक राज है उनका कि वो माशाल्लाह इतने कूल और काम नेचर के हैं कहना चाहिए। क्या बात
1: जी, बिल्कुल अभी भी उनको ना किसी के काम में दखलंदाजी करना पसंद है, तो उनके तो काम में कोई क्या ही करेगा जी।
0: इतनी गुंजाइश ही नहीं होती और इतनी चीजें जो डिस्कस ही नहीं करते अब्बा, तो जो होते हैं अपने आप ही चीजें सॉर्ट आउट करने की सोचते हैं, तो ये वाकई खासियत है। क्या बात है यार क्या बात है,
1: बिल्कुल सरवर भाई एक चीज और सीखी है उनसे।
0: जी जी जी जी
1: भाई, रात को आप 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, भी सुबह जल्दी सूरज चढ़ने से पहले ही उठना है, विदाउट अलार्म
0: टाइम पे उठना है, सेहत का ख्याल
1: ये भी चीज अपने अंदर भी है सर, ये खून में ही होती है, अगर आपकी फैमिली में है ना तो खून में ये चीज आगे से आगे चलती
0: नहीं, क्योंकि आप उस चीज में आप वो जो सिस्टम घर में चल रहा है आपको उसकी आदत है, और जब आदत हो जाती है तो फिर वो चीज कंटिन्यू रहती है। एक्चुअली भाई जब वो उठ गए हैं सुबह तो आप किसकी मजा लेके सो जाए घर के अंदर।
1: नहीं नहीं नहीं वो सीन में नहीं सर,
0: सख्ती के हवाले से नहीं कह रहा, डर के होता है, हमारे साथ ये था कि अब्बा उठ गए खड़े हो जाओ वरना भी मार पड़ेगी। तो एक चीज ही होती है जब एक सिस्टम घर में शुरू हो जाता हो, घर का सरबरा उठ गया है, तो अब भाई उनके लिए चाय है नाश्ता है, तो बर्तन की आवाज आएगी और समझ रहे ना घर में आना,
1: बिल्कुल वही बात करने वाला,
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली चीजें शुरू हो जाएंगी ना घर में, आवाजें आना ये वो, तो इससे एहसास भी हो जाता अम्मा अब्बा उठ गए चलो भाई राइट हो जाओ अब अपनी भी जगह देखो। क्या बात है यार क्या बात है,
1: बिल्कुल सरवर भाई सुबह चाय के बर्तनों की आवाज इतनी होती है ना, क्योंकि वो खुद ही बनाते हैं ना चाय,
0: एग्जैक्टली,
1: और उन्होंने सुबह चाय के साथ बासी रोटी खानी है जो रात भर
0: बात है यार क्या बात है। और मैंने तो कितनी बार ऐसा देखा है मतलब कि बिना किसी को डिस्टर्ब करे अब सुबह उनकी आंख खुल, क्योंकि क्या हुआ कि पूरी जिंदगी ड्यूटी की आदत होती है माशाल्लाह, तो सुबह उठने की आदत उसके अंदर है ही है, तो वो खुद सुबह उठ जाना, हमारे यहाँ तो क्योंकि पहले नमाज अदा होती है तो थोड़ी देर आराम कर लिया जाता है और उसके बाद वही 6:30-7 बजे एकदम अपने राइट। तो अब क्योंकि दूसरे लोग सो रहे हैं तो बिना किसी को जगाए खुद गए किचन में, खुद चाय बनाई और अपना नाश्ता वगैरह करना शुरू कर दिया, तो हमने ये भी बहुत बार देखा भाई उनको करते हुए।

0: जी। और सर्वर भाई लास्ट में बस यही बात कह के मैं कॉल काटूंगा
1: जी
0: कि अपने माता पिता का हाथ पकड़ के चलो, आपको लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत।
1: वाह भाई क्या कहने यार, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी फादर्स डे आपको, और खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ गाबा भाई। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिए भाई। थैंक यू सो मच। तो भाई क्या क्या बात हो रही है आज अब्बा जी के हवाले से, और क्यों ना भी हो, आज खासम खास दिन है, आज फादर्स डे है, और सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी ही खुशी का दिन भी है भाई, और क्यों ना भी हो। एक ऐसी शख्सियत जो पूरी जिंदगी है हमें बनाने में और बनाने के लिए गुजार देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो,
1: हाँ अस्सलाम वालेकुम। नथू जी, क्या बात है भाई। हाँ हाँ, क्या कहना, तो आज कॉल देखिए लग गई आपकी और सही वक्त पे उठा भी नहीं।
2: मैं आज तो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना अंगूठा हटाया नहीं फोन से,
1: इसलिए हंसी आ रही है।
2: अरे सरोज भाई क्या सोच रही है, फोन बंद है।
1: नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, और बड़ा अच्छा लगा। अगर कोई एक्चुअली यूजुअली ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी है, ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हंसी रहा होता हूँ, और जब मैं इधर से हंस रहा हूँ और उधर से भी कोई हंस रहा है, तो फिर बाजीगर वाला वो शॉट याद आ जाता है। याद है आपको जॉनी लीवर वाला, वो रिश्ते के लिए फोन आता है उधर भी तो यूजुअली वो वाला शॉट क्रिएट हो जाता है मेरे साथ। तो बहरहाल नथू जी क्या हाल चाल है, और उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत तंदुरुस्ती सब सेट,
2: सब कुछ बढ़िया है, ऊपर वाले की दवा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच, और हैप्पी फादर्स डे भाई आपको, बहुत बहुत मुबारक।
2: आपको भी मुबारक।
1: तो कुछ ऐसा जो शेयर करना चाहते हैं खुद के हवाले से भी, और अब्बा के हवाले से भी, और अब्बा की जगह दादाजी के भी हवाले से, मैं तो चाहूंगा कि अगर बात कोई कर सकता है तो।
2: आपने तो भाई, आपको मालूम है थोड़ा मैं एज हूँ, 45 से ऊपर हूँ, तो मेरे को मालूम है उस समय अपने पापा की क्या आदत होती थी, और किसकी मजाल है बच्चे उसके सामने बोल जाए।
1: क्या बात है, सही।
2: एक एक मेरे को याद है, मैं जब 6th 7th में पढ़ता था,
1: ओके,
2: तो मेरा बड़ा भाई फर्स्ट आ गया,
1: ओके,
2: मेरे से एक क्लास आगे था, और
1: ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, ये लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आ गया।
2: सॉरी मैं बोल रहा हूँ, मैं हो गया फेल।
1: ओ वाह वाह वाह वाह, क्या शेर सुनाया ना तू भाई, वाह मजा आ गया। यार मतलब मेरे असल में कॉलर्स जो है ना, मेरी और आप लोगों की आदतें भी मिलती जुलती हैं एक्चुअली। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, जब कोई लिस्ट वगैरह देखने जाते थे ना, तो हमारे जो भाई बहन है वो कहते थे भैया नीचे से देखना शुरू करो, कम वक्त जाया होगा। हाँ, लिस्ट जो है नीचे से देखना शुरू करो तो टाइम बचा लोगे।
2: वो टाइम में नहीं होता था ना ऑनलाइन वाला लफड़ा,
1: एग्जैक्टली जाना पड़ता था। क्या बात है यार, ये तो बताओ भाई ने किया टॉप और आपने किया नीचे से टॉप, क्या बात है यार नत्थू भाई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए घर के अंदर ही, वाह वाह।
2: सुबह सुबह 10 बजे रिजल्ट सुना दिया, वो लोग सुना दिया स्कूल में, और मेरा भैया तो आगे भाग के आ गई फर्स्ट में, वो लोग फर्स्ट आए थे बताने के लिए।
1: यार मैं इमेजिन कर रहा हूँ यार, वो मैं वहां पहुंच गया हूँ असल में, इसलिए मुझे अच्छी सांस आ रही। मैं समझ गया हूँ यकीन जानी, बट फिर भी बताइए कि हुआ क्या, किस तरीके से ये बात हुई।
2: तो वहां से गया नहीं भैया के साथ में,
1: हाँ।
2: पीछे धीरे धीरे हाँ। पहले ऐसा नहीं था, हम लोग पड़ोसी के घर पे गए, उधर खाना खाया, मेरे को मालूम है घर पे जाएंगे खाना नहीं मिलेगा।
1: वाह वाह वाह यार नथू भाई, यार आप तो जबरदस्त निकले यार, क्या कहने। खा पी के
2: 4-5 बजे मेरे, हाँ। 4-5 बजे मेरे पापा जी आते थे उधर गांव में काम करने को जाते थे ना,
1: ओके।
2: तो अभी मेरे को मालूम था अभी क्या होने वाला है, तो पहले से तो तंदुरुस्त तो हो गया, नहीं तो आज खाना तो मिलने वाला नहीं है।
1: वाह वाह वाह, मजा आ गया यार, ये तो कहानी सुन के मजा आ गया, मूवी का शॉट हो गया यार, ये तो एक क्या बात है।
2: ये टाइम में आपको मालूम है जब ऐसी मुसीबत होती है माँ ही काम आती है, तो कोई काम नहीं होता
1: है। क्या
2: मैं चुपके से कमरे के अंदर चला गया, माँ के पीछे छुप गया, उधर जाके माँ को बोला बताना नहीं। उसने मेरे पापा जी आ गए, तो भैया ने तो बोल दिया, मैं फर्स्ट आ गया, बोला

0: वो किधर है
1: कहना है वो तो नहीं अच्छा और होता क्या है ये फर्स्ट वाले जो होते हैं घर में और सिबलिंग्स में भी इनका तो ठीक है आदमी खुश होता है सेलिब्रेट करता है मगर पहले फिक्र ये रहती है उसको लेके आओ भाई जरा सामने तो लाओ क्या करके आए हो इधर आओ
0: तो माँ ने बोला कुछ नहीं वो ठीक ठीक पास हो गया है।
1: अच्छा
0: तो चेहरा बता देता है ना क्या हो गया
1: है। हाँ, दायर,
0: फिर दायर। मेरे को याद है सरल भाई वो मतलब एक बड़ी सीख थी मेरे लिए। तो मेरे पापा ने मेरे को एक थप्पड़ मारा था सीधा नीचे जमीन पे गिर गया मालूम मगर वो थप्पड़ मेरे को कारगर हुआ आज उनकी

0: भाई देखिए सामीन, देखिए भाई क्या बात है, आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त और क्या सबक है यार, अब्बा के थप्पड़ ने जो दुनिया घुमा दी, और नत्थू भाई क्या कहने यार, फर्स्ट आए फिर अगले साल है
1: तो, हाँ जी जय, बहुत अच्छा। मगर मेरे पापा जी बहुत सलाह देते थे, वो यही बोलते थे खूब खूब कमाओ और खूब खाओ, कंजूसी मत करो।
0: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल।
1: और मैं तो यही अपने सब भाई लोगों से यही बोलता हूँ, अभी तो मेरे साथ में है नहीं वो, अगर जिसके है पापा उनका इज्जत करो और उनसे सीखो, बाद में कुछ भी नहीं मिलने वाला।
0: क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है भाई, मजा आ गया बात करके, और आपने ऐसे ऐसे कहना चाहिए किस्से जो याद दिलवा दिए मुझे भी, जो हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, बट भाई वाह,
1: नहीं मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा यार, क्योंकि मेरा इसी वजह से मैं सक्सेस हो गया सरोज भाई, सही
0: क्या बात है।
1: नहीं तो पहले शुरू में छोटा था, लापरवाह था।
0: एक डायलॉग याद आ गया, पता नहीं मेरे ख्याल में सुल्तान मूवी का था, जब सलमान खान की बेइज्जती हो जाती है, तो कुछ चीजें हम लोग बॉलीवुड से भी उठा लेते हैं। मैं ज्यादा फिल्मी नहीं हूँ, एक टाइम पे हुआ करता था, बट उनके अब्बा ने कहा था कि कई बार इज्जत कमान खातिर बेइज्जती करान पड़े सुल्तान, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इज्जत कमाने के लिए कई बार बेइज्जती करानी पड़ती है, जब ही आंखें खुलती हैं दिल जहन दिमाग खुलता है। तो आपके साथ भी यही हुआ, तो वो अब्बा ने जो एक रसीद किया है, जबकि अब्बा का था ये तो, बट क्या बात है यार, बहुत मजा है यार, ये तो बड़ा अच्छा हुआ आपने आज के दिन ये शेयर किया हमारे साथ, क्या बात है।
1: नहीं मैं इसी के लिए तो मैं मेरा बटन पे हाथ रख के हम लोग हंसे मजा करेंगे, थोड़ी पुरानी याद
0: आ अरे भाई मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम नत्थू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और आपको भी फादर से की बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू सो मच।
1: ओके ओके जी, धन्यवाद,
0: वेलकम वेलकम सर, वेलकम। तो भैया ये हो रहा है, आज याद करे जा रहे हैं किस्से बाकी, और क्यों ना याद करें हम लोग, क्योंकि हर तरह से ये दिन जो है खासम खास है, और अब्बा जी की यादों में है, दादा जी नाना जी की यादों में है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आने के बाद चर्चा जारी रहेगी, आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, और अपने मैसेजेस भी शेयर कर सकते हैं ऑन द नंबर 6662107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107
2: Time check. लीजिए साहब, बज गए 12 और 12 बज के सही 5 मिनट।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: हाँ जी बिल्कुल, सन एंड साउंड में इस वक्त सन तो जोरों शोरों पर और साउंड आपकी, और आज खासम खास दिन भी। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। जिन्होंने मैं अभी अभी कनेक्ट किया है तो आप सभी को बता दूं कि आप अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने किस्से, अपने कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन द नंबर 4434377। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज भेजने के लिए नंबर है 666-22107। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, और वालिद साहब की तरफ से ही है कि मुझको थकने नहीं देता ये मोहब्बत।

0: का पहाड़, इसी तरीके से है कुछ, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, ओए होए होए होए, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। अब आइए जुड़ते हैं एक और कॉलर के साथ, एक और अब्बा और बेटे के साथ। हेलो, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि
0: व बरकातुहू। अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
1: क्या हाल है सरवर भाई, खैरियत से?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या
1: मैं
0: है?
1: तो पहली बार फोन कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या नाम है भाई आपका?
1: और घबराहट सी भी हो रही है।
0: अरे नहीं, अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे पहले नाम बताइए अपना।
1: मेरा नाम अब्दुल रहमान है।
0: अब्दुल रहमान, घबराहट को अभी भगाता हूँ। देखिए अब्दुल रहमान भाई, कहाँ से हैं आप?
1: मैं एक्चुअली यमन से हूँ।
0: यमन से हैं? वाह,
1: और यार बहुत लंबी स्टोरी।
0: अच्छा अच्छा, मगर उर्दू साफ मैं समझ गया, जाहिर बात है। वालिद यमन से थे या वालदा?
1: वालिद यमन से है, वालदा भी यमन से थे, लेकिन इंडिया में पैदा हुए, इसलिए उर्दू माशाल्लाह साफ
0: है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यार आप तो क्यों लेट आए हैं भाई, आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था मेरे पास।
1: जब से सुनते रह रहा हूँ माशाल्लाह, अच्छे अच्छे कहानियां।
0: अच्छा,
1: तो मैंने बोला शुरुआत हम करेंगे हमारे जो अल्लाह ताला का हुकुम है, वक़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह व बिलवालिदैन इहसाना।
0: सही,
1: सुभान अल्लाह, ने कुरान में लिख दिया कि मेरी इबादत करो और मेरे इबादत के बाद अपने वालदैन की इताअत करो।
0: इताअत करो, बिल्कुल।
1: तो वालदैन का माशाल्लाह हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा दर्जा है।
0: बेशक बेशक है।
1: ये तो अभी फादर डे, मदर डे, लेबर डे, ये साल में एक बार बनता
0: है।
1: ये रिवाज यूरोपियन रिवाज है, हमारे पास तो अल्लाह का हुक्म है कि रोज तुम्हारा फादर डे है, रोज तुम्हारा मदर डे।
0: एक एक लम्हा, एक एक कदम,
1: एक एक सेकंड,
0: सही,
1: जन्नत के दरवाजे तुम्हारे सामने हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: जन्नत के जो जिसके माँ बाप जिंदा है उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं।
0: बेशक बेशक,
1: अगर किसी से कोताही भी हुई तो वो वापस आ सकता।
0: बेशक बेशक,
1: चांस है अल्लाह की तरफ से।
0: अब्दुल रहमान साहब,
1: जिनके माँ बाप इत्तेफाक के, अल्लाह उनको माफ करे, इंशाल्लाह अल्लाह उनको,
0: बिल्कुल अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। हैदराबाद में कहाँ से ताल्लुक है आपका?
1: हैदराबाद में बारकस।
0: मैंने देखिए पूछा भी नहीं कि आप कहाँ से, बात कर लेते समझ गया मेरा भाई हैदराबाद से बारकस। क्या बात है भाई। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप देर आए चलिए, मगर दुरुस्त आए, मगर अब ये वादा करना है आज के अब तशरीफ लाते रहेंगे। किस बात की झिझक यार? मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ, नाम जानते हैं?
1: आपका नाम सैफुर रहमान है ना?
0: नहीं चलिए, ये तो आपने मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दिया। सैफुर रहमान साहब हमारे सीनियर हैं।
1: सैफुर रहमान, मैं तो मालूम है सैफुर रहमान अलग है, लेकिन आप उनके पसंद
0: हैं ना? मैं उनका शागिर्द हूँ सर, मैं उनका शागिर्द हूँ, बिल्कुल मैं उनका शागिर्द हूँ। मेरा नाम सरवर मिर्जा है और एफएम 107 तो आप सुनते ही होंगे। कितना टाइम हो गया आपको कतर में?
1: पैदाइश है कि हमारी
0: माशाल्लाह, तो फिर तो आप
1: तिरपन साल हो गए।
0: बस बस बस, तो फिर आप माशाल्लाह एएम के टाइम से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी जी, बहुत पहले से।
0: क्या बात है, क्या बात है। चलिए साहब, तो इतने मतलब इतने टाइम में आपने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप कॉल कर रहे हैं, आज पहली बार कॉल किया है या पहले कभी कोई?
1: सुनते रहता, लेकिन
0: यार ये तो आपने यार कीर्तिमान स्थापित कर दिया, मुझे तमगा दे दिया आपने यार कि मैं आपको खींच लाया 53 साल बाद। क्या बात है भाई, और मोस्ट वेलकम, और बड़ा अच्छा लगा कि आपने, ये आपकी फैमिली है एफएम 107, हम सब एक फैमिली हैं। और जैसे कि आपने बताया कि देर आए दुरुस्त आए, और जब भी आए तो फिर अपना घर पाए और हमें पाए, और खाने में मैं खाता हूँ पाए, आपको मालूम है बारकस में वैसे भी अच्छे मिलते पाए। क्या बात है भाई, आपको भी की बहुत बहुत मुबारकबाद अब्दुलरहमान साहब, और इंशाल्लाह ताला आगे भी तशरीफ लाते रहिए, दुआओं में याद रखिए, सभी के वालदेन के लिए दुआ आपने जैसे करी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, और कुछ कहना चाहते हैं?
1: क्या शेयर करना, वही चाह रहा मेरे को, जब से हंसी आ रही, जब आप बोल रहे इतनी मार खाई कि हमारे पीठों पे वाला आए, तो हमारा भी किस्सा वही चीज़
0: है। हाय मेरा भाई, कैसा मेरे जैसा।
1: हमारा किस्सा तो वायर के साथ था, वायर
0: इलेक्ट्रिक वायर। ये जो वायर तो अब आ गए,
1: पहले सिंगल नहीं आते थे, चौबल आते थे, चार वायर आते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो जो मार हमको सेम हमको जो पड़ी थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई उस्ताद की,
1: अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़े हुए वो हमारे माँ बाप की मार की वजह से।
0: सही, और मैं इसके अंदर ये भी एक और क्रेडिट देना चाहूंगा, जितने हमारे उस्ताद हैं, जितने हमारे उस्ताद हैं, वो भी

0: पहला दहकता है ना, तो जब हम पैदा होते हैं तो ये दहकते रहते हैं, जब छोटे हो जाते हैं राख बन जाते हैं, इसलिए छोटे बहन भाई उनके सर पे बैठ के जैसे मिर्चियां पीसते बोलते ना, कि वो बेधड़क कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं होती पलटा के बोलने के लिए।
1: वाह वाह वाह वाह यार, मदर भाई क्या क्या बात कही है समझाने के हिसाब से, वाह वाह मजा आ गया यार, मजा आ गया, क्या कहने भाई। अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामत रखे, उनका साया खैरियत से आपके ऊपर बरकरार रखे, और हमें भी दुआओं में याद रखिए। और भाई सभी मदर भाई के साथ साथ सभी से गुजारिश है कि सब अगर याद रहे, और आज जब आप विश कर रहे हो और मेरी बात याद रह गई हो, तो मेरे लिए भी दुआ के लिए जरूर कह दीजिएगा, अम्मा अब्बा से भूलिएगा।
0: मैं तो सबसे कहूंगा कि अपनी दुआओं के अंदर बस वालिदैन को इस तरीके से शामिल करें कि देखो बचपन की जो चीज है वो तो हमें याद नहीं रहती कि वालिदैन ने हमारे साथ कितनी मोहब्बतें की है, चाहे वालिद हो चाहे वालदा हो, लेकिन दुआ जब हम करते हैं हाथ उठाते हुए तो एक मुख्तसर सी दुआ है कि रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बस ये दुआ कर लेते जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसके अंदर भी शुमार हो जाएंगे, हम उतने फरमा बरदार तो है नहीं वालिदैन के, बस अल्लाह बना दे बस।
1: हाँ बात है यार मदर भाई, क्या बात है यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा मैसेज भाई, अहलन व सहलन भाई, आपकुम थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह
0: हाफिज़,
1: अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो ये थे हमारे साथ मदर भाई, और बड़ा ही मजा आया भाई, आज बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनने समझने, मेरा बिल्कुल आज गेम खेलने का दिल ही नहीं हो रहा, और दिल कर रहा है बस कि ये बात करते चले जाएं, आपके एहसासात उनको सुनते चले जाएं, समझते चले जाएं, और ये चीज़ें शेयर करते रहें, और हमेशा हमेशा शेयर करते रहें। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
2: जी, कैसे
1: हैं
2: सर?
1: हेलो कोई जुड़ा है हमारे साथ, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है क्या? हेलो,
2: आज सुने सर कि आज
1: अरे आवाज आ रही है भैया, हेलो
2: हेलो,
1: आवाज आ रही है भाई, कौन?
2: हेलो
1: हेलो हेलो, कौन?
2: हेलो
1: अब आ रही है आवाज, आ रही है, कौन है भैया हमारे साथ?
2: जी कैसे हैं सर?
1: रमेश भाई यार, ये चीज तो इतनी, अब ये हमेशा होती रहेगी एक्चुअली, ये आवाज जो है ना, ये कनेक्शन हमारे बीच में आता रहेगा, अब एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है।
2: सही है सर, सही है, बिल्कुल सही।
1: कैसे मिजाज है, कैसे हैं, कैसा रहा वीकेंड, और कैसा रहा अभी तक का दिन?
2: बहुत अच्छा सर, सुपर। लेकिन आज जो टॉपिक आप छेड़े हैं ना,
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, दिल के तार छेड़ दिए हैं रमेश भाई, बहुत अच्छे अच्छे किस्से होंगे आपके पास, एक ऐसा शेयर करो जो खुद भी रिलेट करें हम अपने आप को, और दिल भी खुश हो जाए अब्बा के हवाले से।
2: चलिए ठीक है सर, जरूर शेयर करते हैं। सब नजर आते हैं एक आप ही नहीं।
1: हो आज भाई शायरी लेके आया मेरा, ओए ओए ओए, सब नजर आते हैं एक आप ही नहीं,
2: आज भी लगता है आप आओगे और पूछोगे ठीक है बेटा,
1: आए हाय हाय हाय हाय हाय,
2: पर अब ये शब्द कानों तक आते ही नहीं,
1: आए हाय हाय हाय हाय हाय,
2: जिंदगी में उलझने हैं पापा पास आप ही नहीं,
1: ओए हाय हाय हाय,
2: कोई नहीं है वो आकर बोले बेटा घबराना नहीं,
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या बात है क्या बात है,
2: मन करता है पहले के जैसे आपके घंटों बातें करूं, पर अब ये मेरी किस्मत यही नहीं,
1: क्या बात है भाई, क्या
2: जिंदा हो पापा फिर भी ये दिल सुखे दुखे रोता है, कोई नहीं है आपको पूछने वाला, खुद ही चुप होना पड़ता है, आज भी वो याद है लगता है कल ही की बात,
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, आपने तो भावुक कर दिया अपना रमेश भाई, और इस शायरी से समझ भी आया कि कितना आप याद करते हैं उनको, और अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बयान करना मुश्किल होता है, बट बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात करी और बड़ी अच्छी कहना चाहिए शायरी भी पढ़ी। कोई ऐसा किस्सा जो याद हो अपने से रिलेटेड, स्कूल एग्जाम मार उनकी, या कोई ऐसी सीख जो उन्होंने आपको दी हो?
2: हाँ सर जी, एक बार सर वो पढ़ने नहीं गया मैं, और रास्ते में वो कंचा होता है ना
1: जिसको देख के दिल ललचाए रहा ना जाए
2: वो कंचा और पीठ के ऊपर वो बस्ता वो आता था उसी को लेकर, उसमें स्लेट वगैरह वही रखा हुआ था, एक दो किताबें थी, तो रास्ते में छोटे छोटे सब सभी लोग थे उसी में, हम भी बैठ गए, स्कूल गए ही नहीं,

0: अब और पापा उधर से ड्यूटी से आ रहे थे,
1: इधर कंचे चल रहे
0: उसी समय
1: के ये मारांता
0: वो पीछे से ही भाई साहब ने पकड़ के बस्ता के साथ ही वो उठा लिए। अच्छा उठा लिए, उठाने
1: ऐसे ही मुर्गे की तरह साइकिल पे चलते हुए मुर्गे की तरह ठाकुर उठा लेते
0: और
1: शोले फिल्म शुरू हो गई, शोले शुरू हो गई शोले।
0: वास्तव में ना भाई साहब मेरा दोनों टांग पकड़ के उल्टा लटका दिए, लटका के थोड़ी देर पकड़े रहे वैसे ही, और मेरी मम्मी चिल्लाती रही लेकिन बोले नहीं चुपचाप रहो।
1: और उस दिन जो आप उल्टे हुए थे तो आज तक सीधे नहीं हो पा रहे
0: बात से तो फिर मरवानी स्कूल छूटा ही नहीं हाई स्कूल।
1: हाँ हाँ फिर तो अल्लाह से तौबा भाई, सर ऊपर पैर नीचे, ये इतने ये चीज आसान थोड़ी है। इंसान सोचता है कि दुनिया उल्टी हो जाएगी, भैया स्कूल निकल लो, कंचे वंचे तो फिर देखे जाएंगे जैसा भी होगा। मुझे याद है हमारे दादा ने हमारे ताया इसी तरीके का किस्सा था, तो मुझे याद आया मैं शेयर करूं। तो चारपाई होती है, उसके नीचे हाथ रखा भाई और बैठ गए, पूरी जिंदगी उनके निशान रहा। और वो दिन था कि उन्होंने कंचे छुए ही नहीं दोबारा।
0: अरे स्कूल में ना, स्कूल में जाते थे हम लोग, ऐसे ऐसे मास्टर थे सरवर जी की, मैं क्या बताऊं आपसे, मतलब अगर घड़ी खोल दिए वो तो समझ लीजिए कि क्लास खाली।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि घड़ी, अब घड़ी को नुकसान नहीं पड़ना है और नुकसान अब हमारे चेहरे पे होना है या हमारे जिस्म पे होना है, हमें ये समझ में, या तो घड़ी या स्लीव्स ऊपर करना। हमारे अल्लाह ताला हाँ मास्टरों को भाई, हमारे उस्तादों को अच्छा रखे। तो हमें याद है दो तीन बाहर से हरी संटी, संटी समझते ही होंगे सब, जो एक लचकदार लकड़ी होती है और हरी होती है बेहतरीन, आए हाय हाय, एक बार पड़ती है और ऐसी चिपकी रह जाती है मोहब्बत से वो बदन के ऊपर कि फिर छूटते छूटते टाइम लेती है और वो जो निशान होते हैं भाई, आए हाय हाय हाय।
0: घर जाने के बाद ना सरसों का तेल लगाया
1: सरसों का या नारियल का, दोनों ही काम आते थे भाई, नारियल का भी काम आता था भाई। वाह क्या बात है यार, क्या बात हो रही है और क्या क्या यादें हैं। वाकई अल्लाह ताला सब उस्तादों को भी अल्लाह ताला खैरियत से रखे, भाई वो भी किसी के वालिद हैं, मोहतरम हैं, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, यही दुआएं हैं। और बड़ी अच्छी बातें और बड़ा अच्छा लगा बात करके भी, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज खासम खास दिन था क्योंकि मुझे मैसेजेस वगैरह भी लेने हैं अभी और कॉल्स वगैरह भी हैं, तो आज हम तीन का दम जो है खेल ही नहीं रहे, अवॉइड ही कर रहा हूं मैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बात हो सके इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई, ख्याल रखिए और बहुत अच्छा लगा यार बात करके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, और देखिए ये फायदा होता है दीनी हवाले से नहीं, लाइटर नोट पे अगर हम बात करें तो ये जो दिन होते हैं वाकई ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हैं। और आजकल की बिजी लाइफ में, इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी वाली लाइफ में अगर हम कुछ बैठ के ये किस्से कहानियाँ सुन लें तो वो मोहब्बत, वो लिहाज, वो चीज़ दिन में दिल के अंदर या जहन में दोबारा से असर करती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: बिल्कुल ठीक हूँ हमजा
0: जी भाई, कैसे ठीक है?
1: आज नहीं कहने दिया मैंने, वही जिसका नाम आप अच्छे से लेते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमजा, कैसे हैं आप और कैसा रहा अभी तक का दिन?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी रोहित भाई के साथ एक गेम सा खेल रहे थे, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही तो मुझे थोड़ा सा याद आया, बल्ला वो अक्सर कबीर भाई करते हैं ना, हेलो छोटे ऐसा कर यार।
1: क्या बात है यार, और ये मोहब्बत है आप लोगों की कि आप लोग सुबह दोपहर शाम कनेक्टेड रहते हैं हम लोगों के साथ, तो हम लोगों की जो लगन है और हम लोग की जो मेहनत है भाई वो वसूल हो जाती है, ये आप लोग की मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो हमजा
0: मोहब्बत है भाई, मुस्कुराते आते हैं हमारे दिन को अच्छा कर देते हैं, आप कबीर भाई जैसे बताते हैं और हम लोगों का मीन्स के पूरे दिन हम लोग वैसे डिलीवरी का काम करते हैं ना, कुछ पहले ही बताया था
1: अल्लाह ताला,
0: तो हम लोग अपने मगन लगे होते हैं, तो हम लोगों का ये होता है कि जिस वक्त आएंगे अच्छा अब मूड फ्रेश हो गया, तो हमें फिर سکن کا احساس نہیں رہتا.
1: اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیاب رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور ہمیں بھی اسی طریقے سے آپ لوگوں کو خوش کرنے کی اللہ توفیق بھی دے, ہمت طاقت بھی دے. حمزہ آج فادرز ڈے ہے اور

0: मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी हुई है, अभी तक हो गई है क्या
1: भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 साल की एक बेटी है माशाल्लाह।
0: अरे क्या बात है। तो भाई पहले तो हमारी तरफ से हैप्पी फादर्स डे माशाल्लाह। और नाम क्या है बेटी का?
1: आयत हमजा।
0: हाँ माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है भाई। तो आयत को भी
1: एक्टिव है ना वो, उसने अभी से अपना नाम डिसाइड किया है। अगर आप उससे खुद अपना नाम पूछेंगे ना तो वो आपको आयत हमजा नहीं बताएगी। अच्छा? उसने डायरेक्टली जाके कहना है डॉक्टर आयत हमजा।
0: ओ हो यार क्या बात है यार।
1: थोड़ी सी ये डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने स्पेशली बताया डॉक्टर आया था
0: माशाल्लाह।
1: स्लिप को अपने लिखवा के लेकर आई है।
0: अल्लाह ताला उसका ये ख्वाब जो है वो खैरियत से, कामयाबी से और वक्त पे पूरा करवाए। और अल्लाह ताला आपको भी इतनी ताकत दे, हिम्मत दे और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे कि आप उसका ये ख्वाब पूरा कर सके। यार ये बहुत बड़ी बात शेयर कर दी हमजा इस वक्त आपने मेरे साथ, और मैं इंशाल्लाह दुआओं में याद भी रखूंगा और दुआ करता हूँ इस चीज के लिए। भाई क्या बात है यार, क्या क्या बात है भाई, बच्ची का क्या जज्बा है और कितनी खूबसूरत बात है ये। बड़ी अच्छी बात है, क्या बात है यार, जबरदस्त मजा आ गया। अल्लाह ताला आए तो खुश रखे।
1: आपने मार वाले किस्से से भाई एक वो मुझे अपने कारी साहब का किस्सा याद आ गया।
0: और ये एक अलग फील्ड है, ये अब्बा और ताया और भाई के अलावा की फील्ड है, मौलाना कारी साहब। ओए होए होए होए होए होए क्या हुआ।
1: उनका एक डायलॉग होता था
0: हाँ,
1: उन्होंने स्पेशली बोलना बेटे जहाँ जहाँ उस्तादों की और माँ बाप की मार पड़ेगी ना क्यामत के दिन वहां पे फूल उगेंगे और वो भी फूल गुलाब। तो हम लोग पता क्या सोचते थे, मैं कारी साहब बबकी तो बात छोड़े, अभी जो आपने गुलाब के फूल का निशान छोड़ दिया उसका क्या करें।
0: ये जो मेरे गुलाब आपने इस वक्त गाल पे चिपका दिए हैं और बड़े ही खूबसूरत से गुलाब खिला दिए हैं मेरे गाल के ऊपर, इनका क्या
1: वो मार तो मुंह पे उन्होंने मारा कभी।
0: तरीका तरीका
1: इसको कमर पे,
0: इस्लामी तरीका और मैं कहूंगा कानूनी तरीका। एक्चुअली ये दो ही लोग अपनाते हैं, हमारे पुलिस वाले भी और हमारे मौलाना भी, कि जहाँ गोश्त ज्यादा है। अच्छा अब हमारे तो हर तरफ गोश्त था तो कहते कोई मसला ही नहीं है, हर जगह।
1: और भाई अभी तो बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि यार बच्चों को हाथ क्यों लगाया है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे, मैं जिस वक्त थोड़ा छोटा था या आज से 5 साल से 10 साल पीछे चले गए, तो पेरेंट्स बोलते थे ठीक है बच्चे को मारा ठीक है, अगली बार और मारना अगर गलती करे तो। हम लोग सपोर्ट के लिए पेरेंट्स के पास जाते थे कि यार चलो कम से कम कारी साहब को बोले मारे तो नहीं, समझाया तो। तो मतलब नहीं नहीं इसको लगाओ, दो और लगाओ, अच्छी बात है। ये काम होते रहे। और आपने वो छड़ी जो बताई
0: हाँ, संटी वाली, संटी
1: भाई वो तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ी। अच्छा। लेकिन हमारे काजी साहब ने वो गैस वाला पाइप होता था।
0: हाँ हाँ तो आसपास ही हो, आस पड़ोस में ही रह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी उसी का भाई है एक्चुअली, उसमें भी उतनी ही लचक है।
1: और सबसे सबसे गलत काम पता है क्या होता था?
0: हाँ।
1: कारी साहब ने एक बच्चा सिलेक्ट करना कि हाँ कल तू लेकर आएगा पाइप। हाँ। अगर गुम गया तो लेकर आगे पहली मार इसी बंदे को पड़ती थी।
0: हमारे टाइम पे भी ऐसे ही होता था कि दूसरे बच्चों को भेजा जाता था। एक्चुअली ये एक प्रैक्टिस है कि दूसरा जाके लेके आएगा, अपने लिए कम होता था, वो सरप्राइज होता था कभी कभार। कभी कोई जवाब दे दिया, कोई बात हो गई तो बोले हाँ बेटा सरवन मिर्जा आप जरा बाहर से वो जरा संटी लेके आइए। हम खुशी खुशी गए कि दूसरे का नंबर आएगा, पता चला खुद ही इस्तकबाल किया गया, उस संटी से हमारा ही भाग खोला गया। तो ये भी चीजें हुई है भाई, टीचरों की भी और मौलाना की भी। और वो मार बिल्कुल जरूरी होती है भाई, और हमें तो याद है। अब हम आगे किसी की बात नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हमें तो बहुत फायदा हुआ भैया उस मार पिटाई से, सही है नहीं
1: फायदा। और दूसरी बात हमें तो आकरब के लिए फूल भी मिल गए भाई।
0: सही बात है यार, दुआएं भी मिल गई साथ में, क्या बात है यार। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को खुश रखे। आयत को मेरी तरफ से स्पेशल पूछना है?
1: और अल्लाह मेरे वालिद साहब को खुश रखे,
0: आमीन आमीन,
1: उनको सेहत तंदुरुस्ती दे,
0: आमीन।
1: तो बस वैसे मिजाज के थोड़े से कड़क हैं, लेकिन कभी इतना मारा गारा नहीं है। स्कूल टाइम में एक बार मार पड़ी थी तो उनसे पाइप लग गया था गलती से, पीछे कमर पे 2 निशान बन गए थे। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं करवट के बल भी नहीं सो पा रहा था, लेकिन वालिद साहब जो मेरे हैं वो उनको नींद आ रही थी कि मेरे बच्चे को लग गई है।
0: ये हम चीज देखते नहीं ना, ये बिहाइंड द सीन जो मामला होता है, वो खुद रो रहे होते हैं और खुद फिक्र कर रहे होते हैं, क्योंकि अब चीजें होती है तो हम अपने आप से रिलेट करके देख सकते हैं ना। एक्चुअली ये चीजें अभी जाके समझ में आती है, उस वक्त तो नहीं समझ में आती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।

0: क्या बात है यार, हमजा बड़ा मजा आया बात करके, और मेरी तरफ से स्पेशली आयत को बहुत बहुत प्यार और दुआएं, और अपना भी ख्याल रखिए भाई। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। भाई क्या बात है, क्या बातचीत हो रही है, क्या वाकयात हैं, क्या किस्से हैं, क्या कहानी है, सबक देने सबक लेने के। और आज खासम खास दिन, सभी को ऑल द फादर्स आउट देयर हैप्पी फादर्स डे FM 107 की जानिब से और मेरी जानिब से। आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं ऑन द नंबर 4434377443443 और मैसेज भेज सकते हैं 6662107 पे। यहाँ पर एक और कोई हमारे साथ कॉलर है, इसके बाद भाई मैसेज, इसके बाद मैसेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
1: सर मैं खलील पराचा, आपका प्रोग्राम रोज सुनता हूँ पर कॉल करने की वो टाइम ही नहीं मिल पाता। इस दफा टाइम मिल गया, फर्स्ट टाइम मैंने मिलाया और फर्स्ट टाइम ही मिल गया माशाल्लाह, और वो भी फादर्स डे पे।
0: मोस्ट वेलकम खलील भाई, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद फादर्स डे की आज खासम खास। तो क्या शेयर करना चाहते हैं खलील भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। क्या शेयर करना चाहते हैं आज, कुछ ऐसी बात जो हम सबको सबक भी दे, सीख भी दे?
1: नहीं, अभी इससे पहले कॉलर की जो बात मैं सुन रहा था वो लिटरली थोड़ी सी मार होनी चाहिए बच्चों को स्कूल में।
0: ओके,
1: पर हमारे दौर में भी थी, हमारे दौर में भी थी, टीचर्स रिस्पेक्ट के अलावा थोड़ी सी पनिशमेंट देते थे।
0: जी जी,
1: और वो उसके डर से इस बच्चा सही काम भी करता है और सही रहता है मामला, वरना तो ये जो लोग कहते हैं कि महफिल में बच्चे को अगर आपने कुछ कह दिया तो उसकी इंसल्ट हो गई, मैं इससे एग्री नहीं करता।
0: ओके ओके,
1: बच्चे को अगर आप महफिल में टोकेंगे नहीं तो उसकी किस तरह ग्रोथ होगी, उसको किस तरह पता राइट और रॉन्ग का कैसे पता चलेगा?
0: हाँ भाई, देखिए डिबेट के तो जो रास्ते हैं वो हर वक्त हर तरह से खुले रहते हैं, बट हर किसी का अपना अपना सोचना है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना कानून है घर का और बच्चों को समझाने सिखाने का। जाहिर बात है एक चीज का ये ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं उसकी इज्जत पे उसको कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं।
1: नहीं नहीं, बट वो उस लेवल पे नहीं।
0: हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि मौकाए वारदात पे समझाना भी कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि उसको पता चले कि ये जो 6 लोग बैठे हैं इसमें मैंने गलती क्या करी और मुझे आगे से कैसे ख्याल करना है एक्चुअली। तो वो मौके पे भी समझाना कभी कभार, मैं आपके बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई ऐसी बात शेयर करना चाहते हैं अपना कोई किस्सा या कोई बात?
1: प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत मजा आता है माशाल्लाह।
0: अहलन वसहलन सर,
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका।
0: थैंक यू सो मच,
1: बहुत मालूमाती भी है माशाल्लाह।
0: चलिए सर, आपको अच्छा लगता है और आप हमारे साथ कनेक्ट भी हुए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए खलील भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो ये थे खलील भाई, और जैसे कि बताया कि सबका अपना अपना नजरिया और सभी से कुछ ना कुछ एक अलग बात पता चली। ओहो माशाल्लाह, तो भाई कहाँ से छेड़ूं दास्तां, कहाँ तमाम करूं, यहाँ से शुरू करता हूँ। सरूर भाई अस्सलाम वालेकुम, टुडे यू पिक्ड अ वेरी इमोशनल एंड एम्पैथेटिक टॉपिक। भाई क्या करें, आज दिन ही ऐसा था। मे अल्लाह गिव स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ टू ऑल ऑफ अवर पेरेंट्स, बोल रहे थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह सरूर भाई, प्लीज सेंड ऑडियो। अच्छा, कोई शायरी मेरे ख्याल में पसंद आई होगी भाई को। कौन है हमारे साथ? इमरान है हमारे साथ, इमरान जासिम रैन आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। एक गम वाली खबर लेकर आया हूँ, कॉल ही नहीं कि अच्छा नहीं कॉल, अच्छा कल लिखना चाहते हैं शायद, कल ही नानी का इंतकाल है हो गया है। ओके, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका मस्जिद है उनका, ओके लिसनर को बोल दीजिएगा सभी उनकी मगफरत के लिए दुआ करें, मेरे ख्याल में ये कहना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला जासिम भाई आपकी नानी को अल्लाह ताला जन्नत में दाखला दे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मगफरत फरमाए। होता है भाई, सभी को ये दिन देखना है और देखते आए हैं और आगे वाले भी देखेंगे ही। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, तमाम अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, मैं यही दुआ करता हूँ। तो भाई यहाँ पर हमारे साथ वॉइस नोट भेजा है अजमल भाई ने। अजमल भाई मैं इसको इंशाल्लाह ताला सुनने की कोशिश करूंगा। रमेश बाबू से बात हो गई ऑलरेडी, मदर भाई से बात हो गई है ऑलरेडी, इन लोगों के भी मैसेजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कुछ लव्ज़ अब्बा के लिए।

0: मौसी ने कहे कि पिता रोती है, पिता रोता होना चाहिए, कपड़ा मकान है. अच्छा, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का खुला आसमान है, पिता है तो सारे सपने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं. वाह वाह वाह वाह, क्या बात है यार, बड़ी प्यार. कौन है हमारे साथ? अबू सिदरा हैं, सईद अख्तर साहब. बहुत बहुत शुक्रिया भाई मैसेज शेयर करने के लिए. बढ़ते हैं आगे. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो? एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आ गई है. क्या बात है भाई, कौन है हमारे साथ? सॉन्ग रिक्वेस्ट आरिफ भाई. ओके लेट्स सी, आज मौजू चल रहा है दूसरा. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तलत महमूद. ओके और कहते हैं या अल्लाह मेरे अब्बा जी की मगफरत फरमाए, आमीन. आपने अपने वाले साहब का फ़ोटो शेयर किया है मेरे साथ, बहुत खूबसूरत शख्सियत होंगे, देख के पता चला, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए. यूसुफ भाई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं सरूर भाई? होप वेल, हैप्पी संडे मॉर्निंग. कैसे रहा आपका वीकेंड? अच्छा रहा यूसुफ भाई, हैप्पी फादर्स डे सबको विश करते हैं. कहते हैं हर जगह मदर्स की ही बात होती है, बहुत ही कम हैं जो फादर्स के सेक्रीफाइसेस को एक्नॉलेज करते हैं. मेरे अब्बू तो मेरे बचपन में ही चले गए, मैं कभी उनका प्यार देख नहीं सका. ओहो, अल्लाह सारे पेरेंट्स को बड़ी और हेल्दी लाइफ दे, हमेशा उनका साया सर पर बरकरार रखे, आमीन. मेरे बड़े भाइयों ने ही अब्बू का रोल अदा किया है, जिनकी ख्वाहिश से मैं जी भी हूँ, और क्रेडिट गोज टू देम. अच्छा, मैं अल्लाह ब्लेस देम हेल्दी लॉन्ग लाइफ. बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई मैसेज शेयर करने के लिए. अल्लाह ताला पूरी फैमिली को अच्छा रखे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातहू. कहते हैं क्या हाल हैं? ये ज़िंदगी सिर्फ तब तक हल्की होती है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए हों. ओके, आगे लंबा मैसेज है मगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ. मुश्ताक आलम, बहुत अच्छा मैसेज है आपका. मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद इरफान है, मैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से हूँ. कतर में मुझे 2 साल हो गए हैं. मैं अपने वालिद साहब की बात करूँगा. मेरे मालिक साहब बहुत सख्त लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं. पीछे मुझे बचपन में बहुत मार पड़ती थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज समझ आ रहा है कि हमारी सलाह के लिए हमें डांटते थे और उनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ कामयाब है. क्या बात है यार. ख्वाजा हमारे साथ भाई, अब ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, आप लोग की कॉल लेता हूँ, मैसेजेस कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह. हेलो अस्सलाम वालेकुम, इसीलिए आज मैंने 3 का दम भी नहीं खेला ताकि सब अपनी अपनी बात रख सकें कर सकें. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. कौन है हमारे साथ?
1: मैं महफूज हूँ भाई.
0: महफूज, अहलन वसहलन, कैसे हैं महफूज भाई? खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जन खैरियत है. आपका एफएम मेरे गाड़ी पे चल रहे
0: है. अच्छा, क्या बात है यार, ये तो आपकी मोहब्बत है महफूज भाई. और मेरे ख्याल में पहली बार तशरीफ लाए, पहली बार बात हो रही है आपसे.
1: पहले भी नंबर था लेकिन आपसे बात नहीं हो पाता क्योंकि आप बिजी रहते हो.
0: और महफूज भाई होता ही है कि ज्यादा से ज्यादा कॉल लेने की कोशिश करते हैं और जो प्रोग्राम
1: आप लोग रिसीव भी नहीं करते, ऐसा हालत हो जाता
0: प्रोग्राम की. जी,
1: अगर दूसरा घर पे तो भी रिसीव नहीं करता.
0: प्रोग्राम की नौइयत के हवाले से जो है हमें काम करना पड़ता है. तो बांग्लादेश से हैं या कलकत्ता से हैं?
1: मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ भाई, बांग्लादेश कतर पे हूँ.
0: हाँ नहीं, वो तो मुझे पता है. और भाई अहलन वसहलन, क्या शेयर करना चाहते हैं? हैप्पी फादर्स डे आपको.
1: नहीं यार कुछ नहीं, लेकिन बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था आपको.
0: अच्छा,
1: बात करने
0: अच्छा, के लिए अरे भाई कॉल किया था. यार अहलन वसहलन, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला और आप प्रोग्राम सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. इसी तरह हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू महफूज भाई. तो भाई महफूज भाई सलाम करने आए थे सबको. और यहाँ पर कोई और हमारे साथ? हेलो सलाम अलैकुम.
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह.
0: नसीम भाई हमारे साथ, क्या बात है. वेलकम नसीम भाई, कैसे हैं? खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: क्या आज तो कुछ शायरी वगैरह हो जाए फिर मौजू के हवाले से नसीम भाई?
2: मौजू के हवाले से अभी कुछ तो आ नहीं रहा है.
0: अच्छा, अभी नहीं आ रहा है. चलिए, तो क्या शेयर करना चाहते हैं आपको? फादर्स डे की मुबारकबाद
2: आपको भी.
0: जी बहुत शुक्रिया.
2: थोड़ा सा थोड़ी एक बात याद आ रही है हमको. बोलो. वैसे मैं कुछ कहूँगा नहीं.
0: जी जी मैं समझ गया. क्या शेयर करना चाहते हैं?
2: कि मैं उनके रहमत का मुंतजिर था.
0: मैं उनकी रहमत

0: का मुंतजर था मुद्दतों से,
1: अब जाके ख्याल आया कि मोहताज हूँ दोनों।
0: ओ हो हो हो हो हो हो नसीम भाई, क्या बात है यार, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। आपके वालदैन हयात हैं, जान सकता हूँ?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खुश रखे उनको भाई, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। और कुछ शेयर करना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे नसीम भाई हमारे साथ, और बड़ी प्यारी शायरी करके गए, और जाहिर बात है शायरी कोई ऐसे ऐसे शेर हो जाते हैं जो दिल पे नक्श भी हो जाते हैं और चीजें याद भी दिला देते हैं। यहाँ पर कोई और हमारे साथ जुड़ गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम व बरकातुहु। पीछे मुझे बंद कर दीजिए ताकि सामने से मुझसे बात कर सके।
2: आपकी आवाज हमें सर इतनी पसंद है कि सर दो
0: कौन है हमारे साथ? अब नाम बताइए।
2: माय नेम इज सर सलमान खान।
0: अरे लियो साहब, सारी बातें खत्म हो गई साहब, सारी बातें खत्म हो गई। अब कुछ कहना ही नहीं, सुनना ही नहीं, अब खामोश बैठे रहेंगे हम। सलमान भाई, सलमान खान साहब, अहलन वसहलन। पहली बार कॉल कर रहे हैं क्या सलमान भाई?
2: सर फर्स्ट टाइम है, लेकिन सुन तो काफी टाइम से, 3-4 महीने से सुन रहे हैं जब से गाड़ी चला रहे हैं।
0: अहलन वसहलन, अहलन, मोहब्बत है आपकी सलमान भाई, और बड़ा ही खूबसूरत नाम आपका और खूबसूरत शख्सियत भी होगी मैं समझ सकता हूँ। सबसे पहले तो आपको फादर्स डे की मुबारकबाद। क्या शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इसके हवाले से?
2: सर बस आज का टॉपिक ये था कि आपने कहा, वो हमजा भाई ने भी कहा कि बाप से किस किस को मार पड़ी है ना।
0: जी जी बिल्कुल।
2: हाँ, तो उस पर ही बात याद आ गई, हमने बहुत मार खाई अपने पापा से।
0: क्या नसीब वाले हैं आप, खुश किस्मत हैं।
2: बिल्कुल सर, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पठानों में बहुत मार पड़ी है। उल्टा लटका लटका के मारा है सर हमें।
0: सॉरी यार, मैं एक्चुअली मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां की बात हो रही होती है, और मुझे क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं, तो मैं ये जो आपका दर्द है ना, इसका एहसास मुझे इस वक्त हो रहा है, अपने जिस्म में हो रहा है, अपने जहन में हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूं और रिलेट कर लेता हूं, तो हंसी आती है कि यार ये भी मेरे जैसा ही है मेरा भाई।
2: लेकिन सर हमें बहुत मार पड़ी, उल्टा लटका लटका के मारा है।
0: वाह क्या बात, क्या शेर सुनाया आपने यार, मजा आ गया सलमान भाई। मैं आपने आपको रिलेट कर पा रहे होंगे लोग, तो वो मार जो आपको पड़ी उसका आपको फायदा हुआ? अब ये बताइए लुब्बे लुबाब अपनी स्टोरी का।
2: फायदा तो सर बहुत हुआ,
0: ये
2: बहुत
0: बात बस, तो फिर क्या है, अब फिर तो बाबा रेल में है, बाबा जेल में नहीं है।
2: और सर हमने कॉल इसलिए किया था कि आपसे बात हो सके, आपको सुनते हैं बहुत अच्छा, ज्यादा आपको पसंद करते
0: मेरा, मेरा भाई, मेरा भाई कैसा सलमान खान साहब पे पैसा ही पैसा, ये मेरी दुआएं भी देता रहता हूँ मैं साथ साथ जब आप लोग बात करते हैं। ये आपकी मोहब्बत है यार, और इसी तरह मोहब्बत से नवाजते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और दुआओं में मुझे भी याद रखिए।
2: शुक्रिया सर।
0: और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं?
2: बस सर आज पहला दिन है, बात नहीं हो पा रही।
0: अब होती रहेगी, आदत बना दूंगा, आदत बना दूंगा, अपनी आदत बना दूंगा। सलमान भाई अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई।
2: आदत तो है सर आपकी, क्योंकि आपकी हमारा दिन फिर खराब होता है।
0: अल्लाह न करे भाई,
2: दो दिन इतने खराब।
0: अल्लाह ताला आपका हर दिन अच्छा बनाए, और अल्लाह ताला हर दिन आपको अपनी रहमत से नवाजे, दिन रात सुबह, यही मेरी दुआ है, इंशाल्लाह खैर होगी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो सलमान खान साहब जब ऐसा कोई नाम ले लेता है तो फिर आगे क्या बात करेगा आदमी यार, सलमान खान मेरे साथ हैं तो अब आगे बात करना मुश्किल हो जाता है ना फिर। ओके, कुछ मैसेजेस, और मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ब्रेक का टाइम भी है, कॉल आ रही है, दो मैसेज उसके बाद कॉल लेता हूँ मैं। इमरान भाई कहते हैं ओके, अब यहाँ पे हिंदी, मेरा टेस्ट भी तो होता रहता ना, उर्दू हिंदी सब में मैसेज माशाल्लाह आते हैं। कहते हैं चट्टान सी हिम्मत है पर दिल में समंदर सा प्यार है, उनकी उंगली थाम कर ही पार होता हर मझदार।

0: है, खुद बुझे खुद भूखे रहकर भी जिन्होंने मुझे खिलाया, खुश नसीब हूं मैं जो मैंने ऐसा पिता पाया। मेरी हर जिंदगी को हंसकर पूरा करते हैं, मेरी हर जिद को हंसकर पूरा करते हैं, वो पापा ही हैं जो मेरे हर आंसू से डरते हैं। आई लव यू पापा, इमरान खान साहब। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या बात है यार। ये तो मैं अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रख लेता हूँ अपने पास। यहाँ पर वॉइस नोट फराज भाई का वॉइस नोट, सोहेब भाई क्या कहते हैं, ओके कुछ सॉन्ग की गुजारिश है, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अजमल भाई का वॉइस नोट, अजमल भाई सुनने की कोशिश करूंगा। खादर अब्दुल हादी इज हेयर और खूब सारे मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम सलाम, सभी को मुबारकबाद देते हैं। सरल भाई, आउट ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर हैं कबीर भाई एज अ प्रिंसिपल टू, तो गेस करें। क्या यार, ये तो कोई सवाल ले आया खादर, क्या कर दिया। चलो भाई, आपकी जगह मैं संटी, अच्छा कहते हैं लहजे, लेकिन हमारी जगह में उसको बैथ यानी इंग्लिश में केन कहते हैं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। बैथ तो यार वो दादा वाला होता है, भारी वाला, आगे से मुड़ा हुआ होता है। सरोज भाई, मैं तो कभी अब्बा से कभी बाप से ये सका था, अच्छा सीखा था कहना चाहते होंगे। लर्निंग एजुकेशन एंड एजुकेट टू वन दे नीड, क्या बात है यार। आई एनकरेज फ्रॉम माय फादर, ऑन द अदर हैंड माय फादर वाज लिटिल जेलस दैट आई सक्सीड इन हाई लेवल। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माय फादर जेलसी, बट ही वाज लिटिल बिट, ओके मैं पढ़ लेता हूँ, ओके चलिए यार, ये भी अपना मसला है। सर भाई, अनफॉर्चुनेटली आई नेवर गॉट एनी केन फ्रॉम टीचर एंड माई डैड, बट आई गॉट बीट फ्रॉम मदर। मदर बीट्स मी व्हेन द फादर इज नॉट इन होम। अम्मा की भी मार, हाँ नहीं वो तो भाई जरूरी भी है खादर अब्दुल हादी, और मार तो किसी की भी हो जरूरी होती है, लेकिन दिल के दर्द बाहर आ रहे हैं कहते हैं, सिर्फ इतना ही लिखा भाई। अच्छा हमजा है, हाँ ओके हमजा, लोगों के दिल के दर्द बाहर आ रहे हैं। मैं कितने मैसेज पढ़ के मेरी भी आंखें अब कंफ्यूज हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, हूँ बिल्कुल, अभी शायरी है कुछ तो वो भी शेयर करता हूँ। यहाँ पर एक कॉलर है, पहले उनको कनेक्ट कर लेते हैं, और लो भाई लेट हो गए करते करते, चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं, इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बराबर। आओ, आओ, वो भी गए, अब तीसरे की तरफ पढ़ रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
0: अहलन वसहलन, कौन है हमारे साथ?
1: मोहम्मद सरताज खान अल हिंद।
0: ओ हो हो हो हो यार, ये तो दिन पूरा नहीं होता सरताज भाई अगर आज ना आते। क्या बात है सरताज भाई, तो मेरे ख्याल में दादा और नाना भी बन चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं सही कह रहा हूँ?
1: एकदम 100% गलत है।
0: अच्छा गलत है, ओके, ये ऐसा हो जाता है। कहीं ना कहीं तो परेशान करूंगा सरताज भाई। हैप्पी फादर्स डे, बहुत बहुत मुबारक। और क्या,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: क्या शेयर करना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से?
1: शेयर तो करना ये चाहते हैं सर जी, हमारे तो वालिद साहब का इंतकाल जो है तकरीबन 6 महीना पहले हो गया।
0: ओ अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, अल्लाह ताला।
1: और हम गाँव में थे, हमें वो बात याद आ रही थी, वो जो चना होना खेत में से ला के आदमी घूमता ऊंटा नहीं था, हाँ जब छोटे थे हम लोग, तो वही सब दे के आए थे और घूम रहे थे, उसी में मेरे कपड़े में आग पकड़ लिया।
0: अरे अस्तग़फ़िरुल्लाह।
1: लेकिन हमारे वालिद साहब साथ में, तो उन्होंने वो आग को हाथों से मसल के कपड़ों को बुझा दिए।
0: हो
1: तकरीबन उस वक्त उम्र जो है 7-8 साल होगी हमारी।
0: तो यार ये तो एक तरीके से, खैर एहसान तो हम नहीं कह सकते, हम अब्बा के तो एहसान ही एहसान, बट उन्होंने तो जान भी बचा ली एक तरीके से आपकी यार।
1: जी, उस वक्त मैं छोटा था और वो कपड़े में आग पकड़ लिया, हमको याद है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।

0: ताज भाई, ये मोहब्बत है आप लोगों की भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला खुश रखे, सभी के लिए यही दुआएं हैं। और फैमिली सबसे जरूरी चीज है, वालदेन सबसे जरूरी चीज है, बीवी बच्चे बहुत जरूरी चीज है, सबको सबका हक अदा करते रहे। मर्द हजरात से यही कहना है मेरा, क्योंकि शायद हमारा इसीलिए हमारा रोल ही यही है ना लाइफ में, तो उसको जहन में रखें और इंशाल्लाह ताला ये कुर्बानियां काम आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरताज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो जनाब ये थे सरताज भाई हमारे साथ, और अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कैसे हैं आप? कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक हो, आपके चाहने वाले हमेशा आपके साथ, जिसमें एक माँ भी, मैं भी कहना चाहती हूँ, माँ तो है ही है और मैं भी। कौन है? फराज हैदर यार, मोहब्बत फराज भाई। हुसैन आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हैप्पी फादर्स डे कहते हैं हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ते हैं आगे एक कॉलर की तरफ, फिर कुछ मैसेजेस, प्रोग्राम का वक्त भी हुआ जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सरूर भाई, कैसे
0: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ?
1: जब कॉल नहीं करते हैं तो कहते हैं कि कॉल नहीं करते हो, जब कॉल करते हैं तो उठाते नहीं हो।
0: अरे बताइए, हद कर रखी है सर्वर ने यार।
1: नहीं,
0: आपको मिल जाए तो छोड़िए मत, ले जाके एक 3-4 किलो बिरयानी और 5-6 रोटी के साथ एक 3-4 प्लेट कोरमा, सर्वर अगर मिल गया तो छोड़िएगा मत इस बार।
1: और तो मुझे पता है सर्वर, लेकिन आपको मैं एक बात बताओ, आप पड़ोसियों से ये फायदा उठाते हैं ना, अगर वो नाराज भी हो जाते
0: ऑल द वे फ्रॉम मंसूरा मुदस्सर साहब।
1: जी जी जी सर भाई,
0: क्या बात है, 40 घर तक पड़ोसी होता है, ये बात पता है आपको?
1: और तो वो तो पता है, कॉल तो उठा रहे ना।
0: आपका 39वां घर है तो आप पड़ोसी की रेंज में आ गए मेरी।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात,
0: अल्लाह ताला खैर करे भाई। तो बहुत बहुत मुबारक आज का दिन, खासम खास क्या शेयर करना चाहते हैं मुदस्सर भाई आज के दिन के हवाले से?
1: कुछ जी जी बिल्कुल सरोज भाई, सुनो
0: इरशाद।
1: हाँ, वो कहते हैं ना, जो मांगो दे दिया कर ए जिंदगी।
0: वाह, जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी,
1: ए जिंदगी कभी तो मेरे बाप जैसे बन के देखा।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने।
1: और दूसरी बात सरोज भाई, सॉरी मेरा थोड़ा गली में वो,
0: नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम।
1: आपको पता है मेरे पास अभी जेब में 100 रियाल भी नहीं है, लेकिन मैं दुनिया का अमीर तरीन बंदा हूँ, वो पूछो कैसे?
0: कैसे?
1: मेरे पास गाड़ी है ना, बंगला है ना, पैसा है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया का अमीर तरीन बंदा हूँ,
0: मेरे पास माँ है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनका साया आपके ऊपर बरकरार रखे, और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे, मेरी यही दुआ है भाई।
1: आमीन आमीन। सरो भाई, आपको पता है दुनिया में ये जो दो बंदे हैं माँ बाप, मेरे ख्याल में इससे बढ़कर कोई भी प्यारा अजीज और मेरे ख्याल में कोई दूसरा बंदा नहीं है जिनके माँ बाप है। मेरे ख्याल में जितने के मैं, वो लोग बहुत अमीर तरीन लोग हैं मेरे हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मेरे वालिद और मैं, मेरी वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हयात है। अल्लाह पाक जिसके वालिदैन जिसके हैं वो उनको हमेशा जिंदगी और सलामत रखे, और जिसकी नहीं है जिनके बहुत ही अल्लाह उनको मगफिरत नसीब फरमाए, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ सरोज भाई।
0: आमीन या रब्बुल आलमीन। और बड़ी प्यारी और सच्ची बात कही है आपने, वाकई जिनके पास वालदेन हैं उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और इससे ज़्यादा अच्छी, खूबसूरत, महंगी और मतलब ख़जाने वाली चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही फरमाया भाई, क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई, आप ने ज्वाइन किया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इंतजार करने के लिए। थैंक यू सो मच। मुदस्सर भाई हमारे साथ, और बड़ी ही प्यारी बात कहते हुए, बड़ी अच्छी सीख देते हुए। आइए देखते हैं और कौन है हमारे साथ, आखिरी कॉल गालबन अब मैं ले लेता हूँ। हेलो, सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
2: आज पहचान ले प्लीज, खुदा के लिए पहचान है।
0: अदर भाई
2: है? छोड़ दो,
0: अरे जमील जमील भाई यार।
2: एक काम करे, 10 नाम

0: है उसमें से डिसाइड।
1: अरे सैयद जमील साहब, और बताइए, पूरा नाम बताऊं? ऐसा नहीं है, अच्छी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खोपड़ी।
0: फिर भी आप रंग बोले।
1: अच्छा, ओ ये तो बहुत ही रोस्टेड हो गया, रोस्टेड हो गया।
0: हमेशा डेली आपसे बात करता हूँ मेरी बेटी के साथ।
1: अबरार भाई, अबरार भाई, हानिया बाबा।
0: अरे
1: देखिए, ये खुश नसीबी है कि बच्चों के नाम से भी जाना जा रहा है, तो अबू हानिया हमारे साथ है, क्या बात है जी। तो अबरार भाई क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वक्त कम रह गया है।
0: परवर भाई, मैं अभी आन करके स्टार्ट किया
1: था। मैं बस, क्योंकि हाँ नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं अब इजाजत लेना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त हो गया है ज्यादा। अबरार भाई आपको मुबारक हो, हैप्पी फादर्स डे मैं यही कहूंगा, और बड़ी अच्छी फैमिली है आपकी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। लंबी बात करते बट क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर कल बात होगी इंशाल्लाह।
0: आनिया से गिफ्ट आया है एक।
1: हाँ हाँ, तो कल उसका जिक्र जरूर करिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और दिन तो बहाने होते हैं, हर दिन इस बात का ख्याल रखें कि वालदेन की खिदमत करते रहें, उनके साथ आगे बढ़ते रहें। और फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आपसे थोड़ी सी देर में आपके साथ होंगे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमीन भाई, जो आपको खेल की खबरों से रूबरू करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।

0: राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, समर स्पोर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। आज 21 जून है और ये 21 जून बेसिकली गर्मी का एक वो जो तापमान है काफ़ी ऊपर तक हमें ले जाता है, और साथ साथ स्पोर्ट्स फीवर और फुटबॉल फीवर और फुटबॉल के जो जितने भी लोग दीवाने हैं उसमें आज आप लोग बहुत शामिल हो रहे होंगे, मुझे पता चल रहा है। एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखते हुए मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ नियरिंग रीचिंग इट्स क्लाइमैक्स, और धीरे धीरे धीरे धीरे ग्रुप के जितने भी मैचेस हो रहे हैं अब ग्रुप लीडर्स और ग्रुप रनर्स अप और नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के लिए सब तैयार हैं। हालांकि गर्मी काफ़ी है, लेकिन गर्मी के बावजूद अमेरिका में भी बहुत गर्मी है एंड वहां पर भी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और फुटबॉल मैचेस को देख रहे हैं। और कतर में भी बैठ के हम लोग फुटबॉल के जितने भी मैचेस हुए हैं सब हमने देख चुके हैं एंड टीम कतर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और बता चलूँ ये प्रोग्राम खास प्रोग्राम है और इतवार और मंगल को मैं पेश करता हूँ, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और इसमें मैं बताता हूँ कि होने वाले टूर्नामेंट्स, होने वाले इवेंट्स क्या है, क्योंकि अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है तो मैं समझता हूँ कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में ज़्यादा बातचीत होना लाजमी है। और दोस्तों एक सवाल आप लोगों से पूछ लूँ क्या, आप पूछ लेता हूँ और अभी प्रोग्राम शो जो है ये शुरू हो ही गया है तो आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा ईजी सवाल होगा आप लोगों के लिए, लियोनेल मेसी के फैंस के लिए तो काफ़ी ईजी होगा। आपको सिर्फ इतना बताना है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी ने कितने गोल्स किए हैं। हाल ही में मेसी ने एक हैट्रिक स्कोर किए हैं, और आपको सिर्फ इतना बताना है कि लियोनेल मेसी ने अब तक कितने गोल्स किए इन फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में। 2006 में उन्होंने अपना आगाज किया एज अ सुपरस्टार, एज अ टैलेंटेड प्लेयर। 2006 में जब वर्ल्ड कप हुआ था जर्मनी में, तब से लेके आज तक उन्होंने इस 20 साल में टोटल 6 वर्ल्ड कप्स ऑलरेडी खेल चुके हैं अलोंग विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आपको यहां पे मेसी के बारे में बतानी है, आपको बताने हैं कि मेसी ने कितने टोटल कुल गोल्स जो है वर्ल्ड कप में किए हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर याद होगा 666-221-107 पर मुझे आप टेक्स्ट करिए और जुड़े रहिए इसी प्रोग्राम के साथ। तो लेट मूव ऑन टू आज के मेजर हाइलाइट्स पे। अच्छा, मेजर हाइलाइट्स पे आज सुबह एक मैच, मैंने ऑफिस जब आया था तभी वो मैच वाज बेसिकली ऑन, और उस मैच को हमने सभी लोगों ने देखा, स्पेशली ट्यूनिशियन हमारे जितने भी कलीग्स हैं बड़े अफसोस थे क्योंकि जापान ने ट्यूनिशिया को 4-0 से हरा कर एक ऑलमोस्ट दे एस्टैब्लिश देयर सुपर पावर स्टेटस जो एशियन फुटबॉल में है। और लोगों ने पूछा कि ये जापान टीम कैसी, जापान टीम कैसी है। मैंने कहा भाई जापान टीम ब्लू सामुराइज 1998 से मुसलसल दे हैव बीन प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, और जापान एशिया नंबर वन है। और जापान ने आज जो जिस तरह से ट्यूनिशिया को बेसिकली धो दिया, तो उससे ये साफ हो रहा है कि एशियन फुटबॉल इज़ ऑन द राइज एंड एशियन फुटबॉल काफ़ी मजबूत है दोस्तों। और आज देखिए ये मैच जीतने के बाद जापान जो है अपने ग्रुप में सेकंड पोजीशन हासिल कर चुके हैं। एंड उससे पहले अगर बताऊं कि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट में इनका मैच जो था वो सुपर क्लास मैच था, और नेदरलैंड्स ने इसी ग्रुप में कल जो मैच हुआ उसमें स्वीडन को बुरी तरह 5-1 से, ये बदला लिया गया है क्या, ट्यूनिशिया को 5-1 से हराने के बाद आई थिंक ट्यूनिशिया का फेवर करते हुए स्वीडन टीम को 5-1 गोल से, द डच टीम वाज ऑल ओवर द फील्ड। एंड किस तरह से, जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे लग रहा है कि डच टीम कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाली टीम है, और क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंचने के बाद भी डच टीम नेवर वॉन द वर्ल्ड कप। 2010 फाइनल में दे लॉस्ट एंड दे लॉस्ट टू स्पेन इन द फाइनल। तो आज जो मैच, आज जो मैच हुआ, पिछले रात की बात कर रहा हूँ, तो वो मैच देखने के बाद मुझे इतना कुछ लग रहा है कि आई थिंक डच टीम में कुछ तो बात है, हो सकता है कि इस दफ़ा वो कुछ चैंपियन हो जाए। लेकिन हमेशा हमेशा जैसे कि साउथ अफ्रीका के साथ होता रहा इन क्रिकेट में, फुटबॉल में डच फुटबॉल टीम भी थे, नेदरलैंड्स फुटबॉल टीम के साथ कुछ ऐसा है जिंक्स माना जाता है। जैसे पहुंचते हैं ये लोग वो एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है, जैसे फाइनल में पहुंचते हैं सब लोग समझते हैं कि ये जीतेगी ये टीम, लेकिन वो जीत नहीं पाते। लेकिन बहरहाल अभी तो हम ग्रुप स्टेज की बात कर रहे हैं, ग्रुप स्टेज में और क्या क्या हुआ मैचेस मैं आपको बता देता हूं। ग्रुप ई में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 1-1 में 2 गोल से हराया, सो जर्मनी फाइनली दे हैव मेड इट टू द नॉकआउट स्टेज। पिछले मैच में कुरासाओ को 7-1 से हराया था, और दूसरी तरफ इक्वाडोर और कुरासाओ का मुकाबला इसी ग्रुप में गोलेस ड्रॉ रहा। और आज काफ़ी अहम मैचेस हैं दोस्तों, स्पेशली हमारे खित्ते की बात करूँ, अरब खित्ते की बात करूँ तो अरब का सामना, सऊदी अरब का सामना जो है स्पेन से होने जा रहा है। और बता दूं कि स्पेन का पहला मैच जो था वो ड्रॉ रहा, आप लोगों को याद होगा, तो सऊदी अरब का सामना स्पेन से होगा। मैच रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, एंड सऊदी अरब का पिछला मैच भी वाज अ वन ऑल ड्रॉ। सो आज ईरान का मैच भी है अगेंस्ट बेल्जियम, देखना ये है कि क्या ईरान बेल्जियम को रोक पाएगा या नहीं। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच बिकॉज ईरान इज वन ऑफ द लीडिंग एशियन टीम्स। हम एशिया के लिए वी आर बैकिंग अप द एशियन टीम्स और हम एशियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ अरब टीम्स को भी, टीमों को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो एनीवे ओवरऑल अगर मेजबान टीमों के बारे में बताऊं तो मेक्सिको और अमेरिका, ये दोनों टीमें जो है अगले राउंड तक पहुंच चुकी हैं एंड मेक्सिको जो है पिछले मैच में जीत कर दे रीच द नेक्स्ट राउंड ऑफ 32 के जो मैचेस है उसमें जगह बना ली। और वहीं अमेरिका जो है भाई कमाल कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ऑस्ट्रेलिया द लॉस्ट टू दी द अमेरिकन टीम, यूएसए टीम। और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि यूएसए टीम हैज रीच आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो नॉकआउट स्टेज तक वो पहुंच गई है टीम। और वहीं कनाडा ने कतर को भी हरा करने के बाद कनाडा आल्सो हैव बेसिकली एस्टैब्लिश देयर पोजीशन, एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट मैच। अच्छा, कतर का जो अगला मैच है वो 24 जून को होने जा रहा है अगेंस्ट बोस्निया एंड हर्जेगोविना। दोस्तों सवाल दोबारा पूछ लेता हूँ और पूछने के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ा देंगे, लेकिन सवाल मेरा ये था कि लियोनेल मेसी ने अब तक वर्ल्ड कप की तारीख में कितने गोल्स किए हैं। इज वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स, लीडिंग स्कोरर्स इन फुटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री, तो आपको सिर्फ ये बताना है लियोनेल मेसी ने कितने गोल्स किए हैं। ये तो आपको पता है लियोनेल मेसी किस कंट्री से खेल रहे हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू जस्ट टाइप इट आउट ऑन 666-22-107, ये है FM 107 के व्हाट्सएप नंबर। मैं हूँ मोहम्मद अमीन और यहाँ पे लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक टू समर स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके मेजबान मोहम्मद अमीन और इस प्रोग्राम में आप लोगों ने बड़ा ही धूम मचा दिया। आप लिसनर्स लोग, आपके बिना ये शो जो है बिल्कुल अधूरा है। और आप लोगों को बस मेसी का नाम बोलते ही आप लोगों ने एकदम बेसिकली छा गए हैं। मेसी मीन्स मैजिक। और काफ़ी लिसनर्स जो रहते भी हैं हमारे पास, जितने भी जवाब आए हैं आई विल जस्ट कीप इट फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेच तक रखूंगा, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट मेसीज नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन वर्ल्ड कप। अच्छा मैं एक बताऊं कि मैं मेसी का फर्स्ट मैच जो मैंने कवर किया था, आई स्टिल रिमेंबर 2010 में मेसी टीम अर्जेंटीना वॉज प्लेइंग इन वन साउथ अमेरिकन एक टीम के साथ इन कलकत्ता में। एंड वो मैच कोई एक फ्रेंडली मैच था, फर्स्ट टाइम मैंने मेसी को तब देखा। एंड जब ये साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से वापस आकर आई थिंक सितंबर 2011 में ये मैच हुआ था। एंड उसके बाद मेसी का फर्स्ट सेकेंड गेम जो मैंने देखा था 2018 रशिया वर्ल्ड कप में अगेंस्ट नाइजेरिया। तो मेसी बेसिकली एक मैजिक है। मेसी मॉडर्न फुटबॉल का अगर कोई आइकन है, मॉडर्न फुटबॉल में एक लेजेंड है। ऑब्वियसली रोनाल्डो फैंस कहेंगे कि रोनाल्डो भी अजी हाँ मानते हैं, एम्बापे वाले कहेंगे कि एम्बापे बिल्कुल, लेकिन लियोनल मेसी बेसिकली पिछले 20 साल अगर वर्ल्ड कप के अगर कैलकुलेशन करूँ 2006 से लेकर आज तक, तो मेसी हैज़ बीन अ लार्जर देन लाइफ। मेसी के बारे में फुटबॉल आज जब डिस्कशंस पे हम बैठते हैं तो इट्स अधूरा है। मेसी का मेसी आई मीन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, मेसी के बाया पैर की बात करते हैं कि भाई कितना इफेक्टिव है इसका लेफ्ट फुट, काफ़ी ख़तरनाक लेफ्ट फुट है। और जिस एक अंदाज से उन्होंने जो गोल किया था अगेंस्ट अल्जीरिया आप लोगों को याद होगा, जो रिबाउंड शॉट में मेसी आज भी उतना ही चौकन्ने रहते हैं 18 गज के जो बॉक्स है जिसको हम पेनल्टी एरिया कहते हैं उसके अंदर में, वो बॉल रिबाउंड हुआ और उसमें ही धम करके एक शॉट। एंड ये गोलकीपर जो थे जिदान साहब के बेटे साहब जो थे वो बड़े चौंक गए कि ये कैसे हो गया, भाई आपके सामने मेसी हैं, भाई आपको थोड़ा सा संभाल के बॉल को ग्रिप करनी चाहिए। एंड यू फेल्ड एंड मेसी स्कोर्ड। और मेसी हैट्रिक जो है कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया मेसी ने, और इस एज में भी। आखिरी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि ये तो इस एक स्पेकुलेशन है वेदर मेसी कैन प्ले इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, ये तो बात की बात है। फिलहाल मेसी हैज़ स्कोर्ड हैट्रिक एंड मेसी हैज़ स्कोर्ड इतने गोल्स किए हैं 2006 से 2026 तक इस पूरे वर्ल्ड कप के सफ़र में, एंड इट्स वन ऑफ द रिकॉर्ड, आई मीन एक रिकॉर्ड क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहूँगा। सो एनीवे बात हो रही थी लियोनेल मेसी की, और लियोनेल मेसी से हमें याद आ गया रोनाल्डो, और रोनाल्डो की टीम के बारे में याद आ गया, पोर्चुगल टीम। अब पिछले दिनों पोर्चुगल की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सबको मुतासिर नहीं कर पाया, बिकॉज पोर्चुगल आई डोंट नो क्या रहा है। एंड रोनाल्डो भी थोड़े से क्रिटिसिज्म में आ गए, थोड़े से इनके ऊपर कुछ दबाव है। एंड जिस तरह जिस अंदाज से वो खेल रहे थे सबको लगा कि भाई ये क्या हो गया इनको, आई मीन इज ही फिट, इज ही कंटिन्यूइंग वर्ल्ड प्लेइंग वर्ल्ड कप तो ठीक है, लेकिन अभी फिट है, मतलब फिट से मुराद ये है कि वो मेंटल जो ब्लॉक है उसको ओवरकम कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये तो बात की बात है। बट मेसी परफॉर्मेंस और यहाँ पे रोनाल्डोज परफॉर्मेंस, दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें महसूस हुआ है, देखा सब लोगों ने। और पोर्चुगल को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने रोक दिया। अब ये है कि मेसी तो मेसी है दोस्तों, और बात यह है कि मेसी के ही बेसिकली अभी जो है जो चार्ट है जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर है। सो एनीवे वी एवरीबॉडी इज होपिंग कि अर्जेंटीना विल डिफेंड द टाइटल सक्सेसफुली। एंड यू नो ब्राज़ील के बाद, इटली के बाद ब्राज़ील ने 1958-1962 में एज अ टीम दे डिफेंडेड द टाइटल, और वहीं इटली की टीम भी 1934-1938 में दे डिफेंडेड द टीम दे डिफेंडेड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड कप। तो इटली एंड ब्राज़ील के बाद क्या अर्जेंटीना यू नो विल बिकम द थर्ड टीम टू डिफेंड वर्ल्ड कप टाइटल, ये तो वक्त बताएगा। एंड 19 जुलाई को जो फाइनल हो गया तब पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी टीमें फाइनल में मौजूद हैं। सो एनीवे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अदर अपडेट्स के लिए बढ़ते हैं। टेनिस में बता दूं कि सेरेना विलियम्स की वापसी हुई है, इस एज में भी सोचिए 40 प्लस की एज में सेरेना विलियम्स ने वापसी की है बर्लिन ओपन में, जबकि उनका मैच वो यू नो ही शी कुडंट विन दिस टेनिस मैच येट. सेरेना विलियम्स ये अभी भी कोशिश में लगी हुई हैं कि वो विंबलडन खेले, बहुत बड़ी बात है. एशियन आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप अभी चीन में जारी है और वहाँ पे कतर के मेहरदाद कदीमी और रकान अल हारिथ ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए फाइनल्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर ली. और दोस्तों प्रीमियर लीग, जैसे वर्ल्ड कप खत्म होना है, फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म होना है, उसके बाद सितंबर से प्रीमियर लीग यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग विल स्टार्ट. और इस दफा इस टूर्नामेंट का आगाज, इस कॉम्पिटिशन का आगाज 21 अगस्त को होगा और आर्सेनल का सामना कोवेंट्री के साथ होगा उस दिन. प्रीमियर लीग के 2026-2027 सीजन के फिक्चर्स पिछले जुमे को जारी किए गए हैं और जहां ओपनिंग राउंड के अहम मुकाबलों में फ्रैंक लैम्पार्ड की कोवेंट्री के खिलाफ आर्सेनल का होम मैच भी शामिल है. आर्सेनल इज द डिफेंडिंग चैंपियन दोस्तों, तो वॉच आउट फॉर द फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद प्रीमियर लीग. अच्छा, अब हम बढ़ते हैं, चलते हैं अब नाउ बैक टू लियोनेल मेसी डिस्कशन एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप. फुटबॉल वर्ल्ड कप में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि क्या अब पोजीशंस हैं, क्या पोजीशंस, क्या क्या मतलब कौन कौन सी टीम आगे जा सकती हैं और क्या नहीं, कौन नहीं जा सकते हैं. ऑब्वियसली कुछ टीमें तो हैं, वो दो मुसलसल दो मैचेस हारने के बाद दे आर आउट, लाइक टूनिशिया इज़ आउट ऑलरेडी. और एक टेबल पर हम एक नज़र डाल देते हैं कि मेक्सिको साउथ कोरिया जो है ग्रुप ए में बने हुए हैं 6-3 पॉइंट्स लेकर, कनाडा स्विट्जरलैंड 4-4 पॉइंट्स लेकर. और ये मैच इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कनाडा वर्सेस स्विट्जरलैंड टू डिसाइड द ग्रुप विनर्स. और ब्राज़ील और मोरक्को उनके पास भी 4-4 पॉइंट्स हैं और ब्राज़ील का भी एक ड्रॉ रहा पिछले बार, पिछले मैच में ब्राज़ील की जीत हुई है और उसमें विनीशियस जूनियर ने स्कोर किया. एंड आई मीन ब्राज़ील की टीम थोड़ा बहुत लगा कि हाँ ब्राज़ील टीम इज प्लेइंग. मोरक्को इज अ सरप्राइज नहीं है बल्कि मोरक्को वन ऑफ द कंटेंडर्स हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड कप, हाँ ये बता दूं. और फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में मोरक्को जो है अभी फिफ्थ पोजीशन पर है, ये लेटेस्ट रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें ब्राज़ील के ऊपर भी हैं ये, फ्रांस और ब्राज़ील के ऊपर. नाउ मोरक्को इज द नंबर 5 टीम इन द वर्ल्ड, तो हल्के में मत लीजिएगा और हल्के में लेंगे तो आप कहीं नुकसान है. पिछले बार सबको पता चल गया था यूरोपियन टीम्स को जब कतर में ये वर्ल्ड कप हुआ था. और आखिरी ग्रुप डी में जैसे मैंने बताया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 6-3 पॉइंट्स, पैराग्वे के पास 3 पॉइंट्स. तो ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे के मैचेज उन पे इंपॉर्टेंट है. ग्रुप ई से ऑलरेडी जर्मनी हैज गॉन थ्रू द नेक्स्ट राउंड और अभी बाकी जो है वो सेनेगल, माफ कीजिएगा, आइवरी कोस्ट, इक्वेडोर और कुरासाओ, ये तीनों टीमें हैं. नीदरलैंड्स, जापान, स्वीडन, टूनिशिया, टूनिशिया बाहर और स्वीडन और जापान के ये मैच जो नेक्स्ट मैच जो है वो काफ़ी क्रूशियल है. एंड नीदरलैंड्स के सामना होने जा रहा है टूनिशिया का, ये भी तो आई मीन ऑब्वियसली नीदरलैंड्स के पास 4 पॉइंट्स है, जापान के पास 4 पॉइंट्स है, स्वीडन के पास 3 पॉइंट्स है, थोड़ा सा क्रिटिकल ग्रुप है. ग्रुप जी में न्यूजीलैंड अभी इनके पास एक एक मैचेस हुए हैं, आज इनके मैचेस होने जा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है. ग्रुप एच में भी सबके पास एक एक पॉइंट्स है. एंड ग्रुप आई में नॉर्वे के पास 3, फ्रांस के पास 3. ग्रुप जे में अर्जेंटीना 3 पॉइंट्स लेकर और ऑस्ट्रिया के पास 3 पॉइंट, जॉर्डन के पास अभी भी कोई पॉइंट नहीं है, अल्जीरिया के पास भी कोई पॉइंट नहीं है. तो यहाँ पर अभी एक एक मैचेस हुए हैं. लेट्स वेट फॉर दिस ग्रुप टू फिनिश एंड देन वी विल कम बैक टू नोटिस कि कौन कौन सी टीमें आगे पहुँच सकती हैं. अच्छा, बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स भी आगे जा सकते हैं, अरे ये भी बता दूँ आपको. तो बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स में भी बहुत सारे टीमों के नाम है, लेकिन नेक्स्ट जब शो में आऊँगा परसों मंगल को, तो वी विल गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर. तो दोस्तों आप बढ़ते हैं आज का जो क्वेश्चन था कि मेसी ने वर्ल्ड कप में कितने सारे गोल्स किए हैं, कितने गोल्स किए हैं. और बहुत सारे जवाब जो हैं वो बहुत सही हैं. और इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि मेसी के काफ़ी फैंस हैं मुझे लगता है. एंड मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस लवली मैसेज के लिए. और लियोनेल मेसी जी, टोटल गोल जो है 16, ये सही जवाब है. और 7 गोल 2022 कतर वर्ल्ड कप में स्कोर किया था. मुमताज़ अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जवाब का. राजीव कहते हैं 16, राजीव आपका पूरा नाम पता नहीं लेकिन आपने राजीव और 16 कहा, तो मुझे लग रहा है कि आप नहीं 16 गोल स्कोर किए. एनीवे मकसूद साहब कहते हैं 16 गोल्स इन हिज वर्ल्ड कप करियर. जी बहुत बहुत शुक्रिया. मेसी ने 16 गोल्स स्कोर ऑलरेडी कर चुके हैं. मेसी हैज स्कोर 16 गोल्स इन वर्ल्ड कप. शोएब अख्तर कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया. और एक साहब और भी लिख रहे हैं कि आई थिंक 16 गोल. आई एम अ रोनाल्डो फैन, आई थिंक यू आर अ मेसी फैन. नहीं, कौन है आप? आपका नाम मैं समझ, आरिफ अंसारी, मैं किसी का फैन नहीं हूँ. मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं किसी का फैन नहीं हो सकता, और मेसी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मेसी इज़ द करंट ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए मेसी के बारे में मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। रोनाल्डो के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि रोनाल्डो के परफॉर्मेंस के ऊपर मैं जो भी एनालाइज है वो कर रहा था, इसलिए मैंने कहा सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी वन, चाहे वो पेले हो, मैराडोना हो, मेसी हो, रोनाल्डो हो, कोई भी हो। तो एनी वे 16 गोल फॉर मेसी, इट्स अ करेक्ट आंसर। एंड मेसी ने जो 16 गोल्स का जो रिकॉर्ड किया है दोस्तों, वो एक तरह सा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नॉट जस्ट अ रिकॉर्ड, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। और उनका रिकॉर्ड जो है मिरोस्लाव क्लोजे के साथ है, जर्मनी के मशहूर प्लेयर थे और 2014 वर्ल्ड कप में भी खेल चुके थे। एंड उस वर्ल्ड कप तक मिरोस्लाव क्लोजे ने 16 गोल्स किए 24 मैचेस में, और मेसी ने 27 मैचेस खेलकर 16 गोल्स किए। तो नाउ मेसी हैज अ चांस, मेसी के पास एक चांस है कि ही कैन ओवरटेक मिरोस्लाव क्लोजे, जर्मनी के वन ऑफ द लीडिंग फॉरवर्ड्स, लीडिंग स्ट्राइकर्स मिरोस्लाव क्लोजे। क्या गोल करता है बंदा, हेडर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो उनका जो गोल मुझे याद है ज़्यादा से ज़्यादा वो हेडर से गोल करते थे, लंबे कद के थे, तो ही वॉज द नंबर वन गोल स्कोरर। लेकिन मेसी ने पिछले मैच में हैट्रिक करने के बाद नाउ ही हैज़ इक्वलाइज्ड मिरोस्लाव क्लोजे, 16 गोल्स। रोनाल्डो, ये रोनाल्डो पोर्चुगल वाला रोनाल्डो, ये रोनाल्डो ब्राज़ील वाला रोनाल्डो जो है थर्ड पोजीशन पर अगर मैं कहूँ तो 15 गोल्स के साथ है। और अभी करंट प्लेयर्स जितने भी हैं उनमें से किलियन एम्बापे के पास भी चांस है 14 गोल्स ऑफ 15 मैचेस में, पिछले मैच में 2 गोल्स किए, और अभी भी उनके पास मौका है कि यू नो जो 16 गोल्स का जो टारगेट है ऑफ विद लियोनेल मेसी और मिरोस्लाव क्लोजे, इसको हो सकता है कि अगर एम्बापे अगर स्कोर करें नेक्स्ट फ्यू मैचेस में तो हो सकता है इसी वर्ल्ड कप में कुछ रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, सो वी विल वेट फॉर दैट। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को जनरल नॉलेज में शेयर करूंगा, एक ही वर्ल्ड कप में, ठीक है, मसलन एक ही वर्ल्ड कप जैसे कि 2026 का वर्ल्ड कप, एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने का जो रिकॉर्ड है वो फ्रांस के ही एक खिलाड़ी थे, जस्ट फॉन्टेन के नाम है, आज भी वो रिकॉर्ड अनब्रोकन है 13 गोल्स के साथ। और 1958 जब स्वीडन में ये वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें पेले, जो ब्राज़ीलियन लेजेंड पेले का फर्स्ट वर्ल्ड कप था, उस वर्ल्ड कप में जस्ट फॉन्टेन ने 13 गोल स्कोर करके ही बिकेम अ लिविंग लेजेंड, और उस टाइम में लिविंग लेजेंड। और इनके आज की बात करूं तो वो रिकॉर्ड आज भी अनब्रोकन है, एक ही टूर्नामेंट में 13 गोल्स अभी तक किसी खिलाड़ी ने नहीं कर पाया है। सो आज भी टारगेट है कि हो सकता है कि मेसी तोड़ दे, हो सकता है कि एम्बापे तोड़ दे, हो सकता है रोनाल्डो तोड़ दे, विल हैव टू वॉच। लेकिन रोनाल्डो और मेसी के लिए हो सकता है ये आखिरी वर्ल्ड कप, एम्बापे के पास चांस 27 ईयर ओल्ड, हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में गोल्स पे गोल्स करें। वील हैव टू वेट फॉर दैट। फिलहाल फ्रांस का जो मैं देख रहा हूँ, फ्रांस इज ऑब्वियसली इज वन ऑफ द लीडिंग टीम, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। और फ्रांस के जो ग्रुप में सेनेगल, इराक, नॉर्वे, एंड ये मैचेस जो हैं ऑब्वियसली दे हैव प्लेड अगेंस्ट सेनेगल एंड उसमें जीत हुई है। इराक के साथ आई डोंट नो क्या होने जा रहा है, एंड नॉर्वे के साथ भी क्या रिजल्ट है मुझे ही नहीं पता है। लेकिन हो सकता है कि एम्बापे जिस तरह से गोल किया, जिस तरह से अभी उनके जो जो स्पोर्टिंग जिस तरह से वो फॉर्म में नज़र आए, हो सकता है कि इसी वर्ल्ड कप में ये 16 गोल्स के जो रिकॉर्ड है मेसी और इसके दरमियान, एम्बापे एंड मेसी के दरमियान ही है होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे हमें बहुत बहुत फैंटास्टिक गोल्स, खूबसूरत गोल्स देखने को मिलेगा। एंड वॉच आउट फॉर द कतर मैच ऑल्सो ऑन 24 जून को कतर का सामना होने जा रहा है, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना ग्रुप बी का, कतर का ये आखिरी मैच होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, और हो सकता है दिस प्रोग्राम नेक्स्ट ट्यूजडे को हो, और बाय द टाइम नेक्स्ट ट्यूजडे में हमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी टीमें बाहर हो गई हैं, कौन कौन सी टीमें आगे गई हैं। सो एनी वे कीप लिसनिंग टू FM 107। मैं हमेशा कहता हूँ बी स्पोर्टी, बी फिट, एंड बी स्पोर्ट्स फैन, और फुटबॉल को थोड़ा सा उस अंदाज से देखिएगा जिस अंदाज से आप लोग खेलते भी होंगे क्रिकेट को छोड़कर, ठीक है। तो स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:30, यानी इट्स टाइम फॉर,
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: यस जनाब, मरहबा मरहबा मरहबा, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यस जनाब, वेलकम है आप सबका संडे आफ्टरनून में। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता ऑन FM 107 पर। और भाई कैसे हैं आप, कैसे गुजरा वीकेंड? ये सवाल तो बड़ा ही ट्रेडिशनल है, बनता है पूछना, क्योंकि आपने दो दिन किया

क्या, दो दिन आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई, दो दिन चैलेंज नहीं हुआ, तो हुआ क्या? बिल्कुल बताइएगा 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ की यस अमिता वी एंजॉयड आवर वीकेंड. वैसे मुझसे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि हमेशा ये होता है कि यू नो इट्स अ ट्रेडिशन कि जब भी आप ऑफिस आते हो और आपके दोस्त और आपके कलीग्स वगैरह सब मिलते हैं एंड दे आस्क लाइक व्हाट डिड यू डू टू डेज, लाइक जैसे दो दिन ना बहुत मिसिंग फैक्टर हो जाता है. सो यस, मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया, कुछ मूवी आफ्टरनून्स किए, मतलब लेड बैक, एंड शुरुआत की मैंने फिल्म भूत बंगला से. सो आई रियली एंजॉयड इट. सो मुझे पर्सनली लगा कि ये मूवी देखने के बाद ना कि हाँ मुझे अब थोड़ा सा ना और अपने एस्केप रूम में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी है जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा. हालांकि जब ये मूवी देख रही थी तो वहीं से मुझे ये आइडिया आया एंड आई रियली थिंक कि आज का जो एस्केप रूम का एपिसोड है आप इंजॉय करने वाले हैं. अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो सपनों में जीने लगते हैं, मतलब सपने देख रहे हैं एंड सडनली यू फील कि आप उस वक्त उस मोमेंट उस ड्रीम में हैं और कुछ भी हो रहा है, चाहे यू नो पानी गिर रहा है या फिर आप किसी से फाइट कर रहे हो या फिर आप किसी खूबसूरत जगह में हो एंड यू फीलिंग कि एग्जैक्टली आप वहीं हैं एंड कुछ सडन चेंजेस होते हैं या कोई आपको आवाज़ देता है या अलार्म बजता है एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो ड्रीम था. ऐसा कुछ कभी हुआ है आपके साथ? अगर हुआ है देन टुडेज एपिसोड इज जस्ट फॉर यू. तो आज आप बड़ी कमाल की जगह पे कैद होने वाले हो एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग एस्केप कर पाओगे. बट अभी के लिए थोड़ा म्यूजिक का टाइम है, सो थोड़ा सा चिल आउट होए, लूजन अप होए, यू नो अपना चाहे आप कोई जूस पिए या फिर करक इंजॉय करें या कॉफी इंजॉय करें, पर अभी रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए बिकॉज Beautiful tracks are here, so enjoy the songs. Stay tuned to FM 107. Then say.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: हाँ जी मेरी देसी ऑडियंस, वेलकम वेलकम वेलकम। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। भाई आज एस्केप रूम की जो सिचुएशन है बड़ी कमाल की है। पहले बताएं कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि सुबह 4 बजे के जो सपने होते हैं वो

हो सकता है, ऐसा अक्सर कहा जाता है, मतलब मेरी ग्रैंड मदर कहती थी कुछ सपने मेरे सच हुए, कुछ का मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन क्या आप मानते हैं? चलो नहीं मानते हैं तो आज मान भी सकते हैं। तो एस्केप रूम की सिचुएशन ऐसी है कि आपको इमेजिन करना है कि सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है, आप गहरी नींद में हैं, पर आपका जो दिमाग है आपको कहीं और ले गया है। उफ, दिमाग कहीं और ले गया है और मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ। इमेजिन कर लिया? चलो अब जिस जगह पर आप हैं, आपने अपनी आंखें खोली तो आप खुद को एक कैद खाने में पाते हैं। अब ये तो बड़ी कमाल की चीज़ होगी, मतलब कैसे कैद खाने में आ गए हम? ओके, तो ये ड्रीम के अंदर चल रहा है, ठीक है। आपने जब अपनी आंखें खोली तो आपको लगा कि आप किसी कैद खाने में आ गए हैं, जहां पर शैडोज और धुंध उफ उस कैद खाने को बना रही है। इस कैद खाने का कोई बार नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, ना आप यहाँ से हिल पा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं, कोई रास्ता भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब जो ये कैद खाना है उसके बाहर एक अजीब सा साया खड़ा है। भाई ये कौन है? ये है द ड्रीम जेलर। वो धीरे से आपको कहता है, तुम सारी जिंदगी अपने ख्यालों से भागते रहे हो, अब तुम उन्हीं में कैद हो गए हो। ओके, सो आज हम एक सबकॉन्शियस प्रिजन में कैद हो गए हैं, और ये जो ड्रीम जेलर है इसने एक चमकती हुई चीज हमको दी और कहा कि अब फोकस करो, सारे रिडल्स सॉल्व करो, सारे क्लूज के जवाब दो, वरना आप इस नाइटमेयर का हिस्सा बन के रह जाओगे। नहीं भाई, हमको अपने सपनों में कैद नहीं होना, हमें सपने देख कर उन्हें पूरा करना है लेकिन वहाँ कैद नहीं होना है, कि नहीं? चलिए, तो क्लू नंबर 1 आपको ये ड्रीम जेलर देता है, एंड दैट इज, आई हैव अ हेड बट नो बॉडी, सर है मेरा लेकिन जिस्म नहीं, आई हैव फेदर्स बट आई कैन नॉट फ्लाई, पंख है मेरे पर मैं उड़ नहीं सकता, मैं वो जगह हूँ जहाँ आप हर रात अपनी परेशानियाँ छोड़ देते हैं, मैं वो ब्रिज हूँ जो आपको इस कैद खाने में लेकर आया है, बताओ मैं क्या हूँ? अब आप सोच रहे होंगे कौन सी चीज़ है। ओके, फोकस कीजिए अपने बेडरूम पे, बेडरूम की चीज़ों पर फोकस कीजिए। जब आप थक कर चूर हो जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपके बेडरूम में जिसमें फेदर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ सर होता है जिस्म नहीं होता, बताएं कौन सी चीज़ है? आई एम वेरी सर्टन कि आप गैस कर लेंगे, तो गैस कीजिए। 666-22-107 ये नंबर है, इस पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए, क्योंकि हमें क्लू नंबर 1 सॉल्व करके अगले लेवल को पार करना है, ठीक है। सो कम ऑन, थिंक अबाउट इट। 666-22-107 पर अपने नाम के साथ जवाब दीजिए। आई रिपीट अगेन, आई हैव अ हेड बट नो बॉडी, आई हैव फेदर्स बट आई कैन नॉट फ्लाई, मैं वो जगह हूँ जहाँ आप हर रात अपनी परेशानियाँ छोड़ देते हैं, मैं वो ब्रिज हूँ जो आपको इस कैद खाने में लाया है, बताओ मैं क्या हूँ? कम ऑन गाइस, थिंक। सही जवाब आपको पहले लेवल को पार कराएगा, और अभी म्यूजिक आपको एनर्जी देगा, सो डोंट गो एनीवेयर। 90s को एक नए अंदाज में एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देश।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और एस्केप रूम का सफर अभी चल रहा है जहां पर आज आप अपने सपनों में कैद हो चुके हैं। इस कैद खाने की जो दीवारें हैं वो धुंध से बनी हुई हैं, ना आप बाहर निकल पा रहे हैं ना हिल पा रहे हैं और सामने आपको एक साया दिखाई दिया, दैट्स द ड्रीम जेलर। और उसने आपको कहा कि भाई देखो, आप अपनी सारी ज़िंदगी अपने ख्यालों से भागते रहे हो लेकिन अभी उन्हीं में कैद हो गए हो, और अगर मेरे पूछे गए सवालों के आपने जवाब नहीं दिए, क्लूज को नहीं सॉल्व किया, तो आप अपने इस नाइटमेयर में कैद हो जाओगे। ये संडे आफ्टर

डरेज हूँ जो आपको इस कैद खाने में लाया है. और मैंने आपको क्लू दिया था कि भाई देखो बेडरूम के बारे में सोचो, वो कौन सी चीज़ है जिसमें फेदर्स हो सकते हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ सर है जिस्म नहीं. थिंक अबाउट इट, जहाँ पर आप यू नो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हो. तो हमें काफ़ी सारे जवाब आए हैं, आइए ज़रा इन जवाबों की तरफ गौर फरमाते हैं. तो हमारे लिसनर्स लिखते हैं फैन, कुछ ने लिखा है बेड, कुछ ने लिखा है पिलो, कुछ ने लिखा है तकिया, कुछ ने लिखा है बिस्तर, कुछ ने लिखा है रजाई. ओके ऑल राइट, सबने कोशिश की है भाई, सबके इमेजिनेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. लेकिन सही जवाब इस क्लू का है तकिया, या यू कहें पिलो. हवाई हवाई, चले अपनी पीठ थपथपाए फटाफट, क्योंकि जिन्होंने भी ये जवाब दिया है वो पहले लेवल को पार कर चुके हैं, दूसरा लेवल अब उनके लिए आ गया है. वेल डन वेल डन वेल डन. अब जिन्होंने हमें सबसे पहले सही जवाब दिए उनके नाम जरा देख लेते हैं. तो उनके नाम है रैद, मोहम्मद, अनवर, सुमैया, आफ्ताब. वेरी गुड. उसके बाद मोहम्मद यूसुफ खान, अच्छा क्या लिखते हैं, बिस्तर लिखा उन्होंने, ओके नहीं. सरफराज जी का सही जवाब है, मिस्टर खान का सही जवाब है. और कौन कौन है जिन्होंने सही जवाब दिए हैं, यहाँ पर अरबाज खान है, इन्होंने भी सही जवाब दिया है. भाई देखिए नाम लिखा करें हर बार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, है कि नहीं. मकसूद जिन्होंने भी सही जवाब दिया है, और अनम रूहान ने पहले कोई और जवाब दिया था उसके बाद उन्होंने पिलो लिखा है, लेकिन हमारे अनम रूहान है तो एक्सेप्टेड उनका जवाब भी. यस yes. तो आप सबने सही जवाब दिया और फिर आपका फर्स्ट लेवल पार हो गया. लेकिन इस सपने से, इस सपने की कैद से, सपनों की कैद से निकलना इतना आसान नहीं है. पिलो बोलते ही आप एकदम से लंबी गहरी सांस लेते हो, क्योंकि जैसे ही आपका सही जवाब आपके दिमाग में आता है और आप अपनी जुबान पे लाते हो, वो जो धुंध आपको दिखाई दे रही थी जिसके अंदर आप कैद थे, वो अब धीरे धीरे कम होने लगती है. अब आप थोड़ा हिल भी पा रहे हो, पर रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है. अब आप धीरे से उस कैद से बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब ये जो सपनों की कैद है ये खत्म नहीं हुई है, ठीक है. आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जहाँ हजारों आईने लगे हैं. ओ हो, ये बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है. और हर आईने में आपका एक अलग रिफ्लेक्शन दिख रहा है. किसी में आप छोटे दिख रहे हैं, किसी में आप बड़े दिख रहे हैं, किसी में आप मोटे दिख रहे हैं, किसी में पतले दिख रहे हैं. और जेलर फिर से रास्ता रोक लेता है. ओ नो, मिरर्स में आके आप कैद हो गए, रुक गए वहाँ पे, ठीक है. अब नेक्स्ट लेवल जो है वो इस अगले क्लू के जरिए ही सॉल्व हो पाएगा. और अगला क्लू जो है वो आपके लिए क्या हो सकता है, चलें गौर से सुनिए. ये चीज़ वो है जो आपके पास है, ठीक है, जो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है. ये नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है. कभी इस पर लाइनर होता है तो कभी नहीं होता है, और आप इसे हर मिरर में देख सकते हैं, पर टच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. सोचो सोचो, कम ऑन, क्या है इसका जवाब. अपने चेहरे को ध्यान से देखो मिरर में, हाँ, और बताओ वो कौन सी चीज़ है. आई एम वेरी सर्टन आप इसका जवाब दे सकते हैं. और ये जो क्लू नंबर टू है, जो ड्रीम जेलर ने आपको दिया है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं. मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, ये चीज़ वो है जो लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है. ये नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी. कभी इस पर लाइनर होता है तो कभी नहीं. आप हर मिरर में इसे देख सकते हैं, पर टच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. नाउ थिंक अबाउट इट एंड गिव मी द आंसर. 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ. एंड लेट्स सी कि सेकंड लेवल आप पार कर पाते हैं या नहीं. सश्रिया घोषाल एंड कार्ल वाइन आपको थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई थोड़ा चिल मारिए, आप जवाब दे सकते हैं. फिलहाल एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल? वेल, एस्केप रूम का सेकेंड पार्ट शुरू हो गया है और अभी इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं 2:03। सो आर यू रेडी अपने ही सपनों में कैद होने के बाद वहां से निकलने के लिए?
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: हाँ जी, तो मेरे दिल से देसी लोग, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन FM 107। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज हम अपने सपनों की दुनिया में कैद हो गए। भाई ये चैलेंज बड़ा कमाल का है, क्योंकि सपनों में कैद हो जाना, जहाँ कई बार हमको खुद एहसास नहीं है कि हम कैद हो गए, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, है कि नहीं? अब हमने देखा कि ड्रीम जेलर है भाई, उसने कह दिया कि देखो मैं 3 क्लूज दूंगा, अगर आप चाहते हो कि अपनी रियल दुनिया में बाहर निकलो तो इन क्लूज को सॉल्व करो और तीनों लेवल्स को पार करो और निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने सही जवाब नहीं दिए तो फिर आप हमेशा के लिए अपने सपनों में कैद हो जाओगे। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, है कि नहीं? चले, पहला क्लू ड्रीम जेलर ने दिया जिसका जवाब था पिलो तकिया। हमारे लिसनर्स ने काफी मेहनत की, सबने सही जवाब देने की कोशिश की। उसके बाद क्लू नंबर 2 हमारे सामने आया। ये वो चीज़ है जो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, ये नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है, ओके? कभी इस पर लाइनर होता है तो कभी नहीं होता है। आप हर मिरर में इसे देख सकते हैं पर टच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब मैंने कहा था कि चले बताएं क्या हो सकता है, तो हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं, हर किसी ने अपना यू नो इमेजिनेशन यूज़ किया है। कुछ ने कहा है साया, शैडो, रिफ्लेक्शन, क्लॉक, कुछ ने कहा है आँखें, आईज, आई लैशेस। तो ये जवाब हमें मैक्सिमम मिले हैं। चलिए हम बिना वक्त बर्बाद करे सीधा बताएंगे कि ये क्लू नंबर 2 को सॉल्व जिन्होंने किया है तो उनके सही जवाब क्या हो सकते हैं। अगर आपने कहा है शैडो, क्लॉक, रिफ्लेक्शन, साया, नहीं ये सही जवाब नहीं। अगर आपने आंखें कहा है, आईज कहा है, आई लैशेस कहा है, देन इज द राइट आंसर। भाई आप सभी ने दिल जीत लिया, कोशिश की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन्होंने आंखें, आईज, आई लैशेस कहा है ना, उनके जवाब बिल्कुल सही हैं। तो क्लू नंबर 2 आपने सॉल्व किया और क्लू नंबर 2 सबसे पहले सॉल्व करने वाले कौन कौन थे? अख्तर, मोहम्मद, राइद, अनवर, आफताब, सुमैया और कौन है, और कौन है, और कौन है, अनम रूहान, उन्होंने भी आई लैशेज लिखा है, दैट्स वेरी गुड। फातिमा यूसुफ ने, मोहम्मद यूसुफ खान, ओके वेरी गुड। तो आप सबने सही जवाब दिए और जैसे ही आपने सही जवाब दिया एक एक करके सारे आईने टूट गए। ओह, ये बहुत ही तेज़ी से सारे आईने टूटे। अब थोड़ी देर के लिए आपने लंबी गहरी सांस ली कि चलो बस अब एक लास्ट का जो क्लू है वो सॉल्व करना है, लास्ट का लेवल सॉल्व करना है और हमें यहाँ से निकलना है। तो जब आईने सारे टूट गए और एकदम से वो सितारों की तरह बिखर गए, तब आपने देखा कि आप एक बहुत बड़े क्लिफ पर, एक पहाड़ी के किनारे पर खड़े हैं। ओए होए होए, ये क्या हो गया? और नीचे आपको आपकी असली दुनिया दिखाई दे रही है, पर रास्ते में एक आखिरी रुकावट है, बादलों से बना एक भारी पर्दा। अब इस भारी पर्दे को कैसे हटाएं? सामने एक क्लू है भाई, इसको सॉल्व करना है, एंड दैट्स द लास्ट लेवल। चलिए फाइनल चैलेंज लेते हैं, क्लू नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, है कि नहीं? आइए देखते हैं। मैं रूह की विंडो हूं, रूह की खिड़की हूं, ओके, पर इस सपने में मैं तुम्हारा आखिरी एग्जिट हूं, ओके? मेरी कोई चाबी नहीं है पर मेरा एक लिड है। अच्छा जी, ऐसी कौन सी चीज है जिसका एक लिड है, खुलता बंद होता है? जब मैं खुलता हूं तो रोशनी आती है और नाइटमेयर, बुरे सपने सारे खत्म हो जाते हैं। बताओ मैं क्या हूं? ओहो, ये आखिरी पर्दा हटाने के लिए ना मुझे जल्दी से आंसर भेजिए 666-22-107 पर, अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए. आई एम वेरी वेरी सर्टेन कि आप सही जवाब दे पाएंगे. कम ऑन, थिंक थिंक एंड थिंक. मैं रूह की विंडो हूँ पर इस सपने में मैं तुम्हारा आखिरी एग्जिट हूँ. मेरी कोई चाबी नहीं है पर मेरा एक लिड है. जब मैं खुलता हूँ तो रोशनी आती है और नाइटमेयर बुरे सपने खत्म हो जाते हैं. बताओ मैं क्या हूँ? कम ऑन, आप सोच सकते हैं इस चीज के बारे में. तो अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए 666-22-107 पर, 666-22-107. ठीक है. हमारे लिसनर्स मैसेजेस करते करते ये भी पूछ रहे हैं कि अमिता आपका वीकेंड आपने कैसे बनाया. चले ठीक है, अभी जैसे ही ये आज लकी विनर का नाम हम घोषित करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वीकेंड कैसे बनाया. ठीक है, फिलहाल एवरीबॉडी जस्ट ब्रीद ओके, और बताएं कि सही जवाब क्या हो सकता है क्लू नंबर 3 का. उसके बाद ही यहाँ से एस्केप करने दूंगी, है कि नहीं. फिलहाल आपको सुनाऊंगी मैं ब्यूटीफुल ट्रैक्स. एंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखे।
1: हां जी वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज एस्केप रूम का चैलेंज बड़ा कमाल का है कि भाई देखो, पहले तो संडे आफ्टरनून जहां पर हमें काम वगैरह फिर से शुरू करना होता है, एंड इट्स अ वीक फॉर अस, द डे वन ऑफ द वीक। और उसके बाद अगर देखा जाए, अगर हम एस्केप रूम में आए, आज इमेजिनेशन हो गई सुबह 4 बजे की, गहरी नींद में थे और फिर एकदम से अपने ही सपनों के कैद खाने में कैद हो गए। अब भैया यहाँ से एस्केप करना बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें रोक कौन रहा है? दैट्स अ ड्रीम जेलर। उसने कहा कि देखो क्लू 3 दूंगा, बस जल्दी सॉल्व करो, निकल जाओ, वरना यहीं पर कैद होके रह जाओ। तो पहला क्लू आप सबने सॉल्व किया, विच इज़ वेरी गुड, आपने जवाब दिया पिलो तकिया, ठीक है। क्लू नंबर 2 भी आपके सामने आया और उसको भी आपने सॉल्व किया और जवाब था आंखें, आईज, आईलैशेस, ठीक है। और जब आपने ये सारे जवाब दिए, जो आपका रास्ता रोक रहे थे बहुत सारे शीशे, या यूं कहें मिरर्स, वो सारे टूट गए एक एक करके। अब जैसे ये सारे टूटे, एक धुंध आपके सामने थी वो एकदम से हटी, सारे आईने टूट के एकदम सितारों की तरह बिखर गए। एंड देन यू रियलाइज कि आप एक पहाड़ी के किनारे पर खड़े हैं, बहुत बड़े क्लिफ के ऊपर। अब आपको लग रहा है क्या किया जाए, आपने बड़ी हिम्मत करके नीचे देखा, आपकी असली दुनिया

दुनिया आपको दिखाई दे रही है, पर रास्ते में एक आखिरी रुकावट है, बादलों से बना एक भारी पर्दा. ठीक है, अब उसे पर्दे को हटाना है. क्लू नंबर 3 आपके लिए है, मैं रूह की विंडो हूँ, पर इस सपने में मैं आपका आखिरी एग्जिट हूँ. मेरी कोई चाबी नहीं है, पर मेरा एक लिड है. जब मैं खुलता हूँ तो रोशनी आती है और नाइटमेयर खत्म हो जाता है. बताओ मैं क्या हूँ. देखो, इसकी आखिरी लाइन में ही सबसे बड़ा क्लू है. जब मैं खुलता हूँ तो रोशनी आती है और नाइटमेयर खत्म हो जाता है. बताओ मैं क्या हूँ. कम ऑन गाइस, आप लोग सही जवाब दे सकते हो. थिंक अबाउट इट. कुछ लोगों ने मुझे अभी भी क्लॉक लिखा है, कुछ ने आंखें लिखा है, कुछ ने आईज लिखा है, कुछ ने नींद लिखा है, कुछ ने सपने लिखे हैं. क्या सही जवाब हो सकता है? हाँ, क्या वो सही जवाब होगा? एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी, एंड दिस गोना बी द लास्ट टाइम. उसके बाद आपको क्लू नंबर 3 सॉल्व करके सही जवाब देने हैं, और फिर जब ब्रेक के बाद में मिलूंगी तो आज के लकी विनर का नाम भी बताऊंगी. लेकिन अभी फोकस ऑन द फाइनल चैलेंज. मैं रूह की विंडो हूं, पर इस सपने में मैं तुम्हारा आखिरी एग्जिट हूं. ठीक है, मेरी कोई चाबी नहीं है, पर मेरा एक लिड है. जब मैं खुलता हूं तो रोशनी आती है और नाइटमेयर खत्म हो जाता है. मैं फिर से रिपीट करूंगी, जब मैं खुलता हूं तो रोशनी आती है और नाइटमेयर खत्म हो जाता है. बताएं मैं क्या हूं. सोचिए इस बेहतरीन से म्यूजिक के साथ. ठीक है, बादशाह डिवाइन एंड निकिता गांधी की आवाज में ओ सचना. एंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू FM 107 पर दिल से देसी.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। क्या बात है। हाँ जी, तो इस वक्त हमारे सारे लिसनर्स पूरी तरह से मतलब अब फोकस कर रहे हैं कि देखो एस्केप रूम का ये आखिरी चैलेंज है, फाइनल चैलेंज में हम पहुंचे हुए हैं। यस, और जो ड्रीम जेलर है उसने हमें हमारे ही सपनों में कैद कर दिया था। 3 क्लूज दिए थे जिसमें से 2 के जवाब हमने बिल्कुल सही दिए। पहले का जवाब था पिलो तकिया, दूसरे का आईज आईलैशेस, और तीसरे का जवाब मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमारा दूसरा क्लू था ना उससे लगभग मिलता जुलता है। हाँ, सो तीसरा फाइनल चैलेंज, तीसरा फाइनल क्लू आपके लिए था कि मैं रूह की विंडो हूँ पर इस सपने में मैं तुम्हारा आखिरी एग्जिट हूँ। मेरी कोई चाबी नहीं है, मेरा सिर्फ एक लिड है। जब मैं खुलता हूँ तो रोशनी आती है और नाइटमेयर खत्म हो जाता है। बताओ मैं क्या हूँ। देखिए, इस वक्त आप अपने सपनों की दुनिया में हैं और एक ऊँची पहाड़ी के किनारे खड़े हैं और आपको उसके नीचे अपनी असली दुनिया दिख रही है। बस ये आखिरी लेवल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें कई सारे जवाब आ रहे हैं। कुछ ने कहा है आईलिड, कुछ ने कहा है आइस, कुछ ने कहा है नींद, कुछ ने कहा है ख्वाब, कुछ ने कहा है सुराग, सूरज, सन, जन्नत, हेवन। ओके, इस तरह के जवाब आए हुए हैं हमें। चले, सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब ने अपने इमेजिनेशंस का इस्तेमाल किया, कोशिशें की और जवाब दिया। लेकिन सही जवाब है आईलिड्स या फिर आईज भी। तो जिन्होंने ये जवाब दिए हैं, जोरदार तालियां उन सब के लिए। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, आप सब ने सही जवाब दिए हैं। और जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए उनके नाम फटाफट बता देते हैं। आफ्ताब है, मोहम्मद है, अख्तर, सुमैया, राइद,

पलक ने भी सही जवाब दिया है, मिस्टर खान ने भी सही जवाब दिया है, अनम रूहान ने भी सही जवाब दिया है. ओके, तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. और जैसे ही आपने ये कहा, बस सुकून के पल आ गए, आप अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए. एंड डेफिनेटली यू फेल्ट कि बस यार, मतलब अब सही लग रहा है, थोड़ा सा सुकून आ रहा है, मतलब जान में जान आई. वरना अगर अपनी ऐसे ही ख्वाबों की दुनिया में कैद हो गए होते तो मम्मी के हाथ का टेस्टी खाना कैसे खाते, मतलब स्पेशली जिनकी मॉम्स यहाँ कतर में है कि नहीं. वेल, मास्टर ऑफ ड्रीम्स तो कोई एक ही होगा, तो आज के लकी विनर कौन है? आज के लकी विनर है मोहम्मद. कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. क्या बात है, कमाल कर दिया आप सब ने. हाँ, मतलब जो फीलिंग्स के साथ आप सब पार्टिसिपेट करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइस. वैसे आज तो आप ख्वाबों की दुनिया में कैद थे, अब कल देखो कहाँ पे जाने वाले हो. मुझे लगता है कि अगर आपको मशीनों से प्यार है तो आप एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री में जाने वाले हैं. हाँ, बाकी डिटेल्स आपको कल मिलेगी दोपहर 1:30 बजे, सो डोंट मिस इट. ठीक है, एस्केप रूम पे अपनी एफ और अमिता को मिलना, और एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, और सोशल मीडिया पे अपनी आरजे अमिता को भी ढूंढ सकते हो. और अभी क्या करना है भाई, चिल मारो, इन्जॉय करो, कल फिर मिलेंगे नए चैलेंज के साथ. तो अभी जाते जाते अपनी ट्रेडिशनल लाइन कहना तो बनता है, हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.

Assalamualaikum साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और थॉटफुल एपिसोड। यहां हम बात करते हैं उन चॉइसेस की जो सिर्फ किसी को खुश नहीं करती बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी पॉजिटिव इंपैक्ट रखती हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इको फ्रेंडली गिफ्ट्स के बारे में। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? किसी दोस्त की बर्थडे है या कोई स्पेशल ओकेजन है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, दोस्त की बर्थडे तो हर जगह ही आ जाती है। तो भाई आप मार्केट या ऑनलाइन गिफ्ट की शॉपिंग पे गए और आपने एक गिफ्ट ढूंढ लिया, ठीक है? फिर आप एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स या रैपिंग पेपर या रिबन और फैंसी पैकेजिंग देखकर गिफ्ट फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है? गिफ्ट दे दिया जाता है, सब खुश हो जाते हैं, पिक्चर भी बना ली जाती है, सेल्फीज भी ले ली जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो हैवी रैपिंग पेपर, प्लास्टिक पैकेजिंग और रिबन्स सब कहाँ जाता है? फ्यूफ, कचरे के डब्बे में भाई। और यहाँ से स्टार्ट होती है एक बहुत ही अफसोसनाक कहानी। देखिए थोड़ा सा रिलेटेबल बात को इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनली गिफ्टिंग कल्चर में अक्सर पैकेजिंग पर बहुत फोकस किया जाता है। चीज दिखने में अच्छी लगती है ना, लेकिन इस पैकेजिंग का एक बड़ा हिस्सा सिंगल यूज होता है जो सिर्फ मोमेंट्री ब्यूटी के लिए यूज किया जाता है। ये चीज एनवायरमेंट पर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करती है साथियों, स्पेशली जब लार्ज स्केल पर गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं ना, कोई फेस्टिवल आता है या एक्स वाई जेड कोई ऐसी चीज होती है, तो एक दूसरे को कैसे हम लोग

0: गिफ्ट देते हैं उसमें ओकेजंस पर. तो ये बहुत बड़ा जो हमारा एक स्केल होता है गिफ्ट एक्सचेंज का, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है. अब इसमें इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में, देखिए आइडिया बड़ा सिंपल है. ऐसे गिफ्ट्स चूज करें जो यूजफुल, रीयूजेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो. मतलब सिर्फ पैकेजिंग देखकर ना फिसल जाए बल्कि गिफ्ट की वैल्यू और सस्टेनेबिलिटी को भी तो मद्देनजर रखे ना. चले हम बात करते हैं कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है आखिरकार. देखिए इको फ्रेंडली गिफ्ट्स वो होते हैं जो या तो रीयूजेबल होते हैं, सस्टेनेबल मटेरियल से बने हुए होते हैं या लॉन्ग टर्म यूज के लिए डिजाइन किए जाते हैं. जैसे प्लांट्स हो गए, रीयूजेबल बॉटल्स हो गई, होममेड आइटम्स हो गए, डिजिटल गिफ्ट्स हो गए या एक्सपीरियंसेस. ठीक है, अब बात करते हैं कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स देने से क्या फायदा होता है. देखें सबसे पहला फायदा तो ये कि वेस्ट रिडक्शन होती है, इससे कम पैकेजिंग होती है और रीयूजेबल आइटम्स का मतलब है कम गार्बेज और कम एनवायरमेंटल लोड. दूसरा फायदा क्या है भाई, मीनिंगफुल गिफ्टिंग होती है. इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अक्सर ज्यादा थॉटफुल होते हैं और लॉन्ग टर्म यूज में आते हैं. तीसरा फायदा है अवेयरनेस स्प्रेड होना. जब आप सस्टेनेबल गिफ्ट्स देते हैं ना किसी को, तो आप इनडायरेक्टली दूसरों को भी इको हैबिट्स इंस्पायर करने पर मजबूर कर रहे होते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लटर कम होता है. रीयूजेबल और यूजफुल गिफ्ट्स घर में अननेसेसरी आइटम्स एक्यूमुलेट नहीं होने देते. अच्छा, इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल पता है क्या है, जरा सोचिए आप किसी को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, एक ब्यूटीफुल सा इंडोर प्लांट. अगर किसी ने मुझे देना है तो दे दें, मुझे प्लांट्स वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे अभी फिलहाल और भी ज्यादा प्लांट्स की जरूरत है, मुझे तो जितने मिले उतने कम है. तो भाई आप फॉर एग्जाम्पल किसी को एक ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट देते हैं गिफ्ट में, वो सिर्फ एक डेकोरेशन आइटम नहीं होता बल्कि वो इंसान के रूम को फ्रेश और लाइवली बना देता है. या फिर आप रीयूजेबल कॉफी मग गिफ्ट कर देते हैं जो डेली यूज होता है, अगर उनको कॉफी या चाय का शौक होगा तो वो तो डेली यूज करेंगे. कंपेयर करें एक फैंसी डेकोरेटिव आइटम से जो सिर्फ शेल्फ पर रख दिया जाता है, उसके मुकाबले तो बेहतर ही होगा ना. देखिए दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में गिफ्टिंग कल्चर बहुत एक्टिव है, बर्थडे इवेंट्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, फेस्टिवल्स, सब कुछ रेगुलरली होता है. इसलिए यहाँ इको फ्रेंडली गिफ्टिंग एडॉप्ट करना एक प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल चॉइस बन सकती है. अच्छा, अगर अब आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं ना जो आप यूज कर सकते हैं, वो ये है कि रीयूजेबल आइटम्स चूज करें, जैसे वाटर बॉटल्स, बैग्स, मग्स या कंटेनर्स. दूसरी चीज हो सकती है प्लांट गिफ्ट करें, इंडोर प्लांट्स एक लिविंग और लॉन्ग लास्टिंग गिफ्ट ऑप्शन होते हैं. अच्छा, तीसरी चीज हो सकती है क्या चीज, एक्सपीरियंस गिफ्ट्स कंसिडर करें, मतलब जैसे वर्कशॉप टिकट्स हो गए, क्लास या डिजिटल सब्सक्रिप्शंस हो गई. मिनिमल पैकेजिंग यूज करें ना, सिंपल रैपिंग या रीयूजेबल क्लॉथ रैप ट्राई करें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैंडमेड गिफ्ट सपोर्ट करें. लोकल जो आर्टिस्ट होते हैं उनके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली और मीनिंगफुल होते हैं, तो वो आप गिफ्ट करके देखें. अच्छा, अब इसका थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लिया जाए ना, तो दुनिया भर में गिफ्टिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता है, स्पेशली पैकेजिंग वेस्ट की वजह से. इसलिए सस्टेनेबल गिफ्टिंग एक ग्रोइंग ट्रेंड बन रहा है जहां फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी और इम्पैक्ट पर होता है. देखिए अक्सर हम सोचते हैं कि गिफ्ट जितना फैंसी होगा उतना अच्छा लगेगा, लेकिन असल में लोग गिफ्ट की वैल्यू और मीनिंग को ज्यादा याद रखते हैं, ना कि सिर्फ उसकी पैकेजिंग को. अच्छा, अगर बिहेवियर चेंज एंगल के बारे में बात की जाए, तो जब आप इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी गिफ्टिंग अप्रोच को ज्यादा थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं. आप सिर्फ गिफ्ट देने वाले नहीं रहते बल्कि माइंडफुल गिवर बन जाते हैं. तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, इको फ्रेंडली और मीनिंगफुल गिफ्ट्स चूज करें. आज का चैलेंज ये है कि अगर आप नेक्स्ट किसी को गिफ्ट देने वाले हैं तो इको फ्रेंडली ऑप्शन चूज करें, चाहे वो प्लांट हो, रीयूजेबल आइटम हो या कोई एक्सपीरियंस गिफ्ट हो. और अगर आप रिसीव करते हैं कोई गिफ्ट तो भी इको फ्रेंडली गिफ्टिंग को अप्रिशिएट करें. साथियों, गिफ्ट का मकसद सिर्फ खुशी देना नहीं होता बल्कि कनेक्शन बनाना भी होता है. जब हम इको फ्रेंडली गिफ्ट चूज करते हैं तो हम सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि अपनी जमीन को, अपनी इस कायनात को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं. तो भाई इसी नोट के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर. मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ. तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे सलाम करने की अहमियत के बारे में। सलाम करना इस्लाम की खूबसूरत सुन्नत है जो मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाती है। जब हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो हम असल में एक दूसरे के लिए अमन और रहमत की दुआ कर रहे होते हैं

0: Session. Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
0: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 Time Check.
1: ओ गुरु, गर्मी में खड़ी, धूप में गाड़ी और संडे का दिन दोनों एक ही जैसे होते हैं। कार में बैठे तो मुंह से आवाज निकलती है और संडे को ऑफिस आओ तो मुंह से आवाज निकलती है।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: हाला हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे फजील के साथ है। टाइम फॉर टाइम चेक, 4:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और वीकेंड के बाद संडे का दिन ऐसे ही होता है कि आप जैसे ही ऑफिस आते हैं तो अरे यार अच्छा खासा वीकेंड चल, फिर से वही काम। पता नहीं, लेकिन ये चीज़ होती है। आप कितनी भी अच्छी जगह, आपकी ऐसी फेवरेट जगह भी हो ना, 2-4-6 दिन की छुट्टी ले लो तो उसके बाद या फिर वीकेंड के बाद आपको एहसास ज़रूर होता है। और महीने भर की छुट्टी के बाद तो ऐसा लगता है कि काम ना ही होता अच्छा होता, लेकिन फिर जब सैलरी मिलती है तो लगता है कि नहीं भाई, काम में मज़ा तो है। इंसान कितना अजीब आदमी है ना। इंसान बड़ा अजीब है कि उसको मज़ा तब आता है जब सैलरी मिलती है, वैसे उसको काम करने में कोई मज़ा नहीं आता है। जब पैसा दिखा दो लालच में आँखों में ऐसी चमक आ जाती है कि ओफो। फिलहाल द रिक्वेस्ट शो में आपका इस्तकबाल है और संडे का ये दिन, वीकेंड के बाद पहला दिन, लेकिन इस शो की सबसे अच्छी बात ये है और साथ ही एफएम 107 की सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ऑफिस जैसा माहौल नहीं, दूसरा सबसे मस्त और लाजवाब चीज़ ये कि आपकी अपने मर्जी के गाने प्ले हो जाते हैं। हैं, अब बताओ अपने ऑफिस में कहीं ऐसा हो रहा है अपने मर्जी से चीज़ें चलें? लेकिन ले, ये आपका ही ऑफिस है एफएम 107। इस ऑफिस में आप

0: आपकी मर्जी की चीजें चलेंगी, जो मेरा भाई कहेगा वो यहाँ पर प्ले होगा, ठीक है। तो द रिक्वेस्ट शो, जिनको नहीं पता उनको बता दें, या जो पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं उनको बता दें, या फिर कई लोग अपनी छुट्टी से वापस आए होंगे उनको बता दें कि द रिक्वेस्ट शो में आपकी अपनी मर्जी के गाने चलेंगे। हर दिन एक नया थीम होता है और उस थीम के बेसिस पर ही हम गाने चलाते हैं, है ना। और आखिर के 15 मिनट हम तीन गाने लेकर आते हैं और ये तीन गाने कहीं से भी लिरिक्स गानों के, हम वो प्ले करते हैं और आपको गेस करना होता है गाने का नाम। इट इज़ लाइक पहचान कौन, है ना। तो पहचान कौन में जैसे हम कहीं से भी म्यूजिक, कहीं से भी लिरिक्स जो है वो प्ले कर दिया करते थे, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। लेकिन अभी शुरुआत के 45 मिनट के बारे में बात करते हैं कि आज का थीम क्या है। तो आज का थीम जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आम तौर पे आपने कई मूवीज़ देखी होंगी और उस मूवी के जो गाने काफ़ी हिट हो जाते हैं, और ये टाइटल ट्रैक कुछ ऐसे हिट होते हैं जो काफ़ी लंबे वक्त तक अपनी ज़बान पर रहते हैं, और अगर आज भी वो गाने प्ले हो जाएँ तो दिल खुश हो जाता है। तो हमारा वो मोबाइल कहाँ है जो वेंटिलेटर पे है, होता है मेरे को नहीं दी, मैं हर बार देखता हूँ यार, मालूम है मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब तक मैं बैठा रहता हूँ ना स्टूडियो में, एक तो आधे एक घंटे पहले से बैठा रहता हूँ, और जब स्टूडियो में बैठा रहता हूँ तब तक कोई काम नहीं करता, मोबाइल चला लेता हूँ, लैपटॉप खोल लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीज़ें डिसाइड कर ली, फिर उसके बाद मैं मोबाइल वगैरह कुछ नहीं देख रहा। लेकिन जब एक बार यहाँ पर बैठ जाते तब याद आता, अरे मोबाइल तो रह गया, और मोबाइल कहीं कोने में अपनी आखिरी सांस से, ये अपनी आखिरी सांस से जो है वो गिन रहा होता है। तो अब क्या है कि जो वायर है, यानी कि चार्जिंग, जो चार्जिंग का जो लोकेशन है हमारे मोबाइल का, वो ऐसे ही काम करता है, सीपीआर का काम करता है, या ऐसे समझ लो ऑक्सीजन का काम करता है, जब तक उसको लगाओ तब तक जान है, जहां हटाओ जान गायब उसकी। तो जल्दी से एक छोटा वाला वो उस दिन की तरह सुना देते हैं ये सुनो और मैं जल्दी से मोबाइल ढूंढ लूं, है जी।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, आया आया आया, एक मिनट, अरे बहुत दूर आया, आया आया, बहुत दूर रखा था मेरा भाई, इतनी दूर चार्जिंग लगा हुआ था, ये म्यूजिक प्ले,
0: ये सही है, दूर रखा हुआ था ना, एक तो भाग के जाओ, भाग के आओ, वो तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत खेल कूद कर लेता हूँ तो स्टैमिना जो है वो बना हुआ है। तो एक बार फिर से सलाम वालेकुम, और आज की थीम जो है दोस्तों वो है टाइटल ट्रैक, यानी कि जो भी मूवी आपने देखी हो जिसके टाइटल ट्रैक आपको बहुत अच्छे लगे हो उनके टाइटल ट्रैक आप हमसे सुन सकते हैं FM 107 पे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6662107, 6622107, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी उर्दू माध्यम वालों के लिए दोनों मैंने बता दिया। अब वक्त है गाने प्ले करने का और कुछ मैसेज लेने का। सबसे पहले खादिम साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग मेरा भाई। और हिशाम साहब का मैसेज सलाम ही होगा मेरे ख्याल से, वो भी GIF, हाँ GIF भी अब इनके पास ख़त्म हो रहा होगा, नहीं प्रेजेंट लगाया है फैजान साहब ने, अरे उसके बाद यूसुफ भाई का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, हैप्पी संडे इवनिंग, कैसा रहा आपका वीकेंड वॉज ओके ओके। मैं वो वाला आदमी हूँ जो अब घर से नहीं निकलता, घर पे ही रहता हूँ मैं, है नहीं, काहिली में अलग मज़ा आने लग गया है, पता नहीं, मुझे पहले लगता था कि अब्बा जो हैं मतलब ऑफिस के अलावा कहीं निकलते ही नहीं है, पता नहीं कैसे, यहाँ तो मेरा इतना घूमने टहलने का मन करता है, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे मैं अब्बा बनता जा रहा हूँ भाई लेकिन ठीक है, ये भी अपना एक दौर है, और सच में मैं अब्बा की तरह काम करने भी लगा हूँ ओके आगे बढ़ेंगे और लोगों के मैसेज हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मेरा भाई, ये सॉन्ग, ये क्या ख्याल आ रहा है आपके दिल में जो ऐसे गाने सुनना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है रात के 11 बजे हैं और यहाँ लव गुरु का एक शो चल रहा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अरे हल्का हल्का रखो यार हाथ मतलब ऐसे गाने सुनिए कि गाड़ी जो है चलते हुए ऐसा ना हो कि आंख लग जाए कि ये क्या हुआ है, 120 की स्पीड थी ना, है ना, तो वो ऐसा ना हो जाए कि एकदम से या तो आप 40 पहुंच जाएं या फिर 190 180 पहुंच जाएं, तो वो वाला भी हिसाब ना हो, अच्छे वाले गाने। ये फ़ोन हमेशा वेंटिलेटर पर रहता है, हाँ भाई आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमारे वाले फ़ोन जो है ये इसकी जान जो है वो निकल चुकी है, लेकिन अगर इसको चार्ज कर दो तो ज़िंदा रहता है, ऐसा नहीं है, रिमोट वाला हिसाब देखा है, जैसे अगर इसे 5% है, इसको अगर ठोक दो कायदे से तो ये 10% हो जाता है, दो बार ठोको तो 10

परसेंट हो जाता है और फिर अगर ऐसे 10 बार ठोको तो ये बढ़कर 50% भी हो जाता है। ठीक है, अब कोई ये मुझसे ये मत कह देना कि भाई 20 बार ठोके 100% क्यों नहीं कर लेते ये सब बातें नहीं चलेंगी। जल्दी से हम सॉन्ग पर आते हैं। पल पल दिल के पास टाइटल सॉन्ग, दिल तो पागल है दिल दीवाना, ये भी गाना अच्छा है। ये गाना प्ले करते हैं और सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट था, मैं कहीं नीचे चला गया, वो मैं प्ले कर देता हूँ, उसके बाद हम आपके गाने प्ले करेंगे। ये हैं इख्तियार। ओहो इख्तियार, तो इख्तियार भाई ने जो गाना कहा है वो कहा था 10 बहाने का टाइटल ट्रैक। तो 10 बहाने मूवी का जो टाइटल ट्रैक है वो कीबोर्ड काम कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो बस कीबोर्ड से काम ले रहा हूं मैं। और ये गाना, हाँ ये केके और शान की आवाज में लाजवाब ये गाना है। FM 107 पे सबसे पहले ये गाना आ रहा है और फिर बाकी लोगों के टाइटल ट्रैक आएंगे। एक भाई और हैं, इन्होंने कहा है सॉन्ग पल पल दिल के पास प्ले करने को, मुबीन साहब। ओके पल पल दिल के पास। फिर मोहम्मद यूसुफ हैं, आप सबकी रिक्वेस्ट जो है वो देखी जाएगी, लेकिन टाइटल ट्रैक होना चाहिए। मूवी अगर आप बता दें तो और भी आसान हो जाएगा। खुदा और मोहब्बत ओल्ड सॉन्ग, अहमद जहांजेब का एवरग्रीन सॉन्ग है खुदा और मोहब्बत। भाई बहुत पुराना नहीं, लेकिन 2000 के बाद के अगर आप गाने सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं। 90s का एक अलग एरा रखेंगे किसी दिन, उस दिन फिर हम बाकायदा इन गानों को सुनेंगे, है ना। तो 90s का जब एरा चलेगा, जब हम 90s के गाने प्ले कर रहे होंगे तो मज़ा आएगा। फिर स्पेसिफिकली क्योंकि आज प्ले कर देंगे लोग 90s के मोड में चले जाएंगे, फिर कोई कह देगा 2010 के ज़माने का, 2020 के ज़माने का, तो फिर है ना एकदम से ऊपर नीचे हो जाएगा। तो टाइटल ट्रैक ज़्यादातर अपबीट वर्जन के अच्छे बेहतरीन लिरिक्स, और फिर ज़्यादातर जो टाइटल ट्रैक थे वो 2000 से लेकर 2015 तक के अच्छे अच्छे टाइटल ट्रैक हैं। आप 2000 के बाद के टाइटल ट्रैक हमसे सुन सकते हैं। बाकी एक और भाई ने मैसेज किया, फजल भाई क्या हाल है, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं। अशफाक साहब, अरे अशफाक मियाँ भाई वो गाना चला दो, आप और यो यो हनी सिंह का, एपी ढिल्लन और हनी सिंह का। फिर देखो ये एपी ढिल्लन और हनी सिंह के बहुत बड़े फैन हैं, नाम बताएं गाने का, बाकी तो ऐसे चल जाएगा। सबसे पहले ये 10 बहाना प्ले करते हैं इख्तियार साहब के रिक्वेस्ट पे, और फिर बाकी आपकी रिक्वेस्ट यहां पर प्ले की जाएगी। के इधर आइए, 10 बहाने गा दीजिए प्लीज। शान साहब, नहीं नहीं आपको भी गाना, आप माइक पे रहे, शान साहब आपका माइक खोल दिया है। हाँ गाइए, अच्छा म्यूजिक बढ़िया होना चाहिए, मजा आ जाए, ऐसा दिल खुश हो जाए लोगों का, ठीक है आपके लिए। दोस्तों आप भी जो हमें सुन रहे हैं FM 107 पे वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नंबर है 6222107। दिल से दे सी।

शानभाई आपका माइक बंद कर दिया बहन दी, छोड़ दीजिए। आला हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4:15 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और देखो ऐसे गाने होंगे तो दिल जो है वो अपने आप खुश हो जाता है। कई लोगों ने अपनी तरह से गाने की डिमांड जो है वो कर ली है। एक गाना डिमांड करा था पल पल दिल के पास, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा पुराना वाला गाना है, लेकिन एक गाना है पल पल दिल के पास जो अरिजीत सिंह और परंपरा का है। तो ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, मिस्टर मुबीन साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी और सलाम भी किया था, वालेकुम अस्सलाम। तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये गाना दोस्तों बिल्कुल प्ले किया जाएगा। सो अरिजीत का ये वाला माइक है। अरिजीत भाई आप इधर आ जाए, परंपरा वाला का इधर है, हाँ इधर वाले में बैठ जाए आप, नहीं लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाले में ये, हाँ ये राइट में आ जाएंगे, अब सही है। तो इन दोनों को हमने अपनी जगह पे बैठा दिया है। इसके बाद जो गाना आएगा वो आएगा देव नेगी, नेहा कक्कड़, मुनाली और इक्का की आवाज में। मसला ये है कि हमारे पास लेफ्ट और राइट में सिर्फ दो ही माइक है, तो देव और नेहा जो है वो लेफ्ट में रहेंगे, मुनाली और इक्का राइट वाले माइक में। ठीक है, झगड़िएगा नहीं, नहीं आप लाइन से आइए, अरिजीत के पीछे आप लाइन लगाइए, हाँ अरिजीत के पीछे है अभी लाइन, नहीं देखिए लाइन तोड़ के आगे मत आइएगा कि अरिजीत वाले में आपकी आवाज आ जाएगी, सारा मामला बिगड़ जाएगा। नेहा जी, अरिजीत और नेहा आप में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। नहीं नहीं, इसमें अरिजीत की बेइज्जती नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अरिजीत भाई आप उठ के कहाँ जा रहे, अरिजीत अरिजीत साहब अरे उठ के कहाँ जा रहे हैं, आइए आपकी, नहीं नहीं आपकी बेइज्जती नहीं है इसमें, मैं आप समझे नहीं, नहीं आप समझे नहीं, मैं आप सबसे अलग ही गाने जो है वो गाते हैं, मेरा मतलब ये था। तो हम जल्दी से पल पल दिल के पास ये गाना प्ले कर रहे हैं, ये टाइटल ट्रैक है अरिजीत सिंह का और परंपरा का, फिर बद्री की दुल्हनिया, ये गाना है देव नेगी, नेहा कक्कड़, मुनाली ठाकुर और इक्का की आवाज़ में। तो मुबीन का पहले गाना जो है वो प्ले करेंगे और फिर जो दूसरा गाना है वो है, देखो नाम कहीं गुम हो जाता है, साहिल, हाँ साहिल थे वो, साहिल का गाना दूसरे नंबर पे, बाकी फिर खादिम साहब ने किया है ऑल राइट, ऑल राइट अरिजीत अरिजीत को ऑल राइट लिख गए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फैसल, फजील नाम है मेरा भाई, आई नो थोड़ा यूनिक है फैसल, फैसल भी बढ़िया होता नहीं, आज का क्या थीम है, अरिजीत यार वो बंदा भी रोने वाला गाना गाता है बद्री की दुल्हनिया, ये गाना तो किसने गाया ये वाला, हाँ ये तो अच्छा सॉरी ये तो यही वाला, हाँ लेकिन अरिजीत रोने वाला गाना नहीं गाता है, अरिजीत बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाता है भाई, आपने अरिजीत को सुना है, मतलब कुछ गाने तो मतलब ऐसा जबान से निकल जाता कि ओम फो क्या गाना गा दिया है। तो एक से एक गाना उन्होंने गाए, जैसे व्हाट झुमका आपने सुना होगा, व्हाट झुमका रॉकी और रानी की समथिंग कहानी थी, 2023

या 24 में आई थी, आई डोंट नो। फिर उसके बाद एक और बहुत अच्छा गाना था, तुम ही हो बंधु, ये इन्होंने गाया था, किसने गाया था वो नहीं पता, लेकिन उल्लू का पट्टा इन्होंने गाया था, बहुत फेमस हुआ था। फिर उसके बाद और भी यार अपबीट वर्जन के द ब्रेकअप सॉन्ग है ना, इन्होंने गाया था, तो अच्छे गाने गाते यार, ऐसा ना कहो अगले आदमी का दिल टूट जाएगा तो नहीं अच्छी बात है। बाकी आप रिक्वेस्ट करिए, टाइटल सॉन्ग आपके लिए प्ले किए जाएंगे। तो साहिल आपका दूसरे नंबर पे गाना है, मुबीन भाई आपका गाना पहले नंबर पे आ रहा है FM 107 पे। अरिजीत साहब आप इधर है ना, चलो शुरू करते हैं ये दो गाने बैक टू बैक आपके लिए FM 107 पे। बाकी अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने मर्जी के गाने जो टाइटल ट्रैक है बॉलीवुड के, क्योंकि आज का थीम है बॉलीवुड मूवी के टाइटल ट्रैक, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। 90s के गाने नहीं, 2000 के बाद के गाने।

अरे वाह भाई वाह, दोनों ने बहुत अच्छा गाया, आप दोनों ने मजा आ गया मैं बता रहा हूँ। नहीं आपने भी अच्छा गाया। नहीं देव जी, अरे आप नाराज ना हो, नेहा मैं तो आपका बड़ा फैन वाला, बहुत बड़ा फैन हूँ। लाजवाब गाया आप दोनों ने, मजा आ गया। मतलब आप चारों ने, मुंह क्यों आप लोगों का बन जा रहा है। सलाम अलैकुम हबीबी, 4:27 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे सारे गाने अपन तैयार कर चुके हैं, बैक टू बैक आपके लिए गाने प्ले करे जाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आई थी वीर ज़ारा की, तो वो वीर ज़ारा का कोई टाइटल ट्रैक नहीं है, बट मेन थीम या प्राइमरी टाइटल ट्रैक माना जा सकता है, वो गाना है तेरे लिए। ये गाना बहुत अच्छा है, हम है जिए आंसू समथिंग ऐसी करके। सो ये गाना जो है वो प्ले किया जा सकता है, बट द थिंग इज कि ये टाइटल ट्रैक नहीं है, लेकिन मेन थीम होती है हर मूवी का, हर मूवी के सॉन्ग जो है वो मेन थीम उसके होते हैं, तो वो तेरे लिए है, वो मैं प्ले कर दूंगा। और ये जो रिक्वेस्ट है ये है किस भाई की, फैसल भाई की। तो फैसल भाई ने कहा था, फैसल हेयर, हमारा मोबाइल ना ऐसा टूटा हुआ है। तो काना है, मैं कहा ना एक तो वेंटिलेटर पे है, तो मोबाइल मेरे से गिर गया था, तो काना हो गया समझ में ऐसा, तो काना हो गया, इसकी वजह से हेयर मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मुझे लगा ये फजील को फैसल लिख दिया इन्होंने। फिर बाद में इन्होंने नीचे लिखा, अरे माय फैसल हूँ भाई। मेरे को पता है आप फजील है, सो आई एम सॉरी भाई। और इन्होंने कहा है मैं यहाँ हूँ, ये गाना सुनना है, और ये गाना मैं यहाँ हूँ क्या लाजवाब। मुझे यकीन नहीं है आप लोग ऐसे ऐसे गाने, एक भाई ने मुझे ऐसा गाना कह दिया है, वो गाना है 2025 में एक मूवी आई थी एक चतुरनार, उसका टाइटल ट्रैक है एक चतुरनार कर के श्रृंगार। और मुझे मतलब सोच, कोई सोच सकता है भाई, नींद में भी ये गाना नहीं आए। मतलब आप गांव में भी चल जाए तो सच में उस जमाने के जो चतुरनार गाना आया था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, वो भी रेडियो में शायद अपना प्ले हो कभी गाँव के दूर दराज इलाकों में, लेकिन एक भाई के दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये वाला आ गया। अब ये वाले गाने के कहाँ से प्ले करेंगे। लेकिन अभी तक इतने गाने की रिक्वेस्ट आ गए कि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे, बट ज़रूर फैसल भाई मैं कोशिश करूँगा कि वीर ज़ारा का तेरे लिए आपके लिए प्ले कर दूँ। बट उससे पहले और भी लोग हैं, एक है अच्छा, ये पलपल देल के पास इनका हो गया है, कैन यू प्लीज़ प्ले एनी सैड सॉन्ग फ्रॉम शोएब। सैड सॉन्ग यार, चलो ठीक है, तेरे लिए आप अगर आप समझे तो ये सैड सॉन्ग हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ सैड सॉन्ग फॉर मी। ये एक ब्यूटीफुली लिखा गया सॉन्ग है जो कि लता ने और रूप कुमार राठौड़ ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत है ये सॉन्ग, तो ये आपके लिए भी और फिर फैसल की तरफ से भी है, ठीक है। फिर एक और है, ये टॉल लिख दिया इन्होंने, फिर पता नहीं, फिर नसीम भाई ने लिखा, कहो भजुमिया का हाल चाल बा, कहो नसीम भैया ठीक बानी, तू सी बता दो कैसा हो, ठीक है सब भला चंगा है। और उसके बाद मेरी आवाज़ कैसे वैसी क्यों हो रही, पूरी एकदम ही चेंज कर लिया मैंने। रुबल हुसैन कहते हैं मुझे प्यार है, ओह दैट्स कूल, लेकिन किस मूवी से ये तो बताओ। अभी मैं अगर ये डाल दूँ ना अपने डेटाबेस में, चलो डाल के देखते हैं, ठीक है, इतने गाने आ जाएंगे, ले एक आया तो एक ही गाना, और वो भी है कि क्या मुझे प्यार है / रिमिक्स, आर्टिस्ट के 2006 का ये सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी वो लम्हे, एंड दैट्स नॉट अ टाइटल ट्रैक। अब क्या करें बताइए, मुझे प्यार है से तो गाना है ही नहीं, अब डबल प्यार इन्होंने लिखा, चलो मैं ये भी डाल देता हूँ भाई, आपकी बात रह गई भाई। ये गाना है हमारे डेटाबेस में मौजूद है भाई, क्या बात है। कि कई बार ऐसा होता है इतने सारे सॉन्ग होता है, लेकिन रुबल साहब ये जो गाना है मुझे प्यार प्यार है, ये अरमान मलिक और श्रेया घोषाल ने गाया, भूत पुलिस 2021 ये कोई मूवी भी आई थी, क्या बात है यार। मतलब कुछ मूवीज आती हैं और चली जाती है, पता भी नहीं चलता है। इट्स लाइक मर्दों के जो शौक हैं वो ऐसा बीवियों को पता ही नहीं है कि मेरे मियाँ को पसंद क्या है, ऐसा उनको पता ही नहीं चलता, वैसे हमें नहीं पता चलता ये मूवी कब आई कब गई, पता भी नहीं चला। ये गाना ऐसा कुछ शुरू होता है, ठीक है। तो रोबेल भाई आपका गाना भी प्ले किया जाएगा, मुझे प्यार प्यार है, अरमान मलिक श्रेया घोषाल की आवाज़ में। बाकी एक भाई ने मलंग गाना कहा था प्ले करने को, और एक कहा था आई हेट लव स्टोरी। सो ये गाने जो हैं सबसे पहले प्ले करूँगा, उसके बाद आप लोगों के गाने आएंगे, ठीक है। चलो ये काम कर लेते हैं,
क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से देखना है ना, तो फैसल भाई ने पहले मैसेज किया था, मैंने उनको गलत पढ़ लिया था, ठीक है। उनका गाना मैं सबसे पहले प्ले कर रहा हूँ तेरे लिए, फिर उसके बाद मैं प्ले करूँगा मलंग गाना जो कि है किस भाई ने करा था, नाम चला जाता है मेरा भाई, नाम कहाँ गया, रिजवान साहब ने ये कहा था प्ले करने को, रिजवान साहब नहीं, ये रिजवान नहीं है भाई, सॉरी पता नहीं कहीं तो गायब हो गए भाई, तुम जो भी एक बार नाम लिख कर दे दोगे दोबारा, सॉरी मेरा भैया। और फिर आई हेट लव स्टोरीज के बाद ये प्ले करेंगे, पहले तो दो गाने तेरे लिए लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन एंड ओनली फैसल भाई, और फिर मलंग आपकी आवाज़ में है, कौन, अरे वाह शर्मा साहब की आवाज़ में, ठीक है ये गाने इंजॉय करें एफ एम 107 पे। फिर वापस आके बाकी के टाइटल ट्रैक आपके लिए प्ले किए जाएंगे एफएम 107 पे, दिल से देसी।

0: एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
3: ऑन FM 107, दिल से देसी।

लो रुबल भाई, आपकी भी मन की हो ही गई है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एफएम 107 पे फजील के साथ है इस्तकबाल आप सभी का, और वक्त हो गया है 4:47, जहां पर अब आपको प्ले किए गए म्यूजिक या लिरिक्स को पहचानते हुए गाने का असली नाम बताना या फिर मूवी का नाम बताते हुए भी आप कुछ डिटेलिंग तो दे ही सकते हैं। इससे क्या है, आसान हो जाएगा। वेल, आज जो मेरे पास 3 गाने हैं, ये 2 गाने तो बहुत आसान है मुझे ऐसा लगता है, और तीसरा वाला बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर आप तीनों कर ले गए या तीनों में से आपने, मैं कहता हूँ आप सिंगर का भी नाम बता दें, तो भी मैं मान जाऊँगा भाई साहब कि आप सच में बॉलीवुड फ्रीक हैं या फिर आपको सच में गानों की अच्छी पहचान है। ठीक है, तो 3 ये सॉन्ग है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा कॉलिंग नंबर है 4434377, या फिर 6662107 पे हाई लिखकर भेज सकते हैं। मैं तो कहता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज ही डाल दो, अपन इधर से कॉल करेंगे ना बाबा। ये भी एक तरीका है, मतलब मैं आसान करने के लिए बोलता हूँ, ताकि जब कंपनी दे रही है तो काहे के लिए, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, वो थी बात, और कुछ नहीं। बाकी अगर ये गेम खेलना है तो

आप हमारे WhatsApp पर भी खेल सकते हैं, और WhatsApp पर खेलने के लिए ऐसा है कि मैं यहां से लिरिक्स जो है बीच से प्ले करूंगा और आपको गेस करना होगा हमारे WhatsApp पर ही। तो सबसे पहला जो सॉन्ग है वो मुझे लगता है कि 80% लोग पहचान जाएंगे। नहीं ठीक है, तो प्ले कर रहा हूँ। और अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं, और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको तीन गाने सुनने हैं फिर आपको तीनों के जवाब देने, एक गाना एक बंदे के लिए, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, बाकी लोगों को भी मौका मिल जाएगा और फिर वक्त भी हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा होता है। माशाल्लाह उर्दू तो मेरी क्या बात है। लो भाई, पहला जो सॉन्ग है वो रहा ये।

बस बस बस ये इतना सा म्यूजिक कहें या लिरिक्स कहें, इसे सुनने के बाद आपको इस गाने का नाम बताना है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। और जो उम्मीद थी वो उम्मीद देखिए कुछ ही लोगों से होती है, वो उम्मीद पर खरे उतरते हुए सबसे पहले यूसुफ भाई ने जवाब दे दिया। मुझे पता था कि अगर कोई जवाब सबसे पहले देगा आसान वो यही होंगे। बिल्कुल सही जवाब आई गेस इन्होंने दिया है, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, यूसुफ भाई ने सही दिया है। और थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कुछ सेकेंड्स की ही देरी हुई होगी, क्योंकि 4:49 पे इन्होंने जवाब दिया और 4:49 पे भी यूसुफ ने जवाब दिया है, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा। और ये हैं हिशाम साहब, हिशाम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, अरिजीत सिंह का ये गाना है और 4:49 पे एग्जैक्ट टाइम पे जवाब दिया है, अबू तमीम इनका नाम है, तो इन्होंने भी बिल्कुल सही पहचाना। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि वही गाना है जो आप सोच रहे हैं तो लिखकर भेज दो, इतना नहीं सोचते यार, अरे मतलब एक ट्राई दो मारने में क्या मसला है। बाकी लोगों के मैसेज है अपन पढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं सुना देता हूँ, ये बीच से लिया गया ट्रैक और ये टाइटल ट्रैक ही है।

हाय हाय, आरिफ भाई ने भी बिल्कुल सही बता दिया है। और ये गाना प्रीतम अरिजीत और निकिता गांधी का है। इस गाने का नाम है कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। वेल, मुझे लगता है कि आगे इसके शायद यही लिरिक्स हैं। लेट मी चेक अगर ये हो पाए तो। वेल, अब तो देर हो गई है, अब वाले जवाब मानेंगे नहीं भाई मोहम्मद साहब, लेट होया मामला अब नहीं। ये मैं प्ले करता हूँ।

नहीं आया, देखा रابطہ लफ्ज नहीं आया, लेकिन इसी के बाद कुछ तो है तुझसे रابطہ, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला सॉन्ग, लेकिन अब दूसरा सॉन्ग आ रहा है जो बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब आसान से भी आसान है। ये रहा वो लिरिक्स, बस इतना ही था। अब अगर ये नहीं बता पाए भाई साहब आप, तो मैं ये कहूंगा कि फिर तो मतलब क्या है, मतलब अपने दिमाग पे फिर जोर डालना पड़ेगा, फिर बादाम पे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। अगर ये गाना किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहता हूं भाई साहब बादाम के रेट बढ़ भी जाएं, भिगो के खाओ, सूखा खाओ, कच्चा खाओ, हैं ऐसे ही खा जाओ, मतलब ऐसे छील छाल के खाओ, मुझे कुछ नहीं पता, बादाम खाओ मेरा भाई। मैं नहीं, अरे यार ये गाना तो मतलब लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला जो जवाब आया है वो 452 पे आया, वेल ऑल द आंसर, जो जितने भी आंसर आए वो 52 पे ही आए हैं। मोहम्मद ने सबसे पहले बताया है, बिल्कुल सही। यूसुफ भाई ने भी उसके बाद कोशिश करी है, लेकिन बिल्कुल सही है। और फिर तीसरे नंबर पे हैं अबू तमीम, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब बताया है। और फिर है हिशाम साहब का मैसेज, इन्होंने भी सही बताया, बहुत ही उम्दा। फिर ये है आरिफ ने भी सही बता दिया, ये भाई को जुमराती रहे, इनको भी बादाम के पैसे बचा लिए तुमने भी, है मेरा भाई नहीं ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही पहचाना आपने भी। फिर एक और मेरा भाई, क्या नाम है इनका,

अब उसकी जगह खजूर खा लेना। चलो एक और ये ट्रैक है, अगर इस ट्रैक को आपने पहचान लिया तो मैं बादाम के पैसे अपनी तरफ से दूंगा। चलो बात तय हो गई भाई साहब, ये वाला इतना टफ है। मैं एक्चुअली जब ये गाना सुन रहा था, और ये अच्छा खासा फेमस वाला गाना है, लेकिन बीच से जिस जगह से ये गाना मैंने लिया है वो बहुत ज़्यादा टफ है। अगेन ये टाइटल ट्रैक है और उम्मीद है कि कोई एक बंदा पहचान लेगा, और जो पहचानेगा बादाम का 1 किलो बादाम का पैसा फजील भाई की तरफ से।

हाय हाय पहचानो पहचानो तो जाने। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये कि मैंने भी बादाम के पैसे बचा लिए हैं। अब बताओ ये गाने का नाम। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वैसे एग्जैक्ट गाने का नाम तो नहीं बताया है, एक भाई बहुत करीब पहुंच गए हैं, मिस्टर मुबीन। यार एक किलो का पैसा चला जाएगा भाई यार बादाम का। करीब पहुंचे हो, सही नहीं है जवाब, मैं ये कहूंगा। मुझे फिर क्योंकि अब जब बादाम लगा ही रहा हूं मैं तो क्यों ना फिर आपका बता दूं कि जवाब गलत है। लेकिन मुबीन बहुत करीब पहुंचे। नवराज हंस का ये गाना है और मेरा एक किलो का पैसा गया। अबू तमीम ने बिल्कुल सही जवाब बताया, क्या बात है। सॉरी फजील, कुडंट रिकॉल। मोहम्मद यूसुफ ने कहा है टाइटल सॉन्ग ऑफ वीरे की वेडिंग। दो किलो बादाम का पैसा लग गया मोहम्मद। हिशाम साहब 3 किलो, अरे अल्लाह रे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मत बोलो नसीम साहब, अब इसके बाद तो मेरा नुकसान ही बढ़ता चला जा रहा है। बस अब और नहीं मानूंगा। वीरे की शादी, वीरे दी वेडिंग है, चलो ठीक है शादी और वेडिंग मान दो, 3 से 4 किलो। क्या मैं अपनी बात से पलट सकता हूं क्या? प्लीज। कभी कभार होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान, आज लग रहा है यही हुआ है मेरे साथ। 4 किलो बादाम का पैसा मेरे जेब से जा रहा भाई। वैसे बादाम का रेट क्या चल रहा हो भाई, मतलब भारी मिस्टेक हो गया, अरे बलंडर हो गया भाई साहब। ये कौन है जो फॉरेन पे का नंबर दे रहा है अपना, मैं ब्लॉक कर दूंगा बता रहा हूं। अबू तमीम आंखें बड़ी करके मैं डरा रहा हूं। ठीक है चलो, मैं फॉरेन पे कर दूंगा फिर। वैसे मैंने चीटिंग की, और चलो भैया अब जहां मेरा 4 किलो का लग रहा था वापस से 3 किलो का। ईमानदारी मुबीन साहब, ईमानदारी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इन्होंने अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके मेरे लिरिक्स जो हैं वो चुरा लिए थे। ओके 55 रियाल का 1 किलो। मैं तो फजील हुई नहीं, मेरा नाम फजील नहीं है, मेरे को नहीं पता। एक तो इतना बड़ा बलंडर हो गया भाई साहब। माजिद साहब आप कौन? मुमताज फजील, मैंने आपका पैसा बचा लिया है, मुझे किशमिश ही दे देना। मुझे मारो, मुझे, मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ। हाय भाई, ये मुमताज साहब, इनको भी बैन करना है। ओके दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में आप सबका पार्टिसिपेट करने का। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल शाम 4 बजे। बादाम वाली बात भूल जाना, मुंह से निकल जाती कोई बात। बादाम का बिजनेस आप शुरू करो, फिर सेम सवाल पूछो, क्या बात है अब्दुल्ला भाई। लेकिन इसमें नुकसान तो मेरा ही है ना, बिजनेस शुरू करने के बाद पैसे तो अपने ही जा रहे हैं, बस ये है कि थोक में यानी कि होलसेल में लेंगे तो मामला थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अब्दुल्ला भाई ये वाला सही है, जो जवाब नहीं दे पाए उसको रिवर्स भी कर दूंगा कि तुम मुझे बादाम दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन मजेदार ये गेम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खेलने के लिए, और बादाम के लिए कृपया हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे कल कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662217। फिलहाल कुली नंबर 1 का ये टाइटल ट्रैक है, राज पंडित ने गाया है और ये रिक्वेस्ट किया है आतिफ ने। अगेन ये आपके लिए ट्रैक, सुनते रहे FM 107 और फजील को दीजिए इजाजत, दिल से देसी बादाम कल।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अरे भाई साहब, वो 5 बजे वाला आरजी कब आएगा? क्या नाम है उसका, दोहा वाला कभी आ गया क्या? बंटी बेटा गाड़ी में ऑन करियो, ऑन कर ले।

अरे का समझ के आए थे हाय वीकेंड वीकेंड खत्म खलास अरे ओ सांबा अरे म्यूजिक चला रे Assalamualaikum, मैं हूँ जी आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड एफएम 107 पे भाई सब लट गार्ड के तैयार हैं किसी ने किधर भी जाने नहीं देंगे बढ़िया मौज करा देंगे इस शो ने जमा जहज बना देंगे कुछ मैसेज आ गए हैं आप भी कर दो भाई साहब व्हाट्सएप करना बड़ी अच्छी बात होती है किसी का दिल रखने के लिए कर देना चाहिए हम सब भाई कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम आलिया रे बरा भाई कह रहा लोगों के दिल के दर्द बाहर आ रहे हैं भाई अच्छा दोपहर का मैसेज सॉरी मैंने कहा ऐसा कह दिया एक मैसेज रिस्पेक्ट यू लॉट भाई भाई Respecting you a lot. अरे थैंक यू सो मच इज्जत कमाई जाती है आज एक रुपए कमा लिया मैंने इज्जत में मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच यूसुफ भाई कह रहे हैं हैप्पी संडे इवनिंग कैसा रहा कोई मेरा वीकेंड भाई सिमिलर होता है हर हफ्ते सेम ही होता है नाजिया बहन वालेकुम अस्सलाम और कहानी भी लिखती है डरा दिया आपने स्टोरी से है ना थर्सडे वाली मौज करा दी एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई इंजॉयिंग प्रोग्राम प्लीज कीप इट अप टुडे इज द बिगेस्ट डे इन कतर एंड अल खोर फिश राउंड अबाउट टू रास लफान रोड द स्पीड लिमिट हैज ऑफिशियली बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 120 टू 100 स्टार्टिंग टुडे भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है भाई ने यो भाई हमारा जी एस के भाई कह रहे हैं कि अलखोर फिश राउंड अबाउट टू रास लफान स्पीड लिमिट को घटा दिया गया है 120 से 100 कर दिया गया है कति गाड़ी ने स्पीड मत देना नहीं तो एक्सेलरेशन पर पैर दिया आपने और आपकी बढ़िया सी ब्लैक एंड व्हाइट सेल्फी खिंच जाएगी हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम

0: और एक और मैसेज आ गया अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम खलील भाई का, और एक और मैसेज है नसीम साहब वालेकुम सलाम वेलकम लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक मकसूद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मकसूद। और एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, मैं जी बढ़िया भाई, आप सुनो सलमान भाई क्या चल रहा भाई। कबीर भाई मुझे पता है हर हफ्ते सेम ही होता है लेकिन कभी कभी अलग भी होता होगा इसलिए पूछा, ना जी अलग नहीं होता हमारा वीकेंड सारे हफ्ते सेम ही हो जा कर है भाई, हम चेंज ना करते। एक मैसेज ज़बरदस्त एंट्री मज़ा आ गया भाई, थैंक यू भाई को बहुत सारा प्यार किया। असलम जी वालेकुम असलम जी, वीर जी कितना मिस्टर मुबीन भाई क्या चल रहा है मेरे भाई। अच्छा आज जो कहानी है ना भाई साहब, छोटी छोटी भले ही ये कहानी लेकिन ये छोटी सी कहानी में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं ये कहानी ना सुनाने नहीं वाला था पहले, तो मैंने ना आज मैंने घर पे सुनाई, मैंने कहा सुना दूँ ये, तो भाई साहब उधर से जवाब आया कि हाँ देख लो, तो मैंने कहा ये तो कन्विंसिंग नहीं है। फिर मैंने अपने आप को गाड़ी में ये कहानी दो तीन मरतबा सुनाई, कल्ले कल्ले बात करने में बड़ा मज़ा आता है, और मेरे अंदर के एक सीनियर इंसान ने मुझसे कहा अरे सुना दे देखी जाएगी, तो आज भाई साहब बढ़िया छोटी सी कहानी है लेकिन मौज करा देंगे आपको। नसीम भाई कह रहे हैं क्या हाल है भाई साहब, सब बढ़िया चल रहे भाई, कह रहे हैं क्या क्या की हाल चोल बो चाल बा हो खोजी। ये नसीम भाई कौन सा आपने ये बिहारी और सब कुछ मिला दिए भाषा एक साथ ही। एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आप आए बाहर आई, थैंक यू सो मच भाई, गर्मी बहुत बड़े चल रही भाई, कह रहे हैं अरे गर्मी तो चल रही है भाई, अभी थोड़ी चली जाएगी गर्मी। और एक भाई कह रहे हैं कि आप छुट्टी कब ले रहे हैं। ये एक और नसीम साहब ने मैसेज किया, आप साहिबा हैं न साहिब हैं, आपने ही नहीं बताया। छुट्टी इंशाल्लाह नवंबर में लेंगे, तो नवंबर से दिसंबर आपको मेरी याद में रेडियो खोलते ही आंसू बहाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, बात है थोड़ा सा तो याद करें, थोड़ा सा याद करें ना नवंबर में, ऐसी क्या बात हो गई, डेढ़ महीने बाद आऊँगा ठीक है, फिर छुट्टी मार के आए हाय। अभी से ख्याल आ रहा है मुझे दिल्ली के कोहरे की ठंड, होए होए होए होए, अभी से सपना देख लिया है मैंने, ठीक है मैंने अपने आप को इमेजिन कर लिया छुट्टी में इस बार ठंड में, भाई साहब शॉल होगी बढ़िया, आग जला के बैठेंगे दिल्ली के कोहरे में, ओए होए होए होए। तो ये छुट्टी का सपना अभी बहुत जल्दी देख रहा हूँ मैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आज के शो के बारे में बात कर लेते हैं, तो 974 इवनिंग आज कहानी का टाइम वही है, पर थोड़ा सा आगे करेंगे 5:40 के आसपास, क्योंकि छोटी कहानी है, सो थोड़ा सा लेट भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। शो का आगाज़ कैसे होता है आपको पता ही है, इंशाल्लाह इवनिंग अफ्तार के बाद शाम के अफ्तार के बाद मुलाकात होगी 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद। बट मैसेजेस आपके नहीं रुकने चाहिए भाई, मैसेज चाहिए ना ना, इसमें तो मेरा लालच छुपा है। 666-22107 नंबर है, 666-22107, यहाँ आपको आने आना है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है भाई, यहाँ आना ही पड़ेगा। एक मैसेज हमजा आएगा, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, क्या क्या कैसे क्या कैसे गुजारा, दो दिन सर बहुत ख़राब गुजरे आपकी वजह से, आप नहीं थे इसलिए आपके बॉस से बात करनी पड़ेगी, क्या हमारा गुजारा नहीं होता आपके बगैर। अरे मेरा भाई सो स्वीट ऑफ यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा भाई का, बहुत सारा प्यार। हमजा भाई क्या लेंगे, हमजा भाई चाय बना दूँ आपके लिए, हमजा भाई के लिए लगा भाई दो मलाई मार की। अभी हमजा भाई थोड़ी देर में आ रही है आपके लिए चाय, 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलते हैं, दुआ में ज़रा याद रखिएगा ना, स्टे ट्यून।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

कहते हैं क्या है कंडीशन अप्लाई किस बात के लिए. एक मैसेज है, फर्स्ट सर आई वुड टेक अ गुड लुक एट हिम टू सी व्हाट ही लुक्स लाइक बिकॉज ही वुड बी मी राइट. आफ्टर दैट आई वुड फाइट हिम टू फाइंड आउट हु इज स्ट्रॉन्गर. आई वुड टेस्ट माय ओन स्ट्रेंथ एंड सी हाउ पावरफुल आई रियली एम. एज फॉर द फियर सर आई वुडंट बी अफ्रेड एट ऑल. डरेंगे ही नहीं अरबाज भाई, मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले ये सारे भागेंगे जो कह रहे हैं भागूंगा नहीं, ये सारे भागेंगे. देखते के साथ ही मैं लिख के दे रहा हूँ. आमिर साहब लिखते हैं, भाई हमारा साथ होता है ये मैसेज नहीं कर पाता. समझा नहीं, एक मैसेज है.

0: अमन भाई वालेकुम अस्सलाम, एक कॉल आ रही है ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी मेरा भाई, क्या बात है, क्या है,
1: क्या हाल चाल भाओ?
0: एकदम बढ़िया बा। तो मेरे भाई क्या सोच रहे हैं, आपने सवाल सुन लिया होगा, जवाब देना चाहेंगे तो प्लीज दे दीजिए। जी बताइए।
1: वो तो मैं मैसेज भी दिया हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: लेकिन ये एक बात है, अगर देखने की बात तो पहले आदमी दर्शन पाता कि ऐसे हुआ कैसे।
0: हाँ फिर
1: ये तो अभी थोड़ी देर के लिए देखेगा, फिर क्या समझ में आता उस वक्त वैसे ही कंडीशन फॉर अप्लाई।
0: बड़ा टाइम बता रहे हैं आप उसके साथ हैं कि भाई रुको मुझे समझने दो, ये हो क्या रहा है। भाई मैं तो जूते चप्पल उठा के
1: बता जाएगा, पहले पहले नजर पड़ते ही आदमी बोलेंगे हाँ ये क्या चीज है।
0: भाई मैं तो चप्पल जूते उठा के भागता भाई, उल्टे पैर, मैं सही बता रहा हूँ, लिफ्ट से भी नहीं, सीढ़ियों से भागता हूँ नीचे। और मैं रहता छठे फ्लोर पर हूँ, सोच लो अब।
1: लेकिन मेरी एक बचपन की कहानी है।
0: अच्छा, क्या कहानी है?
1: मैं हमशक्ल का, मैं तो स्कूल में था, मेरे हमशक्ल कोई मांगने आ गया था, मेरी हमशक्ल।
0: अच्छा ठीक है, फिर
1: मेरी अम्मी तो उसको घर पर लाने के लिए रो रो जब तक मैं स्कूल से घूम के नहीं आया उसके पीछे पड़ी।
0: अरे ओके, ये थोड़ा अलग हो गया मामला।
1: जब मैं आया तब बोले ये तो मांगने वाला, मैं तो स्कूल में था तब उनको जाने दियो।
0: अरे यार भाई इतना कॉमन तो
1: भी बुरा।
0: हाँ
1: उनका भी बुरा हाल, अम्मी का भी बुरा हाल कि मेरे बच्चा मांगने कैसे चलाएंगे।
0: हाँ यार ये तो बड़ी टेंशन वाली, माँ भी कह रहे बेटा कितने चीज तू ऐसी बोल दे, क्या बात हो गई, क्या कर रहा है। अरे यार नहीं, ये तो फिर ये तो आपके मामले लगे।
1: ये पूरा एक दो नहीं, पूरा वो जितने गांव का आदमी उधर लास्ट पास पड़ोस सब ने, ये नहीं है बच्चा तुम्हारा, बोला नहीं यही है, देखो एकदम हम से
0: इतना कॉमन चेहरा है क्या आपका, क्या बात कर रहा है।
1: वो बेचारा कहीं से मांगने आया था।
0: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे, अच्छा नहीं ये कमाल का इंसिडेंट हुआ फिर तो आपके साथ भाई।
1: ये तो बहुत पहले तकरीबन 20 साल, लेकिन 20-25 साल पहले।
0: अच्छा
1: मैं कितना,
0: हाँ मैथ्स कर लो। मैथ्स कर लो। चलो अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन कॉल करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, ठीक है ओके। तो इनके बाद एक और मैसेज आया मेरे पास, ये असरा मैंने लिखा है, लिखती है कि नहीं नहीं नहीं नहीं ना ना ना ना, ये तो एआई है, करो और मुरी मैया। बैन एआई कहने का मौका नहीं मिलेगा मुझे पता है। और मुबीन भाई कह रहे हैं, मैं तो पूछता भाई चाय लो कॉफी लोगे। एक मैसेज है मेरा भाई, जूता हाथ में पकड़ के ऐसे भागता कि पाकिस्तान जाके रुकता, उस्मान भट्टी साहब कह रहे। मैं भी यही करता। एक मैसेज है, मैं बोलूँगा भाई अब तो काम पे जा रहा हूँ, अब तू काम पे जा मैं आराम करूँगा। ये जितने लोग कह रहे हैं सलमान भाई का मैसेज, जितने लोग कह रहे हैं सब के सब जूते चप्पल उठा के भागेंगे बता रहा हूँ मैं। एक मैसेज है और ये मैसेज क्या अरबाज भाई ने, अरबाज भाई क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बाय द वे इफ यू गो अप इन द माउंटेन्स एट अराउंड 2 AM स्पेशली इन दोज रिमोट एरियाज यू कैन हेयर द स्क्रीमिंग साउंड्स एट नाइट। सर आई लिव इन द एरिया ऑफ पाकिस्तान वेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर क्वाइट कॉमन, इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड पीपल ऑफन टॉक अबाउट सच थिंग्स देयर, बट एज फॉर फेयर सर दैट इज इन अल्लाह'स हैंड, आई डोंट रियली फील स्केयर्ड। ओके आदत हो चुकी है भाई कह रहे हैं। एक मैसेज है एआई ये कैसे हो सकता है, आई ये कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता मोहम्मद भाई, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अरे यार मैं कैसे समझाऊं, तो फर्ज करना है, फर्ज कीजिए। मोहम्मद शख साहब वालेकुम अस्सलाम, एक भाई ने वॉइस नोट भेजा है तो मैं वॉइस नोट अभी सुनूंगा। ये मैसेज मोहम्मद भाई का, मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच फॉर योर वॉइस नोट। एक और वॉइस नोट है, उसके बाद एक मैसेज आया है, भाई मैं खड़ा होकर सोचूंगा मैं सही घर आ गया हूं कि क्या हो गया, हमजा भाई कह रहे हैं। तो उस समय मैंने कहती है अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, क्या सवाल है। तो बहन सवाल ये है कि मान लीजिए आप घर में, आप दाखिल हो रही हैं अपने घर में, अकेली रह रही हैं उस टाइम पे, ठीक है। आप जैसे ही आपने घर में एंट्री ली, आपने देखा कि सामने जो है आपका हमशक्ल बैठा हुआ है, बिल्कुल सेम डिट्टो, और वो कुछ नहीं कर रहा है हमशक्ल, सिर्फ बैठा हुआ है, सर नीचे झुका है, आपका क्या रिएक्शन होगा? एक मैसेज है, ये एआई कैसे हो सकता है, ये मेरा रिएक्शन होगा। अच्छा ओके ओके, यूसुफ भाई कहते हैं कि देखते हैं पहले मुंह खुला का खुला रह जाएगा, फिर मैं अपने आप को थोड़ा संभाल के पूछूंगा आप कौन हैं भाई। आप तो फिर भी पूछेंगे यूसुफ भाई, मैं तो जैसे ही देखूंगा, समझ रहे हैं आप, मैं जैसे ही देखूंगा भागूंगा ऐसा, पीछे धूल उड़ाई होगी। एक कॉल आ रही है, रुकिए जरा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमालुद्दीन भाई, कैसे है मेरा भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम। ये क्या आज खबर कॉपी आप ढूंढ रहे, क्या बात है?
0: जी भाई आज कुछ अलग करने की सोचे हमने, कहा स्टार्ट आज ऐसे करेंगे भाई। आप क्या करते कमाल भाई, अगर आपको ऐसे दिख जाए?

0: मतलब घर में दाखिल हुए और आपका हमशक्ल बैठा हुआ है, क्या कर देंगे आप?
1: भाई इतना तो आईना देखते नहीं, कभी कभी देखेंगे तो पहले तो यही नहीं समझ में आया कि मैं हूँ या कोई और तो नहीं है भाई।
0: चलिए अब आपको डर लग गया, आपने देखा भाई यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम बैठा हुआ है सोफे पे, तो क्या करेंगे आप? भागेंगे वहाँ से के बाकियों की तरह इंटरोगेशन करेंगे?
1: नहीं पहले तो भाई कंफ्यूजिंग तो पहले ही हो जाएगी ना,
0: ठीक है हो गई,
1: पहले ही डर जाएगा,
0: ठीक है कंफ्यूजन हो गई।
1: बाद उससे पूछेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूत है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं मर गया मेरी आत्मा घूम रही है, ये भी तो होता है ना भाई।
0: ज्यादा पिक्चर देखने का नहीं जाएगी, मैं ही तो नहीं टपक गया कहीं?
1: नहीं पिक्चर देखने भाई देखिए पिक्चरों में तो होता ही है।
0: हाँ वो तो है,
1: हकीकत में ऐसा जल्दी होता नहीं है। भाई जो जो कभी देखे हैं कि जो कॉपी होते हैं बच्चे या लड़कियां या लड़के जो भी है, तो वो कभी अपने आप को देख के डरते हैं, नहीं डरते हैं क्योंकि सेम टू सेम होते हैं।
0: तो आप क्या करते हैं, मतलब आप बेसिकली सवाल जवाब करते हैं, मान लीजिए सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा, आप हमेशा एकदम चुप बैठा हुआ है,
1: सवाल जवाब भाई अभी तो यही कंफ्यूजन नहीं क्लियर कर पाए हूँ कि अगर सामने आ जाएगा तो होगा क्या।
0: हाँ तो वही क्लियर कीजिए, आप क्या करेंगे आप?
1: ये तो नहीं पता,
0: ये तो नहीं पता
1: उसके बाद क्या होगा बता नहीं सकता, वो सवाल मेरे से पूछेगा कि मैं उससे पूछूंगा
0: पता ना, वही
1: पूछ
0: आराम से सोचिएगा, आराम से सोचिएगा आप। आज आज की कहानी जरूर सुनिएगा, अगर आप लाइव सुन पाए तो अच्छी लगेगी आपको कहानी, इफ यू कैन।
1: आपकी कहानी की वजह से तो गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया भाई 2 घंटे के लिए।
0: अच्छा फिर तो ठीक है, फिर आपको मजा आने आ रहा है, फिर मजा आएंगे
1: अभी कहानी की वजह से गाड़ी स्टार्ट किया होना तो मेरे को जाना था 6 बजे के बाद
0: आ रहे, बस फिर आपको मजा आने वाले भाई, बस बस शुरू कर रहा हूँ भाई कहानी, ठीक है
1: इसी को
0: अरे सुनाएंगे वो आप देखिए अरे मजा आने वाला है आपको कमाल भाई, हफ्ते की शुरुआत बहुत बढ़िया होगी, ठीक है जजाक अल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कमाल भाई के बाद अजीज भाई लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई, एक मैसेज करें या फिर सबसे पहले ट्राउजर चेंज करता, ये आमिर भाई ने लिखा है, तब उसमें लिख ली डरावना क्या, मुझे तो सीधा अटैक आ जाएगा। एक मैसेज करें अस्सलाम वालेकुम भाई, सीधा आयतल कुर्सी पढ़ूंगा, बेस्ट सोल्यूशन अरबाज भाई। मैं पता एक छोटे से बच्चे को जानता हूँ, तकरीबन 8 साल का है वो, अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, वो पता क्या करता है, वो अपने आसपास लोगों से बोलता है देखो मुझे चीज दिला दो, बता रहा हूँ अभी जा नमाज निकाल के नमाज पढ़ लूंगा, तुम्हारी दुआ मांग लूंगा, बता रहा हूँ मैं। उसकी धमकी इतनी प्यारी लगती है ना मुझे। खैर एक वैसे भाई सिंपल 9-2-11 हो जाते हैं भाई, मैं भी यही करता एग्जैक्टली। माजिद भाई कह रहे मैं तो भाग जाऊंगा भाई, मैं ना रुकने का 1% भी नहीं रुकूंगा, मैं भी भाई भाग लेता, ये कोई रुकने वाली बात है? लोग कह रहे मैं तो सवाल जवाब करूंगा, आपसे आप कौन है, रिश्ता हो गया आपका? बेटा पांव ऊपर करके बैठो, ढंग से बैठो, मेक योर सेल्फ एट होम, ये कोई बात है? तो मैं सवाल दोहरा देता हूँ, सवाल ये था कि आप मान लीजिए घर में अपने दाखिल हुए और आप अकेले हैं, अकेले रहते हैं आप, और आपने जो है जैसे ही घर में एंटर किया, सामने सोफे पे आपका हमशक्ल बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सोफे पे बैठा हुआ है सर झुका के, आपका क्या रिएक्शन होगा? इस पे लोग देखिए कितनी कमाल की बात कर रहे हैं, कह रहे मैं तो उससे बात करूंगा। कोई बात नहीं करेगा, मुझे पता है, चप्पल और जूते उठा के बिना कुछ कहे उल्टे पैर भागेंगे। एमरजेंसी एग्जिट से बंदा बाहर। लेकिन आप क्या करते, व्हाट वुड हैव बीन योर रिएक्शन, आप जरूर बताइएगा। एक मैसेज आया, मैं कहता कि भाई मेरे साथ किराया शेयर करोगे? ये मुमताज भाई कह रहे मैं तो ये कहता मेरे साथ किराया शेयर कर लो, हम दोनों ले सकते हैं, आप मस्त मेरे को डराओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं डरूंगा आपके लिए, आपका दिल रखने के लिए मैं डर भी लूंगा, लेकिन आप किराया शेयर करो मुझसे, ठीक है, रह लोगे आप? ठीक है। और सुनो बर्तन वर्तन मांजने की टेंशन मत लेना, वो मैं कर लूंगा, खाने का आप देख लो। एक अजीज भाई कुछ लिख रहे हैं, अजीज भाई टाइपिंग राइट नाउ। प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और एक भाई कह रहे हैं कल भाई आपको मैंने कहीं देखा, कहीं देखा, मुझे कहाँ देखा, मैं तो घर से कदम बाहर नहीं निकला भाई, कहाँ देख लिया मुझे, मैं नहीं निकला भाई, मैं किधर भी नहीं निकला, मेरे डुप्लीकेट घूम रहे हैं क्या, ये हो क्या रहा है? वैसे भाई मैं तो बोलता खाना बना लो, दोनों खा लेंगे। अजीज भाई कह रहे हैं अगर मेरा हमशक्ल मुझे घर में दिखता तो मैं ये बोलता कि भाई सुनो भूख तो लगी है, आप मेरे को मस्त 12 बजे के बाद डरा लेना जितना मर्जी, ठीक है, पहले आप बढ़िया खाना बना लो मेरे और आपके लिए, मस्त दोनों भाई बैठ के खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, फिर आपको जितना मर्जी डराना है आप डरा लेना। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं भाई मेरा मिमिक मैंने एक मरतबा देखा है, और वो क्या, वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया, मुझे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला, मैंने एक मरतबा गाँव में देखा था। देखा था आपने, वेरी गुड, दिस इज़ वेरी, दैट मस्ट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर मैं दाखिल हुआ और मुझे घर में मेरा बिल्कुल डुप्लीकेट दिखा तो मैं तो ज़रा सी बात भी नहीं करूँगा, लोग ना जाने कैसे बात करेंगे, मैं तो भाग जाऊँगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली माई पॉइंट। ये जो लोग कह रहे हैं इंटरोगेशन करेंगे बैठ के कोई नहीं करेगा इंटरोगेशन, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अच्छा मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ, उसके पहले एक और मैसेज आया, जकी भाई का उनको कहानी नहीं मिली थी, सजा वाली भेजूंगा। एक मैसेज आया फलक भाई, कहते मैं तो वॉलेट के बहाने निकल जाता भाई। एक मैसेज है सलाम भाई मुदस्सिर, वालेकुम सलाम भाई, लिखते हैं अगर मेरा हमशक्ल बैठा होता तो मैं उससे कहूँगा प्लीज़ एक कप चाय बनाओ मेरे लिए, फिर दोनों भाई मस्त डरेंगे, मैं आपको डराऊँ आप मुझे डराओ, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के सारे बिल बताऊँगा EMIs बताऊँगा और आप डरेंगे फिर आप मुझे डराइएगा। एक मैसेज है जकी भाई कह रहे हैं ब्रो मैं जो बोलूँगा वो लिख नहीं सकता। समझ गया जकी भाई, ठीक है, वेरी वेरी वायलेंस, यू चूज वायलेंस, आई डोंट वांट पीस, आई वांट वायलेंस। वाला सीन है। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: जी मेरा भाई बताइए आपका नाम।
2: अबू मैसन।
0: जी अबू मैसन साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे मेरा भाई।
2: अल्लाह का एहसान है।
0: जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अभी रेडियो चालू करा तो हमशक्ल की बात हो रही, अगर हाँ। हमशक्ल मिला तो पहले उसे वही सवाल करूंगा भाई मैं किधर से तू आ गया भाई,
0: और वो कुछ जवाब ना दे सर झुकाए बैठा हुआ है सोफे पे फिर क्या करेंगे आप,
2: फिर प्यार मोहब्बत से गर्दन पे दूंगा एक।
0: अच्छा
2: ठीक है तो फिर पूछूंगा उसको।
0: अच्छा
2: फटाफट चाय भाई बना भाई, खाना वाना खाएंगे।
0: बातें देखो, बातें देखो इनकी, भाई साहब उल्टे पैर भागेंगे आप मेरे से लिखवा लो। बता रहा हूँ आपको,
2: हैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं भागे
0: हैं,
2: चैलेंज पे जाके अभी आ गए वो जगह।
0: अच्छा मुबारक हो भाई, आप ही हैं भाई एक शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान
2: शक्तिमान नहीं होते भाई
0: है? क्या
2: शक्तिमान तो नहीं होते।
0: अच्छा अबू मैसन साहब ऐसे आप कैसे हैं मेरा भाई, बड़े सीरियस लग रहे हैं आज काफी दिनों बाद, अब क्या हो गया?
2: जरा मूड ऑफ है।
0: क्या मूड ऑफ क्यों है?
2: काम ज्यादा हो गया ऑफिस में, काम ज्यादा हो गया।
0: अरे वो तो चलता रहेगा यार ऑफिस से काम है, अबू मैसन साहब आज अच्छा है कल बुरा है परसों फिर अच्छा है, हैं
2: मीटिंगों में मीटिंग काम कम मीटिंग ज्यादा अच्छी,
0: पार्ट ऑफ लाइफ अबू मैसन साहब, पार्ट ऑफ लाइफ, कोई टेंशन नहीं चलता रहेगा ये तो, इसका क्या है, आप टेंशन भी ना करें, आप खुश अच्छे लगते हैं, खुश रहा करें आप
2: भाई,
0: आपकी आवाज सुनने के बाद पूरी
2: टेंशन
0: वेंशन सब भाग जाती है मेरी। थोड़ी चहकती हुई आवाज होती है आपकी आज, बड़े अलग से मूड में लग रहे हैं आप।
2: अभी मीटिंग खलास करके निकला बाहर
0: भाई, चाय पियो मस्त हो जाओ ठीक है, फ्रेश हो जाओ एकदम बढ़िया करके ठीक है, ठीक है वो मैसन भाई अपना ख्याल रखिए।
2: कहानी स्टार्ट हो रही
0: है, कहानी स्टार्ट हो रही है, आपके कॉल रखते हैं कहानी की तरफ पढ़ेंगे मेरी जान।
2: चलो इंशाल्लाह कहानी सुन लेके माइंड फ्रेश कर लेंगे भाई,
0: बिल्कुल भाई एकदम फ्रेश कर देंगे ठीक है।
2: और कबीर भाई नंबर वन है भाई, नंबर वन
0: भाई, आपको बहुत सारा प्यार भाई, खुश रहा करें बस, आप टेंशन ना लें मीटिंग शीटिंग की ठीक है।
2: ओके मेरा भाई,
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और भाई जो है आज बड़े टेंस लग रहे थे वरना खुश रहते हैं, इसलिए हमने कहा एडवाइस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम जी कबीर साहब, क्या हाल चाल है?
0: मैं जी बढ़िया, आप बताओ क्या चल रहा है मेरे भाई?
3: ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माजिद बात कर रहा हूँ
0: जी, माजिद भाई।
3: अच्छा सीन ये है कि आपका क्वेश्चन तो ऐसा है कि उसमें भागना ही पड़ेगा, और ऐसी बात है अगर अपने घर में ही बैठे हुए तो कहीं और बैठे हो चलो समझ में आता है कि चलो कोई होगा, अपने घर में अगर बैठे तो फिर जाहिर सी बात है ये कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई ऐसी बात है हवाई मखलूक ही है, और वो मेरे बेस में बनकर आई हुई है तो भागना ही होगा, उसमें कोई बात करने का सीन नहीं है, कोई हाथ मिलाने का कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा मेरे साथ इसका रिवर्स हुआ है।
0: अच्छा क्या हुआ है?
3: वो इस तरह की मेरे बड़े भाई जो है ना वो एक साल बड़े मेरे से, और उनका काफी हद तक हमारा चेहरा और जो है वो बॉडी जो है ना मिलती जुलती थी अंटिल द एज ऑफ 15-16 आई वुड से, कि जब मैट्रिक इंटर की बात थी ना वहां तक।
0: अच्छा
3: तो स्कूल में क्या होता था, स्कूल में मैं एक क्लास में एंटर हुआ तो जैसे टीचर बोलते थे कि यार अभी तो तुम गए थे तो अभी तुम कहाँ से आ रहे हो, हालांकि मैं तो उस क्लास में गया ही नहीं पहले।
0: हाँ।
3: तो होता ये था कि मेरे भाई जैसे बड़े भाई वहां से होके निकले या मैं उनकी क्लास में जाता था वो कहीं बाहर गए तो वो समझते थे कि मैं आ गया।
0: ये किया है आपने?
3: हाँ
0: अरे यार ये तो

0: ये मुझे लगता है कि ये बहुत सारे ट्विंस कभी ना कभी माइंड में सोचते तो हैं कि ये कभी ट्राई किया जाए कि कितने लोग पकड़ पाएंगे।
1: नहीं ट्विंस, हाँ हम लोग ट्विंस नहीं है, हम लोग
0: फिर भी हमशक्ल है।
1: अच्छा, हमशक्ल काफी, मतलब लोगों को लगता था कि यार मतलब वही बंदा दोबारा वापस आ गया, तो वो कंफ्यूज होते थे कि हाँ भी, और नाम भी मेरा डिफरेंट लेते थे, तो फिर मैं उनको बताता था कि भाई मैं तो वो नहीं हूँ, मैं छोटा भाई हूँ। और ये चलता रहा काफी हद तक, अब भी मिलते जुलते तो हैं, लेकिन अभी तो समझ ले कि 19-20 18-20 का फर्क पड़ गया है।
0: अच्छा,
1: लेकिन लोगों को
0: किसके बाल, किसके बाल बचे हैं अभी भी? ये
1: बाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच गए,
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: वो बालों से ही, बालों से ही डिफरेंस पता चलता है बस।
0: हाँ, ये यही मैंने सवाल पूछा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बाकी
1: बाकी दाढ़ी माशाल्लाह सेम है, लेकिन बाल मेरे थोड़े ज्यादा उनके काम है, तो अच्छा। वो हाँ, पहचाने जाते हैं कि अच्छा यार बड़े भाई आ गए अब।
0: अच्छा ठीक है। ठीक है माजिद भाई, बहुत बहुत बढ़िया, ये तो आप कहानी जरूर सुनेंगे माजिद भाई, इफ यू कैन। ठीक है,
1: बस मैं पहुंचने वाला हूँ घर, तो मुझे
0: कोई बात नहीं, भेजूंगा नो प्रॉब्लम मेरा भाई, जज़ाकअल्लाह मेरा भाई,
1: ऑनलाइन ही सुन पाऊंगा।
0: ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। खादर अब्दुल अजीब लिखते हैं, कबीर भाई क्या आप सबको परेशान कर रहे हैं, हमशक्ल जी मेरा भाई एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मैं तो उस रूम में वापस भी ना जाऊं भाई, आपको मैंने देखा मदीना खलीफा में, आपकी लॉन्ग हेयर है ना। हाँ, मेरे लंबे बाल है मेरे भाई अली गौर साहब, मैं वहीं था जहाँ आपने देखा। फरद भाई को बहुत सारा प्यार, फरद भाई कह रहे हैं भैया जी लव यू, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई, लो चार दिल भेज दिए मैंने, तीन दिन भेजे, एक वो बटन नहीं दबा। सॉरी, एक मैसेज है भाई, मैं तो चप्पल उधर से चोर के भाग जाऊँ। चप्पल छोड़ के भाग जाऊँ, मैं भी यही करता भाई। क्या हाल चाल है मैं जी? बढ़िया नियाज मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम नियाज भाई। डीबी चेंज करने का वक्त आ गया भाई, अब वक्त आ गया है। और ये जो अबू मैसन साहब थे उनके लिए लिखा है, ये जकी भाई लिखते हैं सेल्स का बंदा लग रहा है, टारगेट नया मिला होगा मीटिंग में। बहन जो कह रही है सब, उस समय सबके सब धुरंधर है बहन, ऐसी रिप्लाई आते हैं, और मेरे शो में सबसे कमाल के रिप्लाई आते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। एक मैसेज है, मैं तो भाई 9-11 हो जाता बिना कुछ सोचे, मोहम्मद बिलाल भाई का मैसेज है। और एक भाई कह रहे हैं कि आपके कोविड में जैसी जुल्फे थी मेरी वैसी ही थी। ओके, मेरे जुल्फे बहुत मेहनत करके बनाई है मैंने। ख्वाजा भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम इरफान है, एक दोस्त है जो जो बताएं क्या लिखा है, ग्रेड करता है, पहले प्लीज सर से थोड़ा समझाइए ताकि दूसरों को डिग्रेड ना करे, आपको सुन रहा है नवेद नाम है उसका। नवेद भाई क्या कर रहे हो, नवेद भाई क्यों क्यों ये अपने इतने पंगे डाल रखे हैं नवेद भाई? अरे ये इनको पकड़ के मेरे पास लाओ, उनको ठीक करूँगा मैं। है एक मैसेज है, आप अपनी ख्वाहिश पूरी, ऐसा कुछ नहीं हाथ लग जाए, सीरियसली वेटिंग फॉर वॉट मेरे भाई। चलो मैं कहानी शुरू कर लेता हूँ, एक प्रोमो चलाने दो, बस एक प्रोमो, थोड़ा सा ना वो क्या सांस लेनी पड़ती है बीच में, तो मैं चला देता हूँ एंड देन मिलते हैं। ठीक है, जाएगा नहीं, कहानी बड़ी खास है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील आपको अच्छी लगेगी। स्टे ट्यून्ड, 34 सेकंड के बाद मिल रहा है।
2: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वजारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
0: आज अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे। अब जरा कहानी शुरू करने का वक्त आ गया, सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भाई साहब, इट इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, ऑल दो इट्स वेरी वेरी ओल्ड, बट क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है, बहुत जाना माना किस्सा है, इसकी वजह से बहुत कुछ हुआ भी है, तो सब आपको बताऊंगा, बट वॉल्यूम जरा बढ़ा लीजिए, इस कहानी को सुनने का मजा एक्चुअली में लाइव ही है। ओके, Are you ready? And begin. So, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड जैसे मैंने कहा कि आज का किस्सा बेहद पुराना है, तो मैं आपको एक बहुत ही अलग एरा में ले चलता हूं, जरा बहुत सालों पीछे चलते हैं, साल 1705। ओके, 1705, लॉन्ग बैक। स्प्रिंग सीजन में इवनिंग का वक्त था और 1705 ईयर था। इस वक्त एक मिडिल एज्ड आदमी जॉन मैकॉल नाम का अपनी वाइफ के साथ एक हॉस्पिटल में था। यह हॉस्पिटल नया नया बना था, वो खुद एक डॉक्टर था जॉन, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी वाइफ को आखिर हुआ क्या है, एंड ये गिल्ट उसे खाए जा रहा था क्योंकि जॉन बड़ा परेशान था कि यार मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं कैसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी वाइफ को आखिर क्या हुआ है। एंड ही वाज रियली रियली सैड। मार्जरी नाम था उसकी वाइफ का, और मार्जरी को हुआ यह था कि उसे एक अजीब सा बुखार चढ़ गया था और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वो धीरे धीरे वीक होती चली जा रही थी, धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया था। एंड उस टाइम पे इन द 1700s ये समझ पाना कि ये कौन सी बीमारी है, ये बहुत बड़ा टास्क था। आज की तारीख में डिटेक्ट हो भी जाता, लेकिन इफ़ यू लुक एट दैट एरा 1705 नोबडी न्यू कि आखिर हुआ क्या है। तो जॉन भले ही पेशे से डॉक्टर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ मार्जरी को आखिर ये कैसा फीवर हुआ है। उसने कई डॉक्टर्स को दिखाया जो उस वक्त मौजूद थे, उन सब ने कोशिश करी, बट किसी की भी एबिलिटी इस लेवल पे नहीं थी कि वो समझ पाए कि मार्जरी को हुआ क्या। एंड जब वो घर लेके गया उसी शाम, विद इन 2 hours मार्जरी चल बसी इन हर बेड। और जॉन को जब ये खबर ब्रेक की गई उसके घर के बटलर ने, तो जॉन की अब आवाज जैसे निकलना बंद हो गई थी। जॉन रोए जा रहा था, उसी बेड के पास में जाके बैठ गया जहां उसकी वाइफ थी, एंड बस उसका हाथ थामे हुआ था और रोए जा रहा था, लगातार रोए जा रहा था। एंड उसका गिल्ट अभी और भी ज्यादा बड़ा हो गया था। वो बार बार ही कह रहा था, क्या फायदा इन डिग्रीज का, क्या फायदा मेरे डॉक्टर होने का कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। एंड अपने आप को ब्लेम कर रहा था बिकॉज ही कुड नॉट आइडेंटिफाई कि ये फीवर आखिर था किस किस्म का कि उसकी बीवी की जान तक चली गई। एक तरीके से ये जो उसकी जान गई उसकी वाइफ की, वो ये भी फ्लिप साइड थी कि उसके लिए एक मर्सी थी, बेसिकली एक रहम था, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था उसे तड़पते हुए। बट ऑन दी अदर हैंड ही वॉज ऑल्सो हेल्पलेस कि वो वाइफ को नहीं बचा पा रहा है, एक अनफेयर चीज लग रही थी उसको। एंड उसकी वाइफ उसकी पूरी दुनिया थी, जॉन और मार्जरी के बच्चे थे, इवन वो दोनों दादा दादी थे, और जॉन सिर्फ 50 साल का था, सिर्फ 50 साल का। और अपनी 50 साल की जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त उसने अपनी वाइफ के साथ ही बिताया, तो दिस वॉज द बिगेस्ट सेटबैक। ऐसा लगा कि उसकी सोल को, उसकी रूह को किसी ने क्रश कर दिया हो, आधा कर दिया हो। उसने अपनी वाइफ का हाथ थामा और बस पुरानी यादों में खो गया। उसे लगा जैसे मैं हाथ थाम लूंगा तो वो उठ जाएगी, मगर ही अंडरस्टूड कि वो दुनिया से जा चुकी है। और फिर उसकी नजर एक अंगूठी पे पड़ी जो उसकी वाइफ के हाथों में थी। वो वेडिंग रिंग थी, गोल्ड वेडिंग रिंग, जो उसने दुनिया जहां से जितने पैसे बचा सकता था उसने बचाए थे अपनी बीवी से शादी करने के लिए कई साल पहले। उस रिंग को देख के उसे लगा कि बस ये रिंग जो है, ये रिंग मैं काश इसकी उंगली से निकाल लूं, क्योंकि ये एक लौती याद थी उसकी कि अपनी बीवी को याद रख सके, एक किस्म की मेमोरी के तौर पे। एंड वो रिंग को सोच के, अपनी सारी यादों को और करंट सिचुएशन को सोच के अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। बटलर ने उसे रोका कि सर कंट्रोल योर सेल्फ, एंड यू नो उसने अपने आप पे काबू किया, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत अलग थी। ये सिचुएशन जो थी ये बहुत ख़राब इसलिए थी क्योंकि उस वक्त जहाँ ये लोग थे आयरलैंड में, वहाँ पे होता ये था कि अगर किसी को बीमारी है, ऐसी बीमारी जैसे मार्जरी को थी, तो इसे समझा जाता था कि ये फैल जाएगी, और क्योंकि फैलने का डर है तो उसे सबसे पहले दफना जाएगा, मतलब पहली फुर्सत में दफना दो। एनी उस टाइम का एक ट्रेडिशन था, वरना यूजुअली क्या होता था आयरलैंड में कि एक मल्टी डे वेक रखा जाता था। मल्टी डे वेक का मतलब है कि जब कोई गुजर गया है तो उसके रिश्तेदार आएंगे, कुछ दिनों तक उसके दोस्त आएंगे, उसके कैस्केट में उसकी बॉडी को देखेंगे, फिर एक्चुअल बरियल प्लेस में उसे ले जाया जाएगा। मगर यहाँ पर बहुत अलग सिचुएशन थी बिकॉज मार्जरी एक डिजीज की वजह से गई थी, तो उनको फौरन दफनाना बहुत जरूरी था, इसलिए रोने का भी वक्त नहीं था जॉन के पास। एंड जॉन सारी तैयारियों में लग गया कि किसी तरीके से सारे जो फ्यूनरल के काम है वो निपटा दे वो, और अपनी रियलिटी में वापस आया वो, अपने आप को संभाला। और फिर फॉलोइंग डे, अगले ही दिन दफनाने के लिए वो अपनी वाइफ को ले जा रहा था।

अगले ही दिन क्या, कुछ घंटों के बाद ही सुबह हो गई थी, बिकॉज रात भर वो रोता रहा, अरेंजमेंट्स करता रहा। इस बीच उसने कोशिश भी करी कि वो जो अंगूठी है अपनी वाइफ की उंगली से निकाल ले। उसने कुछ लोगों की मदद भी लेने की कोशिश करी, लेकिन उंगली सूजी हुई थी जिस वजह से वो अंगूठी बाहर नहीं आ रही थी। ही हैड नो चॉइस। अगला दिन जब आ गया तो सारे के सारे बरियल ग्राउंड में पहुंचे उसके वाइफ की कैस्केट को जमीन में दफनाने के लिए, और जब वो लोअर कर रहे थे तो उसने देखा कि बहुत बहुत मजमा वहां पर इकट्ठा हो चुका है, लोग आए हुए हैं, सारा क्राउड है, उसके दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, और जॉन सबको देख रहा था। और उसके मन में इसके साथ साथ, इस दुख के साथ ऑफकोर्स उसकी वाइफ को दफनाया जा रहा था, एक और गम उसे खा रहा था। वो रिंग जो उसकी वाइफ की उंगली में थी वो निकाल नहीं पाया, एंड अब इस रिंग के बारे में सबको पता लग चुका था, सबको, और ये बात फैल चुकी थी कि एक बॉडी है कैस्केट में, वो जमीन में दफनाई जाएगी और उसकी उंगली में एक गोल्ड रिंग है। अब डर ये था कि इस दौर में ग्रेव रॉबर्स हुआ करते थे, जिनको अगर पता लग जाए कि अगर ऐसा है, कुछ कीमती चीज है, तो वो लोग वापस खोद के निकालेंगे और रिंग भी निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बट अभी जॉन के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो देख रहा था उसकी नजरों के सामने कैसेट को लोअर किया गया ग्राउंड में, और रिंग अभी भी उसकी वाइफ के हाथों में थी, एंड कोई रास्ता नहीं था उसके पास। ये जो दौर था 1700s का, वो इस कदर खराब था आयरलैंड के लिए कि लोग भूखमरी से मर रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, इसलिए ग्रेव रॉबर्स का डर कुछ ज्यादा ही था। मगर जॉन के पास कोई रास्ता नहीं था। जॉन बस दफनाने के बाद अपने घर पे वापस पहुंचा, और उसी शाम जो है सारे के सारे लोगों ने उसे घेर लिया, उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो मार्जरी उसके थे, उसके खुद के बेटे और उसकी बेटियां, एंड एवरीबॉडी वाज देयर। सब आपस में बातें कर रहे थे और सब आग जला के बैठे हुए थे और एक दूसरे से किस्से शेयर कर रहे थे मार्जरी के। कोई किस्से याद करके हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, तो कोई रो रहा था, एंड मार्जरीज की मेमोरी में सबके सब खो गए थे। इन तमाम किस्सों को सुनते के साथ साथ जॉन थोड़ा थका हुआ फील कर रहा था। इज वेरी वेरी कथार्टिक। उसे लगा कि अब यार बहुत हो गया, मेरी परेशानी और बढ़ रही है ये सारे किस्से सुन सुन के, क्योंकि उसकी वाइफ उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंड ही कुड नॉट बिलीव कि अब वो नहीं रही इस दुनिया में। तो उसने सबके किस्से सुनते हुए बीच में बोल दिया कि यार सुनो यार, मैं यार सोने के लिए जा रहा हूँ। सबने बोला जॉन बट व्हाट हैपेंड। जॉन ने बोला नहीं यार, मैं और किस्से नहीं सुन पाऊँगा, आई एम फीलिंग रियली रियली वीक। और जॉन वहाँ से उठे और अब सोने के लिए जा रहे थे। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई तो जॉन वॉज रियली सैड। कह रहे फिर कोई आ गया शोक जताने के लिए, अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे। जॉन वॉज रियली सैड। और जॉन फिर भी मुड़े और जॉन ने कहा ओके मैं देखता हूँ दरवाजे पे कौन है। जॉन गए, दरवाज़ा उन्होंने ओपन किया, एंड जब उन्होंने दरवाज़ा खोलते के साथ ही उनके हार्ट में एक बहुत ही शार्प पेन हुआ, बहुत ही शार्प पेन, एंड उनकी जैसे पूरी की पूरी बॉडी एकदम शट डाउन होने लगी धीरे धीरे, एंड ही फेल ऑन द फ्लोर। एंड सब के सब जितने भी वहां पे लोग बैठे थे सब एकदम चीख पुकार मचाने लगे, सब के सब इधर उधर भागने लगे। दरअसल जॉन की जो फिक्र थी अपनी वाइफ की रिंग को लेकर वो किसी हद तक सही थी। हुआ ये था कि जब जॉन ने ये सबकी सबसे मदद मांग ली थी कि अरे मेरी वाइफ की उंगली पे एक रिंग है, मुझे वो चाहिए, निकालने मदद करो, एवरीबॉडी ट्राइड, उसका बटलर, बाहर के लोग, रिश्तेदार, एवरीबॉडी न्यू दिस, एंड ये बात फैल गई थी जिसका डर था जॉन को पहले भी। और जो ग्रेव रॉबर्स थे जो वापस बॉडी को निकाल के इसकी जांच पड़ताल करके निकालने के लिए जाने वाले थे, वो सारे के सारे रात दर रात

क्या किया, इन्होंने क्लिपर्स निकाले, इन्होंने उंगली को काटने का फैसला किया और इन्होंने उंगली को काट दिया अंगूठी समेत। और जब उंगली को काट दिया तो वो जो कटने के बाद पेन होता है, वो पेन ने जोल्ट देके, झटका देके मार्जरी को उसके खुद के कैस्केट में से जगा दिया, उठा दिया। दरअसल जॉन इवन आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर, वो गलत था, मार्जरी डिड नॉट डाई, वो मरी नहीं थी। मगर दिस वॉज 1700s और सबको बहुत जल्दी थी दफनाने की, क्योंकि उसको फीवर हुआ था एंड एवरीबॉडी वॉज बिलीविंग कि अगर नहीं दफनाया तो अभी ये बीमारी फैल जाएगी, और किसी ने कोई ज्यादा चेकअप वेकअप किया ही नहीं एंड मार्जरी को जाके इन्होंने दफना दिया जबकि वो जिंदा थी। जब उसकी उंगली कटी तो वो एक शार्प पेन ने जोल्ट सा भी उसकी पूरी बॉडी में फैला दिया और उस पेन से वो उठ के बैठ गई। जब वो सारे के सारे डर के भाग गए जिन्होंने उंगली काटी थी, मार्जरी दर्द में कराहते हुए उठी, रोती हुई, धूल मिट्टी में बिल्कुल सनी हुई, ऊपर से खून उसकी उंगली से, वो चलते हुए सबसे पहले मिडल ऑफ द नाइट अपने घर गई अपने पति को बताने के लिए कि मैं जिंदा हूं। उसने घर जाके दरवाजा खटखटाया, जॉन ने जब दरवाजा खोला और अपनी वाइफ को सामने देखा, मिट्टी में पूरी लथपथ, अपनी खुद की कब्र से बाहर निकली हुई, उसकी एक उंगली गायब थी, खून निकल रहा था, तो जॉन ये देख के कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाया एंड दिस लेड टू अ हार्ट अटैक। जॉन को देख के खुद की ही वाइफ को हार्ट अटैक आ गया। सरप्राइजिंगली जॉन डिड नॉट सर्वाइव, जॉन एक्चुअली में अपनी जान से हाथ धो बैठा। एंड बाकी सब जो रूम में थे, बाकी सब इधर से उधर भाग रहे थे, एक शख्स को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपने आप को काम एंड कंपोज करके जब तफ्तीश करी तो पता लगा कि दिस इज नॉट अ गोस्ट, ये एक्चुअल मार्जरी खड़ी हुई है गेट पर जिसकी हालत खराब है। ये केस इतना प्रोमिनेंट था मेडिकल फील्ड में कि जिसकी हद नहीं, आयरलैंड के जो लॉस थे वो बदले गए और ये जो फौरन दफनाने वाला सीन था ये भी चेंज हुआ एंड पुलिस रिपोर्ट्स एंड सब ने इस पे काम करना शुरू किया एंड लॉज वर चेंज्ड। बट सैडली जॉन को उसी जगह गाड़ा गया जो कबर पहले मार्जरी के लिए बनाई गई थी एंड मार्जरी After everything, एक उंगली खोने के बाद, इतने बड़े ट्रॉमा के बाद, she lived for many, many years. 95 years तक वो जी अच्छे से और उसके बाद natural death उसकी हुई। काफी special है, it is still there in Ireland. उसकी कबर same cemetery में, John के साइड में है और उस कबर पे एक special quotation लिखी हुई है। Lived once and buried twice. जिंदा हुई एक बार, दफनाई गई दो बार। आयरलैंड में आज भी हेडस्टोन है उसकी कब्र के ऊपर और ये वहां की सेमेट्री है, एक शैंक किल नाम से उस सेमेट्री में आज भी दोनों दफन हैं। दिस केस ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस। आयरलैंड में लॉ पास हुआ कि कोई भी बॉडी, इफ इट इज मेडिकली इंजर्ड या फिर ऐसा केस है जो सॉल्व नहीं हुआ है मेडिकली, तो उसको एकदम से भी ऐसी बीमारी घोषित कर देना कि वो फैल जाएगी, ये नहीं माना जाएगा एंड फौरन किसी को दफनाया नहीं जाएगा। एंड थिंग्स चेंज्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। दिस ब्रॉट अ रिफ्ट उस दौर में जब साइंस इतनी आगे नहीं गई थी एंड सब कुछ काफी पीछे चल रहा था। आई डोंट नो इफ द सेम हैपेंस टुडे, आज की सिचुएशन में ऐसा होना मुश्किल है, बट इफ इट ऑल हैपेंस टुडे तो ना जाने लोगों का क्या रिएक्शन होगा, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग। ये केस इतना बड़ा है कि हर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल इन ऑल द ओल्ड रिकॉर्ड्स और इसलिए आज भी वो कबर मार्जरी की मौजूद है जहां पर लिखा हुआ है लिव्ड वंस एंड बरीड ट्वाइस। ये था किस्सा, छोटा सा लेकिन काम का। सो 666-221-07 666-221-07

22107 नंबर है और ये किस्सा है आपके हवाले. आप बताइए लगा कैसा. 666-22107 एक और बात प्लीज, एक और बार नंबर बोल दूं क्या, आई नो इरिटेटिंग हो जाता है फिर भी. 666-22107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 Time Check।
3: हाँ जी, लंबी सांस खींचो, इस कहानी को प्रोसेस करो अच्छे से और उसके बाद मुझे बताओ कोई लगी तो लगी कैसी। मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज़ बताइएगा, इन कहानियों में लिटरली बहुत मेहनत लगती है इन्हें ढूंढने में और फिर इन्हें एक नैरेटिव फॉर्म में लाने के लिए, तो आपका मैसेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक इट्स मोर देन एन अवार्ड टू मी। सो बताइएगा, एक कॉल उठाने के बाद गाना चला देता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम। एक कॉल उठाने के बाद गाना चला लिएगा, कैसे हैं मेरा भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी। भाई फरमाइए, कैसे लगी कहानी आपको?
4: भाई कहानी में तो मजा आया, लेकिन एक कहावत याद आ गई
3: जी। कौन सी?
4: कि वो अक्सर आपने नॉर्मली सुनी होगी, किसी के लिए गड़ा खोदे तो खुद गिरना पड़ता।
3: हाँ बिल्कुल।
4: इस बेचारे के साथ ये हो गया।
3: अरे यार सेम है, मतलब मैं
4: नो डाउट इन्फॉर्मेटिव थी बहुत। और ऐसा एक केस हमारे कराची में भी मैंने एक बार सुना था कि, लेकिन उनको दफनाया नहीं गया था। गुसल देते वक्त वो आंटी थी, और जिन लेडी ने गुसल दिया था वो समझ लें कि वो एक महीना बीमार रही बेचारी, उसको बुखार ही नहीं उतरा।
3: अच्छा।
4: कि वो क्योंकि हॉस्पिटल से क्लेरिफाइड हो गया था कि शी वॉज नो मोर।
3: अच्छा ओके।
4: तो जिस वक्त उनको गुसल दिया गया तो उस वक्त वो आंटी जो है नीम गर्म पानी होता है गुसल के लिए, तो आंटी ने वो उठकर बैठ गई नहीं।
3: अरे बाप,
4: तो गंदी थी उनकी कंडीशन, ऐसी थी कि भाई वो उसने बाद में जब इंटरव्यू दिया ना तो बोली मुझे एक महीने तक मुझे होश नहीं थी, कि मेरे घर वाले भी मुझे बुलाते थे ना, मुझे पता नहीं था कि हो क्या रहा है मेरे साथ।
3: भाई ऑब्वियसली भैया ये तो बहुत डेंजर है यार। अरे
4: भाई वो आंटी है जो जिनको दोबारा जिंदगी मिली, या कह सकते हो अगर बेहोश थी तो दोबारा होश में आई, तो वो उसके बाद 12-14 साल जिंदा रही।
3: आप सोचिए बताइए, ये वाली आंटी तो 40 साल जी भाई मजे से।
4: ये कहानी नेट पर आई हुई है।
3: हाँ वही ना, ये अच्छा ये वाली जो आप बता रहे हैं, हाँ ये बहुत फेमस हो गया यार, ऐसे किस्से आ जाते हैं भाई सबसे पहले कवर किए जाते हैं।
4: कराची का वाकया है और ये वाकया वाकई जनरल नेट पे भी आया हुआ,
3: बताइए।
4: तो बहुत मजा आया,
3: थैंक यू मेरे भाई।
4: ये था कि उस वक्त वाकई इतनी सहूलत नहीं थी कि चेक किया जाता और किया जाता,
3: राइट।
4: लेकिन वो कहते हैं ना कि लालच भी कोई काम, कुछ कुछ काम अच्छे करा देता है। वो इन बंदों के लालच ने कि अंगूठी उतारनी है और बंदी को दोबारा वापस जगह पे ले आए।
3: एक्चुअली पता है, इस तरीके से देखा जाए तो ये भी एक चीज है, जैसे आपने बोला ना, ये भी एक चीज है, ये भी इसे देखने का एक नजरिया है इस कहानी को। दैट इज सो सो ट्रू। ओके ठीक है।
4: ओके भाई, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी।
3: जी भाई,
4: हमारी एक बात ही है तो वो हमें किस्सा सुनाती थी, बोलती मैंने आंटी से सुना था कि वो ना हर किसी में ना अच्छाई ढूंढ लेती होती है। तो बोलते एक बार ना हमने सोचा कि आप हर बंदे में अच्छाई ढूंढ लेती हैं, जो बंदा हमें भी अच्छा नहीं लग रहा उसमें भी आप अच्छाई ढूंढ रही हैं, तो आपका शैतान के बारे में क्या ख्याल है? कि वो तो चलो है ही, उसको तो अल्लाह पाक नहीं बोल देगा कि तू मर्दूद है, ये है, तो उसको तो दुनिया में का ही बुला बला जाता है, तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? तो बोलते वो भी अपने अपनी बात का बड़ा पक्का है, साबित कदम है अपनी बात पर।
3: अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे राइटर राइटर थी क्या? अरे भाई साहब,
4: कहानी में से बहुत सबक मिलते हैं भाई, पर देखने का नजरिया अलग अलग।
3: बेशक मेरे भाई, ये आपने थैंक यू सो मच ये बोला, क्योंकि मुझे पता है ऐसी कहानी लोग मुझसे कहते हैं अरे इसमें क्या मोरल था, मंगा भाई इसमें मोरल था भर भर के था, आपने देखा नहीं, प्रॉब्लम ये है। तो बट थैंक यू सो मच भाई, अच्छा भाई आपने बोल दिया आखिर में।
4: मजा आता है, स्पेशली आपका वेट इसलिए करता हूं
3: जी
4: कि आप अपने दिल से कहानी ढूंढ के लेकर आते हो।
3: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई,
4: और हमें भी अच्छा लगता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है,
3: बहुत प्यार मेरे
4: भाई, शुक्रिया आपका भी,
3: बहुत प्यार मेरे भाई, दिल से
4: शुक्रिया।
3: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, अल्लाह खुश रखे मेरे भाई, आप भी खुश रहिए मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई की मोहब्बत के बाद एक गाना चला रहा हूँ मैं, आज की कहानी में जो आंटी थी उनके लिए, मार्जरी के लिए मेरी तरफ से गाना। ये छोरी ना जाने वाली भाई, छोरी ना लटकाट दी भाई, कती तो भाई रफ्तार बाजी दी आवाज, प्रीतम दा का संगीत। मार्जरी किसी और छोरी से कम है गे, और छोरों से कम है गे। हाँ जी, छह बज गया, छह हो लिया भाई, कहानी को लेके मारा धुरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, चलो रही।

0: भाई आज की कहानी मार्जरी बाजी के लिए जिनकी हमने कहानी सुना थी बढ़िया थी भाई एकदम कणा कसुत्ता। और एक दो इनफैक्ट मैसेज आए मेरे पास सारे के सारे पढ़ता हूँ। एक दो नहीं माशाल्लाह वैसे जबरदस्त स्टोरी ब्रो, उससे भी ज्यादा जबरदस्त आपका स्टाइल। जज़ाकअल्लाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार भाई को। सिद्दीकी साहब और कमाल भाई लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मेरे भाई, कैसे हैं आप?
1: मैं तो ठीक हूँ कबीर भाई, ये तीसरी लास्ट को आपने जिंदा किया है भाई।
0: थैंक यू। ऑल क्रेडिट गोज़ टू मी भाई।
1: तो बोल रहा हूँ मैं कंफ्यूज हुआ था कि मतलब जो है अंगूठी पे ज्यादा ध्यान दिए है।
0: हाँ।
1: कुछ ना कुछ अंगूठी से होगा ये।
0: हाँ।
1: इतना गहराई से नहीं पता था कि अंगूठी कटने के बाद जो है वो निकलेगी जमीन से बाहर।
0: भाई ये कहानी बहुत कमाल की, पढ़िएगा इसके बारे में, इट्स अ वेरी वेरी फेमस स्टोरी 1700s की।
1: आपने जो है जो उसके भाई को जो मिल जाते नहीं, उसके जी. भाई ने भाई को मरवा देता है।
0: हाँ, हाँ.
1: तो ही कहानी चल रही थी
0: और अजीब वाली।
1: अजीब वाली।
0: हाँ तो मैं हैरान था कमाल भाई, 40 साल और जी गई, समझ रहे हैं आप, इसको कोई गम वम नहीं था। उस बेचारे को गम गार था।
1: जो 6 दिन के बाद जिंदा थी वो तो 90 साल जी थी भाई।
0: हाँ वो 90 साल, सोचिए आप। सब मजे में चला है भाई, इस बाहर की दुनिया की कहानी अलग है।
1: और उसके बाद जो है वो जो आदमी जिसको जो है कील ठोके गए थे, ताबूत से निकाला गया था।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: जो बाहर घूम रहा था 15 साल के बाद अपनी बहन से मिला था।
0: हाँ हाँ।
1: वो कितने साल के बाद जिंदा था
0: वो मुझे याद नहीं, पता नहीं, इतनी सारी कहानी हो चुकी है, डिटेल्स तो मैं डेटा तो मेरे पास है।
1: 75 साल वो जिंदा था।
0: हाँ,
1: 70 साल तक जिंदा था।
0: तो समझिए आप क्या क्या हो रहा है दुनिया में, समझ रहे हैं आप। ये तो इतनी पुरानी कहानी है, इट इज स्टिल वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। तो मजेदार किस्सा है, और अभी भी टूरिस्ट जाते हैं इनकी मार्जरी की कबर पे फोटो वोटो की जाने के लिए। अ लॉट ऑफ पीपल गो देयर, वो टूरिज्म का एक वो प्रोमिनेंट हिस्सा बन चुका है। ये है कहानी आज की।
1: कहानी बहुत जबरदस्त भाई। आखिर कम से कम अच्छा एक चीज और थी, मौत उसके आदमी की लिखी हुई।
0: हाँ एक्चुअली
1: ये सोचिए
0: बेचारा,
1: उसको मरना नहीं था, जिसको मरना था वो जी गया, जिसको जीना था वो मर गया
0: बेचारा। मुझे सच में बहुत दुख हुआ था जॉन मिकेली बेचारा, बताओ। एक तो टेंशन ले रहा था पूरे टाइम, वही निकल लिया। तो ये है कहानी। अब देखिए धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे और लेवल बढ़ाएंगे भी, और भी और भी बहुत सारी कहानी जो बड़ी कमाल की।
1: नहीं नहीं बढ़ाइए भाई, पूरे हफ्ते हैं
0: इंशाल्लाह,
1: हो सकता है इंशाल्लाह आपके साथ रहूं।
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई आपका कि आपने कॉल करी। कमाल भाई की बात मैसेज जल्दी से पढ़ता हूँ। हुसैन भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा भरोत भाई, मैंने कहानी नहीं सुनी भाई, कहानी भेजना भूल गया था आज पुलिस स्टेशन फ्रेंड के साथ जो मुझे जाना आता। ओह अच्छा काम है हुसैन भाई को, ठीक है भाई जाइए काम पे जाइए। जकी भाई लिख रहे हैं सो ट्रेजिक स्टोरी फॉर जॉन स्पेसिफिकली। हाँ है, उंगली कटवा के खुद तो बच गई, अपने शोहर को ले गई। मुझे लगा ये पक्का हॉरर स्टोरी होगी लेकिन बहुत अमेजिंग लगी। थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। एहतशाम भाई लिखते हैं गुड स्टोरी। ख्वाजा इरफान को सलाम मेरी तरफ से। ख्वाजा इरफान को सलाम नवीद भाई की तरफ से लिखते हैं। सलाम गबीर भाई, कहानी अच्छी थी, अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, हमारे लिए कहानी ढूंढ के लाते हैं भाई, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू सो मच राव मुस्तफ़ा भाई। एंड मज़हरुद्दीन भाई ने मैसेज किया, वो लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, लिखते हैं अभी भी मैं शॉक में हूँ, बेचारा हस्बैंड खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद कार्डियक अरेस्ट की वजह से इंतकाल कर गया, और जो पेशेंट पहले डेड डिक्लेयर कर दिया गया था वो बाद में जिंदा निकल आई। बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला वाकया है, किसी ने सही कहा है मौत और ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बेशक मेरे भाई, आगे लिखते हैं इंसान चाहे कितना भी इल्म और तजुर्बा रखता हो, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की भी नहीं चल सकती। थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी विद अस। ऑफ कोर्स भाई, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। हीरू भाई लिखते हैं नाइस स्टोरी। फलक भाई लिखा है ज़बरदस्त कहानी। एंड मोहम्मद भाई लिखते हैं मस्तूरी थी। फरद भाई लिखते हैं क्या बात है भाई, वाह थैंक यू। आई एम ऑल्सो देयर बट आई डिडंट हियर द स्टोरी, नो प्रॉब्लम जमाल साहब। अमन भाई, यूसुफ भाई ने लिखा है अच्छी स्टोरी थी, शॉर्ट बट गुड। एक की मौत दूसरे के गले पड़ी, वो डॉक्टर था, फिर अच्छी तरह से बॉडी हार्ट बीट एक्सेट्रा चेक क्यों नहीं करी। इसका जवाब मैंने वैसे तो आपको दिया, फिर भी दे देता हूँ। आई थिंक जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी उसमें लिखा था कि हार्ट स्टॉप्ड सडनली एंड दे कुड नॉट रियलाइज, उन जल्दीबाजी में उन्होंने दफन करने की डिसाइड कर लिया, पर वो अनकॉन्शियस थे. ऐसे लिखते हैं, हाँ और वो चोर फिंगर कट किया, जब वो लेडी उठ के गई तो भाग के किसे बताया नहीं, भाई सीधी घर को भागी थी ना. और इतना शॉकिंग से भी किसी की डेथ भी होती है क्या, वो अपनी वाइफ को ही देखा, कोई चुड़ैल तो नहीं. लेकिन यूसुफ भाई समझने की कोशिश कीजिए, उसने ये मान लिया था कि उसके जिंदा नहीं है, देन सडनली वो सामने आ जाएगी तो भाई समझ रहे हैं आप, ये हम और आप नहीं समझ पाएंगे. जयस भाई वालेकुम अस्सलाम. वैसे प्रिंस भाई का पता करो, आज गायब प्रिंस भाई हैं, उन्होंने कॉल करी थी, प्रिंस भाई की कॉल नहीं उठा पाया था हमजा भाई, इसीलिए ज़रा. और नसीमा लिखते हैं, क्या स्टेशन आ गया, चाय पी लो. पी लो भाई चाय. और एक और मैसेज है, मार्केट में कोई और नई सीरीज आई है क्या वारूद भाई? भाई मार्केट में एज सच कोई नई सीरीज नहीं है, मैं वेलकम टू डेरी ख़त्म कर रहा हूँ. वेलकम टू डेरी मैंने शुरू करी थी कुछ दिनों पहले, बीच में छोड़ दी थी, बट नाउ आई एम कंटिन्यूइंग द स्टोरी, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. एक मैसेज आया है, क्या बात है भाई, नाइस स्टोरी अबू साद साहब, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह. एक बार लिखते हैं, भाई जब आप कहानी सुनाते हैं तो क्या आपकी आंखें बंद होती हैं? हाई नहीं भाई, मैं तो एकदम हट्टा कट्टा माशाल्लाह अभी हो रहा हूँ, आंखें भी खुली रहती हैं भाई, मैं जिंदा हूँ. एक मैसेज, भाई ही इज़ अ लेजेंड, इनकी कॉल नहीं मिस किया करो. प्रिंस भाई आपकी तारीफ हो रही है, इनके लिए ऐलान करवा दूँ क्या? वो जो ऐलान होता है हमारे मोहल्ले में होता है, वो एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, जिन साहब का हो, जामा मस्जिद बदलाओ से उठा लें. प्रिंस भाई आ जाओ भाई, कॉल कर लो भाई. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वेंसडे वाली स्टोरी नहीं भेजी मैंने, वेंसडे वाली स्टोरी नहीं भेजी आपको, भेजी होगी यार, आप गायब होंगे. मैं भाई कोई स्टोरी नहीं छोड़ता, आपको नहीं मिली तो फिर गलती आपकी है. दिख रहे हैं आप मैं कैसा खेल खेलिया, गलती आपकी है मेरी नहीं है. अच्छा भेज दूंगा, डोंट वरी. एक मैसेज है, भाई नहीं नहीं वो नहीं कर सकता. एक कह रहे कमाल की स्टोरी थी भाई, मजा आ गया, थैंक यू सो मच भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया. भट्टी साहब, उस्मान भट्टी साहब ने मैसेज किया, थैंक यू. एक और भाई कह रहे हैं कि हाँ प्रिंस भाई का इस पे ओपिनियन, अरे प्रिंस भाई रिसर्चर हैं क्या? प्रिंस भाई आ जाओ यार, कॉल कर लो भाई. भाई मैं तो हाथ पकड़ के तो ला नहीं सकता, अब आ जाएंगे तो सुन लेना, और क्या कर सकता हूँ मैं, गाना चला देता हूँ तब तक, हो सकता है कि प्रिंस भाई भी इधर-उधर हों, उनकी तलाश अभी जारी है. ये गाना कौन सा है, मैंने सुना नहीं, लगा हुआ था प्लेलिस्ट में, लेट्स सी. खैर मिनाटी और रोमी, हाय डेट कर ली, ओके.
2: तो कैसे हैं आप लोग,
0: तो कैसे हैं आप लोग, 6:16 जी ऑन द क्लॉक, गुड इवनिंग, क्या हाल है, बढ़िया.

खेरी में नाची रोबे हाँ जी 18 घड़ी पे हो गए मैं दो हवाला कबीर फोन सेवन पे और ये क्या मैसेज किया भाई ये हमारे भाई हैं अरबाज भाई कह रहे हैं कहानी सुनने वाला था क्योंकि मेरी गाड़ी ठुक गई भाई किधर किधर किधर इतना कैजुअली आदमी ने मैसेज किया है जैसे रोज का काम हो रोज छुट्टी रहती है रणवीर सॉन्ग अच्छे लगते हैं ठीक है आपको रणवीर समझ में आती है पर तो बहुत बढ़िया बात है मेरी जान ये जस भाई ने मैसेज किया चला देंगे भाई कोई टेंशन नहीं अगला वैसे वही लगा हुआ है ये मैसेज है कबीर भाई वैसे इस कहानी से साबित हुआ कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है जब तक अल्लाह ना चाहे आपका कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता दूसरी बात आंटी को इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए फिंगर काट दी वरना वो भी जिंदा दफना गई होती जल्दी का काम शैतान हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ आंटी शुड बी वेरी थैंकफुल किसी ने उंगली उंगली काट दी मुझे आ गए उनके एक मैसेज आया भाई मैंने भी गाड़ी मार दी अभी बहुत बढ़िया ये कर क्या रहे हैं लोग अरे क्या हो क्या रहा है ये सैम भाई भी कह रहे ये आप दोनों ने एक दूसरे में तो नहीं गाड़ी मारी प्लीज़ भैया ड्राइव सेफली ये क्या इतना कैजुअली हंसी मजाक करके लोग बता रहे हैं जैसे गाड़ी नहीं खिलौने वाली गाड़ी क्या चल क्या रहा है ये इतना कैजुअल भाई मेरा तो दिल गले में आ जाता अगर गाड़ी को कुछ हो जाए तो ये कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ मैंने भी गाड़ी मार दी कमाल है भाई कमाल चल रहा है मामला वाह वाह वाह वाह वाह वाह ठीक है अगला गाना वैसे भी हिरण भी था तो अच्छी बात है लगा

और भी चला ही देता हूँ। ये गाने के अंदर शायरी बड़ी कमाल की, एंड इफ यू वांट टू लर्न हरियाणवी और पंजाबी एट द सेम टाइम दिस इज द बेस्ट सॉन्ग। और इन दोनों ने अपनी गाड़ी ठोकी है, समीर भाई ने और अरबाज भाई ने, इन्होंने तो बिल्कुल पिचकवा लिया भाई, ये बिल्कुल ही पिचक गई है, ये किस चीज़ में मारी अपने गाड़ी, क्या चल क्या रहा है ये, अरे बाबा अरे बाबा। मैं इनकी गाड़ी की हालत देखता हूँ, जब तक आप ये सुनिए। ब्यूटिफुली रिटर्न ट्रैक, ब्यूटिफुली गाने में होती है भाई शायरी बढ़िया वाली, यो ही है भाई गाना। अड़े आके सुन लो, वॉल्यूम बढ़ा के, ठीक है जी। मेरे पीठ पाछा ये नहीं गया ना कि गाना नहीं चलाया, बढ़िया वाला चलाएंगे। अच्छा ये समीर भाई ने मारी है दूसरे की गाड़ी, पिचका दी, वेरी गुड बेटा, चलान ब्रो। समीर भाई क्या किया यार, क्या किया ये, जैसे दाढ़ निकालते ना तो सूज जाता है गाल, वैसे हो गया गाड़ी गाल। ऐसा लग गया रोग मन्ने ग्रेवाल।

सबासीतो मिलेगी बराबर मिलेगी। 6:22 मिनट हो गए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह क्या बात है, इसके लिए भी मैसेज आ गया। थैंक यू सो मच। आया कुरेश भाई लिखा है बेस्ट इंट्रो सॉन्ग एवर, लव द म्यूजिक। थैंक यू सो मच भाई। ये लो, मेरे दिल आंसू आ गए, इमोशनल कर दिए। थैंक यू भाई, ये सॉन्ग भेज दो। कौन सा वाला सॉन्ग मेरी जान, बताओ कौन सा वाला सॉन्ग चाहिए आपको। हमजा भाई हुकुम करें, किड़ा सॉन्ग इज इट अवेलेबल? नो, इट्स नॉट अवेलेबल, इट इज ओनली अवेलेबल विद मी, क्योंकि ये बेचारा जो रैप मैंने इंट्रो बनाया था, दिस इज ओनली 40 seconds, सो इट्स विद मी, नॉट एनीवेयर एल्स, इट्स जस्ट इन माई फोन। ये लास्ट वाला किड़ा गाना, अच्छा वो हरियाणवी गाना, मैं जी भेजदा है नाम, एक सेकेंड रुको, क्या नाम था इसका, डांडा न्योली वाला, एक सेकेंड, न्योली वाला नाम है जी गाने का, इश्क बावला। ये लो मैं लिख के देख रहा हूँ, इश्क बावला, ठीक है जी, इस नाम से सर्च कर लेना, मिल जाएगा, बहुत बढ़िया गाना। कथी कैट एक मैसेज है, दिल टूट गया आज गाड़ी की वजह से। भाई कोई बात नहीं, ये स्क्रैच क्रूच आए, ये जो समीर भाई ने दूसरे बंदे ना जिन्होंने बताया गाड़ी ठुकी है, इन्होंने तो पिचका दी भाई। एक मैसेज है, आई लव हरियाणवी, बहुत बढ़िया भाई। सुनो भाई, मेरे को बहुत सारे पाकिस्तान से लोग मैसेज करते हैं और कहते हैं कि उनको थोड़ी बहुत समझ में आती है लेकिन बड़ी अच्छी लगती है हरियाणवी। थैंक यू सो मच भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, थर्सडे वाली स्टोरी भेज देना प्लीज़, थर्सडे वाली नहीं सुन पाए, भेजेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं। एक मैसेज है, हमारी तरफ से शाबाशी कबूल कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एलो जी बीट थपथपा दो मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच। अभी एक्चुअली मज़ान का वक्त होने वाला है, तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक। सरताज वाला जो गाना आप कह रहे थे कमालुद्दीन शेख साहब, मेरे भाई वो है नहीं, पर मैं ज़रूर डलवा दूंगा, हालांकि होता तो मैं चला देता, बट दिस इज द सॉन्ग। एक वैसे है, नमस्ते, मज़ा आ गया, स्टोरी मस्त थी, प्लीज़ कल वाली सेंड। कल तो भाजी छुट्टी थी,

शहबाजी के साथ साथ सरदार बताएगा कि आज कौन कौन से दिन इंटरनेशनली मार्क डे, वैसे तो आप पूरे दिन ये इसके बारे में बात सुन चुके होंगे क्योंकि हम आरजेस को जब से हम ट्रेनिंग लेते हैं, आप करियर शुरू करते हैं तो हमें एक चीज सिखाई जाती है, जब भी वर्ल्ड म्यूजिक डे आए तो क्या करना है। आपको पता ही वर्ल्ड म्यूजिक डे पे आरजेस हम लोग क्या बोलते हैं एक क्लीशे डायलॉग हर आरजे को मारते हुए आपने सुना होगा, वो डायलॉग क्या होता है, आज दोस्तों आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, ये म्यूजिक क्या करता है, आपको सुकून देता है तो वही मैं भी कह देता हूँ, समझे, कॉपी पेस्ट पर वर्ल्ड म्यूजिक डे मुबारक हो आपको। आई डोंट नो विच म्यूजिक यू लाइक, बट सबके अपने अपने जॉनर्स हैं। भाई मैं तो हिप हॉप सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, भर भर के सुनता हूँ, तो दैट इज माई काइंड ऑफ म्यूजिक। इस इकरम हसन साहब लिखते हैं, गुड आफ्टरनून सर, आफ्टरनून आफ्टर इकरम, ये लाठी दे रहे हैं मेरी जरा, अरे आफ्टरनून बता रहा है आदमी, बताओ यार आफ्टरनून हो रहा है ये। एक मैसेज श्याम साहब, वालेकुम अस्सलाम, स्टोरी मिस हो गई, अरे अरे अरे। एक मैसेज आ रहा है, चला गया था होम मिनिस्टर की कॉल आ गई थी ग्रोसरी के लिए। अच्छा जकी भाई जो बीच में एबसेंट हो गए थे, होम मिनिस्टर ने कॉल कर दी थी, होम मिनिस्टर ने कि जकी बहुत हो गई कहानी, जरूर ग्रोसरी ले जाओ, अब क्या करूं, कुछ नहीं करना, मैं भेजूंगा ना इरफान भाई, टेंशन नहीं, आप कुछ करना नहीं, मैं आपको स्टोरी भेज दूंगा, रिलैक्स हो जाएंगे, वॉइस नोट है मेरे पास अमन भाई का, अमन भाई वो भी आप टेंशन मत लो, यू विल गेट इट। अच्छा कुछ दिन जो मैंने कहा जैसे कि वर्ल्ड म्यूजिक डे, यू नो द क्लीशे डायलॉग, म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, तो मैं भी वही बोल देता हूं, म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती वर्ल्ड म्यूजिक डे मुबारक हो। एक और दिन है आज स्केट बोर्डिंग डे, आई हैव नेवर सीन अ देसी गाय डूइंग स्केट बोर्डिंग प्रॉपरली, बच्चे तो करते ही। इसके बाद है आज स्मूदी डे, हेल्दी डे, या इसके बाद है सेल्फी डे, हर रोज हर कोई मना रहा होता है, नो कमेंट्स ऑन दैट। इसके अलावा है यार्ड गेम्स डे, यार्ड में जो खेलता है भाई उनके लिए है आज का दिन, और आज है फादर्स डे, ऑफ कोर्स फादर्स डे के लिए न जाने कितने पोस्ट आ चुके हैं, कुछ लोग अपने अब्बा की फोटो डाल डाल के पोस्ट कर रहे हैं जैसे उनके अब्बा सोशल मीडिया देख के बोलेंगे आ हाउ स्वीट बट ठीक है, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर, पोस्ट डालें ना डालें आपको पता ही है, इस मोहब्बत के लिए वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, एंड इफ़ यू हैवन्ट पोस्टेड विद योर फादर इट्स ओके, चिल करो, सोसाइटी के प्रेशर में आगे आधे लोग तो अपने अब्बा के साथ सेल्फी डाल रहे होते हैं और अब्बा को पता भी नहीं कि उनके लड़के ने उनकी लड़की ने सेल्फी डाली है, हद हो गई यार तो ये हेड चाल ना चले, बाकी फादर्स डे मुबारक हो वो मैं दिल से कह रहा हूँ। एक मैसेज है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऐ की होना मैंने पता नहीं पर मैं पढ़ लूँगा इसके बारे में तो बता दूंगा। इकरम भाई ने मैसेज किया, हैप्पी फादर्स डे जी भाई आपको मुबारक हो। मैसेज है म्यूज़िक का वैसे क्या है, राहत इंदौरी सबसे पूछना पड़ेगा, राहत इंदौर से म्यूज़िक का क्यों पूछेंगे आप, हुसैन साहब कह रहे हैं सोशल मीडिया पे पिक देख के पापा बहुत खुश होगा शाबाशी देगा हुसैन भाई वही है असल में, क्या एक भीड़ चाल है, वो भीड़ चाल क्या है कि सामने वाले ने अगर फोटो डाल दी है तो मैं भी डालूंगा, आई वुड लाइक समथिंग, अगर मेरे फादर देखें ना देखें उससे मतलब नहीं है, मुझे दुनिया से वैलिडेशन चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है। ओ हाउ स्वीट, ओ दैट मीन्स यू लव योर फादर इज इट। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, इट्स दानिश आज़ाद, स्टोरी शेयर करें, आई विल, कहानी सुन के गया था, अच्छा सके भाई बच गए, कहानी सुन के फिर ग्रोसरी लेने गए, सो प्लीज़ आई नो ये थोड़े हार्श वर्ड्स हैं, कड़वे लगेंगे कुछ लोगों को, बट इट्स ओके इफ यू आर नॉट पोस्टिंग अ स्टोरी विद योर फादर, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक मैसेज है, वैसे चोचले हमसे नहीं होते भाई, मुझसे भी नहीं होते भाई मुझसे भी नहीं होते, तो ये वैलिडेशन दुनिया का मुझे भी नहीं चाहिए कि मैं फादर के साथ फोटो, अरे मेरे फादर के साथ मेरी एक फोटो है भाई, एक फोटो है तो उसका मतलब ये नहीं हम दोनों में प्रेम नहीं है भाई साहब, ये सिस्टम से थोड़ा बच के रहें और स्पेशली टीनेजर्स को बचा के रखें, बिकॉज ये फैंसी दुनिया है और यहाँ पर इंस्टाग्रामर्स बहुत है, यहाँ वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से अपने बच्चों को प्लीज़ बचाएं, मैं अभी भी आपको एक सलाह दे रहा हूँ, ये मेरी सलाह मान लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेव योर किड्स फ्रॉम दीज इन्फ्लुएंसर्स, अगर इनकी तरह कोई बनने के लिए आगे निकल गया तो महंगा आपको ही पड़ेगा, टेक दिस एडवाइस, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ पता चला कि वो भी बाहर आटा दाल चीनी बेच रहे हैं, है ना, तो इससे बेहतर है कि अगर इफ़ यू वॉन्ट टू मेक देम इन्फ्लुएंसेस, गिव देम सम स्किल और प्रॉपरली हेल्प देम विद देयर कॉन्टेंट, प्लीज़ डू दैट। ये रेंटिंग में डेली कर लेता हूँ ताकि किसी को तो मेरी बात समझ में आए भाई, अरे रब्बा। 666-22107 नंबर है, ज़ाकिर भाई थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू व्हाट आई जस्ट मेंशन्ड, बिकॉज इन्फ्लुएंसरशिप से मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ। एक मैसेज है, नहीं तो घर में हिडन जेम निकल आएगा पता चला हाँ बच्चे इन्फ्लुएंसर अगर यहाँ के इन्फ्लुएंसर को देख के फॉलो करने लगे तो घर के किसी कोने को बोल देंगे, गाइज मैं हूँ कबीर और मैं
कतर से हूँ, ये है मेरे पीछे मेरा कमरा, हिडन जेम। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप यहाँ कभी आए ही नहीं हैं। ये हिडन जेम है आपके लिए। अरे भाई, एनीवे जस्ट मेक श्योर दैट यू मेक देम अंडरस्टैंड एटलीस्ट। रील देखें कोई टेंशन नहीं है, मगर लोगों को इस बारे में बताएं। आज फादर्स डे है ना, सो एज अ फादर, जो भी लोग फादर है अपने बच्चों को प्लीज बताइएगा कि फादर साहब जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मदर एंड अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये डिफरेंस समझा दीजिएगा ऑन फादर्स डे, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बोलते हैं? सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ तो हाँ लिख देना, नहीं तो मुझे वैसे भी कुछ खास पसंद तो करते नहीं है लोग। 666-22-107 बाकी तो भाई मोर बना देंगे। एक मैसेज है भाई, पता है जो सोशल मीडिया पे बताते हैं आज ये डे वो डे, उन्हीं का क्या माँ बाप आश्रम में नजर आते हैं, वृद्धाश्रम। करेक्ट भाई, हुसैन भाई गलत नहीं कह रहे, आप एकदम सही कह रहे हैं। फैक्ट है मेरे भाई, फैक्ट है।

0: तबसुम मैंने मुझे एक मैसेज किया, वो कह रही हैं कि कबीर भाई माफ़ कर दीजिए इन्फ्लुएंसर्स को, मैंने जिंदगी में पहली बार अपने अब्बू के साथ इस बार फोटो ली थी, इट सीम्स लाइक आई एम स्टैंडिंग फॉर एन आर्मी परेड। बहन ऐसे ही है, बट आपके फादर साहब जो है उन्हें मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सलाम कहिएगा एंड वर्चुअल छप्पी मेरी तरफ से। एंड माशाल्लाह बहुत प्यारी फोटो आई है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप ज़रा कॉल कर लेते हैं क्योंकि भाई ने बोला था कॉल करने, भाई ने बोला कॉल करने का तो करने का। क्या अमन भाई की कॉल लग गई है। अस्सलाम वालेकुम जी अमन भाई, क्या हाल है?
1: अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं?
0: अस्सलाम भाई, बढ़िया भाई, भला चंगा। अमन भाई बताओ।
1: बस ठीक है जी, बात करने का मन कर रहा था, स्टोरी तो मिस हो गई, मैं किचन में ही था काम कर रहा
0: था। भाई कतई गैंट थी भाई स्टोरी, आपने मिस कर दी भाई, बहुत बढ़िया वाली थी, भेजूंगा।
1: मर्डर मिस्ट्री थी, लड़की बच गई शायद, ऐसा कुछ
0: भाई साहब अलग ही खेल है। आप समझेंगे, आप कहानी सुनेंगे हम बोलेंगे हो ये तो मेरी है निकल गई, ऐसी वाली कहानी है भाई,
1: तो पहले से निकल जाती है।
0: मजा आ जाएंगे आपके। और बताइए अमन भाई क्या चल रहा था आज, कहां क्या
1: मसरूफ है? तो सब निकल गई जब आपने ये गाना लगाने से पहला, मोर बना देंगे ये फादर बनिए फादर।
0: हाँ भाई मैं सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये इशू है भाई, अगर यही लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टीनेजर्स को तो दिक्कत है मेरे भाई, इट्स अ वेरी सीरियस इशू।
1: कबीर भाई हाँ कबीर भाई, लेकिन एक बात और भी है ना
0: जी, मेरा
1: जैसी करनी और वैसी भरनी।
0: जी जी करेक्ट करेक्ट, इसमें कोई
1: इसमें धीरे धीरे रिजल्ट आपके सामने आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
0: मैं तो भाई टेंशन को नहीं, पर बात सर ये है कि ये रिजल्ट जो है यहाँ बहुत मुश्किल है। मैं समझ गया भाई,
1: घना घाव किया किसी ने, घना घाव किया पीछे पड़ के, हाथ धो के पीछे पड़ के, मुझे पता है।
0: हाँ मतलब मैं मुझे जहाँ मौका मिलता है वेंटिंग जाती है, आई नो पीपल वुड से अरे तो चिड़चिड़ा हो रहा है, बट दैट्स अ फैक्ट, मतलब मुझे कोई चिड़न नहीं है भाई, जो करना है करो, बट इट्स जस्ट दैट फ्रॉम माई पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील कि कम से कम मैं कुछ को तो बता सकूँ कि भाई अगर इन्फ्लुएंसर बनना है प्लीज बनिए, पर कॉन्टेंट तो रखिए उसमें, नो प्रॉब्लम, आप जाइए सोशल मीडिया पर, क्या दिक्कत है, ट्रेंड है भाई, बट एटलीस्ट हैव सम कॉन्टेंट, दैट इज इट, और कुछ नहीं है।
1: लेकिन ट्रेंड है, लेकिन उसको लिमिट में होना चाहिए कि अच्छा भी लगे देखने,
0: अच्छा
1: में
0: भी लगे ना यार,
1: अच्छा लगे।
0: हाँ मतलब मुझे मन करना चाहिए कि मुझे इसके जैसा बनना है, ऐसा होना चाहिए ना, मैं देखूं कि हाँ यार मुझे इसके जैसा बनना है यार, क्या बात है, तो वो चीज क्या, दैट इज द होल थिंग।
1: लेकिन लिस्टनर्स ने हमें इकट्ठे देखना, तो अमन कतर की आईडी फॉलो कर लो, मैंने बोल दिया।
0: भाई को फॉलो कर लो, भाई को फॉलो कर लो, भाई को फॉलो, भाई
1: अमन कतर टिकटॉक देखना है, कबीर भाई को तो देख सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं।
0: क्या कंटेंट डाल रहे हैं वैसे अमन भाई अब उस पे आजकल, क्या कुछ एक्टिव है?
1: जो मुझे जानते होंगे ना रेडियो, वो तो मेरे दुश्मन पक्के बन गए, अभी मालूम है उनको मेरे बारे में।
0: कांग्रेचुलेशन, आपने खाता खोल लिया है, मुबारक हो, मुबारक अमन भाई।
1: क्यूएनसी में तो कोई एंटर नहीं कर सकता।
0: मैं तो सेफ हूँ जी,
1: क्यूएनसी में तो दो गनमैन खड़े हैं आगे।
0: हाँ बिल्कुल,
1: वो तो नहीं जाने देंगे आपके पास।
0: हाँ मैं तो
1: मुझे उठा लेंगे घर से।
0: मैं तो भाई एकदम सेफ हो रहा हूँ कतई। ठीक है अमन भाई,
1: हमारे साथ कबीर भाई है और ऊपर वाला है हमारे,
0: बिल्कुल भाई, बेशक बेशक मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया
1: कबीर भाई, थैंक यू,
0: नो प्रॉब्लम,
1: ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और मुझे प्लीज स्टोरी सेंड कर दीजिए।
0: डन डन भाई, मैं भेज कर
1: भेजता हूं। क्वेश्चन क्या था, सॉरी
0: भाई, क्वेश्चन ये था कि आप अपने घर में दाखिल हो रहे हैं मान लीजिए, और आपके घर में आप अकेले हैं, लेकिन आप देखते हैं घर में जैसी एंट्री करी आपका हमशक्ल आपके सामने बैठा है सोफे पे, सर झुकाए हुए, कुछ बोल नहीं रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा?
1: मैं तो भाग जाऊंगा, मैं तो भाग जाऊंगा, सच में डर लगता है, कभी कभी मैं मॉल में जाता हूँ, शीशा सामने आ जाता है, तो मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं डर जाता हूँ,
0: अरे पूरी भैया ये कौन है,
1: ये तो अपू नहीं है, ड्रेसिंग रूम में चेंज कर रहे कपड़े।
0: अरे भाई यही सवाल है।

0: जजाक अल्लाह मेरे भाई, थैंक यू सो मच,
1: शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे,
0: यू टू मेरे भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमन भाई के पास जो है अभी वक्त भी हो गया है आपसे लेने का, लेकिन ऑल दोज जो हैव थिंग, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि ही इज जस्ट रेंटिंग अबाउट इट, आई एम, बट ठीक है। एनीवे आप अपना बस ख्याल रखिए और ड्राइव सेफली, जरा देख दाख के पार्किंग शार्किंग कीजिए। अभी दो मेरे पास मैसेज आए हैं पार्किंग की वजह से गाड़ियाँ टोकी हैं भाई, प्लीज कायदे से, प्लीज थोड़ा खर्चा हो जाता है भाई। और ऑन दैट नोट, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, आप मुझे भी चाहें ढूंढ सकते हैं। आवाज़ और शक्ल को मैच करने का लोगों को बहुत शौक है, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, दोहा वाले कबीर के नाम से आपको मिल जाएगा। इस्माइल भाई आपको भी कहानी मिल जाएगी, फिक्र ना करें। एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ आपसे कहते हुए कि कल मिलेंगे इंशाल्लाह 5 बजे एक और नए किस्से के साथ और कई सारी बातों के साथ। बस अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी है। मां सलामा।

लड़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

माह में 273,412 शहरी वतन लौटे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वापसी करने वालों के लिए जामे सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें तेज़ तर कार्रवाइयाँ और ज़ाती व घरेलू सामान पर कस्टम फीस से इस्तिस्ना शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि ये इकदाम ख़ानदानों के बोझ को कम करने और उनके इस्तकरार को आसान बनाने के लिए किए गए हैं, जबकि बढ़ती हुई वापसी इस बात की अलामत है कि शहरी हुकूमती सहूलियात पर एतमाद कर रहे हैं और अपने वतन में दोबारा सुकून इख्तियार करने के ख्वाहां हैं। शामी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि मुल्क के शिमाल में हलब सूबे के शिमाल मशरक़ी इलाके में मंबज के करीब नामालूम मुसल्ला अफराद के एक हमले के नतीजे में 2 शामी फ़ौजी हलाक हो गए हैं। शामी खबर रसा एजेंसी ने बताया कि काबिज़ इसराइली फ़ौज आज सुबह मगरबी दिरा के इलाके यरमूक बीसन में दाखिल हो गई और आबदीन गाँव तक पहुँच गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 10 से ज़ायद फ़ौजी गाड़ियों पर मुश्तमिल ये फ़ोर्स मारिया और आबदीन के दरमियानी इलाकों में दाखिल हुई और गांव के मुतअद्दद घरों की तलाशी ली, जिससे मकामी आबादी में खौफ व हरास का माहौल फैल गया। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब इसराइली फ़ौजी गाड़ियां मगरबी इलाके के दीगर मकामात पर भी हरकत कर रही थीं। इसराइल मुसलसल जनूबी शाम में दरंदाजी, शहरियों पर हमले, गिरफ्तारियों, ज़मीनों की तबाही और गोलाबारी के ज़रिए 1974 के फायरबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। शामी हुकूमत ने एक बार फिर मुतालबा किया है कि काबिज़ फ़ोर्स फौरी तौर पर शाम की सरजमीन से निकले और यह भी कहा कि इसराइल के तमाम इकदाम बैन अल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक मुस्तरद हैं। शामी हुकूमत ने आलमी बिरादरी और अक़वामी मुत्तहिदा से अपील की है कि वह अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें, इसराइली इकदामात को रोकें और इसे मुकम्मल तौर पर जनूबी शाम से इनखिला पर मजबूर करें। गज़ा पट्टी के वसती हिस्से में वाक़े अलब्रेज पनागुजी कैंप में एक रिहायशी घर पर हमले और खान यूनुस के मगरबी हिस्से पर काबिज़ इसराइली फ़ोर्स की मुसलसल फ़िज़ाई कार्रवाइयों और गोलाबारी के नतीजे में 4 अफराद हलाक और मुतअद्दद दीगर ज़ख्मी हो गए। पट्टी की सेहत इंतज़ामिया ने आज एक बयान में कहा है कि पट्टी के अस्पतालों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 शहदा और 41 ज़ख्मी पहुँचाए गए हैं। तुरमुसाया म्यूनसिपल्टी के रुकन आवज़ अबू समरा ने बताया कि काबिज़ फ़ोर्स ने म्यूनसिपल्टी के मशरक में आला हिजाज नामी शख्स के घर पर चढ़ाई की और वहां मौजूद 3 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। फ़ोर्स घर की छत पर चढ़ गई और निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग जब्त कर ली। बताया गया है कि आला हिजाज उसके भाई नाजह और कज़िन महमूद को भी हिरासत में लेने के इम्कान हैं। इससे कबल मुसल्ला आबादकारों ने गांव के मशरक़ी हिस्से पर हमला किया था, जैतून के बागात और घरों के दरमियान अपनी बकरियां चराईं और आला हिजाज के घर को घेर कर उस पर धावा बोलने की कोशिश की थी। इसके बाद काबिज़ फ़ोर्स इलाके में दाखिल हुई और आबादकारों को तहफ़ फराहम किया और फिर घर पर छापामारी भी की। जमहूरी कांगो ने ऐलान किया है कि मुल्क में अबोला वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद बढ़कर 956 हो गई है, जिनमें से 247 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि बीमारी के फैलाव ने सेहत के शोबे पर शदीद दबाव डाल दिया है। वजारत सेहत के मुताबिक 75 तिब्बी कारकुनान वायरस से मुतासर हुए, जिनमें से 70 की मौत वाक़ हो गई है। वज़ीर सेहत ने एक रोज़ कबल 933 केसेस और 245 अमवात की इत्तला दी थी, लेकिन ताज़ा तरीन अदाद शुमार में मज़ीद इजाफे ज़ाहिर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वायरस कई माह कबल फैलना शुरू हुआ था। इंतज़ामिया ने 15 मई को पहली बार उसकी मौजूदगी के बारे में बताया था। इस दौरान तिब्बी अमले के मुतअद्दद अफराद मुतासिर हुए, जबकि मुल्क को दस्ताने और मास्क जैसी बुनियादी हिफाजती अशिया की शदीद कमी का सामना है। ट्यूनिस की सिक्योरिटी इंतजाम

0: टेक इनोवेशन शो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो मेरी तरह हैं। गैजेट को देखती हमें कुछ हो जाता है। मैं बता रहा हूं, ये ऐसा खर्चा है कि कंपनीज ने डिसाइड किया है कि हम आप पे बिल्कुल रहम नहीं खाएंगे। आगे आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे गैजेट्स आने वाले हैं ना भाई साहब, कुछ तो मैं आपको बता दूंगा जो आ चुके हैं और आप बोलेंगे भाई ये तो खर्चा करना पड़ेगा। खैर अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, वेलकम टू टेक इनोवेशन, वो दुनिया जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है, जहां पर गेमिंग की बात होती है, जहां पर गैजेट्स आते हैं, जहां पर एप्स आती हैं। पिछले हफ्ते लोगों ने बोला भाई एंड्रॉयड को ही सब देते रहोगे, हम आईओएस वाले को तो भला करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हमारा फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, पहले एप्स आएंगी, देन गैजेट्स, देन इन टेक न्यूज। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ऐप से, एप्स दिस वीक,
1: ट्रेंडिंग एप्स।
0: देखो जितनी भी ऐप्स हैं ये बिल्कुल भी रैंक्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि 1-2-3 बता रहा हूँ तो ऐप नंबर 1 तो ओहो इससे बढ़िया तो कोई ऐप ही नहीं है, नहीं रैंक्ड नहीं है, बट मैं इन ऑर्डर बता रहा हूँ विदाउट रैंकिंग। तो नंबर 1 जो ऐप है ऑन द लिस्ट टुडे इज अ वेरी सिंपल ऐप और ये एप्पल की ही है, ये iOS ही दे रहा है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये ऐप जो है इसका नाम है फाइनल कट कैमरा। एक है फाइनल कट प्रो एज वी ऑल नो, एक है फाइनल कट कैमरा। अब अगर आपने ये ऐप कभी डाउनलोड करी है इससे पहले, मेरे बताने से पहले, तो आप शायद जानते होंगे कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो भाई साहब एक नंबर ऐप है। आप अपने वीडियोस पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, एडिट करना बेहद आसान है, प्रोफेशनली यू कैन एडिट योर वीडियोस, एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसमें जब आप फाइल सेव करते हैं तो वो ऐप के अंदर सेव होती है, ना कि आपकी फोन की गैलरी में। That makes a lot of sense because जब कोई ऐप चीजें सेव करती है और आपकी गैलरी को भर देती है तो आपकी गैलरी में आप डिलीट कर करके थक जाएंगे या भूल जाएंगे, फोन आपको बोलेगा स्टोरेज फुल है मालिक, आगे नहीं चल सकता मैं। बट इन दिस केस ऑफकोर्स आपका फोन हो सकता है कि स्टोरेज तब भी भरे क्योंकि ऐप भी हैवी होती है, बट देन अगेन एवरीथिंग इज ईजी टू डिलीट, ओमिट, एडिट इन साइड द ऐप इटसेल्फ। तो ये जो ऐप है ये आपको पूरा कंट्रोल देती है आपकी फोटोग्राफी के लिए और स्पेसिफिकली आपकी वीडियोस के लिए, एडिट करने के लिए, शूट करने के लिए। एक इसका ड्रॉबैक है, मैक्रो शॉट्स नहीं ले पाता है, विच इज ओके। अगर आपको मैक्रो शॉट लेना है तो आप एनीवे अपने फोन के जो जनरल ऐप है उससे ले सकते हैं, मगर आपको थोड़ा सा इन्हांस करना है, iOS थोड़ा बढ़ाना है, घटाना है, शेडोज पे आपको बहुत टेंशन होती है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, दिस इज समथिंग टू डाउनलोड टू एंड ऑल्सो टू लर्न। इस ऐप के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज फाइनल कट कैमरा, अगेन इट इज बाय एप्पल ऑन द iOS। हम पढ़ते हैं आगे, अगली ऐप अगेन फ्रॉम iOS और ये मेरी फेवरेट ऐप है बिकॉज आई यूज इट ऑन डेली बेसिस। इसका नाम है डैज कैमरा, DAZCAMERA, डैज कैमरा। अब ये क्या करता है, ये आपको बहुत बेहतरीन फिल्टर्स देता है। देखो आप कहेंगे फिल्टर्स का जमाना भाई सब चला गया, आप कौन यूज करता है फिल्टर, आई कैन यूज एन AI, सिंपल। बट देन आपको AI के लिए प्रॉम्प्ट श्रॉम्प्ट देते रहो, उसमें AI के लिए आप भरेंगे, मगर जो एक सीमिंगली एक इजी नॉस्टैल्जिक आपको जो पिक मिलेगी, एडिट होगी तो सामने आएगी, वो इस ऐप से बहुत बढ़िया आती है। आई हैव टेस्टेड टू मोर AIs अगेंस्ट दिस ऐप और सच बता रहा हूँ ये AI एक्चुअली में इसके आगे थोड़े फीके पड़ जाते हैं बिकॉज दिस डज अ ग्रेट जॉब विदाउट चेंजिंग और altering anything in your photo. तो इसका नाम है डैज कैमरा। आप नॉस्टैल्जिक फिल्टर्स लगा सकते हैं, वो अर्ली 2000s वाले क्या क्या कैमरा के वो आते थे फिल्टर्स यार उस जमाने में, मतलब ऑटोमेटिकली कैमरा वैसे ही फोटो खींचता था। आई नो उस टाइम पे हमें लगता था ओहो काश और ज्यादा क्लीन अप हो सकता, लेकिन अभी फोटोज इतने ज्यादा क्लीन आने लगे हैं कि उनका वो जो नॉस्टैल्जिक फील है, वो जो थोड़ा सा रेट्रो फील है, वो चला गया है। आई एम फीलिंग टू ओल्ड राइट नाउ, मैं अर्ली 2000s को रेट्रो कह रहा हूँ, क्या जमाना आ गया। बट एनीवे डाउनलोड दिस ऐप फॉर योर ओन गुड, ऐप का नाम है डैज कैमरा, DAZCAMERA। ऑलराइट द नेक्स्ट वन, अब नंबर 3 ऑन द लिस्ट, ये बहुत बहुत काम आने वाली ऐप है मेरे फोन में जमानों से और अपडेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा अपडेट हुई है, बहुत कमाल की। इसका नाम है डॉक्यूमेंट्स। iOS यूजर्स इसे जरूर डाउनलोड कर लें, जरूर मैं ये कह रहा हूँ, ये हर किसी काम आने वाली है, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग, ये ऐप आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके फोन में कभी डिलीट नहीं करेंगे। मैं उसकी वजह देता हूँ आपको, सारी की सारी मेजर ड्राइव्स, चाहे आपके फोटोज आपके डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पे हों, आई क्लाउड पे हो, किधर भी हो, आई क्लाउड तो आपके फोन के अंदर ही है, कोई सी भी ड्राइव हो, है ना, सारे के सारे पोर्टल, सारी की सारी ऐप एक ही जगह पर इस ऐप के अंदर. यू कैन एक्सेस ऑल योर फोटोज, ऑल योर वीडियोज, वन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, कहीं पर भी हो. और ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यू विल फील कि हाँ मैं काफी ऐप जगल कर रहा था. क्योंकि क्या होता है जब आपको गूगल ड्राइव से फोटोज चेक करने होते हैं, निकालने होते हैं, डाउनलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, यू गो एंड डाउनलोड गूगल ड्राइव सेपरेटली एंड देन यू चेक. इसमें सब कुछ है, सब कुछ है. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत काम की ऐप है. ये आपने एक मरतबा डाउनलोड कर ली, आई डोंट थिंक सो आप इसे डिलीट करने वाले. आई रियली डोंट थिंक सो. सो डॉक्यूमेंट्स इसका नाम है, DOCUMENTS. iOS यूजर्स के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत कमाल की ऐप है. एंड ये भाई साहब आपके फोन के साथ चिपकी रहेगी, ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिए. ये तो हो गई एप्स, अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स की तरफ. इन गैजेट्स दिस वीक,
1: कूल गैजेट्स.
0: ऑलराइट, सो गैजेट नंबर वन, मुझे बहुत मजा आया भाई ये गैजेट देख के, मैं सही बता रहा हूँ. सिंपल सटीक काम की चीज, आप इसे गैजेट कह रहे हैं, फर्नीचर के लिए, किसी में फर्नीचर मान लीजिए, आपकी मर्जी है. बट लेट मी टेल यू, इसका नाम है डॉक सेफ चेयर. डॉक सेफ चेयर, ये एक चेयर है. आप बोलेंगे गैजेट थोड़ी हुआ है तो फर्नीचर बता रहा है. नहीं नहीं नहीं, ये चेयर है, इसके अंदर स्टोरेज है, ये फायर और वाटर रेजिस्टेंस है, और इसको इजिली इधर से उधर मूव किया जा सकता है. इट इज अमेजिंग. मैं, मुझे कभी नहीं लगा था, अगर दो तीन साल पहले भी आप पूछते कि कोई चेयर की तारीफ करेगा, मैं इतनी तारीफ तो नहीं करता, वो भी टैक्स शो के अंदर. बट डॉक सेफ चेयर सच में बहुत बहुत सही है. इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बड़ी कमाल की है, एंड उसके ओपन करने का तरीका भी अच्छा, और ऊपर से फायर और वाटर रेजिस्टेंस है. यू कैन मूव इट एनी वेयर यू वॉन्ट, टेक इट ऑन अ बीच, नो प्रॉब्लम. और इसके साथ आप घर में रखें, लिविंग रूम में रखें, एंड इवन आप गिफ्ट करें. भाई ये भी गिफ्ट दिए जाते हैं, ऐसी चीजें दिया करें, ये बड़ी काम की चीजें हैं जो लोगों को पता लगती हैं, भाई ये तो

0: काम की चीज दे दी इसने, पर लोग ये ऐसी चीजें गिफ्ट करते नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट गिफ्टिंग के तौर पे भी ये बड़ी कमाल की चीज है। डॉग सेफ चेयर प्लस स्टोरेज, आप देखिए अमेजोन पे जाके अवेलेबल है एंड ऑफर्स में मिल जाएगी आपको, बहुत सही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो आपके सीधा किचन में जगह बनाएगा। अगली जो ऐप सॉरी गैजेट है, मैं ऐप्स पे टिका हूँ, गैजेट की तरफ आ चुके हैं हम। अगला गैजेट है, इसका नाम है फेपो फूड वार्मिंग मैट, FEPPO फूड वार्मिंग मैट। सच में मैट ही है, आपको लगेगा कि छोटा सा दस्तरखान है, मगर ये छोटा और कमाल का दस्तरखान जो है आपके खाने को गर्म रखेगा, घंटों तक गर्म रखेगा। ठंडा खाना है तो उसे ठंडा रखेगा, खराब नहीं होने देगा। इसके अंदर 6 एडजस्टेबल डायल्स के जरिए टेम्परेचर्स हैं, आप उन्हें सेट कर सकते हैं और आप इस पर खाना रख दीजिए, भाई ताज़ा गर्म रहेगा, घंटों तक गर्म रहेगा। ये ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि घरों में होनी चाहिए। ऑफकोर्स बच्चों से थोड़ा घेरा इन्हें, बट बहुत बहुत कमाल की चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खाना रखा रहता है और वो नहीं खाते। मुझे डांट पड़ चुकी है इसलिए मेरी टोन नीचे हो गई। ये घर में रखने वाली चीज है भाई, इसको लाके रखिए, आपके काम आएगी सीरियसली। सो फेपो फूड वार्मिंग मैट जरा से ही दिखने वाला है, इसमें 6 एडजस्टेबल टेम्परेचर जैसे मैंने कहा, इवन आपका खाना ठंडा भी है तो उसको ठंडा रखेगा, टेम्परेचर सेट कर दीजिए, बिल्कुल माइनस में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खाना गर्म रखना है गर्म रखो, कुछ लोगों को ये होता है ना, कह देते हैं बस मैं आया आया आया और फिर आने में एक घंटा लग जाता है। सो इस पे खाना रख दिया, छुट्टी हो गई आपकी, वापस इसे हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप घर में आराम से रख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा बच्चों से दूर रखिएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अगर हाथ लगा देंगे तो ओ हाथ जल गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत बहुत अच्छे कंट्रोल्स हैं इसके एंड ये ऐसा गैजेट है जो एक बार आप घर ले आए, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी यूजिंग इट एवरी नाउ एंड देन। और मेहमान आते हैं उन्हें भी तो कूल लगता है ना, अरे भाई क्या चीज है उनके घर में। तो अगर शोबाजी के लिए भी आप लेना चाहें तो गो फॉर इट, फेपो फूड वार्मिंग मैट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट गैजेट है, इसका नाम है YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर, YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर। अब ये एक छोटी सी, हम हिंदी में कहते हैं ना डबिया है डबिया, इस पे इसके अराउंड पूरा का पूरा एक वो लगा हुआ है साफ करने के लिए, और अंदर इसके मिस्ट क्लीनर, आपने स्प्रे किया और स्प्रे करके इसी से साफ कर लिया। बहुत बहुत ईजी टू यूज एंड आपको एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली, अरे मेरी स्क्रीन खराब हो जाएगी, नहीं जी इससे आप कर लीजिए। ये चीज को मैं हल्के में लेता था, बट आई हैव रियलाइज्ड कि भाई फोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, आजकल आधी चीजें स्क्रीन पर हैं एंड यू वॉन्ट टू क्लीन दम अप। इट जस्ट दैट क्या आपको लगता है अरे कौन स्प्रे लाए, ये लाए वो लाए, ये आप अपने बैग में रखिए, आपको कहीं भी लगे फोन गंदा हो गया, कुछ हो गया, लैपटॉप की स्क्रीन साफ करनी है, ये बेस्ट चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस हैज टू बी इन योर बैग ऑल द टाइम, और जरा सा यार बहुत जरा सा स्प्रे है और स्प्रे से ही सबको साफ हो जा रहा है, ये बहुत काम की चीज है। आई एम गोइंग टू बाय दिस फॉर श्योर एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड कि ये आप जरूर रखें अगर आपके पास एन नंबर ऑफ गैजेट्स हैं जिन पे स्क्रीन्स हैं। तो YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर बजट फ्रेंडली क्लीनर है और बहुत अच्छे से साफ करता है। ओके, बड़े हम खबरों की तरफ, सब आइए इन टेक न्यूज की तरफ। देखो खबरों में सबसे पहले गूगल छाया हुआ है, गूगल ने नेक्स्ट पिक्सल ड्रॉप कर दिया था, उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी, उसमें बहुत सारे अर्ली एड्स दिए थे, एक टीजर दिया था, उन्होंने कहा था कि नाउ स्क्रीन रिएक्शंस विद जेमिनी ओमनी पॉड फीचर्स, ये अगली अपडेट का हिस्सा होगा। तो ये लास्ट पिक्सल ड्रॉप जो उन्होंने किया था वो मार्च की 2026 में किया था, मतलब इसी साल में किया था, और अब गूगल जो है वो आगे बढ़ रहा है, दे आर मूविंग ऑन विद अदर स्टफ इन देयर इकोसिस्टम। सो इसमें म्यूजिक जनरेशन एंड स्क्रीन रिएक्शंस, ये उनका नेक्स्ट पिक्सल ड्रॉप अपडेट होने वाला है, विच इज ह्यूज। आई बिलीव गूगल पिक्सल के जो फोन हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे सैमसंग और एप्पल की लड़ाई के बीच में आगे आके कहीं जीत ही ना जाए रेस, यू नो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आई वुड रियली वॉन्ट समबडी एल्स टू टेक द थ्रोन और प्रोबेबली बी इन द रेस, एंड गूगल पिक्सल बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नजर आ रहा है। ये जो वीडियोस अभी आ चुके थे बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं एंड यूट्यूब पर स्पेशली अवेलेबल हैं, एंड गूगल हैज being updating क्या हो गया मेरी इंग्लिश को तो a lot of things in the past 2 or 3 years और उन्होंने बहुत अच्छे अपडेट्स दिए हैं अपने फोन्स के साथ स्पेसिफिकली जो गूगल पिक्सल आते रहे आई एग्री उनकी प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हैं बट देन उस प्राइस में जो आपको चीज मिल रही है वो बड़ी कमाल की है एंड आई थिंक एक बग एक फीचर जो है फिक्स करें जहां पे स्क्रीन अपने आप को लॉक कर लेती है एंड देन यू रिक्वायर कि उसको आप पीसी से कनेक्ट करें और एक सॉफ्टवेयर रन करें वो परेशानी दूर हो जाए बाकी गूगल पिक्सल बहुत सही फोन से और अपडेट्स जो है बड़ी कमाल की सो यू कैन एडिट योर वीडियोस इन रियल टाइम एज यू शूट उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं उसका AI बहुत स्ट्रॉन्ग है फिर अभी आने वाले वक्त में दे आर ड्रॉपिंग म्यूजिक जनरेशन सो आई थिंक इंडस्ट्री इज गोइंग टू चेंज एंड गूगल पिक्सल बहुत कमाल करने वाला है ऑलराइट नाउ द गेम गेमिंग न्यूज क्योंकि अगली और लास्ट चीज पे ध्यान देंगे पेपर के बाद आइए आपको ये पेपर आपके लिए पलट रहा हूँ मैं
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट
0: अगली खबर बड़ी मेन है अगली खबर जो है वो गेमिंग की दुनिया से आती है सीधा उस गेम से जुड़ी हुई जो कि तहलका मचा सकता है इस साल सबको इंतजार है नवंबर में GTA 6 आएगा एवरीबॉडी नोज दैट और नवंबर में कोई भी गेमिंग कम्युनिटी कोई भी गेमिंग डेवलपर राजी नहीं है रिलीज करने के लिए सबको डर लग रहा है लेकिन एक गेम है जो तहलका मचा सकता है और वो है फैंटम ब्लेड जीरो जब इसका टीजर ट्रेलर आया था हमें लगा भाई ये क्या कर रहे हैं उन्होंने असली मोकैप जो मोकैप आर्टिस्ट हैं जो रिकॉर्ड करते हैं पूरी सीन्स को उसके लिए असली मार्शल आर्ट आर्टिस्ट और कंग फू फैंस को लिया है जो कंग फू जानते हैं देन दे हैव डेवलप्ड द गेम्स एंड दे आर सेइंग कि जो भी हमने आपको दिखाया ये तो साइड कॉन्टेंट है समझ रहे फ्लैक्स आप Phantom Blade Zero can be the next contender जो GTA 6 से पंगा ले सके बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ ठीक है ये अपने दिमाग में रखिएगा let this sink in especially gamers on that note social media handles FM107Qatar FM107Qatar और शो के बिल्कुल इख्तिताम में पहुंच चुका हूं तो आपसे बहुत प्यार आप भी भेजिएगा मुझे कोई भी ऐप गैजेट आपको नजर आए और मुझे दीजिए इजाजत दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है मास्टरा
2: अरे मौसी जी कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107 दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर. मैं हूं आपकी आरजे माविश खान. आज हम बात करेंगे सलाम करने की अहमियत के बारे में. सलाम करना इस्लाम की खूबसूरत सुन्नत है जो मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाती है. जब हम अस्सलामुअलैकुम कहते हैं तो हम असल में एक दूसरे के लिए अमन और रहमत की दुआ कर रहे होते हैं. आज की तेज जिंदगी में लोग अक्सर एक दूसरे से मिले बिना गुजर जाते हैं बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि सलाम से रिश्तों में रहमत पैदा होती है और दिल एक दूसरे के करीब होते हैं. जब हम किसी को सलाम करते हैं और वो जवाब देता है तो एक रूहानी कनेक्शन पैदा होता है जो सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं होता. ये छोटा सा अमल ना सिर्फ सवाब का जरिया है बल्कि सोसाइटी को पॉजिटिव भी बनाता है. आज का अमल ये है कि चाहे जितने भी लोग मिले उन सब को सलाम की आदत डालें, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जान पहचान हो या नहीं. ये था आज का मैसेज. आप सुन रही हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर. मैं हूँ आरजे मावश. कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और थॉटफुल एपिसोड। यहां हम बात करते हैं उन चॉइसेस की जो सिर्फ किसी को खुश नहीं करती बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इको फ्रेंडली गिफ्ट्स के बारे में। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी दोस्त की बर्थडे है या कोई स्पेशल ओकेजन है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, दोस्त की बर्थडे तो हर जगह ही आ जाती है। तो भाई आप मार्केट या ऑनलाइन गिफ्ट की शॉपिंग पे गए और आपने एक गिफ्ट ढूंढ लिया, ठीक है। फिर आप एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स या रैपिंग पेपर या रिबन और फैंसी पैकेजिंग देखकर गिफ्ट फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। गिफ्ट दे दिया जाता है, सब खुश हो जाते हैं, पिक्चर भी बना ली जाती है, सेल्फीज भी ले ली जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो हैवी रैपिंग पेपर, प्लास्टिक पैकेजिंग और रिबन्स सब कहाँ जाता है? फ्यूफ, कचरे के डब्बे में भाई। और यहाँ से स्टार्ट होती है एक बहुत ही अफसोसनाक कहानी। देखिए थोड़ा सा रिलेटेबल बात को इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनली गिफ्टिंग कल्चर में अक्सर पैकेजिंग पर बहुत फोकस किया जाता है, चीज दिखने में अच्छी लगती है ना, लेकिन इस पैकेजिंग का एक बड़ा हिस्सा सिंगल यूज होता है जो सिर्फ मोमेंट्री ब्यूटी के लिए यूज किया जाता है। ये चीज एनवायरमेंट पर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करती है साथियों, स्पेशली जब लार्ज स्केल पर गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं ना, कोई फेस्टिवल आता है या एक्स वाई जेड कोई चीज होती है, तो एक दूसरे को कैसे हम लोग नॉर्मली गिफ्ट देते हैं उसमें ओकेजंस पर, तो ये बहुत बड़ा जो हमारा एक स्केल होता है गिफ्ट एक्सचेंज का, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब इसमें इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में? देखिए आइडिया बड़ा सिंपल है, ऐसे गिफ्ट्स चूज करें जो यूजफुल, रीयूजेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। मतलब सिर्फ पैकेजिंग देखकर ना फिसल जाएं, बल्कि गिफ्ट की वैल्यू और सस्टेनेबिलिटी को भी तो मद्देनजर रखें ना। चलिए हम बात करते हैं कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है आखिरकार। देखिए इको फ्रेंडली गिफ्ट्स वो होते हैं जो या तो रीयूजेबल होते हैं, सस्टेनेबल मटेरियल से बने हुए होते हैं या लॉन्ग टर्म यूज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, रीयूजेबल बॉटल्स हो गई, होममेड आइटम्स हो गए, डिजिटल गिफ्ट्स हो गए या एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स देने से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो ये कि वेस्ट रिडक्शन होती है, इससे कम पैकेजिंग होती है और रीयूजेबल आइटम्स का मतलब है कम गार्बेज और कम एनवायरमेंटल लोड। दूसरा फायदा क्या है भाई? मीनिंगफुल गिफ्टिंग होती है। इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अक्सर ज्यादा थॉटफुल होते हैं और लॉन्ग टर्म यूज में आते हैं। तीसरा फायदा है अवेयरनेस स्प्रेड होना। जब आप सस्टेनेबल गिफ्ट्स देते हैं ना किसी को, तो आप इनडायरेक्टली दूसरों को भी इको हैबिट्स इंस्पायर करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लटर कम होता है। रीयूजेबल और यूजफुल गिफ्ट्स घर में अननेसेसरी आइटम्स एक्यूमुलेट नहीं होने देते। अच्छा इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल पता है क्या है? जरा सोचिए आप किसी को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, एक ब्यूटीफुल सा इंडोर प्लांट। अगर किसी ने मुझे देना है तो दे दें, मुझे प्लांट्स वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे अभी फिलहाल और भी ज्यादा प्लांट्स की जरूरत है, मुझे तो जितने मिले उतने कम है। तो भाई आप फॉर एग्जाम्पल किसी को एक ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट देते हैं गिफ्ट में, वो सिर्फ एक डेकोरेशन आइटम नहीं होता बल्कि वो इंसान के रूम को फ्रेश और लाइवली बना देता है। या फिर आप रीयूजेबल कॉफी मग गिफ्ट कर देते हैं जो डेली यूज होता है, अगर उनको कॉफी या चाय का शौक होगा तो वो तो डेली यूज करेंगे। कंपेयर करें एक फैंसी डेकोरेटिव आइटम से जो सिर्फ शेल्फ पर रख दिया जाता है, उसके मुकाबले तो बेहतर ही होगा ना। देखिए दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में गिफ्टिंग कल्चर बहुत एक्टिव है, बर्थडे इवेंट्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, फेस्टिवल्स, सब कुछ रेगुलरली होता है। इसलिए यहाँ इको फ्रेंडली गिफ्टिंग एडॉप्ट करना एक प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल चॉइस बन सकती है। अच्छा अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं ना जो आप यूज कर सकते हैं, वो ये है कि रीयूजेबल आइटम्स चूज करें, जैसे वाटर बॉटल्स, बैग्स, मग्स या कंटेनर्स। दूसरी चीज हो सकती है प्लांट गिफ्ट करें, इंडोर प्लांट्स एक लिविंग और लॉन्ग लास्टिंग गिफ्ट ऑप्शन होते हैं। अच्छा तीसरी चीज हो सकती है क्या चीज? एक्सपीरियंस।

गिफ्ट्स कंसिडर करें, मतलब जैसे वर्कशॉप टिकट्स हो गए, क्लास या डिजिटल सब्सक्रिप्शंस हो गई। मिनिमल पैकेजिंग यूज करें ना, सिंपल रैपिंग या रीयूजेबल क्लॉथ रैप ट्राई करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैंडमेड गिफ्ट्स सपोर्ट करें। लोकल जो आर्टिस्ट होते हैं उनके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली और मीनिंगफुल होते हैं, तो वो आप गिफ्ट करके देखें। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लिया जाए ना, तो दुनिया भर में गिफ्टिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता है, स्पेशली पैकेजिंग वेस्ट की वजह से। इसलिए सस्टेनेबल गिफ्टिंग एक ग्रोइंग ट्रेंड बन रहा है, जहां फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी और इम्पैक्ट पर होता है। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि गिफ्ट जितना फैंसी होगा उतना अच्छा लगेगा, लेकिन असल में लोग गिफ्ट की वैल्यू और मीनिंग को ज्यादा याद रखते हैं, ना कि सिर्फ उसकी पैकेजिंग को। अच्छा, अगर बिहेवियर चेंज एंगल के बारे में बात की जाए, तो जब आप इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अडॉप्ट करते हैं, तो आप अपनी गिफ्टिंग अप्रोच को ज्यादा थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। आप सिर्फ गिफ्ट देने वाले नहीं रहते बल्कि माइंडफुल गिवर बन जाते हैं। तो भाई, आज का इको स्विच सिंपल है, इको फ्रेंडली और मीनिंगफुल गिफ्ट्स चूज करें। आज का चैलेंज ये है कि अगर आप नेक्स्ट किसी को गिफ्ट देने वाले हैं, तो इको फ्रेंडली ऑप्शन चूज करें, चाहे वो प्लांट हो, रियूजेबल आइटम हो या कोई एक्सपीरियंस गिफ्ट हो। और अगर आप रिसीव करते हैं कोई गिफ्ट, तो भी इको फ्रेंडली गिफ्टिंग को अप्रिशिएट करें। साथियों, गिफ्ट का मकसद सिर्फ खुशी देना नहीं होता बल्कि कनेक्शन बनाना भी होता है। जब हम इको फ्रेंडली गिफ्ट चूज करते हैं, तो हम सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि अपनी जमीन को, अपनी इस कायनात को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो भाई, इसी नोट के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे असीम मादिबो की। असीम मादिबो कतर नेशनल टीम के मिडफील्ड इंजन के तौर पर मशहूर हैं। हाना में पैदा होने वाले असीम ने कतर में फुटबॉल तरबियत हासिल किया और बाद में नेशनल टीम का अहम हिस्सा बने। उनकी सबसे बड़ी खूबी है मिडफील्ड में बैलेंस कायम रखना और ऑपोजिशन के अटैक्स को रोकना। असीम डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर टीम को स्टेबिलिटी देते हैं और बॉल रिकवरी में महारत रखते हैं। 2019 एफसी एशियन कप की फतह और फीफा वर्ल्ड कप कैंपेंस में उन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई। उनकी वर्क रेट और टैक्टिकल अवेयरनेस कोचेस के लिए हमेशा काबिले तारीफ रही है। असीम मादिबो मॉडर्न फुटबॉल के उन मिडफील्डर्स की मिसाल हैं जो टीम के लिए खामोशी से बहुत बड़ा काम करता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: One Step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक पे, वो है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड बिजनेस कंप्लायंस. देखिए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और बिजनेस कंप्लायंस है क्या? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस किसी भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस इन्वायरमेंट

एंडाउमेंट की फाउंडेशन होते हैं कतर का जो विजन है 2030 उनका फोकस है कि बिजनेसेस प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो करें और फाइनेंशियल सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट हों ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्लियर रखें ऑडिट्स रिपोर्ट्स और टैक्स कंप्लायंस के जरिए इससे क्या होगा इससे ट्रस्ट बिल्ट होगा क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट सबको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कंप्लायंस की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि रेगुलेशंस फॉलो ना करने से लीगल इश्यूज और पेनल्टीज हो सकती हैं वहीं प्रॉपर ऑडिटिंग और एडवाइजरी सर्विसेज बिजनेसेस को सही डायरेक्शन में चलने में हेल्प करती हैं देखिए कतर में प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स इस फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं ये कंपनीज जो है वो बिजनेसेस को गाइड करती हैं वो लॉज फॉलो करवाती हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे मजबूत बनाना है फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखनी है इस हवाले से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ट्रांसपेरेंट और कंप्लायंट सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का बेसिक पिलर होता है जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और यही तो कतर का विजन भी है 2030 जो इसी स्टेबिलिटी और रिलायबल इकोसिस्टम को क्रिएट करने का एम रखता है और शायद इसी एम को अचीव करते हुए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और बिजनेस कंप्लायंस की अहमियत और ज्यादा बढ़ चुकी है चलिए जैसे मैं आपसे कहती जा रही हूँ आने वाले दिनों में हम इन डेप्थ भी इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल में बात करेंगे बट बिफोर दैट आपको धीरे धीरे मैं इन टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा वाकिफ कराने की कोशिश कर रही हूँ तो फिलहाल मैं बस यहीं पर रुकूंगी जिससे कि आप जितना मैंने कहा उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें वापस आऊंगी तो एक और नई टर्मिनोलॉजी पर डेफिनेटली हमारी बात होगी लेकिन तब तक के लिए करना क्या है बस खुश रहना है सुनते रहना है एंड स्टे हुक्ड टू एफएम 107 दिल से देसी आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी One step to 2030.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज कर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। समझने के नाम, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत घर है। ये घर सुकून, मोहब्बत, राहत और खानदान का मरकज होता है, सिर्फ ईंटों और दीवारों का मजमू नहीं। दिन भर की थकन के बाद इंसान जिस जगह लौटता है वो उसका घर होता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि घर को अल्लाह की याद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आबाद किया जाना चाहिए। और इसी सिलसिले में एक खूबसूरत सुन्नत ये है कि घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेना। जब हम घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो हमारे जहन में अमूमन मुख्तलिफ ख्यालात आ जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि घर में दाखिल होते वक्त सबसे पहले अल्लाह ताला को याद किया जाए। ये खूबसूरत दुआ पढ़ी जाए, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। अल्लाह के नाम से हम दाखिल हुए, अल्लाह के नाम से हम निकले और अपने रब ही पर हमने भरोसा किया। फिर घर वालों को सलाम किया जाए। सामने कराम, इस तरह हमारा आना जाना, हमारी जिंदगी, हमारे मामलात, ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं और ये अल्फाज हमें इस बात ही की याद दिलाते हैं। मजीद सामने कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेता है और खाने के आगाज में भी अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, आज तुम्हारे लिए यहाँ न रहने की जगह है और न खाने का मौका। लेकिन अगर अल्लाह का नाम न लिया जाए तो शैतान कहता है, तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई और खाना भी। सामने का नाम सिर्फ चंद सेकंड की दुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके नतीजे में घर अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, कितना बड़ा फायदा है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम की ज़हनी सेहत, नींद और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर जो असरात हैं उनके बारे में। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर मनफी असर डाल सकता है। मुसलसल नोटिफिकेशंस, वीडियोस और सोशल मीडिया अपडेट्स बाज़ अफराद में ज़हनी दबाव, बेचैनी और तवज्जो की कमी का बायस बन सकती हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों में स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त गुजारने से हकीकी समाजी जो रवाबत हैं वो कम हो सकते हैं, जिससे तन्हाई और बेजज्बाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक और अहम मसला नींद की खराबी है। सोने से पहले मोबाइल या टैबलेट का इस्तेमाल हमारे ब्रेन को मुतहरक रखता है। स्क्रीन से खारिज होने वाली नीली रोशनी जिस्म के कुदरती नींद के निज़ाम को मुतासिर कर सकती है, जिसकी वजह से नींद आने में दुश्वारी होती है। मगर अच्छी खबर यह है कि चंद आसान आदत अपनाकर हम इन असरात को कम कर सकते हैं। सोने से कम अज़ कम एक घंटा पहले मोबाइल और कोई भी जो स्क्रीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल महदूद कर दीजिए। घर में आप स्क्रीन फ्री टाइम मुकर्रर कर लीजिए, मसलन खाने के दौरान या ख़ानदान के साथ अगर आप बैठे हैं तो उस वक्त। रोज़ाना कुछ वक्त किताब पढ़ने, एक्सरसाइज करने, वॉक करने या फिर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गुफ्तगू में गुजारिए। वालदैन बच्चों के लिए स्क्रीन के इस्तेमाल के वाज़ेह उसूल जो हैं वो बनाएं, खुद भी उस पर अमल करके मिसाल कायम करें। तो लिसनर्स, मकसद स्क्रीन को मुकम्मल तौर पर छोड़ना नहीं है, बल्कि उसका मतवाजन और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल है। जब हम स्क्रीन और हकीकी ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करते हैं तो हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर रहती है। सेहतमंद रहिए, मुतहरक रहिए और स्क्रीन के इस्तेमाल में एतदाल इख्तियार कीजिए।

0: कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ये एक स्पेशल प्रोग्राम है ऑन डिफरेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन दी स्पोर्टिंग वर्ल्ड। तो इस स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और जैसे कि पता है कि ये प्रोग्राम है जहां हम खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिकेट की तारीख के एक ऐसे कप्तान की जिनका नाम लीडरशिप कंसिस्टेंसी और कामयाबी की मिसाल बन चुका है। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं और आज का रिकॉर्ड है सर गारफील्ड सोबर्स की। या दोस्तों, सर गारफील्ड सोबर्स वेस्ट इंडीज के वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स, वन ऑफ द टॉप लीडिंग लेजेंड्स मैं कहूँगा यहाँ पर। और दुनिया की अगर बात करूँ, दुनिया के जितने भी मैचेस हुए हैं टेस्ट क्रिकेट और ODI, वहाँ पर ODI से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में सर गारफील्ड सोबर्स वॉज यूनिक। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि सर गारफील्ड सोबर्स बेसिकली जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, तो ही गॉट इनटू द टेस्ट क्रिकेट टीम ऑफ द वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट टीम एज अ बॉलर, नॉट एज अ बैट्समैन। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 1954 में सिर्फ 17 साल की उम्र में जमैका के सबाना पार्क में मुनाकिदा फिफ्थ और आखिरी टेस्ट में गारफील्ड सोबर्स ने वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट डेब्यू किया। उन्हें अल्फ वैलेंटाइन की जगह टीम में शामिल किया गया था। अच्छा, मजे की बात है कि सोबर्स को एक बॉलर, जो मैंने आपको बताया बॉलर की हैसियत से स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि उस जमाने में इस बैट्समैन बहुत मारूफ बैट्समैन थे वेस्ट इंडीज इसके उस जमाने के टीम में। तो लोगों को लगा, सेलेक्टर्स को लगा कि एक बच्चा लड़का वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा विद द वेस्ट इंडीज टीम, सो उनको रखा गया एज अ बोला। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 75 रन देकर 4 विकेट्स हासिल करके अच्छा एक इम्प्रेशन छोड़ दिया था, जिसमें अपने ओपनिंग ओवर में एक विकेट भी शामिल था। अच्छा, जब बैटिंग की बारी आई तो सोबर्स को 9 नंबर पर भेजा गया। 9 नंबर, आई मीन लोअर डाउन द मिडिल ऑर्डर। एंड उसमें ये बात थी कि जैसे मैंने कहा, यंगस्टर्स को हमेशा एक तरह से वो किया जाता है, बाद आप नीचे से शुरू करें, आप ज़्यादा ऊपर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देयर लेजेंडरी बैट्समैन वे मौजूद। तो सोबर्स ने 14 नॉट आउट और 26 रन स्कोर की, लेकिन उस मैच में इंग्लैंड ने आसानी से वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से मार दी। इसके बाद 1954-1955 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया और अपने करियर के इस मरहले पर सोबर्स ने कई मरतबा अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील ना करने पाने की वजह से अपने गॉट अ लिटिल डिससैटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंसेस। वो अपनी 22 टेस्ट इनिंग्स में से 18 में डबल फिगर्स तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा स्कोर अब तक सिर्फ 66 था। तो 22 टेस्ट इनिंग्स में 18वें डबल फिगर्स, उसको ट्रिपल फिगर्स में कन्वर्ट करने में गैरी सोबर्स को काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन 1957 के टूर के बाद अगले 3 सालों में उन्होंने अपनी पूरी सलाहियत का सबूत दिया और अपने वादे को हकीकत में बदल दिया। एंड ही बिकेम अ लिटिल डिटरमिंड टू प्रूव, आई मीन ही नीड टू शो दैट अगर वेस्ट इंडीज टीम में जगह को पक्की करनी है, देन उनको कुछ एक मजबूत परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। अच्छा, लेटर ही स्कोर्ड एन अनबीटन 365 रन्स, ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट स्कोर ऑफ 364। उस टाइम में इट वाज सेट बाय इंग्लैंड्स सर लेन हटन इन 1938। 1938 में सर लेन हटन ने एक रिकॉर्ड एक पारी खेली जिसका उस टाइम तक इट वाज अनब्रोकन, बट गैरी सोबर्स ने इसको तोड़कर 365 रन बनाए। अच्छा, आज अगर मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट के जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो गैरी सोबर्स का नहीं रहा अब, लेकिन उन्हीं का ही मुल्क के अगर बात करूं तो ब्रायन चार्ल्स लारा के नाम है 400 रन का जो स्कोर है, इंडिविजुअल स्कोर, दैट इज़ द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इन टेस्ट क्रिकेट एंड दैट ऑल्सो वॉज एक स्कोर्ड

अगेंस्ट इंग्लैंड। तो चलिए बात हो रही है सर गारफील्ड सोबर्स के बारे में। तो इस 365 रन की जो पारी है, बहुत सालों तक इट वॉज द हाइस्ट स्कोरर इन वर्ल्ड क्रिकेट। कुल 614 मिनट्स तक बैटिंग करते हुए उन्होंने 38 बाउंड्रीज लगाई, लेकिन मजे की बात यह है कि इस इनिंग्स में ही डिडंट हिट एनी सिक्स, कोई ओवर बाउंड्री था ही नहीं इसमें। और यहाँ पे एक एनेक्डोट मैं जोड़ना चाहूँगा, सर गारफील्ड सोबर्स के नाम एक रिकॉर्ड फर्स्ट बैट्समैन एवर टू स्कोर टू हिट नॉट रादर स्कोर बल्कि एक ही ओवर में 6 डिलीवरीज में 6 सिक्सेस, ये हुआ था इंग्लिश काउंटी के एक मैच में, वो कभी और बताऊंगा। लेकिन ही ऑल्सो यू नो आई वुड से कि टेस्ट क्रिकेट अगर देखूं या फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखूं, तो सर गारफील्ड सोबर्स के नाम ये दो यूनिक रिकॉर्ड, यू नो फर्स्ट बैट्समैन टू एवर हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 365 इन टेस्ट क्रिकेट, जो बाद में उसको तोड़ा गया। 21 साल और 216 दिन में सोबर्स बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू ब्रेक द इंडिविजुअल स्कोरिंग रिकॉर्ड इन टेस्ट, और ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं, और ये रिकॉर्ड आज भी अनब्रोकन है। अगर गारफील्ड सोबर्स के पूरे क्रिकेट करियर के ऊपर एनालाइज किया जाए तो ये मालूम चलता है कि जैसे कि मैंने बताया, ही केम इन एज अ बोलर, अ चाइना मैन बोलर, उसके बाद धीरे धीरे ही ब्लॉसम्ड इनटू अ मार्वेलस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और उनको ऑलराउंडर भी कहा जाता था कि ऑब्वियसली विकेट्स तो ले चुके थे। तो ही बिकेम एन इफेक्टिव क्रिकेटर इन द वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द 1960s और लेट 50s में उनका डेब्यू हुआ था। तो 1960s एंड अर्ली 70s ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर, लीडिंग क्रिकेटर इन वर्ल्ड क्रिकेट। सोबर्स के बारे में जब हम भी बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली है कि एक हम उनको रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं, यंग क्रिकेटर्स भी उनको रोल मॉडल मानते हैं, एक ऐसे बल्लेबाज जो अपने उसूलों का नमूना था और एक ऐसा बैट्समैन जो अच्छे अच्छों को चकमा देता था और ऐसा फील्डर जो हर हिसाब से कमाल का था, सर गारफील्ड सोबर्स। अगर इनके बचपन के बारे में थोड़ा सा मैं देखूं तो ये पता चलता है कि गारफील्ड सेंट ऑर्बन सोबर्स 28 जुलाई 1936 को बार्बाडोस के ब्रिजटाउन शहर में पैदा हुए। बार्बाडोस एक मैं बताऊं कि जजीरा है, लेकिन बहुत ही स्मॉल टाइनी है, जहां पर क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून था। 6 बच्चों में सबसे छोटे गैरी सोबर्स ने वॉल्कर्स विलेज की एक सीधी सादी फैमिली में अपना बचपन गुजारा। उनके वालिद शैमन एक मर्चेंट सीमन थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने जहाज पर टॉर्पेडो अटैक में शहीद हो गए, और गैरी सोबर्स उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे। थोड़ा सा हैरान, और हमें ये जो कहानी है, हैरान कुन कहानी मैं अगर बताऊँ तो गलत नहीं हूँ, कि एक बच्चा जिनके वालिद रहा नहीं, आई मीन ही वाज सो यंग, 5 साल का था जब इनके फादर, इनके यू नो वालिद जो है, जैसे मैंने बताया जहाज पर टॉर्पेडो लगने से उनका इंतकाल हो जाता है। तो इस बच्चे को आगे बढ़ना, इनके पीछे किन किन लोगों का यू नो मेहनत है, ये बड़ा ही ताज्जुब करता है। ऑब्वियसली फैमिली बैकिंग वॉज देयर एंड बार्बाडोस, जैसे मैंने कहा, एक क्रिकेट फ्रेंजी, क्रिकेट क्रेजी आइलैंड माना जाता है। तो क्रिकेट गैरी के लिए उस सीधी सादी जिंदगी से निकलने का एक जरिया बना। शुरुआत में उनके पास कोई फॉर्मल पिच नहीं थी, इसीलिए वो गलियों में नारियल पेड़ की शाखों को बैट और नींबू को बॉल बनाकर खेलते। सोचिए द स्ट्रगल, द स्ट्रगल कर करके गैरी सोबर्स कहां तक पहुंचे थे। मगर उस बच्चे में एक खास बात थी, सिर्फ 13 साल की उम्र में वो बार्बाडोस के लोकल क्लब्स के लिए खेलने लगे और सेलेक्टर्स की नज़र में आए। 16 साल का था जब उन्हें बार्बाडोस की नेशनल टीम के लिए चुना गया, जो अपने आप में एक कमाल की बात थी। अच्छा, ये बात बता दूं कि जब सोबर्स ने 365 रन बनाया तो सोबर्स ने ये कहा था कि उन्हें टीम में जब रखा गया था, जब टीम में उन्हें जगह मिला था, उसमें उस टाइम जो वेस्ट इंडीज़ टीम के जो ओपनिंग बैट्समैन थे जेफ स्टॉलमेयर, वो बार्बाडोस मैच से पहले, आई मीन चौथे टेस्ट से पहले एक बॉल पर चलने के बाद अपना जो टखना है वो मोड़ लिया था उन्होंने। तो देट वॉज एन इंजरी फॉर स्टॉलमेयर, और जिसके बाद ये ज़बरदस्त बहस छिड़ गई थी कि ओपनिंग के लिए किसको भेजा जाना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि 9 डाउन

was, you know, he was a nine down batsman. तो जब स्टॉलमेयर को इंजरी के कारण उनको टेस्ट टीम से बाहर रखा गया तो स्टॉलमेयर की जगह पे सोबर्स को इनिंग्स का आगाज करने के लिए चुना गया और ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ये बात हुई थी. ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट टीम ड्यूरिंग दैट टाइम और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले ही 600 से ज़्यादा रन्स का टोटल उन्होंने बना लिया था. सोबर्स ने कहा कि मैं उन्हें किसी और को भेजते हुए नहीं देख सकता था, मैं एक बॉलर था जिसमें बैट्समैन के तौर पर थोड़ी सी सलाहियत थी और वो चाहते थे कि कोई उनकी चमक देखने में मदद करे और थ्री डब्ल्यूज की हिफाजत करे. थ्री डब्ल्यूज मीन्स वेस्ट इंडीज के टॉप थ्री बैट्समैन थे जिनका नाम डब्ल्यू से शुरू होता था. सोबर्स ने अपनी पहली तीन गेंदों पर बाउंड्रीज लगाए और ये तीनों चौके मिलर की बॉलिंग पर आए. फास्ट बॉलर के अगले ओवर में भी सोबर्स ने उन्हें मजीद तीन चौके और हिट कर दिए. आखिरकार वो जॉन होल्ट के साथ पहली विकेट के लिए 52 रन की पार्टनरशिप में 43 रन बनाकर आउट हुए. अच्छा, मैच ड्रॉ रहा और सोबर्स ने ऑस्ट्रेलिया की वाहिद इनिंग्स में एक विकेट हासिल की और इससे पहले वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 11 रन बना दिए थे. तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि उनकी असली सलाहियत सामने तब आई जब 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ जमैका टेस्ट मैच में उन्होंने क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने किंगस्टन जमैका में पाकिस्तान के खिलाफ अपना मेडन टेस्ट सेंचुरी स्कोर की. लेकिन सेंचुरी स्कोर करने के बाद उनका बल्ला खामोश नहीं रहा. सोबर्स ने डबल और उसके बाद ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की उस सीरीज में जिसमें उन्होंने 365 रन की ये पारी खेली. उस सीरीज में सोबर्स ने 824 रन विद 3 सेंचुरीज इन द 5 टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इसके बाद 557 रन और 3 और सेंचुरीज ऑन द वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया इन 1958-1959. तो सोबर्स को उस टाइम रोकना बड़ा मुश्किल था. होता है एक बैट्समैन, एक क्रिकेटर, एक खिलाड़ी का एक टाइम आता है जिस टाइम उनका फॉर्म बहुत ही मतलब ऊपर की तरफ रहता है, नॉट ऑन द टॉप. तो सोबर्स उस टाइम वॉज फुल ऑफ रन्स. उनके बल्ले से ऐसे मतलब ऐसे ऐसे पारी लोगों को देखने को मिला, फैंस को, क्रिटिक्स को, एक्सपर्ट्स को. यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि सोबर्स उस टाइम वॉज टॉप ऑफ हिस करियर, टॉप ऑफ हिस फॉर्म और उनको रोकना बड़ा ही मुश्किल था. और 365 जो नॉट आउट पारी उन्होंने खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान, ये इनिंग्स ने सोबर्स को एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया था. कुल 93 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 8032 रन स्कोर की जिसमें 26 सेंचुरीज और 30 फिफ्टीज शामिल है. दोस्तों, सोबर्स लेकिन सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो एक कमाल के ऑलराउंडर भी थे. लेफ्ट आर्म पेस भी डाल सकते थे, स्पिन भी और चाइना मैन भी. और फील्डिंग बस एक नज़र काफ़ी थी, वो स्लिप या शॉर्ट लेग पर ऐसे कैचेस पकड़ते जो नामुमकिन लगते थे. अच्छा, यहाँ पर उनके ही अगर यू नो उनके बारे में क्रिकेट हिस्टोरियन डॉक्टर हिलरी बेकल्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सोबर्स का असल कमाल उनकी वर्सटैलिटी पे थी. वो सिर्फ एक तरीके से मैच नहीं जिताते थे, वो कभी बल्लेबाजी से, कभी बॉलिंग से और कभी फील्डिंग से जिताते थे. उनके खेलने का तरीका करीबन क्रिकेट की असली रूह यानी कैलिप्सो क्रिकेट की एक मिसाल था. चलिए, ये बात हुई कि उनकी बल्लेबाजी के बारे में, अब बात करते हैं सोबर्स एज अ कैप्टन. सोबर्स सक्सीडेड फ्रैंक वॉरेल हु हैड रिटायर्ड और वेस्ट इंडीज के कप्तान बने 1964-65 होम सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में और ये एक इज्जतदार मगर मुश्किल मकाम था. सोबर्स का स्टाइल बहुत ही अनकन्वेंशनल था, वो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते थे. आई मीन, जब उनको लगा कि एक होता ना कि आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, अब क्या होने जाएगा, तो सोबर्स इंजॉयड इमीडिएट सक्सेस एज वेस्ट इंडीज टीम कैप्टन व्हेन हिज टीम डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया by 179 runs in the first test match at Sabina Park. Now West Indies is series ko ek ke mukable mein do matches se jeet chuke the and that was the first time West Indies had beaten Australia in a test series. Aur ye jo success tha ye spectacular tha England mein bhi 1966 aur wahi par unko mila ek title King Cricket. Aur us England mein 5 test mein unhone 722 runs score ke 103.14 with 20 wickets at 27.25 as well as taking 10 catches aur West Indies us series ko 3-1 se jeeta, ek match draw raha. So dosto, aaj bhi Sobers ka naam ka matlab hai

0: एक्सेलेंस। बार्बाडोस की गलियों से क्रिकेट की दुनिया तक उनकी कहानी, टैलेंट, जज्बे और कैलिप्सो क्रिकेट की मुस्कुराहट की एक मिसाल है। और ये जो रिकॉर्ड जिसके बारे में आज हमने आप लोगों को बताया कि 365 नॉट आउट अगेंस्ट पाकिस्तान, ये रिकॉर्ड मतलब तोड़ तो दिया गया, लेकिन एज ए यंगस्टर 21 साल और 216 दिन में सोवर्स का ये जो इंडिविजुअल स्कोर रहा है इन टेस्ट क्रिकेट और ट्रिपल सेंचुरी इनफैक्ट, तो वो सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये स्कोर किया था और आज भी ये रिकॉर्ड अनब्रोकन है। एंड दैट मेक्स सर गारफील्ड सोबर्स अ यूनिक, अ पॉपुलर एंड अ फेमस क्रिकेटर इन मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे देन वी विल मूव ऑन टू द अदर स्पोर्ट, जिस खेलों में रिकॉर्ड हुआ है उसके बारे में जिक्र करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एफएम 107 दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ एफएम 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड शो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हमने शुरू में हमने बात किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना इन क्रिकेट दैट बिलोंग टू सर गारफील्ड सोबर्स एज द यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी। अभी हम चलते हैं कुछ और स्पोर्ट्स पर नजर डालते हैं, जहाँ पर आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स के बारे में और एथलेटिक्स में उसैन बोल्ट का 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, जमैका के स्प्रिंट लेजेंड उसैन बोल्ट ने 2009 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर की इस रेस में सिर्फ 9.58 सेकंड्स में पूरी करके एथलेटिक्स की तारीख का सबसे अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। बर्लिन शहर में बनाया गया ये रिकॉर्ड आज भी कायम है और कई एक्सपर्ट्स के नज़दीक इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट बोल्ट की एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड, लंबी स्ट्राइड और बेमिसाल कॉन्फिडेंस ने उन्हें दुनिया का सबसे मशहूर स्प्रिंटर बना दिया था और इस परफॉर्मेंस ने स्प्रिंटिंग के मायार को भी बदल दिया और दुनिया भर के एथलीट्स के लिए एक नया बेंचमार्क मुकरर किया गया। मूविंग ऑन टू फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटरनेशनल गोल्स रिकॉर्ड के बारे में आज हम बात करेंगे। और रोनाल्डो का इंटरनेशनल गोल्ड रिकॉर्ड्स आप लोगों को पता है, रोनाल्डो इज गोइंग टू प्ले हिज सिक्स्थ वर्ल्ड कप, सिक्स सक्सेसिव वर्ल्ड कप, जो भी एक रिकॉर्ड होने जा रहा है अलॉन्ग विद लियोनेल मेसी एंड मेक्सिको के गोलकीपर ओचोआ। तो दोस्तों, पोर्चुगल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी हैं। 130 से ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स करके पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना नाम फुटबॉल की तारीख में हमेशा के लिए लिखवा दिया। और ये रिकॉर्ड उनकी कंसिस्टेंसी, फिटनेस और गोल स्कोरिंग सलाहियत का सबूत है। और दो दिहाइयों से ज्यादा अरसे तक टॉप लेवल पर खेलना और लगातार गोल्स करना एक गैर मामूली कामयाबी है। रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप्स, जैसे मैंने की बताया कि सिक्स सक्सेसिव यानी 6 मुसलसल वर्ल्ड कप्स में खेलना, यूरोपियन चैंपियनशिप्स और क्वालिफायर्स में गोल्स करके अपनी टीम को कई यादगार फतेह दिलाई हैं। फ्रॉम रोनाल्डो मूविंग ऑन टू अनदर लेजेंड इन स्पोर्ट्स, और टेनिस में नोवाक जोकोविच के बारे में कौन नहीं जानता है। नोवाक जोकोविच के जो 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स है वो एक रिकॉर्ड है। सर्बिया के टेनिस लेजेंड जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जीतकर मर्दों के टेनिस में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताबों का रिकॉर्ड बनाया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट। और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में गैर मामूली कामयाबी हासिल की। दोस्तों, जोकोविच की फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और हर सरफेस पर खेलने की सलाहियत ने उन्हें टेनिस की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शामिल कर दिया है। आज भी खेल रहे हैं, नौजवानों के बीच में खेल रहे हैं, उनको रोकना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो फॉर्म हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ही इज स्टिल प्लेइंग। फ्रेंच ओपन से बाहर हो गए थे, फोनसेका से हार गए थे, लेकिन वो पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो सो की। 25th जो यू नो किसी ने भी नहीं जीता, 25th टाइटल, उसके ही एक हदफ के लिए आज भी ही इज कंटिन्यूइंग। और जुलाई में जब ये वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद जब विंबलडन टेनिस का टूर्नामेंट शुरू होगा इंग्लैंड में और उसके बाद यूएस ओपन इन सेप्टेम्बर, तो उनका ये एक टारगेट है, एक गोल है कि उनको ये कंप्लीट करना है और इस रिकॉर्ड यानी 24 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड ने उनकी ग्रेटनेस को मजबूत किया और उन्हें रॉजर फेडरर और राफेल नदाल के साथ टेनिस के उस एलीट ग्रुप में शामिल कर दिया है। अब चलते हैं रेसिंग ट्रैक पर जहां बात होगी ल्यू हैमिल्टन की 105 ग्रैंड प्री विक्ट्रीज के बारे में। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर ल्यू हैमिल्टन फार्मूला 1 की तारीख में सबसे ज्यादा ग्रैंड प्री रेसेस जीतने वाले ड्राइवर हैं। हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़कर 100 से ज्यादा रेसेस जीतकर मोटरस्पोर्ट की दुनिया में नया बेंचमार्क सेट किया। उनकी स्पीड, रेस मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी ने उन्हें फॉर्मूला 1 के अजीम तरीन ड्राइवर्स में शामिल कर दिया। 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के साथ उनकी रेस विक्ट्रीज का रिकॉर्ड भी उनकी डोमिनेंस का सबूत है। दोस्तों, हैमिल्टन ने कई जनरेशंस के लिए रेसिंग फैंस को मुतासिर किया और फॉर्मूला 1 की मकबूलियत में अहम किरदार अदा किया। ये तो बात हो रही थी मोटर रेस के बारे में, अब हम चलते हैं कैमल रेस में। जी हाँ दोस्तों, कैमल रेसिंग मोस्ट विंस बाय अ रेसिंग कैमल। एक जैसे मैंने बताया माइकल शूमाकर, ल्यू हैमिल्टन और यहाँ पर बात हो रही है एक ऊंट के बारे में। कैमल रेसिंग गल्फ मालिक खास तौर पर कतर, यूएई, सऊदी अरब में बहुत मकबूल खेल है और इस खेल में कई रिकॉर्ड होल्डिंग कैमल्स ने अपनी रफ्तार और कंसिस्टेंसी से शोहरत हासिल किया। दोस्तों, सबसे नुमाया रिकॉर्ड्स में से एक वो है जब एक रेसिंग कैमल ने अपने करियर में सबसे ज्यादा मुख्तलिफ रेसेस जीतकर अपना नाम तारीख में दर्ज करवाया। हम बात कर रहे थे मोटर रेस के बारे में, ल्यू हैमिल्टन के बारे में, इंजन के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर तो भाई साहब ऊंट भी छोड़ते नहीं है। आई मीन दे आर लाइक यू नो रॉकेट के द्वारा दौड़ते हैं। कभी आप हमारे यहाँ पे जो कतर में दोहा में रेसेस होते हैं कैमल रेसेस, वहाँ पर आप लोग जाके थोड़ा देखिएगा, इन पर टीवी पर भी आप देख लीजिएगा। तो लाइक पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र किया था कि हॉर्स रेसिंग तो सब ने देखा है, शकाब में हॉर्सेस के शोज भी सब लोगों ने देखा है। इवन अरयान के जो कतर रेसिंग ट्रैक है वहाँ पर घोड़ सवारी जो इवेंट्स है उसमें भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन कैमल को भागते हुए कभी आपने देखा है? आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर आप लोग यहाँ के जो कैमल रेसेस हैं उसको फॉलो करिएगा। आप मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, ऊँट को हम लोगों ने सिर्फ रेगिस्तान में, डेजर्ट में चलते हुए, वो जो चहलकदमी है, धीरे धीरे चलना, हम लोग सोचते हैं कि बड़ा ही सुस्त जानवर है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ऊँट मतलब अगर भागना शुरू करे लंबे लंबे पैरों से, जिस तरह से स्ट्राइड्स लेते हैं, यू कैन एट टाइम्स आपकी इंटेलिजेंस वहाँ पे फेल हो जाती है कि कैसे। आई मीन इवन दिस इज नेचर इनबिल्ट है, अल्लाह ताला ने ऐसे दिया है उनको। लंबे लंबे टांगों से जिस तरह से रेत पर भागते हैं, हम लोग भागे ना रेत पर, हम तो भाग ही नहीं सकते बिकॉज डेफिनेटली वी डोंट हैव हूफ। हमारे पैर, हमारे दूसरे किस्म के पैर हैं, उनके दूसरे किस्म के पैर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ घोड़ सवारी हम लोगों ने देखा है, तो घोड़ा को हम लोग समझते हैं कि यार घोड़ा तो भागेगा ही, लेकिन यहाँ पे कैमल को भागते हुए अगर आपने देख लिया ना तो हम लेंगे भाई हैट्स ऑफ टू दी कैमल रेसेस। कैमल रेसिंग सिर्फ रफ्तार का मुकाबला नहीं है दोस्तों, बल्कि ब्रीडिंग, ट्रेनिंग और एंड्योरेंस का भी इम्तिहान होता है। और ऐसे रिकॉर्ड्स गल्फ की रिवायती विरासत और इस खेल की अहमियत को मजीद उजागर करते हैं, जहां हजारों तमाशाई और कैमल ओनर्स हर साल बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स का जो है वो इंतज़ार करते हैं, ताकि उनके जितने भी नो कैमल्स हैं उसको, कैमल्स को उस कॉम्पिटिशन में एंट्री करा दें, एनरोल करा दें, सो दैट दे ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट। ये एक आप कह सकते हैं ट्रेडिशन है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक ट्रेडिशन है जहाँ पर दे वॉन्ट टू इन्वॉल्व देमसेल्व। और अरब पेनिनसुला में आपको पता है कि कैमल्स आर द किंग, एंड कैमल्स आर द किंग मतलब द शिप ऑफ द डेजर्ट। और कैमल्स को जानवर नहीं कहते यहाँ पे, कैमल्स को यानी ऊँट को यहाँ के घर का ही एक फैमिली या सदस्य उनको मानते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो यू नो ट्रेडिशनल लोग हैं, उनको उस तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि वो अपने भाई, बच्चे और इन लोगों को ट्रीट करते हैं, माँ बाप को ट्रीट करते हैं। तो ऊँट को भी उस तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, एक्सट्रीम केयर लिया जाता है, एक्सट्रीम केयर।

0: मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते. एंड कतर गवर्नमेंट, द स्टेट ऑफ कतर प्लस कतर ओलंपिक कमेटी प्लस यहाँ के जितने भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, कतर रेसिंग ऑर्गेनाइजर्स जो कैमल रेस की ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके जो पीछे जो एक मैनेजमेंट है, उनके पीछे जो सोच है, वो भी हम लोग जब देखते हैं. हमने तो यहीं पे आके कैमल रेस देखा है. आई मीन इनफैक्ट यू नो इन माय काइंड ऑफ जर्नलिज्म में, स्पोर्ट जर्नलिज्म में, मैंने कैमल रेस कभी कवर नहीं किया, यहीं पर ही मैंने कवर किया. इनफैक्ट पिछले साल एक यहाँ पर एक इवेंट हुआ था, कैमल हैंडबॉल. आई मीन ये एक मज़ेदार यू नो एक बेसिकली एक आउट से कि मिक्सचर ऑफ हैंडबॉल गेम एंड कैमल रेस. तो ये कराया गया था लोकली, बट लोकली मैंने कहूँगा इंटरनेशनल इवेंट ही था. और इसमें बाहर से भी टीम्स आई थी, और अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कोलंबिया से. तो यहाँ पर आके उन लोगों को बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि कतर में आप कैमल ऊँट ने नहीं दे अपने ऊँट नहीं देखा तो आपने क्या देखा. तो वही इन कॉम्पिटिशन को मैंने कवर किया था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था कि इट्स अ वेरी डिफरेंट. हमने फुटबॉल, मैंने इतना फुटबॉल कवर कर लिया, मैंने क्रिकेट भी कवर किया, टेनिस भी किया, लेकिन कैमल रेस, कैमल को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके हैंडबॉल और कैमल रेस, आई मीन समथिंग यूनिक कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बो ऑफ बोथ द इवेंट्स. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था. आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, इस गेम को फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज एंजॉय दिस. नाउ मूविंग ऑन टू अ थर्ड सेगमेंट, जहां पर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में. और आज हम बात करेंगे खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम का एक अटेंडेंस रिकॉर्ड कायम किया गया था वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान. चार साल पहले नवंबर में, 21 नवंबर में रिकॉर्ड अटेंडेंस रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया था व्हेन इंग्लैंड प्लेड ईरान. और इस मैच को देखने के लिए 45,344 फैंस वह मौजूद उस दिन. और इस वेन्यू की तारीख की सबसे ज़्यादा अटेंडेंस है. हम लोग इस शो में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम को थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एन आइकॉनिक स्टेडियम ऑफ कतर. एंड आपको बताया था इससे पहले भी कि कई ऐसे टॉप टूर्नामेंट्स यहाँ पे कतर ने होस्ट किया है. दैट गोज बैक टू यू नो 1970s के टाइम में, जब कतर इस स्टेडियम का इनॉग्रेट किया था. एंड ओवर द ईयर्स अमेरिका फुटबॉल फाइनल इसी स्टेडियम में होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप एथलेटिक्स का 2019 का, 2006 का एशियन गेम्स एंड वर्ल्ड कप का. इस मैच तो था ही था, और वर्ल्ड कप के कई मैचेस भी हुए इसमें. और ये रिकॉर्ड कतर के सबसे पुराने और तारीखी स्टेडियम की अहमियत को जाहिर करता है. 1976 में तामीर किया गया था ये स्टेडियम. इसके बाद एशियन गेम्स, जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स की मेज़बानी कर चुका है. तो रिकॉर्ड अटेंडेंस ने साबित किया है कि दोहा दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को कामयाबी से होस्ट कर सकता है. तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह सर गारफील्ड सोबर्स ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और कप्तानी के जरिए वेस्टइंडीज क्रिकेट को एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाया. लेकिन एट द एंड ऑफ इट, मैं हमेशा कहता हूं कि ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का नहीं, ये लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और एक्सेलेंस का रिकॉर्ड है. तो एनीवे, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम पर, और एक अगली किस्त में हम किसी और अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे, यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत

जिंदगी की हकीकत यही है कि एक दिन जवानी ढल जाएगी, ताकत कम हो जाएगी। उस दिन इंसान को अपने जिस्म की ताकत पर नहीं, अपने आमाल की ताकत पर फख्र होगा जब वो अपने रब के सामने हाजिर होगा। उस दिन माल साथ नहीं जाएगा, लेकिन एक सच्चा कलमा साथ जाएगा। वो मुस्कुराहट भी साथ जाएगी जो अल्लाह की रजा के लिए थी। इसीलिए अकलमंदी यही है कि हम अपनी सेहत, अपनी कुव्वत, अपनी जवानी, अपनी समाअत और अपनी बसारत को अल्लाह की अमानत समझें और उसे उसके दीन की खिदमत में सर्व करें। अल्लाह सुभान व तआला हमें अपनी समाअत की हिफाजत की तौफीक अता फरमाएं, अपनी बसारत को हक देखने वाला बनाए, अपनी कुव्वत को नेकी के कामों में इस्तेमाल करने की तौफीक दे और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक ईमान, सेहत और आफियत के साथ उसकी इबादत करने की तौफीक और नसीब अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्हीं दुआओं के साथ प्रोग्राम की तकनीकी मुआवन शकीब अहमद और मेज़बान तलहा अशरफ़ुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअ सलामा।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे असीम मादिबो की। असीम मादिबो कतर नेशनल टीम के मिडफील्ड इंजन के तौर पर मशहूर हैं। घाना में पैदा होने वाले असीम ने कतर में फुटबॉल तरबियत हासिल की और बाद में नेशनल टीम का अहम हिस्सा बने। उनकी सबसे बड़ी खूबी है मिडफील्ड में बैलेंस कायम रखना और ऑपोजिशन के अटैक्स को रोकना। असीम डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर टीम को स्टेबिलिटी देते हैं और बॉल रिकवरी में महारत रखते हैं। 2019 एफसी एशियन कप की फतह और फीफा वर्ल्ड कप कैंपेंस में उन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई। उनकी वर्क रेट और टैक्टिकल अवेयरनेस कोचेज के लिए हमेशा काबिल तारीफ रही है। असीम मादिबो मॉडर्न फुटबॉल के उन मिडफील्डर्स की मिसाल हैं जो टीम के लिए खामोशी से बहुत बड़ा काम करता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम के ज़हनी सेहत, नींद और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर जो असरात हैं उनके बारे में। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर मनफी असर डाल सकता है। मुसलसल नोटिफिकेशंस, वीडियोस और सोशल मीडिया अपडेट्स बाज़ अफराद में ज़हनी दबाव, बेचैनी और तवज्जो की कमी का बायस बन सकती हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों में स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त गुजारने से हकीकी समाजी जो रवाबत हैं वो कम हो सकते हैं, जिससे तन्हाई और जज्बाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक और अहम मसला नींद की खराबी है। सोने से पहले मोबाइल या टैबलेट का इस्तेमाल हमारे ब्रेन को मुतहरक रखता है। स्क्रीन से खारिज होने वाली नीली रोशनी जिस्म के कुदरती नींद के निज़ाम को मुतासिर कर सकती है, जिसकी वजह से नींद आने में दुश्वारी होती है। मगर अच्छी खबर यह है कि चंद आसान आदत अपनाकर हम इन असरात को कम कर सकते हैं। सोने से कम अज़ कम एक घंटा पहले मोबाइल और कोई भी जो स्क्रीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल महदूद कर दीजिए। घर में आप स्क्रीन फ्री टाइम मुकर्रर कर लीजिए, मसलन खाने के दौरान या ख़ानदान के साथ अगर आप बैठे हैं तो उस वक्त। रोज़ाना कुछ वक्त किताब पढ़ने, एक्सरसाइज करने, वॉक करने या फिर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गुफ्तगू में गुजारिए। वालदैन बच्चों के लिए स्क्रीन के इस्तेमाल के वाज़ेह उसूल जो हैं वो बनाएं, खुद भी उस पर अमल करके मिसाल कायम करें। तो लिसनर्स, मकसद स्क्रीन को मुकम्मल तौर पर छोड़ना नहीं है, बल्कि उसका मतवाजन और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल है। जब हम स्क्रीन और हकीकी ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करते हैं तो हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर रहती है। सेहतमंद रहिए, मुतहरक रहिए और स्क्रीन के इस्तेमाल में एतदाल इख्तियार कीजिए।

अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और थॉटफुल एपिसोड। यहां हम बात करते हैं उन चॉइसेस की जो सिर्फ किसी को खुश नहीं करती बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इको फ्रेंडली गिफ्ट के बारे में। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी दोस्त की बर्थडे है या कोई स्पेशल ओकेजन है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, दोस्त की बर्थडे तो हर जगह ही आ जाती है। तो भाई आप मार्केट या ऑनलाइन गिफ्ट की शॉपिंग पे गए और आपने एक गिफ्ट ढूंढ लिया, ठीक है। फिर आप एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स या रैपिंग पेपर या रिबन और फैंसी पैकेजिंग देखकर गिफ्ट फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। गिफ्ट दे दिया जाता है, सब खुश हो जाते हैं, पिक्चर भी बना ली जाती है, सेल्फीज भी ले ली जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो हैवी रैपिंग पेपर, प्लास्टिक पैकेजिंग और रिबन्स सब कहाँ जाता है? फ्यूफ, कचरे के डब्बे में भाई। और यहाँ से स्टार्ट होती है एक बहुत ही अफसोसनाक कहानी। देखिए थोड़ा सा रिलेटेबल बात को इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनली गिफ्टिंग कल्चर में अक्सर पैकेजिंग पर बहुत फोकस किया जाता है, चीज दिखने में अच्छी लगती है ना, लेकिन इस पैकेजिंग का एक बड़ा हिस्सा सिंगल यूज होता है जो सिर्फ मोमेंट्री ब्यूटी के लिए यूज किया जाता है। ये चीज एनवायरमेंट पर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करती है साथियों, स्पेशली जब लार्ज स्केल पर गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं ना, कोई फेस्टिवल आता है या एक्स वाई जेड कोई ऐसी चीज होती है तो एक दूसरे को कैसे हम लोग नॉर्मली गिफ्ट देते हैं उसमें ओकेजंस पर, तो ये बहुत बड़ा जो हमारा एक स्केल होता है गिफ्ट एक्सचेंज का, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब इसमें इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में? देखिए आइडिया बड़ा सिंपल है, ऐसे गिफ्ट्स चूज करें जो यूजफुल, रीयूजेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। मतलब सिर्फ पैकेजिंग देखकर ना फिसल जाएं, बल्कि गिफ्ट की वैल्यू और सस्टेनेबिलिटी को भी तो मद्देनजर रखें ना। चलिए हम बात करते हैं कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है आखिरकार। देखिए इको फ्रेंडली गिफ्ट्स वो होते हैं जो या तो रीयूजेबल होते हैं, सस्टेनेबल मटेरियल से बने हुए होते हैं या लॉन्ग टर्म यूज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, रीयूजेबल बॉटल्स हो गई, होममेड आइटम्स हो गए, डिजिटल गिफ्ट्स हो गए या एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स देने से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो ये कि वेस्ट रिडक्शन होती है, इससे कम पैकेजिंग होती है और रीयूजेबल आइटम्स का मतलब है कम गार्बेज और कम एनवायरमेंटल लोड। दूसरा फायदा क्या है भाई? मीनिंगफुल गिफ्टिंग होती है। इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अक्सर ज्यादा थॉटफुल होते हैं और लॉन्ग टर्म यूज में आते हैं। तीसरा फायदा है अवेयरनेस स्प्रेड होना। जब आप सस्टेनेबल गिफ्ट्स देते हैं ना किसी को, तो आप इनडायरेक्टली दूसरों को भी इको हैबिट्स इंस्पायर करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लटर कम होता है। रीयूजेबल और यूजफुल गिफ्ट्स घर में अननेसेसरी आइटम्स एक्यूमुलेट नहीं होने देते। अच्छा इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल पता है क्या है? जरा सोचिए आप किसी को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, एक ब्यूटीफुल सा इंडोर प्लांट। अगर किसी ने मुझे देना है तो दे दें, मुझे प्लांट्स वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे अभी फिलहाल और भी ज्यादा प्लांट्स की जरूरत है, मुझे तो जितने मिले उतने कम है। तो भाई आप फॉर एग्जाम्पल किसी को एक ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट देते हैं गिफ्ट में, वो सिर्फ एक डेकोरेशन आइटम नहीं होता बल्कि वो इंसान के रूम को फ्रेश और लाइवली बना देता है। या फिर आप रीयूजेबल कॉफी मग गिफ्ट कर देते हैं जो डेली यूज होता है, अगर उनको कॉफी या चाय का शौक होगा तो वो तो डेली यूज करेंगे। कंपेयर करें एक फैंसी डेकोरेटिव आइटम से जो सिर्फ शेल्फ पर रख दिया जाता है, उसके मुकाबले तो बेहतर ही होगा ना। देखिए दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में गिफ्टिंग कल्चर बहुत एक्टिव है, बर्थडे इवेंट्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, फेस्टिवल्स, सब कुछ रेगुलरली होता है, इसलिए यहाँ इको फ्रेंडली गिफ्ट

एक्टिंग एडॉप्ट करना एक प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल चॉइस बन सकती है। अच्छा, अगर अब आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं ना जो आप यूज कर सकते हैं, वो ये है कि रीयूजेबल आइटम्स चूज करें, जैसे वाटर बॉटल्स, बैग्स, मग्स या कंटेनर्स। दूसरी चीज हो सकती है प्लांट गिफ्ट करें। इंडोर प्लांट्स एक लिविंग और लॉन्ग लास्टिंग गिफ्ट ऑप्शन होते हैं। अच्छा, तीसरी चीज हो सकती है क्या चीज, एक्सपीरियंस गिफ्ट्स कंसिडर करें, मतलब जैसे वर्कशॉप टिकट्स हो गए, क्लास या डिजिटल सब्सक्रिप्शंस हो गई। मिनिमल पैकेजिंग यूज करें ना, सिंपल रैपिंग या रीयूजेबल क्लॉथ रैप ट्राई करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैंडमेड गिफ्ट्स सपोर्ट करें। लोकल जो आर्टिस्ट होते हैं उनके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली और मीनिंगफुल होते हैं, तो वो आप गिफ्ट करके देखें। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लिया जाए ना, तो दुनिया भर में गिफ्टिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता है, स्पेशली पैकेजिंग वेस्ट की वजह से। इसलिए सस्टेनेबल गिफ्टिंग एक ग्रोइंग ट्रेंड बन रहा है, जहां फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी और इम्पैक्ट पर होता है। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि गिफ्ट जितना फैंसी होगा उतना अच्छा लगेगा, लेकिन असल में लोग गिफ्ट की वैल्यू और मीनिंग को ज्यादा याद रखते हैं, ना कि सिर्फ उसकी पैकेजिंग को। अच्छा, अगर बिहेवियर चेंज एंगल के बारे में बात की जाए, तो जब आप इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अडॉप्ट करते हैं, तो आप अपनी गिफ्टिंग अप्रोच को ज्यादा थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। आप सिर्फ गिफ्ट देने वाले नहीं रहते बल्कि माइंडफुल गिवर बन जाते हैं। तो भाई, आज का इको स्विच सिंपल है, इको फ्रेंडली और मीनिंगफुल गिफ्ट्स चूज करें। आज का चैलेंज ये है कि अगर आप नेक्स्ट किसी को गिफ्ट देने वाले हैं, तो इको फ्रेंडली ऑप्शन चूज करें, चाहे वो प्लांट हो, रीयूजेबल आइटम हो या कोई एक्सपीरियंस गिफ्ट हो। और अगर आप रिसीव करते हैं कोई गिफ्ट, तो भी इको फ्रेंडली गिफ्टिंग को अप्रिशिएट करें। साथियों, गिफ्ट का मकसद सिर्फ खुशी देना नहीं होता बल्कि कनेक्शन बनाना भी होता है। जब हम इको फ्रेंडली गिफ्ट चूज करते हैं, तो हम सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि अपनी जमीन को, अपनी इस कायनात को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो भाई, इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर. मैं हूं आपकी आरजे माविश खान. आज हम बात करेंगे सलाम करने की अहमियत के बारे में. सलाम करना इस्लाम की खूबसूरत सुन्नत है जो मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाती है. जब हम अस्सलामुअलैकुम कहते हैं तो हम असल में एक दूसरे के लिए अमन और रहमत की दुआ कर रहे होते हैं. आज की तेज जिंदगी में लोग अक्सर एक दूसरे से मिले बिना गुजर जाते हैं बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि सलाम से रिश्तों में रहमत पैदा होती है और दिल एक दूसरे के करीब होते हैं. जब हम किसी को सलाम करते हैं और वो जवाब देता है तो एक रूहानी कनेक्शन पैदा होता है जो सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं होता. ये छोटा सा अमल ना सिर्फ सवाब का जरिया है बल्कि सोसाइटी को पॉजिटिव भी बनाता है. आज का अमल ये है कि चाहे जितने भी लोग मिले उन सब को सलाम की आदत डालें, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जान पहचान हो या नहीं. ये था आज का मैसेज. आप सुन रही हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर. मैं हूँ आरजे मावश. कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ. One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.

0: on step to 2030.
1: और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक पे, वो है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड बिजनेस कंप्लायंस. देखिए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और बिजनेस कंप्लायंस है क्या? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस किसी भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एनवायरनमेंट की फाउंडेशन होते हैं. कतर का जो विजन है 2030, उनका फोकस है कि बिजनेसेस प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो करें और फाइनेंशियल सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट हों. ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्लियर रखें ऑडिट्स, रिपोर्ट्स और टैक्स कंप्लायंस के जरिए. इससे क्या होगा? इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा. क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट सबको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा. कंप्लायंस की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि रेगुलेशंस फॉलो ना करने से लीगल इश्यूज और पेनल्टीज हो सकती हैं. वहीं प्रॉपर ऑडिटिंग और एडवाइजरी सर्विसेज बिजनेसेस को सही डायरेक्शन में चलने में हेल्प करती हैं. देखिए, कतर में प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स इस फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. ये कंपनीज जो है वो बिजनेसेस को गाइड करती हैं, वो लॉज फॉलो करवाती हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे मजबूत बनाना है, फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखनी है, इस हवाले से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं. तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ट्रांसपेरेंट और कंप्लायंट सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का बेसिक पिलर होता है. जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. और यही तो कतर का विजन भी है 2030, जो इसी स्टेबिलिटी और रिलायबल इकोसिस्टम को क्रिएट करने का एम रखता है. और शायद इसी एम को अचीव करते हुए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और बिजनेस कंप्लायंस की अहमियत और ज्यादा बढ़ चुकी है. चलिए, जैसे मैं आपसे कहती जा रही हूँ, आने वाले दिनों में हम इन डेप्थ भी इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल में बात करेंगे. बट बिफोर दैट, आपको धीरे धीरे मैं इन टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा वाकिफ कराने की कोशिश कर रही हूँ. तो फिलहाल मैं बस यहीं पर रुकूंगी, जिससे कि आप जितना मैंने कहा उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें. वापस आऊंगी तो एक और नई टर्मिनोलॉजी पर डेफिनेटली हमारी बात होगी. लेकिन तब तक के लिए करना क्या है, बस खुश रहना है, सुनते रहना है एंड स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी. One step to 20.

Scam Alert. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं दुहा वाला कबीर. और फ्रॉड के बारे में बताना, स्कैमर्स के बारे में बताना और आपको चौंकना करना, ये जरा जिम्मा उठाया है. तो कितने किस्म के स्कैम हो सकते हैं, आप सोचिए जरा. आपकी सोच जहां तक जाएगी वहां से ये लोग शुरू होते हैं. मैंने पहले भी कहा था ये लोग इतने क्रिएटिव हो चुके हैं स्कैमर्स के, इनसे बचने के लिए आपको इनकी तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा. यस. तो आज जिस स्कैम के बारे में बात कर रहा हूं, जिस फ्रॉड के बारे में बात कर रहा हूं, ये भी काफी फेमस है और बहुत लोग इसके शिकार होते हैं. इसमें फंसाना लोगों को बहुत आसान है क्योंकि इसमें इमोशन ड्राइव करता है. ये अलग किस्म का स्कैम है, लंबी कहानी बनाई जाती है. बस यूं समझिए ऐसे कोई फिल्म का प्लॉट चल रहा हो, फिर इसका जो एग्जीक्यूशन है वो इतना स्ट्रांग होता है कि लोग इसमें फंसे जाते हैं. है ना, होता कैसे, एक कॉल आती है आपके पास अचानक और आपसे कहा जाता है कि सुनिए, आपकी जमीन, आपका घर, या भाई, आपका माँ बाप, आपको कोई दोस्त फंस चुका है और आपके घर पे नोटिस भेजा जा रहा है. अगर आपने फौरन एक्शन नहीं लिया तो मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है. बेहद बिजार किस्म की चीज आपसे कही जाती है, लेकिन उस वक्त आप इमोशनली ड्रिवन होते हैं तो आप आधी चीजों पे यकीन कर लेते हैं. और उसी टाइम आपसे अमाउंट भी बोल दिया जाता है कि अगर आपने फौरन 1000 कतरी रियाल, 1500 कतरी रियाल नहीं जमा कराए तो दिक्कत हो सकती है. और उस कश्मकश में आपको समझ में नहीं आता कि मैं घर पे कॉल पहले कर लूं या ना करूं. एंड दीज आर वेरी स्मार्ट बंच ऑफ पीपल. ये 100 में से 2-3 लोगों को कन्विंस करके निकल जाते हैं और उसमें इनकी जीत होती है. और इसलिए आपको फंसना नहीं है, इन कॉल से बच के रहें. जो लोग कह रहे हैं कि आपके इलाके से, आपके मोहल्ले से कॉल कर रहे हैं, इनसे तो आपको सबसे पहले बचने की ज़रूरत है. प्लीज़ वेरीफाई करना सीखें. अब जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो है इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन. इनकी आइडेंटिटी कैसे की जाए, बड़ा सिंपल है इन्हें पहचानना भी. अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर जैसी ऐप्स हैं तो का मामला पहले ही आसान हो गया. जैसे इनकी कॉल आएगी रेड हो जाएगा मामला और स्कैम बड़ा बड़ा आपके सामने ऐप पे नजर आ जाएगा, विच सिग्निफाइज कि लोग नए नहीं हैं मार्केट में, बहुत पहले से ये कर रहे हैं. और इनको पहचाने का एक और तरीका है, इनसे जरा खुद ही का एड्रेस पूछिएगा. जब आप सही बोलेंगे ना कि मैं आपके कंट्री से, आपके शहर से कॉल कर रहा हूँ और आपके घर नोटिस भेजा जाएगा, इनसे अपना एड्रेस पूछ के देखिए. ये जरूर आपका एड्रेस इस तरीके से बताएंगे जिससे साफ हो जाएगा कि आपका एड्रेस इन्हें पता नहीं है, ये सीधा स्कैम है. और इसके बाद भी ये अगर आपको लगता है फुली प्रिपेयर्ड है, इन्हें सब पता है, फिर भी आपको आगे फंसना नहीं है, फोन काट के जरा इन्हीं का नंबर सर्च करना है और आपको इनके नंबर के आगे लिखना है स्कैमर. तो जब आप इनके नंबर को उठाएंगे, गूगल पे लिखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कितने लोग इनके शिकार हैं और उससे साबित हो जाएगा कि ये कितने बड़े स्कैमर्स हैं. तो इनसे प्लीज प्लीज बच के रहें. बड़े मासूम लोग हैं, हर जगह होते हैं, तो उनको जरा ये इन्फॉर्मेशन जरूर जरूर बताएं. और इनका जो रिवीलर पार्ट है, इनको कैसे पकड़ा जाए, इस बात पे आपको फोकस करना है. आइडेंटिफिकेशन अगर आप

then you know everything about them. और फिर आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है. अच्छा सोल्यूशन, अब आप फंस चुके हैं, तब क्या किया जाए? सोल्यूशन बेहद आसान है. सबसे पहले तो डिस्कनेक्ट करें, सीधा घर पे कॉल लगाएं अगर कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है. पहले ही बात तो ये, जब आप इनकी कॉल देखेंगे, कॉल आएगी या बहुत दुनिया जहां का ड्रामा करेंगे, लेकिन ड्रामे में ना फंस के आप जो है इन स्कैमर से नॉर्मल बात करें. आपकी नॉर्मल टोन इनको इमोशनली ड्राइव करेगी और ये आपको इमोशनल नहीं कर पाएंगे. आपके घर की परेशानियां आपको बताने लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको कॉल अगर काटनी है और आपको इन्हें रिवील भी नहीं करना है कि आप पकड़ चुके हैं, तो आपको कहना है कि मैं जरा कॉल करके आता हूँ और फोन काट देना है. उसके बाद इफ यू थिंक कि मामला बहुत संगीन है एंड यू थिंक दे कैन एक्चुअली सेंड समथिंग एट योर होम, इस पर घर वाले घबरा जाएंगे. होता है ना कि घर पे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जो हो सकता है डर जाएं एक फेक चीज से. तो इस मामले में आपको एक जेन्युइन लॉयर से कॉन्टेक्ट करना है और आराम से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं. किसी भी फेक किस्म के नोटिस से डरना नहीं है, क्योंकि ये लोग आगे जा चुके हैं, ये अब फेक नोटिसेस भी भेजने लग गए हैं. और इन चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, दैट यू नीड टू हैव अ लॉयर. बट देन अगेन वो लास्ट रिजॉर्ट है, बिल्कुल आखिर की बात है. उससे पहले अगर आपने सिंपल ये प्रोसीजर्स फॉलो कर लिए तो ये आप तक पहुँच ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता. सो मेक श्योर व्हेन एनीवन कॉल्स यू अप एंड टेल्स यू कि आपके घर से कॉल कर रहा हूं और आपके घर में नोटिस भेज दिया जाएगा, देन यू नो कि वो किस किस्म का स्कैमर है. बहुत फिल्मी हो गया है मामला, बच के रहिए.

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महवेश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। हजरत नूह अलैहि सलाम की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि एक ऐसी अजीम दास्तान है जो हमें जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फरहम करती है। ये कहानी हमें ईमान की मजबूती, सबर की अजमत और अल्लाह पर कामिल भरोसे की अहमियत सिखाती है। इस कहानी से हम कुछ अहम सबक सीख सकते हैं, तो देखते हैं कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह अपना सकते हैं। हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। सोचें, 950 साल की कोई मामूली मुद्दत नहीं। इस तवील अरसे में उन्होंने हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया। कौम की तानाजनी, उनका मजाक, उनकी सरकशी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत ना हारी। ये सबक हमें सिखाता है कि जब हम जिंदगी में मुश्किलात का सामना करें, चाहे वो जाती हो, पेशा वराना हो या माशरती, हमें साबित कदम रहना चाहिए। आज हमारी जिंदगियों में बहुत सी आजमाइशें होती हैं। कभी हमारे ख्वाब पूरे होने में वक्त लगता है, कभी लोग हमारी बात को समझने से इनकार कर देते हैं, या कभी हालात हमें मायूस कर देते हैं। लेकिन हजरत नूह अलैहि सलाम की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि सबर के साथ अगर हम अपने मकसद पे डटे रहें तो अल्लाह जरूर हमारे लिए रास्ता निकालता है। जब आप कोई मुश्किल घड़ी देखें तो एक गहरा सांस लें और अपने आप से कहें, अगर हजरत नूह अलैहि सलाम 950 साल तक सबर कर सकते थे तो मैं भी इस मुश्किल से गुजर सकता हूँ। अपने लिए छोटे छोटे एम्स बनाया करें जो आपको बड़े मकसद की तरफ ले जाएं, और हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगे। अपने इर्द गिर्द के लोगों को सबर की अहमियत बताएं, खास तौर पे बच्चों को, ताकि वो भी इस अजीम सिफत को अपनाएं। हजरत नूह अलैहि सलाम ने जब सहरा में कश्ती बनाने का उनको हुक्म मिला तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वो जानते थे कि अल्लाह का वादा सच्चा है। उनकी कौम उनका मजाक उड़ाती रही कि सहरा में कश्ती का क्या फायदा, लेकिन हजरत नूह अलैहि सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह जो कहता है वो होता है। ये सबक हमारी जिंदगियों के लिए बहुत अहम है। हम अक्सर हालात को देखकर परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम कैसे होगा या इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन हजरत नूह अलैहि सलाम हमें सिखाते हैं कि जब अल्लाह पर भरोसा हो तो हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। जब आप किसी मुश्किल फैसले का सामना करें तो अल्लाह से दुआ मांगें और उस पर भरोसा रखें कि वो आपके लिए बेहतरीन रास्ता निकालेगा। अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मामलात में भी अल्लाह पर तवक्कुल रखें। मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ अल्लाह पे भरोसे की अहमियत पे बात करें और उन्हें बताएं कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को मुख्तलिफ अंदाज में दावत दी। कभी वो रात के वक्त छुपकर लोगों से बात करते, कभी दिन के उजाले में खुलेआम, कभी नर्म लहजे में, कभी तंबी के साथ। उन्होंने हर तरीका अपनाया कि शायद उनकी कौम हिदायत कबूल कर ले। ये हमें सिखाता है कि अच्छाई की दावत देना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसे हिकमत और मोहब्बत के साथ देना चाहिए। आज हमारे माशरे में भी बहुत से लोग गुमराही का शिकार हैं। कभी वो गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, कभी वो ईमान की अहमियत को भूल जाते हैं। हजरत नूह अलैहि सलाम हमें सिखाते हैं कि हमें उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहिए, लेकिन इस अंदाज में कि वो हमारी बात सुने, ना कि हमसे दूर भागे।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोसिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
5: Aap sun rahe hain FM 107.
0: Dil se, desi.

0: एनीवेयर।
1: यस, एनीटाइम, एनीवेयर।
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं, और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
5: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم।

तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे कुफराने नेमत से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया, यानी जहन्नम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो बदतरीन जाय करार है। और अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज कर लिए ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। इनसे कहो, अच्छा मजे कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट कर जाना दोजख ही में है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें न खरीदो फरोख्त होगी और न दोस्त नवाजी हो सकेगी। अल्लाह वही तो है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से तुम्हारी रिज्क रसानी के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समंदर में उसके हुक्म से चले, और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि लगातार चले जा रहे हैं, और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है।